0: ज्ञानेश को बचा रहा है।
1: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
2: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
1: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल, प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
3: उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
4: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
5: ब्रूटली लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनाहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
1: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
6: Their policemen that have scratched me all over, they have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
2: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
1: काफी देर तक पुलिस और राहुल, प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
7: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
8: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारियां की जाती हैं लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रही हैं।

0: होगा।
1: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
2: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
3: लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
2: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
3: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जा ले जाके, कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाएं और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
2: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
3: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, सर, ऑनरेबल सर है, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
2: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP की तरफ से 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर CJP कार्यकर्ता डटे रहेंगे। जैसे पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
2: ज्ञानेश कुमार पर CJP का प्लान जंतर मंतर।
5: मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ रुकोगे उसी को जंतर मंतर बना दो, और कितने लोगों की आवाज उठाओगे, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा अगर ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं, पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा।
2: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई।
6: जब भी दिल्ली पुलिस हमें रोके वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, वो कहलाएगा जंतर मंतर। हमारा यही प्लान होने वाला है, पूरा दिल्ली जंतर मंतर बनने वाला है।
2: केंद्र सरकार को CJP का सीधा अल्टीमेटम।
5: और आज ये लोग आते वोटिंग राइट छीनना चाहते, तो ये बात किसी पार्टी की नहीं, ये बात किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, ये बात लोगों के फंडामेंटल राइट्स की है, अगर लोगों से उनका वोटिंग राइट छीना जाएगा तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी। वन नेशन वन इलेक्शन ये स्लोगन है, लेकिन असली इंटेंशन है वन नेशन वन पार्टी।
2: चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम CJP। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट टू।
5: क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 अक्टूबर को हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर को, उसको लेकर सरकार डरी हुई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने जितने भी CJP से रिलेटेड कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इंडिया
2: पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को CJP की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है।
5: इसमें देखिए हमारी 3 डिमांड्स है। हम भी मानते हैं कि एक का रेजिग्नेशन लेकर कुछ बदलेगा नहीं। हमारी 3 डिमांड्स है। पहला डिमांड जो है वो ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन है, उसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि SIR का जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। और तीसरी डिमांड जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाए, न्यूट्रली हो जाए। ऐसा ना हो कि अमित शाह और मोदी जी एक दिन दोनों साथ में बैठे नाश्ता करते हुए डिसाइड कर ले ये बंदा बड़ा सही है, ये अपने साइड का इसको बना देते भाई ये सही लग रहा है, ऐसा नहीं चल सकता।
2: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: 10 अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेन जी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे घर।
2: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में CJP कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है।
5: लोगों को बताया पिछले कुछ दिनों से मैं महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि कैसे उन्होंने मुंबई में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसको कोऑपरेट किया, कहीं से भी दिल्ली पुलिस की तरह डंडा नहीं चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है, क्योंकि वो कभी भी ब्रूटल नहीं होती है दिल्ली पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बच्चों को पीटती है। लेकिन आज ही CJP के वॉलंटियर्स को नोटिस आया है, उसमें ये पूछा है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ट्रेन का 1,000-1,500 का जो खर्चा है, ट्रेन का टिकट है, उसका भी हिसाब पुलिस को देना पड़ेगा क्या? कुछ और काम बचा नहीं है पुलिस को।
2: CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है।
5: एक चीज बोली है कि आप आंदोलन में चले गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। चंद्र पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली, कौन आंदोलन में जाएगा कौन नहीं? और जंतर मंतर का आंदोलन चंद्रपुर पुलिस के अंदर कब से आ गया? क्या जंतर मंतर चंद्रपुर पुलिस के अंदर आता है? और तीसरी चीज कही जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन हिंसक है। चंद्रपुर पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को कैसे पता पहले से ही कि आंदोलन हिंसक है? क्या पहले से ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्या?
2: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकी देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
2: दिपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दिपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दिपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।
4: फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। सितंबर में शुरू आया आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें भी हुई और इसी पूरे आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है।
2: सुलग उठा फ्रांस, जेन जी और जेन अल्फा का विद्रोह। स्कूलों की बदहाली, फ्रांस में जेन जी आंदोलन की चिंगारी। स्कूलों से सड़क तक जेन जी की पुलिस से सीधी भिड़ंत। अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार, स्कूलों पर संग्राम। बवाल के बीच ट्रंप का बयान, फ्रांस पर कब्जा चाहता है इस्लाम। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। सड़कों पर आग है, पुलिस है, आंसू गैस है और पुलिस के सामने खड़ी है फ्रांस की नई पीढ़ी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें जेन जी और जेन अल्फा शामिल हैं और इन्होंने बदहाल स्कूलों के लिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। कहीं स्कूल के गेट पर बैरिकेडिंग है, कहीं सड़कों पर छात्रों का हुजूम है और कहीं पुलिस के साथ सीधा टकराव। आपको बता दें कि फ्रांस के लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया, तो इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई। उसके जबड़े में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों, छात्रों और अभिभावक समूहों ने नाबालिगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग बताया है। स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी, छात्र सड़कों पर भागते नजर आए, यानी स्कूलों की समस्या को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगह हिंसक टकराव में बदल चुका है। प्रदर्शन के दौरान करीब 200 लोग घायल हुए हैं तो 5,000 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें करीब 87% नाबालिग हैं, यानी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां 18 साल से कम उम्र के छात्रों की हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान 85 टीचिंग स्टाफ भी घायल हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से होती है। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर की जाए। स्कूल में अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन तब तक दूसरे इलाकों में भी विरोध शुरू हो चुका था। इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई ये नई पीढ़ी अब ऑनलाइन शिकायत करने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों की हालत पर सवाल पूछ रही है। लेकिन फ्रांस में जेन जी और जेन अल्फा के इस धधकते आक्रोश के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के बेकाबू ढंग से आने का मामला है। ये स्कूलों से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक महान देश पर इस्लाम के कब्जा करने का मामला है। यानी जहां फ्रांस के छात्र शिक्षकों की कमी, स्कूलों की खराब हालत, भरी हुई कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को बाहर से लोगों के आने और इस्लाम के मुद्दे से जोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे सिर्फ फ्रांस का मुद्दा नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी है। अगले महीने अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा और इस्लाम से जुड़ी राजनीति दक्षिणपंथी वोटरों को लामबंद करने वाले बड़े मुद्दों में शामिल है। यानी फ्रांस के स्कूलों में चल रहे आंदोलन को ट्रंप ने अपने उस राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है। तो मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले क्या फ्रांस के इस विवाद को बाहर से आने वाले लोगों और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर ट्रंप अपने समर्थक वोटरों को एकजुट करने का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? हालांकि फ्रांस की सड़कों पर मौजूद छात्रों से अगर पूछा जाए तो उनकी घोषित मांगे फिलहाल बिल्कुल अलग हैं। शिक्षक चाहिए, स्कूलों की मरम्मत चाहिए, कक्षाओं में भीड़ कम चाहिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। यानी एक तरफ फ्रांस की जेन अल्फा और नई पीढ़ी का स्कूलों को लेकर गुस्सा और दूसरी तरफ ट्रंप का इसे बाहर से लोगों के आने और इस्लाम से जोड़ना। लेकिन अब मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, हिंसा बढ़ी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है, सैकड़ों छात्र और स्कूल कर्मचारी घायल हुए हैं और 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन डेकोर्नू ने इसे कई दशकों में सबसे हिंसक स्कूल प्रदर्शनों में से एक बताया है और मंत्रियों को छात्रों की मांगों पर काम करने का निर्देश दिया है। सरकार के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फ्रांस पहले से भारी सरकारी कर्ज, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ते बजट घाटे से जूझ रहा है। यानी सड़कों पर छात्र हैं, स्कूलों की बदहाली है और सरकार के सामने पैसे की भी बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
8: रियल्टी पार्टनर टीडीआई इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
9: हेल्थ पार्टनर
10: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
9: बैंकिंग पार्टनर
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीस चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
7: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

को वहम की समस्या रहती है? क्या बीमारियों और रिश्तों को लेकर वहम के शिकार होते हैं? क्या है वहम होने का कारण और क्या है इसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे चुनाव आयोग कार्यालय का घेरा। दिल्ली में हाई वोल्टेज, सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।

पंजाब और हरियाणा के सियासी हलचल पर सबसे बड़ा मंथन, सीएम भगवंत मान, नायब सिंह सैनी समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे रखेंगे अपनी राय आज दिन भर। देखिए पंचायत आज तक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकार की सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। दरअसल इसी बीच सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स पर हमले हुए हैं और आपको ये बता दें कि रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हमले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 8 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि अबहा एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत और 28 घायल हुए हैं। सऊदी गठबंधन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन में हूती ठिकानों पर 80 से ज्यादा हमले किए हैं, तो वहीं हूतियों ने अदन एयरपोर्ट पर मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। एक मिसाइल फ्लाइट की लैंडिंग से कुछ मिनट पहले रनवे के पास गिरी। ताजा लड़ाई में 2,00,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो रियाद और अबहा एयरपोर्ट पर भयानक हमला हुआ है। हूती हमले के बाद सऊदी ने यह पलटवार किया, जिसमें हमलों में 36 लोगों का घायल होने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E925 खराब मौसम के कारण करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से यानी कि नोज को नुकसान काफी पहुंचा। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर शाम करीब 4:05 पर सुरक्षित उतार लिया। विमान में सवार सभी 104 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

0: एक बड़ी खबर अब दिल्ली से। दिल्ली के सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के हादसे की वजह से अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से 8 घायलों का इलाज के लिए ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उनको भेज दिया गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे शामिल है। मृतकों में करीब 12 साल की एक बच्ची की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है और मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते पुलिस और राहत एजेंसियां लगातार तलाशी अभियान कर रही है। 8 घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी बताई जा रही है, जिसकी अभी पहचान की जा रही है। मलबे में और भी लोगों की अभी तलाश की जा रही है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है।
1: रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग थी, पॉपुलेशन वाला इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 8:30 जो हैं बज चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं NDRF के जो जवान हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान हैं, पैरामेडिक्स की जो टीम है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका जारी है। क्योंकि जो बड़ी रूफ्स थी उनको तोड़ने के लिए JCB और क्रेन्स यहाँ पर मंगाई गई और बाद में देखा गया कि जो छोटा छोटा मलबा था उसको काटने के लिए कटर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही जो स्निफिंग डॉग्स हैं उनके जरिए भी जो है यहाँ पर मदद ली जा रही। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मलबे में अपना सामान ढूंढ रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो NDRF का बचाव कार्य है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे JCB के जरिए, क्रेन्स के जरिए आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बचाव कार्य चल रहा है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि NDRF के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं बचाव कार्य के लिए। और अधिकारी का भी जो हमें सूचना मिली उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो बच्चा बताया जा रहा है उसकी हादसे में जान चली गई और तकरीबन 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और जो स्थानीय लोगों का कहना है और प्रशासन का कहना है तकरीबन 5 से 6 लोग जो है अभी और अंदर फंसे हो सकते हैं, उसको देखते हुए अभी भी जो बचाव कार्य है यहाँ दिल्ली के सीमापुरी में चल रहा है। और ये पहला हादसा नहीं, तकरीबन आज से 1 महीने पहले देखा गया था कि दिल्ली के सत्यनिकेतन में एक PG गिरने से तकरीबन जो 7 लोग हैं अपनी जान गवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में MCD के ऊपर और दिल्ली सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में बार बार क्यों ऐसे बिल्डिंग गिरने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: वहीं CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी और बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने CEC के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए हैं। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरन धरने से उठाया, हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस हिरासत से दोनों को रिहा कर दिया गया है।
2: राहुल की ललकार ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
3: हटाओ नहीं यार। सर मैं एकदम को हटा दे। सर मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
2: पहले आकाशवाणी फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
4: दे पुलिस में बट हैव स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड।
2: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
3: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
2: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
4: Let them call their forces back. I will not move from here.
2: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
5: ऐसे नहीं होगा।
3: आप बताएं कैसे होगा?
5: आपने इसको धकेला नीचे।
2: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये 2 तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
4: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
2: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
6: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म

0: और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ यानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
1: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
2: We are all here together. We are all here united. And we are all here without any egos. We will fight these guys.
3: जो ज्ञानेश है ना ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं वहीं ढूंढेंगे जहां बंद करके इसको रखा हो।
4: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं
3: क्या करेंगे? ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
5: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जलकार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
6: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
5: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
7: उनका इस्तीफा मांगना चाहती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20-30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
8: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की ये हालत है।
9: ब्रूटली लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रुटैलिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
5: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियंका गांधी टस से पस नहीं होती।
10: Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
11: गुंडागर्दी? अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट करिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
5: काफी देर तक पुलिस और राहुल प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
12: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
5: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है, अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से बॉस्मी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
13: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की तैयारी की जाती है, लेकिन राहुल पुलिस के बंदोबस्त को चकमा देते हुए नई जगह पर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के नहले पर राहुल गांधी दहला चल रहे हैं।

0: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरा होमवर्क करती है, लेकिन बीच में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों को चकमा दे देते हैं। बीते दिन संसद भवन से राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। पुलिस की तैयारी यही थी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले हिरासत में लिया जा सके, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गए। कई घंटों के बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह राहुल का धरना खत्म करवा पाई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल गांधी जनपद के पास लंच करेंगे, उसके बाद आज जंतर मंतर जाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP ने अपने अधीनस्थों को खास ट्रेनिंग दी,
2: विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली।
1: क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, राहुल का प्लान क्या है, ये दिल्ली पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा उन पुलिस वालों को क्लास दे रहे हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी को रोकने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लिहाजा आज DCP ने पुलिस वालों को हिरासत में लेने का पूरा तरीका समझाया।
2: सेंसिटिवली, सारा अदब और रिस्पेक्टफुली इनको रिक्वेस्ट करते रहना है। ओरली हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, सर, ऑनरेबल सर, ठीक है। तो वो चीज़ों का आप, हो सकता है काफ़ी सारे ऑनरेबल MPs को नहीं पहचानते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो भी हो या तो उनके साथ वाला बता देता है, नहीं भी बताए तो ट्रीट एवरीबडी लाइक विद ऑल वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, ठीक है।
1: राहुल गांधी के एक्शन से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर भारी है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के तमाम तिकड़म को राहुल बार बार चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
5: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
6: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
7: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिंस।
8: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: Special partner, Great Khali's Choice for powerful fitness lifts by Polo Elevator.
1: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर

0: हेम की समस्या रहती है, क्या बीमारियों और रिश्तों को लेकर वहम के शिकार होते हैं, क्या है वहम होने का कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
1: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि साजिश में ईरान का हाथ है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
1: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इसराइल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि साजिश में ईरान का हाथ है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2000 रुपए से ऊपर के P2M यानी परसेंट टू मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि ये मर्चेंट से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाने वाला MDR है और सरकार ने कहा है कि इसे ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर किसी मर्चेंट ने ये लागत ग्राहक से वसूलने की कोशिश की तो उसका असर यूपीआई की डिमांड पर पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक इस चार्ज से यूपीआई ट्रांजैक्शन की मंथली वैल्यू में 10% तक गिरावट का अनुमान है। वहीं मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4% तक कमी की आशंका है और केवल 14% यूजर्स ही 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट जारी रखते हुए एक्स्ट्रा रकम देने को तैयार होंगे। अगर मर्चेंट MDR का बोझ ग्राहक पर डालते हैं तो लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि 27% लोग कैश की तरफ चले जाएंगे, वहीं 26% क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जबकि 14% डेबिट कार्ड चुनेंगे। इसी तरह 4% लोग बैंक ट्रांसफर NEFT या IMPS का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर 76% यूजर्स बड़े पेमेंट के लिए दूसरे विकल्पों पर जाने की बात कह रहे हैं। यानी खतरा UPI पर चार्ज लगने से ज्यादा इस बात का है कि अगर ये लागत ग्राहक तक पहुंची तो बड़े पेमेंट में लोग UPI से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में बड़े पेमेंट को लेकर मर्चेंट की चिंता बरकरार है। सर्वे के मुताबिक 41% मर्चेंट्स 2000 रुपए से ऊपर के UPI पेमेंट पर कोई MDR देने को तैयार नहीं है। वहीं केवल 17% 0.4% MDR वहन करने को तैयार है जबकि 15% अधिकतम 0.04% MDR देने को तैयार है और 9% मर्चेंट्स UPI पेमेंट स्वीकार ही नहीं करते हैं। UPI की ताकत को आंकड़ों के नजरिए से समझें तो अगस्त में UPI पर कुल 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए जिनकी वैल्यू 29.82 ट्रिलियन रुपए रही। इसमें मर्चेंट पेमेंट्स की वैल्यू 8.95 ट्रिलियन रुपए थी और मर्चेंट ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू में 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट की हिस्सेदारी 67% थी। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि MDR का बोझ सीधे ग्राहकों पर ना आए। सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने पर काम हुआ है जिससे मर्चेंट्स की तरफ से ग्राहक से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश पर नजर रखी जा सके। आदित्य के राड़ा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे चुनाव आयोग कार्यालय का घेरा। दिल्ली में हाई वोल्टेज, सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।

0: पंजाब और हरियाणा के सियासी हलचल पर सबसे बड़ा मंथन। सीएम भगवंत मान, नायब सिंह सैनी समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे रखेंगे अपनी राय आज दिन भर। देखिए पंचायत आज तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकार की सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। दरअसल इसी बीच सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स पर हमले हुए हैं और आपको ये बता दें कि रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हमले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 8 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि अबहा एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत और 28 घायल हुए हैं। सऊदी गठबंधन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन में हूती ठिकानों पर 80 से ज्यादा हमले किए हैं, तो वहीं हूतियों ने अदन एयरपोर्ट पर मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। एक मिसाइल फ्लाइट की लैंडिंग से कुछ मिनट पहले रनवे के पास गिरी। ताजा लड़ाई में 2,00,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो रियाद और अबहा एयरपोर्ट पर भयानक हमला हुआ है। हूती हमले के बाद सऊदी ने यह पलटवार किया, जिसमें हमलों में 36 लोगों का घायल होने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E925 खराब मौसम के कारण करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से यानी कि नोज को नुकसान काफी पहुंचा। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर शाम करीब 4:05 पर सुरक्षित उतार लिया। विमान में सवार सभी 104 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक बड़ी खबर अब दिल्ली से। दिल्ली के सीमापुरी में बिल्डिंग गिरने के हादसे की वजह से अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से 8 घायलों का इलाज के लिए ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उनको भेज दिया गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे शामिल है। मृतकों में करीब 12 साल की एक बच्ची की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है और मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते पुलिस और राहत एजेंसियां लगातार तलाशी अभियान कर रही हैं। 8 घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी बताई जा रही है, जिसकी अभी पहचान की जा रही है। मलबे में और भी लोगों की अभी तलाश की जा रही है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है।
1: रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग थी, पॉपुलेशन वाला इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 8:30 जो हैं बज चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं NDRF के जो जवान हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान हैं, पैरामेडिक्स की जो टीम है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका जारी है। क्योंकि जो बड़ी रूफ थी उनको तोड़ने के लिए JCB और क्रेन्स यहाँ पर मंगाई गई और बाद में देखा गया कि जो छोटा छोटा मलबा था उसको काटने के लिए कटर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही जो स्निफिंग डॉग्स हैं उनके जरिए भी जो है यहाँ पर मदद ली जा रही। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मलबे में अपना सामान ढूंढ रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो NDRF का बचाव कार्य है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे JCB के जरिए, क्रेन्स के जरिए आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बचाव कार्य चल रहा है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि NDRF के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए बचाव कार्य के लिए और अधिकारी का भी जो हमें सूचना मिली उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो बच्चा बताया जा रहा है उसकी हादसे में जान चली गई और तकरीबन 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जो स्थानीय लोगों का कहना है और प्रशासन का कहना है तकरीबन 5 से 6 लोग जो है अभी और अंदर फंसे हो सकते हैं। उसको देखते हुए अभी भी जो बचाव कार्य है यहां दिल्ली के सीमापुरी में चल रहा है और ये पहला हादसा नहीं, तकरीबन आज से 1 महीने पहले देखा गया था कि दिल्ली के सत्यनिकेतन में एक PG गिरने से तकरीबन जो 7 लोग हैं अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में MCD के ऊपर और दिल्ली सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में बार बार क्यों ऐसे बिल्डिंग गिरने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: वहीं CAC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज कांग्रेस देश में प्रदर्शन करेगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने CAC के खिलाफ न सिर्फ संग्राम छेड़ा बल्कि दिल्ली पुलिस से भी टकरा गए हैं। लगातार दूसरे दिन राहुल और प्रियंका को पुलिस ने जबरन धरने से उठाया, हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस हिरासत से दोनों को रिहा कर दिया गया है।
2: राहुल की ललकार, ज्ञानेश के खिलाफ गलगार।
3: हटाओ नहीं सर, मैं तो हटा सर, मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था।
2: पहले आकाशवाणी, फिर जंतर मंतर के लिए कूच।
4: पुलिस
2: पुलिस ने रोका इंडिया गठबंधन की बस का रास्ता।
3: सर ये हजारों की भीड़ है, किसी को चोट लग गई।
2: सड़क पर राहुल प्रियंका की हुंकार, ज्ञानेश पर आर पार।
4: Let them call their forces back. I will not move from here.
2: जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, सड़क पर ही छिड़ा संग्राम।
5: ऐसे नहीं होगा,
6: आप बताएं कैसे होगा?
5: आपने इसको धकेला नीचे।
2: तस्वीरें जंतर मंतर चौराहे की हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर हिरासत में ले लेती है। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है।
4: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. Let them call their forces back. I will not move from here.
2: और अब आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े रण की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ जनपद पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं।
7: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार जी ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, और मैंने कल भी कहा था जिन्होंने ये काम किया है ये देशद्रोही है और इन पर हम एक्शन लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
8: इलेक्शन कमीशन कर रही है और मोदी जी करा रहे हैं, और जब मोदी जी ऐसी गलती करा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
9: We are all here together. We are all here united, and we are all here without any egos. We will fight these guys.
10: जो ज्ञानेश है ना, ये इस देश का सबसे बड़ा गद्दा घोषित हो, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां ज्ञानेश मिलेगा वहीं खोजने जा रहे हैं, वहीं ढूंढेंगे, जहां बंद करके इसको रखा हो।
11: ज्ञानेश की तलाश में आप जा रहे हैं,
10: क्या करेंगे? ज्ञानेश बोल ही नहीं रहा है और लॉ मिनिस्टर बोल ही नहीं रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता ज्ञानेश को बचा रहा है।
2: राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है। पहले आकाशवाणी भवन परिसर में 8 घंटे तक धरना, और फिर जंतर मंतर से धावा बोलने के लिए राहुल, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के 200 सांसद बस में सवार हो जाते हैं।
12: Narendra Modi government is a illegitimate government. Not only Ganesh Kumar, and Narendra Modi government also has to go. Writing is on the wall. They are seeing, they are afraid. That is why they are using a brutal force against us. But we are not intimidated.
2: उधर जंतर मंतर जैसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और जंतर मंतर चौराहे पर राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसदों की बस रोक ली जाती है।
13: उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उनमें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
6: आपको लगता है हम यहाँ से हिल जाएंगे? बड़ी खबर, क्या समझ रखा है इन लोगों ने? ये देश की राजधानी की यह हालत है।
14: ब्रूटली लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे। ब्रूटालिटी की इंतहा है। यू स्टैंड एक्सपोज।
2: बस का घेराव देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बस से नीचे उतर आते हैं और वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर राहुल गांधी से बात कर उन्हें सड़क से उतरने के लिए कहते हैं।
5: आप ऐसे नहीं होगा,
11: आप बताएं कैसे
5: होगा? आपने इसको धकेला नीचे,
11: आप बताएं कैसे
2: होगा? जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर जैसे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। फिर पुलिस प्रियंका गांधी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका गांधी तस से बस नहीं होती।
4: They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground, and now we are not going to move from here.
12: गुंडागर्दी, अरे इनका इतिहास क्या है? जरा पेज पलट के दिए तो नई नई शान पहन के घूम रहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको मालूम इनका इरादा क्या है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर के रुक जाएंगे, बेटा उनको बोल दो ये होने वाला नहीं।
2: काफी देर तक पुलिस और राहुल प्रियंका के बीच एक संघर्ष चलता है। आखिर में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़क से जबरन उठाकर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
15: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम to justice. My guarantee that all four of them will be brought to justice.
2: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह में लेफ्ट पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो
0: बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आपको वहम की समस्या रहती है? क्या बीमारियों और रिश्तों को लेकर वहम के शिकार होते हैं? क्या है वहम होने का कारण और क्या है इसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
2: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
3: हेल्थ पार्टनर
4: वृंदा लाइफ वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
5: बैंकिंग पार्टनर
6: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
7: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: निवेशकों के लिए चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में रिटर्न का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अप्रैल से सितंबर के बीच छोटी कंपनियों के शेयरों ने बड़े शेयरों और मझोली कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सोने और चांदी जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों का प्रदर्शन इस दौरान कमजोर रहा। डेटा के मुताबिक स्मॉल कैप शेयरों में करीब 23% की उछाल देखी गई। वहीं मिड कैप इंडेक्स करीब 13% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी 50 में महज 2% की बढ़त देखी गई। और सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में इस दौरान दबाव बना रहा। यानी इस कारोबारी साल की पहली छमाही में निवेशकों की नजर ज्यादा रिटर्न देने वाले इक्विटी सेगमेंट पर रही। खास बात है कि ये बदलाव शेयर बाजार के इंडेक्स के साथ म्यूचुअल फंड निवेश में भी दिख रहा है। अगस्त में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में बड़ी रकम पहुंची। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल कैप फंड्स में करीब 7,973 करोड़ रुपए और मिड कैप फंड्स में करीब 6,989 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगस्त का कुल नेट इनफ्लो 29,328 करोड़ रुपए रहा। इसका मतलब है कि इक्विटी फंड्स में आने वाले नए पैसों का बड़ा हिस्सा उन कैटेगरी में गया जहां निवेशकों को ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। लेकिन कहानी सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप तक सीमित नहीं है, क्योंकि SIP निवेश में भी इस दौरान तेजी देखी गई है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद हर महीने तय रकम लगाने वाले निवेशकों की भागीदारी बनी हुई है। इक्विटी में लगातार बढ़ते निवेश का एक बड़ा संकेत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बढ़ता आकार भी है। AMFI की आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार करीब 3 गुना हो गया है। निवेश में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब बाजार में पैसा सिर्फ सीधे शेयर खरीदने के जरिए नहीं आ रहा। SIP और म्यूचुअल फंड के जरिए भी घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में बेहतर रिटर्न के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है। छोटी कंपनियों के शेयरों में तेजी के बाद उतार चढ़ाव बड़े शेयरों के मुकाबले ज्यादा हो सकता है, इसलिए केवल पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही ने इतना जरूर दिखाया है कि निवेशकों के बीच इक्विटी खासकर स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट की डिमांड मजबूत बनी हुई है। दूसरी तरफ सोना चांदी का प्रदर्शन पिछले कारोबारी साल की पहली छमाही के मुकाबले बिल्कुल उलट रहा, यानी निवेश की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन निवेशकों के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि किस एसेट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, बल्कि ये भी है कि आगे जोखिम कितना है और निवेशक की जरूरत के मुताबिक कौन सा विकल्प फिट बैठता है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे चुनाव आयोग कार्यालय का घेरा। दिल्ली में हाई वोल्टेज, सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ज्ञानेश कुमार पर सियासी घमासान तेज, खड़गे ने कहा तानाशाह, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठबंधन का पर्दाफाश, नितिन नवीन का पलटवार, अराजकता फैला रहे हैं राहुल। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 3 लोगों की मौत, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी।

पंजाब और हरियाणा के सियासी हलचल पर सबसे बड़ा मंथन, सीएम भगवंत मान, नायब सिंह सैनी समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे रखेंगे अपनी राय आज दिन भर। देखिए पंचायत आज तक।

आपका, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी को लेकर, घटने वाली घटनाओं को लेकर, जीवन की तमाम चीजों को लेकर वहम पैदा हो जाता है और बहुत सारे लोगों को बीमारी, रिश्तों को लेकर इतना वहम होता है कि वो मुश्किल में आ जाते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि आपके मन में वहम क्यों पैदा होता है और वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बहुत बार जीवन में ऐसा मौका आता है कि व्यक्ति को वहम की शिकायत हो जाती है। आखिर किन ग्रहों की वजह से मन में, दिमाग में वहम की समस्या पैदा होती है? देखिए, वहम की जो समस्या है वो मन से पैदा होती है, आपके मन का वहम होता है। और चूंकि ये मामला मन का होता है, इसीलिए इसका मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ अगर छाया ग्रहों का संबंध बने, राहु या केतु का संबंध बने, तो ये वहम को, शक शुभहे को जन्म देता है। वायु तत्व की जो राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, इनको वहम होने की संभावना, इनके मन में शक शुभहा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको वहम ज्यादा होता है। हालांकि मिथुन, तुला और कुंभ वालों को अज्ञात चीजों का वहम होता है, और कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को ज्यादातर बीमारियों का वहम हो जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

लोग हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए वहम जो है वो आपके मन का मामला है, तो मन चूंकि अलग अलग तरीकों से चलता है तो वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं। कुंडली में कोई परमानेंट योग हो, चंद्र राहु का, चंद्र केतु का या राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो तो वहम स्थायी हो जाता है, वहम परमानेंट हो जाता है। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, नजर दोष की वजह से, निगेटिव एनर्जी की वजह से भी वहम हो जाता है। अचानक से आपकी खराब दशा चलने लगे, अचानक से दशाओं में दिक्कत आ जाए तो भी वहम की स्थितियां बन जाती हैं। बहुत बार अगर आपने गलत रत्न पहन लिया, खास तौर से गोमेद पहन लिया, लहसुनिया पहन लिया बिना सोच विचार के, तो वहम जैसी स्थितियां हो जाती हैं। कभी कभी बिना सोचे समझे अगर आप गलत मंत्र जप करते हैं तो इसका असर आपके मन पर पड़ता है और आपके मन में वहम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मन कमजोर हो जाता है और मन में वहम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

का ध्यान रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र

प्रश्न सीबी सहाय ने हमें लिखा है, झारखंड से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 जनवरी 1989, 3:48 दोपहर में, रांची झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र को संतान की प्राप्ति कब तक होगी। सहाय जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके संतान प्राप्ति का योग नवंबर के महीने से शुरू हो रहा है इसी साल, और अगले साल उनको संतान की प्राप्ति होगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। उनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनाएं और सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने को कहें। साथ ही साथ ये भी कहें कि इस समय वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपके मन को कमजोर करती हैं और मन में वहम पैदा करती हैं। कौन सी आदतें हैं? अगर आप रोज नहीं नहाते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो आपका मन कमजोर होगा और आपके मन में वहम पैदा होगा। अगर आप गलत और खराब संगति में रहते हैं तो नकारात्मक संगति की वजह से आपका मन कमजोर होगा और मन में वहम पैदा होगा। अगर आप बिना वजह के हरा वृक्ष काटते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, मन में शक, चिंता, तनाव और वहम पैदा होगा। जो लोग नशा करते हैं, रेगुलर नशा करते हैं, उनके अंदर वहम आने की, जो चीज नहीं है उस चीज को लेकर चिंता करने की और तनाव पालने की आदत आ जाती है। अगर आपके मन में बीमारी को लेकर, रिश्तों को लेकर वहम रहता है तो उसे दूर कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

को प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आपको बीमारियों को लेकर के वहम रहता है कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई, कैंसर ना हो जाए, हार्ट में प्रॉब्लम ना हो जाए, या रिश्तों को लेकर के पति पत्नी पर, दोस्त पर शक रहता है, वहम रहता है, बीमारी की सोच की वजह से आप ठीक से रह नहीं पाते हैं, तो वहम ने अगर आपको परेशान कर रखा है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना बेहतर होगा। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा या कम से कम 27 बार प्रातः जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र का जप करिएगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत रखिएगा और इस दिन केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करिएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं या चंदन की सुगंध का अगर प्रयोग करें तो इससे मन आपका शुद्ध और पवित्र होगा, मन में वहम का प्रवेश नहीं होगा। देखिए, वहम सबसे ज्यादा होता है बीमारियों का, और जो जल की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को या सामान्यतः इन लग्न वालों को बीमारियों को लेकर, अपने जीवन को लेकर वहम बहुत होता है। अगर आपका लग्न जल का है या राशि जल की है और बीमारियों के वहम को लेकर के परेशान हैं तो रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करिए और चांदी का एक कड़ा, चांदी की एक चेन या चांदी का एक छल्ला जरूर धारण करिए। ऐसा करने से आपके वहम की समस्या में सुधार होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें।

बार को केला खा सकते हैं। जो बृहस्पतिवार को केले का दान करता है केवल वो बृहस्पतिवार के दिन केला ना खाए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2 करियर में बदलाव होगा। नंबर 3 यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4 करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5 धन लाभ के योग हैं। नंबर 6 अतिथि का आगमन होगा। नंबर 7 काम में सफलता मिलेगी। नंबर 8 रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9 यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न पुष्पा देवी ने राजस्थान से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 सितंबर 1998, 1 बजे मध्य रात्रि में पाली राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र की पहली शादी गड़बड़ हो गई, उसका मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का समाधान कब तक होगा और मेरे बेटे का दूसरा विवाह कब होगा। पुष्पा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। कुंडली के हिसाब से साल 2027 के अक्टूबर के पहले पहले आपसी सुलह समझौते से इस मुकदमे का निपटारा होगा और आपके पुत्र को मामला निपटाने के लिए पैसे रुपए भी देने पड़ेंगे, तब जाकर ये मामला हल होगा। आपके पुत्र का दूसरा विवाह साल 2028 के आरंभिक समय में दिखाई दे रहा है। अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं। सुबह शाम उनको संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने को कहें और उनसे कहें कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आप

कोई इंटरव्यू है, जरा सा जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

सिंह राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज पीले फूलों से भगवान की पूजा करिएगा और आज तामसिक आहार ग्रहण ना करें। अगर आज ऐसा करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बदसलूकी के आरोप से भड़का सियासी घमासान। कांग्रेस ने आज के दिन को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस घोषित किया। पार्टी ने ट्वीट कर प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए। सीसी के खिलाफ आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन। बीते बुधवार को हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी। कांग्रेस का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसद चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायतें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रियंका गांधी सड़क पर लेट गई और हटने से किया इनकार। सांसदों के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया। कहा, पद से हटाने तक जारी रहेगा आंदोलन। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को संविधान पर हमला बताया। आरोप लगाया कि सरकार संविधान के सिद्धांतों के मुताबिक काम नहीं कर रही और विपक्ष के प्रदर्शनों को रोका जा रहा। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को सीसी को हटाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। राहुल गांधी ने खुद पर एफआईआर दर्ज होने वाली एफआईआर को लेकर भी तंज कसा। कहा, वो हर एफआईआर को अपने लिए एक मेडल की तरह मानते। अखिलेश यादव का दिल्ली पुलिस पर तंज। कहा, दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई काम नहीं। बीजेपी का राहुल पर पलटवार। अध्यक्ष नितिन नवीन ने हमला बोलते हुए दिल्ली में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा, जिन देश विरोधी तत्वों का नाम हटाया जा रहा, कांग्रेस उनका बचाव क्यों कर रही। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। महिला पुलिस अधिकारी ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। कहा, राहुल की कथनी और करनी पर फर्क कैमरे में लाइव। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने मारपीट का आरोप लगाया। उनके मुताबिक करीब 40 से 50 प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर कर बदसलूकी की, गाली गलौज और मारपीट की। दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती। 50 और अतिरिक्त सीएपीएफ की कंपनियां दिल्ली में की गई तैनात। पहले से ही करीब 150 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात। लखनऊ में जलभराव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। अभी जो शेयर कर लिखा, तैरी ए की आप लखनऊ में है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, पानी पर चलने वाला बुलडोजर ले आओ और जलभराव भाजपा सरकार गिराओ। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में ये स्वीकार कर दिया है कि उनके शासन में पीडीए का उत्पीड़न रुकने वाला नहीं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण ऐसे असंतुलित बयान दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में दंगे के बजाय गंगा को चुनेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, प्रदर्शन अराजकता का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा। कांग्रेस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। कहा, कांग्रेस का संविधान नहीं अराजकता में भरोसा। बंगाल में शुभेंदु सरकार के सलाहकार बनाए गए मिथुन चक्रवर्ती। सूचना और संस्कृति मंत्रालय में मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। पहले सीएम के पास था विभाग। कुलगाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों का बड़ा ठिकाना ध्वस्त। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने छात्रों की मांग पर ध्यान देने का किया आग्रह। पुणे में एमपीएससी आंदोलन से ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित होने का दावा। स्कूल कॉलेज और एम्बुलेंस सेवाओं के बाधा के आरोप। महाराष्ट्र के लातूर में एक और 60 साल के किसान ने अपने ही खेत में खुद को पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। बैंक लोन और सूख रही खरीफ की फसल के चलते उठाया कदम। अकोला में सूखे का संकट। 10 दिन में एक बार फिर से मिलेगा पानी। फिर भी निर्माण कार्य में टूटी पाइपलाइन। सूखे के बीच हजारों लीटर पानी की बर्बादी। मराठवाड़ा में सूखे से हाहाकार। संभाजीनगर में फसल बर्बाद होने पर मवेशी बेचने को मजबूर किसान। भारतीय वायुसेना आज 54वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वर्ष के वायुसेना दिवस की थीम है, भारतीय वायुसेना अचूक अभेद और सटीक। राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान अपनी ताकत और उड़ान कौशल दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। हिंडन एयरबेस की प्रदर्शनी में इस बार ब्रह्मोस मिसाइल भी रखी गई है। साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी नजर आएंगे। हिंडन में जवानों ने परेड और बैंड के साथ जोरदार अभ्यास किया। तिरंगे के साथ हेलीकॉप्टरों ने भी भरी उड़ान। नवी मुंबई में नेक्सस 2026 के तहत खाद्य और फार्मा विशेषज्ञों की बड़ी बैठक। मीटिंग में खाद्य सुरक्षा और मानकों के नए मानदंड पर चर्चा। विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E925 खराब मौसम के दौरान करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर आकाशीय बिजली की चपेट में आए सभी यात्री सुरक्षित। बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से यानी कि नोज को पहुंचा नुकसान। हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। शिमला में भारी भूस्खलन। संजौली बाईपास पर दर की पहाड़ी। बाल बाल बची गाड़ियां, वीडियो वायरल। भूस्खलन के कारण करीब 15 से 20 मिनट तक यातायात बाधित रहा। उसके बाद पत्थर और मलबा हटाकर यातायात दोनों तरफ से बहाल कर दिया गया। चंबा के साचपास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए। करीब 5 से 6 इंच बर्फ गिरने से ठंड भी बढ़ी।
चंबा के साजपास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए। बर्फ जमने से बैरागढ़ साजपास किलाड़ मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर फिसलन बढ़ने की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया। देहरादून में मूसलाधार बारिश, आंधी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, लोगों ने सावधानी की अपील की। वहीं लुधियाना में तेज रफ्तार स्कूल बस ने साइकिल सवार छात्रा को कुचला, छात्रा की हालत नाजुक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने बस स्टैंड गेट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोग गोली लगने से वजह से घायल। हैदराबाद में सिरपुर कागजनगर एक्सप्रेसवे पर आग लगी, यात्रियों में मची अफरातफरी। इंदौर में सवारी का बैग लेकर फरार हुआ ऑटो चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीमापुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। इंदौर में फिर से धसी सड़क, नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज से बना गड्ढा, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। देहरादून के कॉलेज में बड़ा बवाल, कॉलेज के बाहर तलवार, ईंट और पत्थर लेकर खड़े छात्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सतना में रेत कारोबारी पर फायरिंग, 2 सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। नागपुर में छोटी बच्ची से अश्लील कृत्य देखकर भड़के लोग, आरोपी को पीट पीट कर ली जान।

0: और बेहद ही दुखद खबर मुंबई से सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो चुका है। उनके निधन की खबर से प्रशंसकों और साथी कलाकारों में मायूसी छा गई है। तो दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो चुका है। हमारे सहयोगी दिवेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। दिवेश, क्या अपडेट है? क्या पहले से तबीयत खराब चल रही थी? 75 साल की उनकी उम्र और आज निधन की खबर सामने आई है।
1: जी, आपको बता दें, जो हमने मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर शेखर फालकर से बातचीत की, उनसे ये पता चला कि रात में उन्हें शायद किसी फ्लैट में वो रुके थे गोवा में, और वहां पर छाती में उनको पेन होने लगा, उन्हें तकलीफ हुई, तो डॉक्टर को कॉल दिया गया, हॉस्पिटल को कॉल दिया गया। हॉस्पिटल की एक टीम उनके घर पर पहुंची और वहां पर पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्हें कार्डियक मसाज देने की कोशिश की गई और फिर उन्हें वो अरेस्ट में ही थे, और तभी उन्हें फिर बाद में हॉस्पिटल मूव किया गया क्योंकि उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, वो अनरेस्पॉन्सिव हो गए थे। तभी 5:20 पर उन्हें अस्पताल लाया गया है और अस्पताल में 5:20 पर उन्हें मृत घोषित किया गया है। डॉक्टर शेखर सालकर का यह भी कहना है, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है इसीलिए पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और उसके बाद आगे की बातें पता चलेगी। पर जो प्राइमा फेसी डॉक्टर्स को दिखाई दे रहा था, मेडिकल टीम को दिखाई दे रहा था कि वो कार्डियक अरेस्ट में थे, और कार्डियक अरेस्ट एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से नाना पाटेकर जी की मृत्यु हुई है। उनके बेटे मल्हार पाटेकर से भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी इस खबर की पुष्टि की है। ये कहा है कि जो सुना है कि नाना पाटेकर जी की मृत्यु हो गई है, ये सच है। वो अभी पुणे में है और पुणे से अभी वो गोवा के लिए निकले हैं और वहां पहुंचकर बाकी की इंफॉर्मेशन लेकर वो साझा करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे तबियत बिगड़ी और तबियत बिगड़ने के बाद कैसे उनकी मृत्यु हुई।
0: इस खबर से दिव्येश ये भी बताएगा कितना बड़ा लॉस ये एक इंडस्ट्री के लिए माना जाएगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इसके बाद शोक की लहर दौड़ गई है।
1: जी बिल्कुल, आपको बता दें, नाना पाटेकर एक दिग्गज अभिनेता थे बॉलीवुड के, और इसके साथ ही सोशल वर्क में भी वो जुड़े हुए थे, बहुत सारे जगह पर जाकर वो काम किया करते थे। एक खास बात ये भी थी कि जो सुनने में आया था कि उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग भी की थी, टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी वो काम करते रहे थे, और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो कश्मीर भी गए थे। इसके अलावा जो उनकी एक्टिंग जॉनरा थी, वो सिर्फ सीरियस रोल्स ना कि बर कॉमिक रोल, सीरियस रोल, हर तरीके के किरदार उन्होंने निभाए थे। एक दिग्गज अभिनेता गया है और ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा लॉस है एक जो नाना पाटेकर जी की मृत्यु हुई है। इसलिए हर तरह के उन्होंने किरदार निभाए थे, मतलब कॉमेडी हो, एक्शन हो, सीरियस ड्रामा हो, हर तरीके के किरदार वो निभाते आ रहे थे बॉलीवुड में, और करीब 4 दशकों से ज्यादा का उनका जो अभिनेता वो रहे बॉलीवुड में, अन्य जगहों पर वो 4 दशकों से ज्यादा फिल्मों में अपनी कंट्रीब्यूशन देते आ रहे थे। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी वो इन्वॉल्व थे, और जैसा कि मैंने बताया कि टेरिटोरियल आर्मी से भी वो जुड़े हुए थे, ऐसा सुनने में आ रहा था।
0: अभी क्या उनके पार्थिव शरीर को गोवा से मुंबई लाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है दिवेश?
1: जी, नाना पाटेकर जी के बेटे मल्हार पाटेकर जी से जो बातचीत हुई है, तो वो अभी तो फिलहाल पार्थिव शरीर को गोवा से नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर शेखर सालकर ने भी कहा कि मेडिको लीगल केस है जो हुआ है, वो उनके उस जहां पर वो रुके हुए थे वो फ्लैट था, ऐसा उनका कहना था, तो वो उस फ्लैट में हुआ है और जब हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसीलिए ये मेडिको लीगल केस हो गया है। तो अभी तो पार्थिव शरीर नहीं दी जाएगी, हो सकता है पोस्टमार्टम करना पड़े, ऑटोप्सी करनी पड़े और उसके बाद पार्थिव शरीर को फैमिली को दिया जाएगा, पर जरूर ऑटोप्सी के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि जो कॉज ऑफ डेथ थी वो क्या है। प्राइमा फेसी, वो जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्टर्स मेडिकल टीम वहां पे पहुंची थी, उनका कहना है कि कार्डियक अरेस्ट में थे वो, और इसी वजह से उन्हें उनकी मृत्यु हुई होगी, पर ऑटोप्सी करनी जरूरी है। और जैसा कि मल्हार पाटेकर ने भी बताया कि वो भी गोवा जा रहे हैं, तो गोवा जाकर अथॉरिटीज से मिलकर फिर आगे जो भी डिस्कस होगा, आगे जैसे भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से किया जाएगा।
0: लगभग कितना समय इस पूरे प्रोसीजर में लगेगा, पोस्टमार्टम होगा, कितना वक्त लग सकता है दिवेश?
1: जी, समय तो लगेगा इसमें, क्योंकि मल्हार जो है वो अभी पुणे में है, तो पुणे से वो गोवा आप कैसे पहुंचते हैं, बाय रोड जाते हैं या फिर फ्लाइट से जाते हैं, तो उन्हें भी पहुंचने में 1-2 घंटे तो समय लगेगा। और उसके बाद वो पहुंचेंगे और जो ऑटोप्सी का समय लगेगा, जो ऑटोप्सी की जाएगी उसमें भी 1-2 घंटे का समय लग सकता है। तो आप पकड़ कर चलिए कि कुछ 4-5 घंटे तो अभी उनका पार्थिव शरीर गोवा में ही रहेगा, और उसके बाद जब मल्हार वहां पर पहुंचेंगे उनके बेटे, तब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें मुंबई लाया जाएगा और कब मुंबई लाया जाएगा।
0: चलिए ठीक है दिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दीपेश त्रिपाठी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, और अभी अभी एक खबर सामने आई है, नाना पाटेकर अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। कितना बड़ा दुख ये इंडस्ट्री के लिए होगा?
2: जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फिलहाल इस वक्त दुख की घड़ी नजर आ रही है। एक दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर, जिनका गोवा में देहांत हो गया, अपने घर पर थे, सुबह 5:20 के करीब उनके देहांत की पुष्टि अस्पताल द्वारा की गई। अपने घर पर थे जब उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई, मेडिकल टीम घर पे गई, उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और फिलहाल जो उनका परिवार है वो गोवा पहुंच रहा है, और गोवा पहुंचने के बाद आगे किस तरीके से होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बॉलीवुड के लिए काफी अपने आप में बड़ी क्षति है। एक दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर जाने जाते थे, और एक ऐसे कलाकार जाने जाते थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे, और जो कि उनकी भूमिकाएं उन्होंने फिल्म में निभाई थी, वो आज तक जो भी फिल्म हो, जो भी उनका किरदार हो, वो सारा कुछ लोगों के मन में है। और नाना पाटेकर की क्षति जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जाहिर तौर पर बॉलीवुड के लिए काफी दुख की घड़ी है ये, और ऐसे समय में उनके परिवार के साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा है। बॉलीवुड से अभी थोड़ी सी देर में प्रतिक्रियाएं जो है वो भी आना शुरू हो जाएंगी। काफी दिग्गज और बड़े कलाकार के रूप में नाना पाटेकर जो है वो जाने जाते थे।
0: दीपेश अभी गोवा में है, अभी पोस्टमार्टम होगा, अभी पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद मुंबई लाने की कोई योजना है उनके पार्थिव शरीर को, कोई उसको लेकर अपडेट आया है?
2: जी, उनके परिवार से जब बात हुई है तब इसकी तो अब तक कुछ पुष्टि उनके द्वारा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नाना पाटेकर का जो अंतिम संस्कार है, उनको जो अंतिम विदाई दी जाएगी, वो शायद से मुंबई में दी जाए, क्योंकि उनका पूरा करियर जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई में रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि परिवार क्या निर्णय लेता है, या मुंबई में कर रहा है, या जो उनका पैतृक गांव है, जो उनका गांव है वहां पर उनके पार्थिव को ले जाया जाएगा, ये परिवार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है वो हो सकता है कि मुंबई में उन नाना पाटेकर को अंतिम विदाई दी जाए, क्योंकि उनका पूरा करियर जो है मुंबई में शुरू हुआ, मुंबई उनकी कर्मभूमि रही है, और यहीं तो नाना पाटेकर को जो पहचान है, जो लोगों का प्यार है वो मिला है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मुंबई हो, लेकिन फैसला जो है वो परिवार वो करेगा, थोड़ी देर में शायद जानकारी मिल जाए।
0: चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ दिपेश। दिवेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिवेश अभी क्या अपडेट है, अभी कहां तक आगे की जांच पहुंची है, पोस्टमार्टम कब तक होगा?
3: जी, आपको बता दें कि जो डॉक्टर शेखर सालकर से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ये मेडिको लीगल केस है, क्योंकि जो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो उनको कार्डियक अरेस्ट आया था या फिर जो तकलीफ हो रही थी उसकी वजह से वो अनरेस्पॉन्सिव हो गए, तो शायद घर पर ही जहां पर वो रुके थे वहां पर मृत्यु हो चुकी थी, और इस वजह से ये मेडिको लीगल केस बन जाता है, और मेडिको लीगल केस होने की वजह से इसमें ऑटोप्सी की जाएगी, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा प्रोसीजर के हिसाब से। अब जो उनके बेटे हैं मल्हार पाटेकर, वो पुणे में थे और उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि वो पुणे से गोवा के लिए अभी रवाना हो रहे हैं और निकल चुके हैं, और हो सकता है 1-2 घंटे में वो गोवा पहुंच जाए, और उसके बाद वो जाके अथॉरिटीज से मिलेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, पुलिस से मिलेंगे, और फिर आगे का जो भी प्रोसीजर होगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। पर अभी जो ये बात कही जा रही है कि ऑटोप्सी में कितना समय लगेगा, तो कह सकते हैं कि 2 से 4 घंटे तो लगेंगे, और उसके लिए परिवार का वहां पर रहना जरूरी है, क्योंकि परिवार आएगा जब अथॉरिटीज से, पुलिस से मिलेंगे, और उसके बाद ऑटोप्सी की जाएगी। उसके बाद वो ऑटोप्सी होगी तो उसमें अलग से 1-2 घंटे और लगेंगे। तो मतलब आप समझ कर चलिए कि करीब 3 से 4 घंटे का समय तो इसमें लगेगा। 3 से 4 घंटे के समय के बाद ही जो पार्थिव शरीर है नाना पाटेकर जी का, उसे रिलीज किया जा सकता है, और वो भी जब उनका परिवार वहां पर मौजूद हो, यानी मल्हार पाटेकर जो उनके बेटे हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, तभी वो रिलीज किया जाएगा। तब तक वो हॉस्पिटल में रखा जाएगा और फिर ऑटोप्सी के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद परिवार को हैंडओवर किया जाएगा, ताकि उससे एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चल सके कि क्या तकलीफ हुई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था उनको जब तकलीफ हो रही थी उस कॉल पर, तो उनका ये कहना है कि वो कार्डियक अरेस्ट में थे, उन्हें कार्डियक मसाज भी देने की कोशिश की गई, पर मसाज देने के बावजूद वो अनरिस्पॉन्सिव थे। जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे तो अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल में करीब 5:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
0: चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास लौटेंगे। तो गोवा में नाना पाटेकर ने अंतिम सांस ली, 75 साल उनकी उम्र और उनका अब निधन हो चुका है।
4: क्या बेटा धकेल दूंगा
5: सर, ऐसा मत कीजिए।
4: खंडा अगले आई टेल यू आई विल किक यू।
5: नो सर।
4: कम ऑन गेट अप।
5: हां सर, सुन लो सर, अब इतना ही तो रह गया सर।
4: चलो सो, चलो नीचे सो। कमांडो दिखन तो
6: जय दुर्गे।

0: शाबाश शाबाश दिखन, तो आगे बढ़
1: नहीं सर नहीं।
0: अरे नहीं क्या?
1: नहीं आता है सर, नहीं आता है।
0: कैसे नहीं? आगे बढ़।
1: नहीं आता है सर।
0: यू टू बाई टू मंकी क्रॉल करके आगे बढ़।
1: मैं सर नहीं मरूंगा सर, निश्चय भी नहीं आऊंगा, मैं यही ठीक हूँ सर।
0: आजा खड़े हो जाओ, नहीं तो खेल दूंगा।
2: सर ऐसा मत कीजिए।
0: खंडागले आई टेल यू आई विल किक यू।
2: नो सर।
0: कम ऑन गेट अप।
3: सना फरजीन जुड़ गई है हमारे साथ मुंबई से सीधा। सना, चार दशक का लंबा एक सफर, फिल्मी करियर रहा है नाना पाटेकर, एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, एक ये बहुत बड़ा लॉस है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं?
4: एब्सोल्युटली, जैसे हम बात करते हैं स्टॉलवर्ड्स की या लेजेंड्स की, नाना पाटेकर का नाम वहां पे आता है। और जिस तरीके की उन्होंने फिल्में की हैं, न कि सिर्फ एक्शन ड्रामा बल्कि कॉमेडी रोल्स में भी, हर तरीके के किरदार में वो हमेशा चमके हैं। और एक बहुत बड़ा लॉस है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि कई सालों से ना कि सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि मराठी सिनेमा को भी, जिस तरीके के किरदार नाना पाटेकर ने प्ले किए हैं वो मराठी सिनेमा को भी इतना आगे बढ़ाया है। जैसे कि रिसेंटली उनकी फिल्म थी नट सम्राट, जो कि 2016 में आई थी, वो कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा का जो लेवल है वो बढ़ाया। उनके हमेशा जो परफॉर्मेंसेस है वो फैंस को पसंद आते हैं। और कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स कई सालों से जब स्ट्रॉन्ग रोल्स की बात आती है तो वो नाना पाटेकर के पास जाते हैं, और उन्होंने जितने भी प्ले किए हैं वो सब यादगार है। और उनके आई थिंक उंगलियों में हम गिन सकते हैं जिस तरीके के उन्होंने किरदार प्ले किए हैं, परिंदा में, वेलकम में, क्रांतिवीर में, और यहाँ तक कि अग्नि साक्षी में, जिसमें उन्होंने बहुत ही एक नेगेटिव किरदार प्ले किया था। और कई कुछ समय से वो थोड़े से इंडस्ट्री से दूर रह रहे थे, गोवा में एक फार्म हाउस में रह रहे थे, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो प्यार है उनके लिए वो इसी तरीके से बहुत ज्यादा। ओ रोमियो उनकी लास्ट फिल्म हमने देखी थी, तो कहीं ना कहीं अब तक जब एक स्ट्रॉन्ग किरदार की बात आती है, एक पावरफुल इम्पैक्टफुल जब रोल आता है, तो नाना पाटेकर जैसे एक एक्टर को हम याद करते हैं। और उनकी जो एक लेगेसी वो बना कर गए हैं अपने रोल्स के साथ, अपने फिल्मों के साथ, वो हमें हमेशा याद रखेगी कि किस तरीके से एक एक्टर ने इतने अलग अलग किरदार प्ले किए हैं और इंडियन सिनेमा को, स्पेशली हिंदी और मराठी सिनेमा को, बहुत ही एक चुनिंदा रोल्स उन्होंने प्ले किए हैं। और इस तरीके से आई थिंक बहुत बड़ा एक लॉस है, आज झटका मिला है, क्योंकि सुबह सुबह ये न्यूज आई है और अभी तक बॉलीवुड जो है वो रील कर रही है इस बड़ी शॉकिंग न्यूज के साथ, और अब हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से उन्होंने अपना एक करियर ग्राफ बनाया है, एक बाहर से आकर एक आउटसाइडर होकर, वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है आज के एक्टर्स को भी, जो कि उनका एक बहुत ही 40 साल पहले करियर जो बना है वो आज भी कई लोग उसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं और अपनी करियर जो है वो इस तरीके से बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक उनकी आई थिंक टैलेंट तो थी बट साथ साथ जो फिल्म मेकर्स का सपोर्ट था, जिस तरीके से उन्हें रोल्स मिले, जिस तरीके के उन्हें फिल्म्स मिले और जिस तरीके से उन्होंने चूज किए अपने लिए प्रोजेक्ट्स, वो काबिले तारीफ है। और आज के टाइम पे भी कई एक्टर्स हैं जो उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया है, कुछ बहुत ही खामोशी जैसे एक फिल्म उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने डेफ और म्यूट का कैरेक्टर, संजय लीला भंसाली का किरदार, फिल्म का किरदार था, राजनीति जैसे एक बहुत बड़ा एक पावरफुल रोल उनका था, और इस तरीके के जो बहुत सारे अब तक 56 जैसे मैं बात करूं, और डायलॉग्स भी, ना कि सिर्फ फिल्म और किरदार बट बहुत सारे डायलॉग्स है नाना पाटेकर के जो आज तक पॉप कल्चर में यूज होता है, बहुत साल पुराने 20 25 30 साल पुराने डायलॉग्स है वो भी आजकल लोग उसे पॉप कल्चर में यूज करते हैं, मीम्स की तरह यूज होते हैं। वेलकम में उनका एक बहुत ही फनी कैरेक्टर था, तो ना कि हम सिर्फ उनको एक एक्शन और ड्रामेटिक रोल्स के बट ऑल्सो इन कॉमेडी रोल्स उन्हें हम याद रखेंगे। और ये एक जर्नी है जो शायद लोगों में अब तक तो उस तरीके से एक इंस्पिरेशन की तरह बना रहेगा। और लेगेसी की अगर जो हम बात करते हैं वो नाना पाटेकर ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि एक लेजेंड की तरीके से उन्हें लोग याद करेंगे हमेशा, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बट इंडियन सिनेमा के लिए, फॉर पूरे भारत के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कलाकार आज हमें छोड़कर गया है, एंड डेफिनेटली ये एक एक्टर है जो कई सालों तक लोग उनको उनके बारे में बात करेंगे, उनके काम को याद करेंगे, एंड डेफिनेटली यही शायद एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी जीत होती है कि जिस तरीके के वो काम करके जाते हैं वो उनकी लेगेसी जो है वो छोड़कर जाते हैं, और अब बस
3: जी
4: नाना पाटेकर के लिए हमारे पास वही एक मेमोरी की तरह रहेगी।
3: चलिए ठीक है सना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ साहिल जोशी जुड़ गए हैं। साहिल जी, इतनी बड़ी खबर सुबह सवेरे सामने आई है निधन की नाना पाटेकर के। जाहिर है इंडस्ट्री के लिए तो एक शोक ही है, लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे की उनकी जिंदगी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है।
2: जी बिल्कुल, और कई आंदोलनों में नाना पाटेकर के का बड़ा रोल रहा है, और उसके साथ साथ हाल फिलहाल के दिनों में, पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो नाना पाटेकर एक नाम फाउंडेशन के तौर पर एक चलाते थे, जो जो किसानों को मदद करने का काम उस फाउंडेशन के जरिए हुआ करता था, जो खास करके सूखा ग्रस्त इलाकों में जो किसान खुदकुशी करते हैं उनके परिवारों को मदद करने के लिए ये नाम फाउंडेशन का काम नाना पाटेकर ने किया था। और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे, जिसके चलते सूखाग्रस्त किसानों में सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को मदद मिल सके। लेकिन नाना पाटेकर का एक बहुत लंबा करियर रहा है, और दरअसल स्टेज से उनका उनका पूरा करियर शुरू हुआ। मराठी स्टेज पर उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया, कई नामचीन कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया था। मराठी फिल्म से उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपने पांव जमाया। अपनी एक अलग स्टाइल के लिए वो जाने जाते थे, और हर तरीके की फिल्में उनकी लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। नाना पाटेकर ने हाल फिलहाल में काम काफी कम कर दिया था, और लंबा समय वो पुणे में अपने घर बिताते थे, और हाल ही में उनके घर में हर साल गणपति गणेश उत्सव मनाया जाता था, और इस साल भी उनकी तस्वीरें आई थी जब गणपति उत्सव हाल ही में मनाया गया था, और गोवा में फिलहाल वो दोना पावला में अपने घर में रह रहे थे। तो एक, एक एक बहुत बड़ा योगदान उनका फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये घटना हुई है लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में खास करके लोगों के लिए झटका है। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने काम काफी कम कर दिया था, कुछ मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, कुछ हिंदी फिल्में भी उनकी उनकी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन एक लंबे करियर के बाद इस तरीके से अचानक जाना, ये जाहिर सी बात है कि एक झटका तो जरूर लोगों के मन में होगा।
3: बिल्कुल, और लोगों की तरफ प्यार भी काफी रहा है नाना पाटेकर को लेकर। अब अगर उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाएगा तो उसको लेकर क्या योजना है? क्या फैंस की भीड़ वहां जुटने वाली है? इंडस्ट्री के कौन से लोग हैं जो वहां पर जरूर आने वाले हैं? ऐसे कौन से नाम, कौन से चेहरे?
2: देखिए, इंडस्ट्री तो उनके उनके अंतिम संस्कार के लिए तो आएगी ही। अब ये तय होना है कि उन्हें उनकी उनके पार्थिव को मुंबई लाया जाएगा या पुणे ले जाया जाएगा, लेकिन उनके बेटे मल्हार अब गोवा पहुंच रहे हैं, उनके पार्थिव को वहां से लेकर फिर मुंबई लाया जाएगा उसमें। लेकिन ये पूरी प्रोसीजर होगी, क्योंकि अस्पताल ने फिलहाल तो पुलिस को इत्तला किया है, और ये भी एक प्रोसीजर होती है क्योंकि वो जिस अस्पताल में उन्हें डेड डिक्लेयर किया है उस अस्पताल के डॉक्टर से हमारी बात हुई है, और उनका ये कहना है कि पहले तो सारी प्रोसीजर्स की जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव को हैंडओवर किया जाएगा, और उसके बाद में आज शाम तक हो सकता है कि उनकी उनके पार्थिव को मुंबई ले आया जाए, मुंबई या पुणे वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन लगता है कि सारी इंडस्ट्री उनके लिए आएगी, और चूंकि उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया है, उन्होंने मराठी में लंबे समय तक काम किया है, तो मराठी इंडस्ट्री में भी एक वो एक वेटरन के तौर पर देखे जाते थे। कई उनकी फिल्में जो मराठी इंडस्ट्री की मुझे याद है, सिंहासन जैसी फिल्म हो या कई मराठी प्लेज जो है जिसमें उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी, पुरुष हो, अमिताभाई की कोठी हो, या इस तरीके के उनके बड़े प्लेज हो, विजया मेहता जैसे डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर 80 के दशक में शुरू हुआ, जब अंकुश जैसी फिल्म से अंकुश प्रतिघात जैसी फिल्मों में उन्होंने जिसके जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और उसके बाद परिंदा में उनका रोल कई बार उन्होंने नेगेटिव रोल भी प्ले किया हुआ है। परिंदा में मैं उनके रोल की काफी सराहना की गई थी, और उसके बाद तिरंगा क्रांतिवीर जैसी जैसे फिल्मों से फिल्मों ने उन्हें एक बहुत ही पॉपुलर तरीके के एक्टर के तौर पर देखा गया। और हाल फिलहाल में जो उनकी फिल्में आई उसमें अब तक 56 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग एक्टर के तौर पर भी एस्टेब्लिश किया था। तो जाहिर सी बात है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए आएंगे। हालांकि बाकी जो डिटेल्स है वो अभी तय होना बाकी है, वो धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है।
3: चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे उसी अस्पताल से जहां पर उनको भर्ती कराया गया था। रितेश, क्या अपडेट है, कब तक पोस्टमार्टम होगा, अभी वहां क्या चल रहा है?
5: फिलहाल तो इस वक्त 4:20 को उसको हॉस्पिटल में लाया गया था, 5:20 को उनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर से अभी हमारी बात हो गई है, तो डॉक्टर बोला है जैसे उनकी फैमिली पहुंच जाएगी सो 11:30 के दौरान पोस्टमार्टम प्रोसेस स्टार्ट होने वाली।
3: सीने में दर्द वजह बताई जा रही है रितेश, इससे पहले भी क्या उनकी तबीयत खराब हुई थी, कोई ऐसी जानकारी आई है?
5: सीने में दर्द होने लगा था मैडम, एक इन्फॉर्मेशन अभी अभी हाथ में मिली है। फैमिली को डेथ बॉडी सुपुर्द की गई है, उनको हॉस्पिटल से डेथ बॉडी दी गई है, और इस वक्त डेथ बॉडी हैंडओवर की गई है उनको।
3: किनको की गई है? बेटे तो अभी तक पहुंचे नहीं है, परिवार से कौन वहां पर पहुंचा है?
5: उनके फैमिली को डेथ बॉडी सुपुर्द तो की गई है, सुबह सुबह उनके फैमिली के पास दी गई है।
3: चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया है, एक बहुत बड़ी शोक की लहर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये दौड़ गई है। उनके निधन की खबर से प्रशंसकों और साथ ही कलाकारों में मायूसी छा गई है, और उनके बेटे भी अब जल्द ही गोवा पहुंच रहे हैं, अभी पूरा प्रोसीजर होगा। रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, और क्या अपडेट सामने आ रहा है?
5: उनके फैमिली सुबह यहाँ पे पहुंच गई, फैमिली को डेथ बॉडी सुपुर्द की गई है, और डेथ बॉडी देने के बाद उनको बॉम्बे शिफ्ट किया जाएगा, और आगे की जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 4:30 के दौरान उनके चेस्ट में पेन होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में लाया गया था, 5:20 को उनकी डेथ हो गई थी। अभी अभी उनकी जो डेथ बॉडी है उनके फैमिली को दिए गए थे, इस वक्त उनके फैमिली दोना पाउला में थे। फिलहाल चार दिन पहले नाना पाटेकर गोवा पहुंचे थे, गोवा के टूरिज्म के प्रोग्राम में वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए गोवा के पहले सीएम मनोहर पर्रिकर की यादों को भी उन्होंने याद दिलाया था। इस वक्त उन्होंने गोवा के जो पारंपरिक नृत्य है, फोक डांस है, लावणी नृत्य के ऊपर भी डांस किया था।
3: वहां पर किस तरीके की हलचल है अस्पताल के बाहर, क्योंकि वहीं पर उनका निधन हुआ है, वहां की एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, वहां भी क्या चल रहा है? रितेश ये बताइएगा कि जब उनको सीने में दर्द हुआ, क्या वहां पर उनके परिवारजन कोई और वहां पर मौजूद था जो गोवा में, वो जहां रह रहे थे?
5: ये दोनापा में रह रहे थे, डॉक्टर के मुताबिक उनकी फैमिली वहां पे थी, उनकी फैमिली थे, उनका स्टाफ मेंबर था, स्टाफ मेंबर के साथ गोवा टूरिज्म के कुछ लोग थे। फिलहाल नाना पाटेकर एक टूरिज्म के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, जहाँ पे उनका खुद का घर है दोना पाउला में, दोना पाउला के।
3: क्या इससे पहले उन्होंने किसी को बताया था कि उनको सीने में दर्द जैसा लग रहा है, कुछ भी जानकारी उन्होंने दी थी?
5: डॉक्टर, हमने जब उस डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया था कि उनके सुबह उनको सीने में दर्द हुआ था, दर्द होने लगा था, इसकी वजह से उनको सुबह यहाँ के गोवा के दोनापाउला में स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में लाया गया था। बट मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचते ही तुरंत उनकी मौत हो गई। 5:20 को मौत होने के बाद उनको तुरंत डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया।
3: रितेश, क्या गोवा से मुंबई ले जाने का कोई योजना अभी तक है? गोवा से मुंबई उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार कहाँ
5: पार्थिव
3: किया
5: शरीर
3: जाएगा?
5: को मुंबई लेने जाने के लिए पूरी तैयारियां शुरू की गई है। पार्थिव हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा रहा है। थोड़े देर में उनको बॉम्बे शिफ्ट किया जाएगा और एयर एम्बुलेंस से उनको बॉम्बे लेके जाएगा।
3: लगभग कब कब तक उनके, क्योंकि बेटे वहां से निकल चुके हैं, कब तक उनके बेटे वहां पहुंच जाएंगे?
5: फैमिली थोड़े देर में यहाँ पे पहुंचने की चांसेस है और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
3: चलिए ठीक है रितेश, आप नजर बनाए रहिएगा। और दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा दीपेश के पास लिए चलते हैं। दीपेश, अभी तक जो अपडेट सामने आया है वो यही है कि उन्होंने कोई अंदेशा ऐसा दिया नहीं था कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है, अचानक से ये हुआ। इससे पहले भी उनकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी दीपेश?
6: जी बिल्कुल, देखिए नाना पाटेकर काफी स्वस्थ थे। इससे पहले भी कभी उन्हें अस्पताल में किसी इलाज के लिए नहीं दाखिल किया गया था। काफी स्वस्थ थे, अपना जो रूटीन थे वो फॉलो करते थे। जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो या उनके जो फाउंडेशन के कार्यक्रम हो उसमें वो नियमित तौर पर शामिल होते रहते थे। और जाहिर तौर पर ये तबीयत जो है नाना पाटेकर की वो अचानक से बिगड़ी थी, अचानक से उनके सीने में दर्द उठा था। इससे पहले उन्हें कभी किसी प्रकार की मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, मेडिकल गाइडेंस की, असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी। और काफी उम्र दराज थे नाना, 75 साल की उनकी आयु थी, लेकिन इस उम्र में भी वो अपने आप को काफी फिट रखते थे। जो उनका रूटीन था वो फॉलो करते थे। और जैसे कि हमने बताया, जितने ज्यादा कार्यक्रम हो उसमें वो शामिल होते थे। जो काम बॉलीवुड में उनका जारी था, हालांकि बॉलीवुड में अपनी उपस्थिति नाना पाटेकर ने बहुत कम कर दी थी, और अपना ज्यादा समय जो है वो सामाजिक कार्यों में वो बिताते थे। जो जैसा कि उनका फाउंडेशन था नाम, अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो उनमें वो ज्यादा समय देते थे। उनका एक मानना था कि जो समाज ने उन्हें दिया है वो समाज के प्रति उनका कोई दायित्व है, जवाबदेही है, और इसलिए समाज के लिए वो हमेशा मौजूद रहते थे, हमेशा सामाजिक कार्यों में अपने आप को अग्रसर रखते थे। और इसीलिए नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में अपनी उपस्थिति जो है कम कर दी थी। फिल्में वो बहुत कम करते थे, खुद की मर्जी से वो उन्होंने काम कम कर दिया था। और ये सिर्फ बॉलीवुड के लिए क्षति नहीं बल्कि एक समाज के लिए भी काफी बड़ी क्षति है, क्योंकि नाना पाटेकर महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में ज्यादा काम करते थे, यानी उस तबके के लिए ज्यादा काम करते थे जहां तक कई योजनाएं नहीं पहुंच पाती। जो तबका अनदेखा रहता था उस तबके के लिए नाना पाटेकर हमेशा तैयार रहते थे, काम करते थे।
3: किसानों के लिए भी कई चीजें उन्होंने की हैं, उनसे भी अक्सर बात करने के लिए वो जाते थे दीपेश,
6: और
3: कि
6: जी
3: पर्दे के
6: बिल्कुल,
3: पीछे की
6: किसानों के,
3: जिंदगी उनकी काफी अलग थी।
6: जी बिल्कुल बिल्कुल, नाना पाटेकर पर्दे पर एक और पर्दे के पीछे, जितना पर्दे पर बड़ा किरदार था नाना पाटेकर का, उससे बड़ा किरदार पर्दे के पीछे था। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। जब महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं का दौर था, ज्यादा हो रही थी किसानों की आत्महत्या, तब नाना पाटेकर ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिससे कि जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं उनको, उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले और उस स्थिति पर नियंत्रण लाया जा सके जिस कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जो डिफेंस फोर्सेस थे, जैसे आर्मी हो या हो, उनके परिवार वालों से मिलना, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना, इसमें भी नाना पाटेकर काफी सक्रिय थे। क्योंकि सिर्फ राज्य के प्रति नहीं बल्कि देश के प्रति भी नाना पाटेकर खुद को काफी जिम्मेदार मानते थे कि देश के लिए भी उनको हर नागरिक को कुछ करना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। और इसी विचारों पर नाना पाटेकर जो है वो चलते थे, अमल करते थे। और जैसा कि हमने बताया, ज्यादा समय जो है वो नाना पाटेकर पर्दे के बाहर लोगों के साथ बिताते, आम नागरिकों के साथ एक आम नागरिक की तरह बिताते थे। जब भी वो लोगों में जाते थे तभी उन्होंने बॉलीवुड स्टार होने का एहसास लोगों को नहीं होने दिया, हमेशा लोगों को यही एहसास कराया कि वो उनमें से ही एक है और लोग भी उन्हें अपने में से ही एक की तरह ही देखते थे। कभी लोगों को ये नहीं लगा कि कोई बॉलीवुड स्टार हमारे बीच है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमारे बीच है। वो नाना इसीलिए कहते थे, नाना भले ही उनका नाम था लेकिन नाना एक अपनापन होता है जो मराठियों में होता है, महाराष्ट्र में, और वो लोगों में नाना पाटेकर में दिखाई देता था।
3: दीपेश, अभी मुंबई में अगर उनका अंतिम संस्कार होता है तो कहां पर किया जाएगा, उसको लेकर क्या कोई अभी तक जानकारी आई है?
6: जी देखिए, अब तक इसको लेकर परिवार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल परिवार गोवा पहुंच रहा है उनके पार्थिव को लेकर। जैसा कि हमने बताया कि मुंबई उनकी कर्मभूमि रही है, और मुंबई में अगर उनका पार्थिव अंतिम संस्कार होता है उनके पार्थिव पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, पूरा बॉलीवुड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी नाना पाटेकर जी के काफी चाहने वाले थे, उनके कई मुरीद थे, उनके कलाकार, उनके कलाकारी के कई लोग मुरीद थे, उनके जो काम है, जो सामाजिक काम है, उसके लोग उनको लोग काफी पसंद करते थे। तो जाहिर तौर पर सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि समाज का हर वो तबका नाना पाटेकर जी के अंतिम विदाई यात्रा में शामिल होगा, जिनको जिनको नाना पाटेकर ने छुआ था, और ये काफी बड़ी तादाद में होंगे लोग शामिल।
3: बिल्कुल, काफी बड़ी तादाद में फैंस के जुटने की भी उम्मीद की जा रही है। दीपेश, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से, कोई बड़े चेहरे की तरफ से?
6: जी, अब फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब आने आना शुरू हो जाएगा। जाहिर तौर पर पूरा बॉलीवुड जो है वो इस समय शोक में है, सदमे में है। जैसे जैसे बॉलीवुड के कलाकारों से, उनके परिवार से बात होगी, जैसे जैसे ये होगा दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पूरा बॉलीवुड जो है, एक बात बताऊं, बॉलीवुड का एक या दूसरा तबका नहीं, पूरा बॉलीवुड जो है वो नाना पाटेकर को पसंद करता था, उनको चाहता था, और पूरा बॉलीवुड इस समय सदमे में है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, बॉलीवुड की प्रतिक्रियाएं जो है, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो जाएंगी।
3: चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भावना अग्रवाल जुड़ गई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। भावना, एक बहुत बड़ा नाम नाना पाटेकर, और पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी उन्होंने एक पहचान बनाई, और अब उनका निधन हो चुका है। भावना,
7: जी बिल्कुल, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। सुबह सुबह जब हमने भी सुना कि नाना पाटेकर अब नहीं रहे, क्योंकि वो काफी वक्त अब गोवा में गुजारते हैं, अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज में गुजारते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं ज्यादातर, सिर्फ काम के लिए मुंबई आते हैं। तो इस वजह से ये काफी बड़ा शॉक था। बट मल्हार जो कि उनके सन है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अब उनके फादर नहीं रहे, और वो अभी फिलहाल गोवा जा रहे हैं, क्योंकि वो भी पुणे में थे, तो अब वो गोवा जा रहे हैं। और फिर ज्यादा जो डिटेल्स है सबके बारे में हमें धीरे धीरे पता लगेगी। अभी जो पहली जानकारी है उसके हिसाब से उन्हें चेस्ट पेन था, और इजीनेस फील हो रही थी रात के करीब 3 3 साढ़े 3 बजे। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पहले सीपीआर दिया गया, और फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। बट अब इसके बारे में ज्यादा पुख्ती जानकारी हमें एक एक बार हॉस्पिटल के वर्जन के बाद ही मिलेगी, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं मल्हार, उनसे मिलेगी। बट उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वो भी अभी गोवा में नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाना गोवा रह रहे थे अपने एक प्रॉपर्टी पे काफी वक्त से, तो उनके बेटे अभी फिलहाल गोवा जा रहे हैं, तो उसके बाद ही हमें पुख्ती जानकारी और ज्यादा मिल पाएगी इसके बारे
3: भावना,
7: में।
3: परिवार के क्या दूसरे लोग वहां पर उनके साथ रह रहे थे, या वो अकेले वहां पर गए थे?
7: फिलहाल तो वो जितनी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से वो अकेले थे गोवा में, और इसी वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त को जो उनके गोवा में है, उनको अपेरेंटली बोला कि उन्हें चेस्ट पेन, थोड़ा अनइजीनेस फील हो रहा है रात के करीब 3 बजे। हमें ये कोई जानकारी नहीं है कि परिवार का कोई और सदस्य उनके साथ उस वक्त था कि नहीं, बट जितना हमें पता चला है वो अकेले थे, और इसी वजह से उनके दोस्त ने उनकी मदद की थी सीपीआर देने में और फिर बाद में हॉस्पिटल लेकर जाने में।
3: चलिए ठीक है भावना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अशोक जुड़ गए हमारे साथ, नाना पाटेकर के खास दोस्त वो माने जाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं अशोक जी आप, उनका अब निधन हो चुका है?
8: ये अभी मैंने सुबह सुबह मुझे फोन आया, पता चला कि नाना पाटेकर का निधन हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि मैं तो क्या बोलूं और क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसके बारे में। मेरा एक एकदम निजी दोस्त, मेरा एक दोस्त से भी ज्यादा ऐसा एक तो मेरा फ्रेंड चला गया, ये मेरे लिए मेरी बहुत दुखद बात है। और मैं ये कभी भूल नहीं सकता कि एक ऐसा आदमी जो बिलीव नहीं कर सकता मैं कि अभी तक ये उसका निधन हुआ है, कि ऐसे ऐसे कभी हुआ, यह बातें उसने कभी की है कि नहीं, कौन सा भी कैसा जो शरीर के लिए घातक हो, ऐसे कोई वो बात उसने कभी की नहीं। जिस वेल बिहेव्ड आदमी ऐसा अचानक जाएगा, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ये मेरे लिए बहुत दुख है। मैं मेरा अच्छा दोस्त, एक निजी दोस्त मैंने गवाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुखद बात है, मैं कभी भूल नहीं सकूंगा।
3: मैं समझ पा रही हूँ आपका दुख।
8: कुछ सुलझ ही नहीं रहे क्या बोलूं, मेरे पता नहीं चलता है। मगर एक मैंने दोस्त गवाया, ये मेरे लिए हमेशा मेरे दिल में रहेगा।
3: अशोक जी, अभी क्योंकि हमारी सहयोगी भावना ने बताया कि जब उनको चेस्ट पेन हुआ उन्होंने ये जानकारी अपने किसी दोस्त को दी थी, आपको उसके बारे में कुछ पता है किसके साथ वो वहां पर थे, किसको उन्होंने बताया कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है? अभी ये अपडेट सामने आया है कि इससे पहले उन्होंने अपने दोस्त को जानकारी दी थी कि उनको सीने में दर्द हो रहा है लगभग 3 बजे करीब, तो उसके बारे में आपको पता है किनको उन्होंने बताया था ये सब?
8: सीने में दर्द हो रहा है उसके?
3: हाँ, ये उन्होंने पहले बताया था अपने किसी दोस्त को, उन्होंने इस बारे में बताया था?
8: मुझे पता नहीं था।
3: गोवा वो अक्सर जाते थे, गोवा से उनको काफी लगाव था?
8: हाँ, गोवा में होगा, पता नहीं इस बात के लिए गोवा में गए होंगे, शूटिंग के लिए होंगे, ऐसा लगता है मुझे।
3: उनके फिल्मी सफर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप काफी क्लोज उनके रहे हैं?
8: क्लियर तो सुनाई नहीं पड़ रहा है।
3: चलिए आपके पास लौटते हैं, तो देखिए अभी उन्हें तुरंत अस्पताल जब ले जाया गया, उन्होंने सीने में दर्द था, अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी बेटे की तरफ से यही जानकारी सामने आई और बेटे ने बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे हैं, 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया है। सीने में तेज दर्द उन्हें उठा और इसकी शिकायत भी उन्होंने किसी से की थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके फ्लैट पर मेडिकल टीम ने अभी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, आगे का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द मुंबई लाया जा सकता है। तमाम फैंस के जुटने की उम्मीद भी की जा रही है क्योंकि काफी बड़ा नाम नाना पाटेकर रहे हैं। अशोक सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास फिर से एक बार आते हुए, उनके अगर हम फिल्मी सफर की बात करें तो एक बहुत बड़ा करियर नाना पाटेकर का रहा है।
8: सही बात है, मगर इससे फिल्मी दोस्ती से ज्यादा हमारी पर्सनल दोस्ती थी। हम ड्रामा के एक ही कलाकार थे, एक ही ड्रामा में एक साथ काम करने वाले, और वो काम करते करते कहां मतलब पहुंचा, एक बड़ी बड़ा मुकाम उसने भाग लिया था, फिर वो ऊपर तक एकदम पहुंच गया था। लेकिन मुझे सूझ नहीं रहा उसके बारे में मैं क्या बोलूं। ऐसी दोस्ती ये ऐसी बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकता, दूसरे के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहने वाला बात मेरा फ्रेंड, ऐसे ऐसे अचानक जाएगा और वेल बिल्ट आदमी, वो ऐसे कैसे हार्ट फेल होके गए मैं अभी तक बिलीव नहीं कर सकता, मगर मेरे लिए बहुत दुख भरी बात है। मुझे सुन ही नहीं रहे हो क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं उसके बारे में।
3: आपके इससे पहले उनसे कब बात, आखिरी बार बात कब हुई थी अशोक जी, क्या वो कह रहे थे उस वक्त, क्या बात हुई?
8: मैं वैसे हम बात करते नहीं थे, वो उसमें बिजी था, मैं मेरे काम में बिजी था, तो कभी हम ऐसे फोन भी नहीं करते थे, मगर एक जो पुरानी दोस्ती थी वो कायम रही। बस
3: जो आखिरी मुलाकात जो आपको आज याद आ रही हो?
8: मैं तो भूलूंगा ही नहीं कभी उस आदमी को। आर्टिस्ट भी अच्छा था, वो आदमी भी अच्छा था, लगता था लोगों को बहुत वो जरा ऐसा गुस्से वाला आदमी है, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। वो गुस्सा करेगा लेकिन दूसरे टाइप पे वो प्यार से बात करेगा, ऐसा कुछ अजीब ही आदमी था। तो लोग उसको मिस इंटरप्रिट करते थे कि ये बहुत
3: चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा। शेखर सुमन जुड़ गए हमारे साथ। शेखर जी, नाना पाटेकर का निधन हो चुका है गोवा में, 75 साल की उनकी उम्र, कितना बड़ा एक लॉस ये इंडस्ट्री के लिए है?
9: अब इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है कि कितने अच्छे सच्चे ईमानदार बेबाक इंसान को हमने खो दिया, कितने बड़े अभिनेता को खो दिया, वो हमारे लिए कितने बड़े एसेट थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, इंसानियत के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, हर तरीके से किसानों के लिए लड़े। और मेरे लिए खास तौर पे दुखद है, विश्वसनीय, क्योंकि मेरी लगातार उनसे अभी बातचीत चल रही थी, वो हमारे शो में आने वाले थे अभी 2 दिन के बाद, शेखर टुनाइट में उन्होंने कहा, मुझे खुद फोन किया उन्होंने, पिछले हफ्ते से हमारे पिछले महीने से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, उन्होंने खुद फोन किया, मैंने नाना बोल रहा हूँ पहचाना, मैंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज जो है वो अनमिस्टेकेबल है, तो बताइए। वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा शो देखता हूँ, शो की प्रशंसा करना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है कि नाना ने खुद फोन किया है और मेरी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी बेबाकी और तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है, हम लोग बात करते हैं शो में, मैं आता हूँ। मैंने कहा अरे मेरे लिए बड़े गर्व की बात हो गई, आप आइए, मैंने उनको इन्वाइट भी किया। फिर वो पिछले महीने बात रह गई, फिर उन्होंने कहा कि मैं ये गणेश उत्सव के बाद आता हूँ, जो खत्म होता है 26 तारीख को, उसके बाद मैं डेफिनेटली तुम्हारा शो कर रहा हूँ। 26 तारीख को हमारी आखिर बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि कब करना चाहोगे, मैंने 7 अक्टूबर को, बोले कि मैं आता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया और परसों मैसेज किया कि मैं गोवा में शूटिंग कर रहा हूँ, मैं इसको अचानक शूटिंग आई तो मैं इसको खत्म करके फिर तुम्हारे शो में आता हूँ। तो इस हफ्ते हम लोग साथ में शूटिंग करने वाले थे, इस हफ्ते अब वो खत्म करके यहाँ आने वाले थे और आज मुझे ये खबर मिली, तो मैं तो इसे इस खबर को विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि जिनसे मैं एक हंसता खेलता इंसान, एक स्वस्थ इंसान, अगर उनकी तबीयत अगर खराब हुई होती या कोई अंदेशा हुआ होता उनको या मुझे किसी को, तो वो कहते कि मैं अभी थोड़ा स्वस्थ नहीं, मैं बाद में आऊंगा, तो बहुत बातों से लग रहा था बहुत स्वस्थ है और उन्होंने कहा कि मैं बस आता हूं और ये आज ये खबर मिल रही है, मनहूस खबर कि वो है नहीं। मेरी इससे बड़ी अविश्वसनीय बात क्या हो सकती है किसी की जिंदगी में कि जिनसे आप कल बात कर रहे हैं परसों बात कर रहे हैं वो आज आपकी पूरी इस दुनिया में नहीं। इतनी बड़ी क्षति इंडस्ट्री के लिए, इतनी बड़ी क्षति हमारे देश के लिए, इतना बड़ा अभिनेता, इतना खूबसूरत इंसान, इतना अच्छा इंसान हमारे बीच चला गया और सिर्फ 75 साल की उम्र में, अभी उनकी जिंदगी बहुत बाकी थी।
3: बिल्कुल, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरी अब उनसे मुलाकात होने ही वाली थी और वो नहीं हो पाई, और ऐसे में फिर हमें आखिरी मुलाकात जो थी वो याद आती है। आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे?
9: आखिरी बार तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमारी बातें हमेशा होती रही है। आखिरी बार कहीं मिला होगा किसी पार्टी में, हम लोग बड़े तपाक से मिलते थे, बहुत तपाक से, और गले पे हमेशा मतलब चेहरे पे ऐसे हाथ लगा के वो थपथपाते थे और मुस्कुराते थे आंखों में देख के। उनमें एक अजीब सा उनकी उनके हाव भाव उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा नशा था, एक आकर्षण था। आप हमेशा उनको सिर्फ सुनना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। उनकी सहजता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी सरलता उनकी बड़ी ताकत थी, उनकी बेबाकी, उनकी ईमानदारी, उनकी निडरता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मुझे हमेशा याद रहेगा और हमेशा मुझे बीच बीच में भी फोन करके तारीफ करते थे वो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको करते रहो। पिछले हफ्ते जब उन्होंने फोन किया था तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मैं आपको शो के बारे में थोड़ा आके बात करते हैं, बताते हैं हम लोग क्या क्या, बोले कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ हूँ भी नहीं, मैं तो पुणे रहता हूँ, मैं तो वहाँ किसान बन गया हूँ, खुले आसमान के नीचे रहता हूँ, पहाड़ों के बीच रहता हूँ, मैं शोर शराबे से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ, मुझे ये आपाधापी ये दौड़ भाग उस सबसे मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो मुझे जब बातचीत चल रही थी तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उनकी शूटिंग बीच में आ जाएगी, मैं तो तैयारी करके बैठा था कि साथ को आएंगे, फिर जब अचानक उनका मैसेज आया कि अभी गोवा में शूटिंग कर रहा हूं तो मैंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए डेट, तो इस हफ्ते हो जाने वाला था वो। और मुझे हमेशा ये पूरी जिंदगी ता जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं उनसे बात करने वाला था और एक ऐसा कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा इंटरव्यू जो हमेशा पूरे पोस्टेरिटी के लिए, पूरे आने वाली पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड हो जाता, वो मैं अब नहीं कर पाऊंगा।
3: गोवा वो अक्सर जाते थे शेखर जी, गोवा से उन्हें काफी लगाव था ऐसा कहते हैं, उनके उन्होंने कुछ बताया था गोवा के बारे में?
9: नहीं, बस वही कहा कि मैं बस मुझे यहाँ की जिंदगी बहुत पसंद है, यहाँ एक एक ठहराव है, यहाँ एक यू नो एक एक सुस्ती भी है जो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अकेला रहता हूँ, किसी से मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहता शेखर, मैं तो मैंने कहा कैसे रह लेते हैं, बोले कि बस यही जिंदगी की कल्पना मैंने की थी, यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ, सब बैगन उगाता हूँ, आलू उगाता हूँ, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे कि मैं यू नो पूरे हर दिन हर रोज मैं

0: जो पूजा उन्होंने की थी और वो उस समय पे काफी ज्यादा उत्साहित भी रहते थे, गणपति जी को अपने घर लाते थे।
1: जी जी जी जी, वो सब बातें वो मुझसे कर रहे थे और परसों मेरी आखिरी बात हुई, इसलिए मेरे लिए ये अविश्वसनीय, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि जिनके साथ मैं लगातार एक महीने से लगातार बात कर रहा हूँ, मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा हूँ, वो अब नहीं है और जो आने वाले थे मेरे शो में, इसलिए मेरे लिए अनबिलीवेबल है और शॉकिंग बियॉन्ड वर्ड्स बिल्कुल। और उनकी बहुत सारी यादें हैं, उनके साथ एक फिल्म में काम किया था, लंबे अरसे तक हम एक दूसरे के साथ रहे थे और मैं उनको बैठ के सिर्फ उनसे कहानियां सुनता था उनके रोल्स के बारे में, जब वो प्रहार डायरेक्ट कर रहे थे या वो परिंदा के वो जो जो जो रोल था वो बता रहे थे, मुझे करके दिखाते थे कि मैं ये करने वाला हूं, ये देखो कैसा लग रहा है, वो जो वो जब लास्ट वो आखिरी का सीन जब वो झूले पे बैठते हैं आग, और उनको लगता है चारों तरफ आग आग लग गई है, उनको हर जगह ये महसूस हो रहा है, ये उनके दिमाग में ये कोलाहल चल रहा है और वो परेशान है, वो सीन वो मुझे उन्होंने बाकायदा करके दिखाया शूट करने से पहले। तो वो उस तरह के इंसान थे और सच्चा बोलते थे, जब कभी भी हमने देखा एज अ स्पीकर, एज एन ओरेटर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, वो था जिस किसी के बारे में बोलना पूरी निर्भीकता से, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर बातों को घुमाए हुए, जो सच है ये सच है सुनो तुम, उससे लोग उनसे थोड़ा सा डरते भी थे, पर वो डरने की जरूरत नहीं थी, वो डरते इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत एक्टिंग कर रहा है तो उसको जाके बाकायदा टोकते थे, बोलते थे ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम्हारे किरदार के साथ नहीं है, डायरेक्टर को बोलते थे ये कैमरा एंगल गलत है, इंटरफेयर कहीं नहीं करते थे लेकिन सुझाव हमेशा देते थे और बड़े प्यार से, बस पैर ऊपर करके बैठे, चाय पिया, गमछा घुमाया गले में, बड़ी हुई दाढ़ी, मतलब मैं तो भूल ही नहीं सकता, मैंने इतना वक्त गुजारा है नाना के साथ, और नाना ये जो जो क्षति हुई है ये अकल्पनीय है बिल्कुल, ये कभी इसकी पूर्ति होगी नहीं, बिरले ही ऐसे कलाकार आते हैं जो अपना अपने अपने काम की वजह से अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, उनमें से नाना थे बहुत बड़े कलाकारों में से एक, और उनका जो काम है लोगों ने देखा, सराहा, प्रशंसा किए, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर ही वाज अनपैरेलल्ड।
0: शेखर जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी की तस्वीर है, उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत खराब थी या कुछ ऐसा होने वाला है,
1: किसी को अंदेशा ही नहीं था, अगर वो अगर ऐसी अगर उनको उनको अगर तबीयत खराब महसूस हो रही थी तो वो मुझे जरूर कहते कि शेखर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में आता हूँ, ऐसा तो कुछ था नहीं, बहुत उत्साहित थे आने के लिए हमारे शो में, बोले गए बड़ी खूबसूरत बात होगी, मैंने कहा नाना को दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फाइनेस्ट इंटरव्यूज आपके साथ जो बात होगी, कि जब दो बेबाक इंसान आपस में बैठ के बात करेंगे, देखिए बात कहाँ से कहाँ निकलती है और कहाँ तक जाती है, बहुत खुश थे, बहुत खुश, और आज मैं उतना ही दुखी हूं कि वो मौका मेरे हाथ से निकल गया, वो एक जिंदगी भर की जो एक मेरी कमाई हो सकती थी, जिंदगी भर का एक अनुभव हो सकता था, एक तजुर्बा हो सकता था, ये वो जज्बात कहीं वो कहीं खो गया, वो खत्म हो गया।
0: शिखर जी, इंडस्ट्री में वो किसके काफी ज्यादा क्लोज थे, कभी इस बारे में उन्होंने कुछ बताया जिनको वो अक्सर याद करते हो?
1: मेरे ख्याल से वो सभी से क्लोज थे, जो जहां वो सच्चाई देखते थे उस इंसान से जुड़ जाते थे, उनके पर्सनल लाइफ में मैंने कभी घुसने की कोशिश नहीं की ना पूछा, लेकिन मुझे जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी उस हिसाब से लगता था कि वो एक बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे, बहुत ही हम सबसे अलग, जिन्होंने अपनी एक जिंदगी बनाई और जिंदगी अपने टर्म अपनी शर्तों पर जिया, ये कितने लोग कर पाते, कितने लोग इस मोह माया ये शोहरत ये बुलंदी को छोड़ के कहीं अलग चले जाते, कितने लोग, एक भी नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि किसी ने ऐसे अपने करियर के पीक पे ऐसा किया हो, और वो हमेशा ही मतलब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, और जब भी जिस किसी भी फिल्म में उन्होंने काम किया बहुत ही कमाल का काम किया, और आप वो देख सकते थे कि कितनी तत्परता के साथ, कितनी सच्चाई के साथ और कितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो अपने अपना रोल निभाते थे, तिरंगा का वो रोल हो या प्रहार में उनका रोल हो, डायरेक्शन हो या परिंदा, और ऐसे तमाम कई फिल्में हैं उनकी, अनगिनत फिल्में जिन्होंने एक दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि इस तरह का अभिनेता जो है वो बिरला ही मिलता है, पैदा होता है, और हम सबके लिए ये बड़े दुख की बात है, और ये क्षति जो हमारी इंडस्ट्री में हुई है ये कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती।
0: युवा पीढ़ी के दिमाग में भी काफी बड़ी छाप उन्होंने छोड़ी, जैसे वेलकम मूवी से भी लोग काफी ज्यादा प्रेरित हुए, उनके मीम्स कितने वायरल होते थे, तो युवाओं के लिए वो
1: मीम्स,
0: जी जी
1: अभी जितने मीम्स आते हैं उस बीच में नाना का एक शॉट जरूर आता है, वो चाय पीते हुए हंस रहे हैं, हर मीम में उनका एक शॉट आता है, तो वो आपके दिमाग से कहीं आपके जहन से कभी एक सेकंड के लिए नहीं निकले। हम कभी

0: भी रील्स देखते हैं या मीम्स देखते हैं, उसमें नाना कहीं कोई फनी मीम्स होता उसमें नाना जी का वो तस्वीर एक शॉट जरूर रहता है, हर रोज हम देखते हैं। और वेलकम में एक अलग पक्ष देखने को मिला उनका, एक कॉमिक साइड, जो इतने गंभीर संजीदा अभिनेता, उनका एक अलग एक साइड देखने को मिला एज एन एक्टर। तो मैं उनको एक एज अ कंप्लीट एक्टर मानता था, कंप्लीट एक्टर, और युवाओं के लिए भी वो बहुत प्रेरणादायक थे। मैंने कहा कि युवाओं ने भी उनसे बहुत सीखा और बहुत चाव से उनको सुनते थे, बहुत गंभीरता से उनको सुनते थे। तो नाना नाना का पदचिन्ह जो है हर जगह जो रहा, उनके निशान हर जगह रहेंगे, अभी फिल्मों के जरिए, अब तो हम सोशल मीडिया के जमाने में आ गए हैं, तो हर कहीं जहां उन्होंने बात की, इंटरव्यू दिया, वो सब हम दोबारा देखेंगे, खंगालेंगे, फिल्में को दोबारा देखेंगे किस तरह का अद्भुत काम किया उन्होंने। और ये बहुत दुखद है कि अचानक वो चले गए। मतलब एक ये रहता है कि आप किसी के इस तरह की जो खबर आती है उसके लिए आप तैयार रहते हैं कि कोई गंभीर अवस्था में है, अस्पताल में है, जूझ रहा है जीवन मौत के बीच में, लेकिन ये अचानक जिनसे आपसे परसों बात हुई है या आपने मैसेज एक्सचेंज किया वो अब नहीं रहे, ये विश्वास करने वाली बात नहीं। बहरहाल वो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक नाना है जो वो सदियों में आता है, वो हमारे बीच आए, ये हम सबकी खुशकिस्मती है, हम सबके लिए गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे जीवन को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को धन्य कर दिया।
1: बिल्कुल, वो सबकी यादों में आज हैं और उनका नाम ही काफी है, उन्होंने इतना नाम कमाया है, सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, एक सामाजिक इंसान के तौर पर भी वो देखे जाते थे, लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और
0: किसानों के लिए
1: उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनको उनको कैसा लगता था वो, क्योंकि इतना पीक पर करियर और उसके बाद उस करियर से ब्रेक लेना ये कोई छोटी बात नहीं है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आदमी को जब जमाना भुला देता है या जब उसका काम खत्म हो जाता है और फिर वो कोई इस तरह का निर्णय ले कि उसे अलग रहना है, बात समझ में आती है। एक इंसान जिसको हर कोई चाहता है कि वो उनके साथ काम करे, एक इंसान जो अपने करियर के बुलंदियों पे हो, पीक पे हो, उसको छोड़ के चले जाना, और उनका वो दिल से किसान थे, और किसान जैसे होते हैं, मतलब वो हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए काम करते हैं, वो हमेशा जय जवान जय किसान कहते थे, आप देखिए। और वो अलग थलग एक जिंदगी, शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर भी एक जो जंग, एक लड़ाई थी, एक समाज में जो एक आवाज उठनी चाहिए लोगों के लिए, वो उठा रहे थे, किसानों के लिए उठा रहे थे। तो लगातार वो सक्रिय थे, हमारे बीच नहीं होते हुए भी वो थे हमारे। हमने नाना को कहा भी कि आप हमें छोड़ के वहां क्यों चले गए, अब आपसे मुलाकात तो होगी नहीं, इतने दूर रह गए। बोले कि नहीं, तुम आओ हमारे साथ, वक्त गुजारो, मैं क्या उगाता हूँ मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी हमारी हर रोज, और ये दुखद
1: मुलाकात आपकी होने भी वाली थी, ये बात आपके जहन से, बिल्कुल जहन से जाने में समय भी लगेगा,
0: पर ये मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि ये एक मौका था जो मैं मिलने वाला था उनसे, और एक ऐसी बातचीत जो हमेशा के लिए पोस्टेरिटी के लिए रिकॉर्ड हो जाती, वो अब नहीं हो पाएगी।
1: चलिए शेखर जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, अभी कोई नया अपडेट सामने आया है अस्पताल से, उनके पार्थिव शरीर को कब ले जाया जाएगा, उनका बेटे अभी कब तक वहां पहुंचने वाले हैं?
2: जी नहीं, बिल्कुल हम लगातार उस खबर पे बने हुए हैं, उनके बेटे अभी तक पहुंचे नहीं हैं गोवा। जैसे ही वो पहुंचेंगे हमें थोड़ी और जानकारी मिलेगी कि पार्थिव शरीर को यहाँ कब ले ले मुंबई कब लेकर आएंगे और कब उनका अंतिम संस्कार भी होगा। लेकिन अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से तो उनका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि हॉस्पिटल जब ले उनको लेकर आए थे और हॉस्पिटल लेकर आने के बाद उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया था, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है जो कि पोस्टमार्टम और बाकी जो हॉस्पिटल की जो प्रोटोकॉल्स है वो सब अभी फिलहाल वो फॉलो हो रहे हैं। बट अभी तक मल्हार जो कि उनके बेटे हैं फिलहाल रस्ते में है, वो गोवा पहुंचेंगे और उसके बाद ही हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि कब और कैसे उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर आया जाएगा। बट अब हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं क्योंकि ये खबर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बॉलीवुड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सभी के लिए बहुत ही दुखद है।
1: भावना, अगर हम उनके फिल्मी सफर की बात करें, काफी अचीवमेंट्स उनको हासिल हुए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे, थोड़ा बताइएगा।
2: जी बिल्कुल, इसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है कि नाना एक ऐसे कलाकार थे जो कि सिर्फ कॉमेडी या इंटेंस रोल में नहीं, उन्हें कोई भी रोल दे दो वो उसमें एकदम खुलकर सामने आते थे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हम कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में। और मुझे वनवास जो कि उनका बहुत वक्त के बाद उन्होंने जो डायरेक्ट किया था अभी पिछले ही साल, उस वक्त मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी, और उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यवहार है लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, वो सबको देखते हुए सभी को पता है कि नाना कैसे कलाकार थे। वो कभी भी सच बोलने से नहीं कतराते थे, बट साथ ही में जब ऑन स्क्रीन कैमरा पे आते थे तो मतलब एक आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा सकते, इस तरीके का उनका परफॉर्मेंस होता था। चाहे वो उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू हो, चाहे वो किसी भी तरीके की फिल्म हो, उन्होंने हमेशा हमेशा एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। कोई जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है सभी ने हमेशा बोला है कि नाना के साथ काम करना एक एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है उनके साथ, क्योंकि वो थिएटर भी किया हुआ है उन्होंने, तो वो जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके परफॉर्मेंस में हमेशा नजर आता है। और बहुत ही जो गौर की बात यह है कि वो एक ऐसे एक्टर है जिनको आप बॉक्स नहीं कर सकते थे। आप ये नहीं कह सकते कि नाना सिर्फ कॉमेडी अच्छे करते हैं या इंटेंस रोल अच्छे करते हैं, वो उन्हें कोई भी रोल दे दो और वो उसमें एक्सेल करते थे। आई थिंक कुछ कुछ फिल्में, जैसे आई थिंक हर कोई बात करता ही है, बट उनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है उसके बारे में तो हमेशा बोला ही जाता है कि प्रहार द फाइनल अटैक, कि किस तरीके से वो पर्सनली भी जुड़े हुए थे फिल्मों के साथ, राइट? मतलब बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनका जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो ऑफ स्क्रीन भी दिखता है। जैसे उनकी जो लगाव था इंडियन आर्मी को लेके, वो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं था बल्कि ऑफ स्क्रीन भी था। उनका वो जो सोशल इश्यूज पे बात करते थे वो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बट ऑफ स्क्रीन भी था। जो उन्होंने महाराष्ट्र में फार्मर्स के लिए किया है, ड्रॉट के लिए क्या है, उनके उनके जो प्लाइट है, उनकी जो समस्या है, उनको हल करने के लिए जो नाम फाउंडेशन भी बनाया गया था, मतलब मैं कह रही हूँ कि जो वो ऑन स्क्रीन दिखाते थे वही व्यक्तित्व वो ऑफ स्क्रीन भी लेकर आते थे, लोगों की मदद करते थे, हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे।
1: चलिए भावना, आप
2: तो
1: हमारे साथ बने रहिएगा। फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सुबह सवेरे ये खबर आती है नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
3: थिएटर की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, टेलीविजन की दुनिया का बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा एक नुकसान है। इसका खालीपन जो कोई भर नहीं सकता, क्योंकि नाना जी की जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, बेस्ट कैरेक्टर्स जो उन्होंने प्ले किए हैं, वो ता जिंदगी जो है लोग उसको याद करेंगे। एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा वॉइड पड़ गया है, खालीपन हो गया हमारी इंडस्ट्री में। सुबह सुबह जैसा कि आपने कहा कि खबर मिली, तो पहली बात तो समझ में नहीं आता है कि विश्वास भी नहीं होता है कि अच्छा खासा अट्टा कट्टा आदमी, सेहतमंद, बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही एक्टिव इंसान ऐसे कैसे जा सकता है। इनफैक्ट इंडस्ट्री जो है वो ऐसे हादसों से अभी जूझ रही थी कि एक और झटका हम लोग को लगा है। बहुत बड़ा नुकसान है। इनफैक्ट नाना पाटेकर का ऑरा, नाना पाटेकर की पर्सनैलिटी, नाना पाटेकर की जो जो जो जो उसकी जो उसके उन्होंने काम किए हुए हैं, जिस किस्म के रोल्स प्ले किए हुए हैं, उनकी इंसानियत, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों में दिखती है। वो एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया की हर खबर की पता, एक पढ़ा लिखा
1: अशोक जी आपके पास लौटेंगे,
3: इंसान।
1: अभी फिलहाल अस्पताल से डॉक्टर का बयान इस पर आया है, वो आपको सुनवाते हैं।
4: He went to his house at somewhere around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. So they removed him, all those primary things. But he's, you know, he was slowly, slowly becoming unconscious. So they sent his caretaker, because they stay near to our hospital. Sent a caretaker, came to the hospital, took our ambulance, when our ER team went there. They started cardiac massage because he was totally unresponsive. And when they went there, they shifted him on cardiac massage to our hospital somewhere around maybe 4:20 or 4:30. We also tried here maximum, but he was brought dead. Then we had to make a police case because as a MLC, and then the body is now taken to the morgue, Goa Medical College for postmortem. His family was not there, his friends were there with him and a caretaker. Nana Patikar, हमारी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उनका केयर टेकर आया था हॉस्पिटल में अराउंड 4:18 और सो, सो आवर एम्बुलेंस रीच टू 4:20 एट अराउंड हिज हाउस एंड इज अ फ्लैट नियर बाई आवर हॉस्पिटल में, इधर ही नज़दीक में। और उधर उनका देखा तो ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव, सो दे वो लोगों ने CPR, हमारे टीम ने CPR चालू किया और CPR करते करते उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बाय अराउंड 4:20, 4:30 एंड बाय द टाइम यू नो दे ऑल्सो डिड मैक्सिमम सब लोगों ने CPR किया और 5:20 को डिक्लेयर किया कि वो डेड हो गए। उनकी फैमिली कोई नहीं थी लेकिन उसके कैरेटेकर थे और उनके फ्रेंड्स थे। अभी मेडिको लीगल केस किया है बिकॉज इट इज़ ब्रॉट डेड एंड द बॉडी इज शिफ्टेड टू गोवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए हैं। उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, बाद में इट विल रिलीज टू द रिलेटिव्स। हमको जो पता चला उसमें हमको ऐसा हो गया कि 2:30 नाना जी ने उनके फ्रेंड को SMS किया कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट नाइट होने के कारण उसने पढ़ा नहीं और 4 बजे उसको उसके घर पहुंचा वो पढ़ने के बाद। तभी बाय दैट टाइम ही वॉज रियली स्वेटिंग, ही वॉज रिमूव हिज स्कूल, ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड देन व्हेन आवर उनके केयर टेकर इधर आ गए, वो लोगों ने एम्बुलेंस लेके गए बिकॉज ही स्टेज हमारे नज़दीक ही रहते हैं फ्लैट में। और CPR करते करते वो हॉस्पिटल में लेके आए लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे में CPR करने के बावजूद उनको हम बचा नहीं सके, सो ही वॉज ब्रॉट डेड।
5: काम बेटा ना करल तो कौन करेगा?
6: दादू प्लीज, किसी को कुछ नहीं मिलेगा खून खराबे से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
1: आप सुन रहे थे डॉक्टर्स को और उन्होंने कहा कि समय पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी, समय रहते हुए उन्हें वहां से ले जाया भी गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 5:20 पर उन्हें मृत घोषित किया। देखिए जब नाना पाटेकर आज तक के स्टूडियो आए थे, जब वो हमारे ऑफिस पहुंचे थे, तब वहां पर कैसा माहौल था, कुछ तस्वीरें उससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं।
7: Gaurav, yaar, you're too good man. I love you.
8: Thank you very much.
7: Gaurav, yaar, you're too good man. I love you.
8: Thank you very much.
7: Gaurav, yaar, you're too good man. I love you.
8: Thank you very much.
7: Gaurav, yaar, you're too good man. I love you.
8: Thank you very much.
1: तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब आज तक के न्यूज रूम में नाना पाटेकर पहुंचे थे, कितना हंस रहे हैं वो और काफी फिट भी लग रहे हैं। अभी हाल ही की तस्वीर भी उनके सामने आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहे हैं। तो किसी को भी अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है ये। अभी फिलहाल डॉक्टर का बयान नाना पाटेकर को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह 4:30 एम्बुलेंस उनके घर गई थी, जब एम्बुलेंस को बुलाया गया बहुत जल्द एम्बुलेंस समय रहते हुए वहां पर पहुंची, CPR देते हुए उनको अस्पताल लाया गया लेकिन फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स की तरफ से ये बयान सामने आया है, डॉक्टर्स ने नाना पाटेकर को लेकर बयान दिया है और लगभग 5:20 पर उनको मृत घोषित कर दिया। 4:30 एम्बुलेंस उनके घर पहुंच गई थी और पूरे रास्ते उनको कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन 5:20 पर उनका निधन हो गया।
4: उनकी फैमिली कोई नहीं थी लेकिन उसके केयर टेकर थे और उनके फ्रेंड्स थे। अभी मेडिको लीगल केस किया है बिकॉज इट इज़ ब्रॉट डेड एंड द बॉडी इज शिफ्टेड टू गोवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए हैं। उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, बाद में इट विल रिलीज टू द रिलेटिव्स। हमको जो पता चला उसमें हमको ऐसा हो गया कि 2:30 वो नाना जी ने उनके फ्रेंड को SMS किया कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट नाइट होने के कारण उसने पढ़ा नहीं और 4 बजे उसको उसके घर पहुंचा वो पढ़ने के बाद। तभी बाय दैट टाइम ही वॉज रियली स्वेटिंग, ही वॉज रिमूव हिज स्कूल, ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड देन व्हेन आवर उनके केयर टेकर इधर आ गए, वो लोगों ने एम्बुलेंस लेके गए बिकॉज ही स्टेज हमारे नज़दीक ही रहते हैं फ्लैट में। और CPR करते करते वो हॉस्पिटल में लेके आए लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे में CPR करने के बावजूद उनको हम बचा नहीं सके, सो ही वॉज ब्रॉट डेड।
1: जैसा कि आप डॉक्टर्स को सुन रहे थे, लगभग सुबह 4:30 बजे एम्बुलेंस उनके घर पहुंच गई थी और रास्ते भर उनको कोशिश की गई, CPR दिया गया, लेकिन फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद डॉक्टर्स का कहना है कि उनका निधन पहले ही हो चुका था। लगभग 5:20 पर इस बात की पुष्टि डॉक्टर्स की तरफ से की गई। CPR देते हुए अस्पताल लाया गया था नाना पाटेकर को।
9: मुझे आज दुख है, सबको दुख है, अचानक इतनी अच्छी तबीयत, इतनी अच्छी दौड़ धूप करने वाले कोई अपने में से तुरंत जाता है तो बहुत दुख लगता है। और नाना एक समाज सेवक भी थे, वो पानी के बारे में काम करते थे, उनकी बड़ी संगठना थी और जो भी करते थे मन से करते थे, दिल से करते थे। इसलिए नाना के इस जाने का सबको बहुत दुख है, पूरा देश और दुनिया जो हिंदी सिनेमा जानती है, मराठी सिनेमा जानती है, उनको ये बहुत ही दुखदायी प्रसंग है। नाना पाटेकर वॉज ग्रेट इंटेंसिव एंड इंटेलिजेंट एक्टर, बियॉन्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग।
1: चलिए भावना के पास सीधे लिए चलते हैं। भावना, अभी डॉक्टर्स का बयान सामने आया है और डॉक्टर ने कहा है कि कोशिश पूरी की गई थी, उनको एम्बुलेंस से में ही CPR दिया जा रहा था लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। काफी पसीने भी उनकी बॉडी पर थे उससे पहले।
2: जी मैंने भी अभी सुना जो डॉक्टर्स ने कहा है, उन्होंने वही पुष्टि की है जो कि हम सुन रहे थे काफी टाइम से कि उन्हें चेस्ट पेन हो रहा था। करीब 3 या 4 बजे के करीब उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, फिर हॉस्पिटल से कोई स्टाफ आया, उन्हें CPR देने की कोशिश की गई लगभग 45 मिनट्स के करीब, और उसके बाद जब तक वो अस्पताल आए थे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। यही जानकारी हमें भी मिली है और अभी हम वेट कर रहे हैं कि उनके बेटे मल्हार हमें और कुछ अगर जानकारी दे सके, क्योंकि जितना भी हमें पता है उसके हिसाब से नाना को कोई बीमारी नहीं थी, वो अच्छे खासे थे, उनकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं था, तो ऐसा कोई मतलब हिस्ट्री नहीं है फिजिकल हेल्थ की, कोई बीमारी की, तो इस वजह से अब ये पता करना कि क्यों चेस्ट पेन हुआ ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हो सकता है उनके बेटे हमें बता सके, एक बार उनकी बात हो तो, जो उनके साथ थे लोग गोवा में उनके साथ, बट अभी फिलहाल मल्हार तो रस्ते में है तो हमें वेट करना होगा कि वो हमें बताए कि क्यों और कैसे ये हुआ। बट ये तो पुष्टि डॉक्टर्स ने भी की है और इससे पहले भी जितनी जानकारी मिली थी कि उन्हें चेस्ट पेन हो रहा था और उसके बाद बहुत कोशिश की गई उन्हें रिवाइव करने की, लेकिन 45 मिनट्स के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे।
1: भावना, केयर टेकर भी वहां पर मौजूद थे और जैसा कि आपने बताया उन्होंने उससे पहले अपने दोस्तों को बोला भी था कि उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है सीने में दर्द जैसा, तो अभी तक कोई केयर टेकर है किसी से भी आपकी बात हो पाई है? उनके बेटे से अभी तक क्या जानकारी सामने आई है, उनसे जो बात हुई उन्होंने क्या कहा?
2: बेटे ने तो जितनी केयर टेकर से हमारी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से बात कर सके लेकिन अभी फिलहाल हम उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जो उनके बेटे ने कहा है, उन्होंने बस ये पुष्टि की थी कि हाँ उनके पिता नाना पाटेकर अब नहीं रहे, लेकिन क्योंकि अभी उन्हें भी पुख्ती जानकारी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो पुणे में थे जब ये सब हुआ है, तो वो रास्ते में है और अब थोड़ा वक्त तो लगेगा पुणे से गोवा पहुंचने में और फिर उन्हें सारी जानकारी लेने में, तो थोड़े वक्त में ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बट फिलहाल मल्हार ने सिर्फ यही पुष्टि की है कि उनके पिता नहीं है।
1: ये भावना काफी शॉकिंग खबर है ये, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब आज तक के न्यूज रूम में नाना पाटेकर पहुंचे थे और काफी हंस रहे थे, वो फिट भी लग रहे थे और अभी हाल ही की तस्वीरें भी उनकी काफी वायरल हो रही हैं। गणेश चतुर्थी का दिन था और उस दिन भी काफी फिट लग रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है और कुछ ऐसा होने वाला है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि अभी शेखर सुमन भी जब थे कॉल पे और उन्होंने भी कहा कि उनकी तो 2 दिन पहले ही बात हुई है नाना के साथ और वो बिल्कुल फिट लग रहे थे, मतलब कुछ किस कोई एक जानकारी नहीं थी कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई हिस्ट्री है हेल्थ प्रॉब्लम की। इसीलिए ये जितना इंडस्ट्री के लिए शौक है हम सभी के लिए उतना ही बड़ा शौक है, क्योंकि जितनी भी बार हम नाना से मिले हैं कभी लगा नहीं या कभी कोई ऐसा हिंट भी नहीं हुआ कि उन्हें कोई भी बीमारी है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। और जैसे कि मैं कह रही थी कि लास्ट ईयर ही मेरी उनसे बात हुई थी वनवास के टाइम पे, और उस वक्त भी वो काफी फिट थे, काफी मजाकिया माहौल रहता है हमेशा जब भी वो रहते हैं, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं, जैसे हर कोई कहता है कि पहली बार जब उनसे कोई भी मिलता है तो वो लगता है उन्हें देख के कि वो अभी कुछ बोल देंगे या वो गुस्से में होंगे, लेकिन उनसे थोड़ा बात करो और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा मजाकिया अच्छे इंसान है बात करने में। तो ये मतलब मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ ये प्रोसेस करने की कि ये क्या हो गया, बट हमें ऑफिशियल जो मल्हार है उनके बेटे उनका वेट करना होगा कि वो बता पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे चेस्ट पेन हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
1: बिल्कुल, काफ़ी एक अच्छे इंसान वो थे। और देखिए, फिल्मी सफ़र के साथ साथ उनका फिल्मी सफ़र के पीछे का भी एक जुड़ाव लोगों से रहा, किसानों से रहा, उनकी अच्छाई ही ये बयां कर रही है ये चीज़ें।
2: जी बिल्कुल, और यही कारण है कि आज ये दुख थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक कलाकार नहीं खोया है, एक सोशल वर्कर, एक फिलंथ्रोपिस्ट उनको कहा जा सकता है, उन्हें भी खोया है। क्योंकि उन्होंने जितना काम महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए किया है, यहाँ के इश्यूज को रेस करने के लिए किया है, बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो कि अपने ऑन स्क्रीन पर्सोना से हटकर समाज के लिए इतना कुछ करते हैं और सिर्फ बोलते नहीं करते हैं। और नाना पाटेकर एक ऐसे एग्जाम्पल है जो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो उन्होंने काफी कुछ किया है किसानों को हेल्प करने के लिए, आर्मी के लिए, मतलब वो अनगिनत काम किया है उन्होंने। तो इसलिए आज ये दुख थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ कलाकार की बात नहीं है, एक ऐसे इंसान को खोना जो एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत बहुत ज्यादा दुख की बात।
1: युवा पीढ़ी उनको किस तरीके से देखती है भावना? काफी मीम्स भी उनके देखिए वायरल होते आए हैं और बहुत ज्यादा रेगुलर अभी भी होते हैं, तो युवा पीढ़ी उनके एक्टिंग से कितना इंस्पायर हुई है?
2: जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने अभी तक वो वेलकम का मीम नहीं देखा हो सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपने वो एक बार तो देखा ही होगा नाना पाटेकर का जो है, और उनकी कुछ क्लिप्स बहुत वायरल भी जाते हैं। आई थिंक युवा पीढ़ी उन्हें एक ऐसे कलाकार के तौर पर देखती है जो जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और जो आज भी वही काम करते हैं जो उन्हें करना है, सिर्फ काम के लिए काम नहीं करते हैं, वो एक्चुअली में बहुत पसंद करते हैं एक्टिंग थिएटर। इसलिए आप देखोगे कि वो जिस तरीके की फिल्म का पार्ट भी बन रहे हैं वहां पे वो कुछ ना कुछ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी सीख रही है। जब वनवास के टाइम पे मेरी बात हुई थी और अनिल शर्मा जो कि प्रोड्यूसर थे जिन्होंने गदर भी बनाई है, वो भी कह रहे थे कि कैसे नाना से अगर युवा पीढ़ी कुछ सीख सकती है तो वो है डिसिप्लिन, क्योंकि नाना
1: चलिए
2: एक
1: भावना,
2: ऐसे।
1: बने रहिएगा हमारे साथ। आगे की खबरों के लिए अब हम सीधा रुख करते हैं अंजना ओम कश्यप का।
10: मैसेज करो मैसेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और दुखद खबर, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि जिनको एक्टिंग का ओजी माना जाता था, एक ऐसे व्यक्ति जिनके किरदार, जिनकी भूमिका, जिनके मतलब जिसका अभिनय और स्क्रीन पर उनका प्रेजेंस भारतीय सिनेमा को एक नए सिरे से परिभाषित करता था, ऐसे कलाकार नाना पाटेकर अब नहीं रहे। आज सुबह बताया गया कि उनको उनके बेटे मल्हार ने बताया है, पाटेकर ने, मल्हार पाटेकर ने, कि उनको सीने में दर्द उठा, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5:05-10 के आसपास उनको वहां पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। नाना पाटेकर अपने आप में एक्टिंग की एक पूरी किताब थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों पर राज करता रहा। सोचिए, जिसके डायलॉग्स, जिसके बोलने का अंदाज, जिसके तरीकों की नकल दुनिया करती हो, जिसने एक ऐसा आधार बनाया फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पर ये तय सीमा जो तय की गई थी कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलेन होगा, उन सबको, सभी परिभाषाओं को जो गढ़े गए थे एक्टिंग के, उन सबको उन्होंने चैलेंज किया और उन सभी परिभाषाओं को चुनौती देते हुए नाना पाटेकर भारत की फिल्मों में, हिंदुस्तानी सिनेमा में एक ऐसे किरदार, एक ऐसे एक्टर बने जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर रोल्स हासिल की और सिर्फ अपने अंदाज से, क्योंकि वो किसी भी तय परिभाषा में या किसी अन्य व्यक्ति को देखते हुए या फिल्म की जो तय धारा तय की गई थी, जो एक धर्रा बन गया था, उसके आधार पर उन्होंने कभी भी अपना अभिनय नहीं किया। नाना पाटेकर ने खुद परिभाषा गढ़ी, खुद एक ऐसी उन्होंने अभिनय का संसार बसाया जिसके जरिए उनको लोग अपने फिल्मों में लाकर, अपने फिल्मों में उनकी भूमिका एक क्रिएट कर ये चाहते थे कि उनकी फिल्मों का वजन बढ़े। सोचिए, जब किसी एक्टर की जरूरत एक फिल्म को हो, और वो भी लीड स्टार नहीं कि भाई लीड हीरो जो कॉन्सेप्ट हमेशा हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, जब एक ऐसा अदाकार आपको मिले, एक ऐसा एक्टर मिले जिसकी फिल्म को जरूरत हो, क्योंकि उससे फिल्म को वजन मिलता हो, उसकी भूमिका उसके किरदार से जान आती हो पूरी पिक्चर में, ऐसे एक्टर थे नाना पाटेकर। और आज मुझे लगता है, हालांकि 75 वर्ष उनकी उम्र थी, आखिरी फिल्म उनकी रोमियो, जिसकी हम लोग चर्चा भी आपको कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिसके इंटरव्यू के लिए भी वो कई जगहों पर गए थे, कभी ऐसा लगा नहीं कि वो 75 वर्ष के हो गए, क्योंकि एक जो उनके अंदर ललक थी, एक जो उनके अंदर अभिनय या फिर डायलॉग डिलीवरी का जो उनका अंदाज है, जिसमें वो अपनी पूरी ताकत, अपनी ऊर्जा झोंकते थे, वो सब एक अपने आप में एक नई परिभाषा गढ़ता है। और आज मुझे लगता है कि नाना पाटेकर का ना रहना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं आप, बड़ी क्षति है। और देखिए, नाना पाटेकर के बारे में, मतलब उनका अभिनय एक ऐसा था जिस पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने हर तरह के किरदार को एक अपने बहुत ही रस्टिक अंदाज में उन्होंने पर्दे पर लाने की कोशिश की। मतलब उनका जो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज था या कॉमेडी डिलीवरी अगर वो करते थे, तो उसकी जो कॉमेडी की टाइमिंग होती थी उसमें वो ऐसा, जिसको कहते हैं डेप्थ लाते थे, कि ऐसी गहराई लाते थे, जिसकी वजह से आप सोचिए कि हर उम्र के लोगों को वो अपील करते थे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप आज भी अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको अनेकों मीम्स ऐसे दिखेंगे जिसमें जो ओजी, जिसको कहा जाता है, मतलब एक जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक लेजेंडरी तरीके से, जिसने बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक ऐसे तरीके से परिभाषित की हो एक्टिंग, उसकी एक वो छवि बन गए। और शायद इसीलिए आपको अनेकों मीम्स मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि नाना पाटेकर को जो नई जनरेशन है, जिसको आप जेंजी भी कहते हैं, नई पीढ़ी भी कहते हैं, युवा भी कहते हैं, वो भी उनसे प्रेरित होते थे। तो ये नाना पाटेकर का अंदाज, उनकी आंखों से जो वो अदाकारी करते थे, उनका जो तरीका था डायलॉग डिलीवरी का, हर भूमिका की तह तक जाना, उसकी परतों को समझना, उन परतों को जीना, उन पर्दों को स्क्रीन पर लाना, ये परिभाषित करता है कि एक एक्टर क्या है। और ये एक्टर नाना पाटेकर थे। मतलब अनेकों ऐसे एक्टर्स होते हैं जो शायद जो एक तय धारा तय की गई है कि भाई ये हीरो की भूमिका है, वो उस हीरो की भूमिका में सामने आपको दिखाई देते हैं पर्दे पर, अनेकों गाने होते हैं उनके साथ और एक पूरा लोकप्रियता में वो बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर एक पैरेलल तरीके से जो पैरेलल सिनेमा है, उसमें जो, मतलब एक एक फिल्म उनकी आप देखेंगे तो अपने आप में केस स्टडी है कि कैसे एक एक्टर जिसने भारत में एक तय धारा से अलग हटकर कैरेक्टर आर्टिस्ट को ऐसी भूमिकाओं को इतना इम्पोर्टेंस दिलाया कि वो फिल्म के लिए क्रूशियल बन गई। मतलब नाना पाटेकर इस फिल्म में है, उनको देखने जाना है, ये कहकर लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचने लगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाना पाटेकर और उनकी अदाकारी जो है वो क्या मायने रखती है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करते रहेंगे। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन भी एक बार आपको दिखा देते हैं, कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे ईयरपीस में मुझे मेरी आवाज बार बार वापस मिल रही है, इसलिए मुझे उसे हटाना पड़ा है। तो अगर आप मुझे ऐसे भेज दें तो मैं समझ पाऊंगी कि किसके किसको लाइव इस वक्त लेना है। हमारे साथ प्रदीप सरदाना भी, मुझे बताया जा रहा है कि वो जुड़ रहे हैं। ईयरपीस लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी आवाज खुद मुझे वापस लौट रही है। तो बड़ी बात यह है कि जब आप नाना पाटेकर और उनकी अदाकारी को देखते हैं, उसको असेस करने की कोशिश करते हैं, तो आज मुझे लगता है कि हर कोई इस बात पर बहुत, तरण आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरण आदर्श जी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से लोग सिनेमा हॉल तक खींचे आते थे कि भाई इस फिल्म में नाना पाटेकर हैं और शायद वो उस फिल्म में मेन हीरो या मेन जो पारंपरिक तौर पर हम परिभाषित करते हैं वो ना रहे हो, लेकिन नाना पाटेकर फिल्म में है तो लोग सिनेमा घर पहुंच जाते थे उनको देखने के लिए। अभिनय की एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी और उसको ऐसे आगे बढ़ाया कि अपने आप में एक, जिसको कह सकते हैं आप, एक ग्रंथ है वो सिनेमा के लिए। तरन जी,
11: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा और आपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं उनके लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की उसे थोड़ा और आगे उसे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक बेहतरीन इंसान भी थे, बेहतरीन एक्टर भी थे। इंसान इसलिए क्योंकि मैंने कई बार उनके साथ इंटरेक्शंस किए थे ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स। उनकी जो पहली, मतलब जो ऐसे तो कई फिल्में की थी उन्होंने पहले भी, बट एक जो दो फिल्मों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिससे उनकी उनकी जर्नी में एकदम उछाल आया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो पहली फिल्म थी आज की आवाज, जो बीआर चोपड़ा साहब ने बनाई थी, जो उनके बेटे रवि चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी, और दूसरी फिल्म थी अंकुश, जो एन चंद्रा जी ने डायरेक्ट की थी। ये दो फिल्मों के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑफर्स आने शुरू हुए, बट उन्होंने बहुत कम फिल्में की। एक फिल्म जो उन्होंने उस फेज में की थी जिसका नाम था परिंदा, वहां पर जब हमारी मुलाकात हुई थी और जब हमारे कॉन्वर्सेशन शुरू हुए थे उस वक्त, मैं भूल नहीं सकता, बिकॉज वो उस फिल्म से लेकर कई ओवर द इयर्स मैंने उनको दो तीन बार इंटरव्यू भी किया है, बट द सेम टाइम हमारे कॉन्वर्सेशन लगातार चालू रहते थे उनकी फिल्मों को लेकर। वेरी नाइस मैन। और एक बार मैंने जब पूछा था, जब उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था प्रहार, तो मैंने उन्हें पूछा था कि उस फिल्म में नाना जी तो थे ही, बट उनके साथ में थे डिंपल कपाड़िया एंड माधुरी दीक्षित। ये नाना पाटेकर जी ने खुद डायरेक्ट की थी फिल्म, और मैंने कहा था बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है, आपको और फिल्में डायरेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि मैं वही फिल्में करूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैं वही फिल्में करूंगा जो मेरे दिल से आवाज आती है कि मुझे करनी चाहिए, चाहे वो एज एन एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो। और ओवर द इयर्स अगर आप देखें तो चाहे वो अग्नि साक्षी हो, चाहे वो मैंने परिंदा, एक संजय लीला बंसाली जी की पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, खामोशी द म्यूजिकल, अगर आप वो देखें जिसमें सलमान खान और मनीषा कोइराला भी थे, बेशक वो फिल्म नाकामयाब रही, बट उस वक्त और आज इसे क्लासिक माना जाता है, बट उस वक्त जो परफॉर्मेंस की जो तारीफ हुई थी नाना पाटेकर जी की, वो मैं क्या कहूँ आपको। तो हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ते थे, फिल्में कामयाब हो या ना कामयाब हो, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते थे कि उनकी परफॉर्मेंस गलत है या उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमजोरियां नजर आ रही है। ही वॉज अ परफेक्ट एक्टर। और उनके बॉडी ऑफ वर्क को देखेंगे आप तो इतने वर्सेटाइल थे, कभी आपने आपको दोहराते नहीं थे, कभी ऐसा नहीं महसूस होता था कि ये तो हम देखते आ रहे हैं और उन्होंने एक और काम का एक और परफॉर्मेंस दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
10: तरन जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब ऐसा अजीब सा एक मतलब सुनापन एक आ जाता है जब आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिस्सा माना जाता है किसी चीज का, और नाना पाटेकर के लिए तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी परिभाषा गढ़ी, उन्होंने एक्टिंग को एक नए सिरे से इस देश में एक जगह दी, और वो मुझे लगता है कि हमेशा मायने रखेगी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सना फरजीन हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सना, क्या जानकारी है परिवार के लिए? तो मतलब उनके चाहने वाले जिन्होंने उनको पर्दे पर देखा, वो तो उस अदाकार को, उस एक्टर को, उस ग्रेट एक्टर को हमेशा मिस करेंगे, लेकिन परिवार के लिए तो ये पर्सनल क्षति होती है, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। और अब तो हॉस्पिटल से भी बताया गया है कि उनको पहले दर्द उठा, उसके बाद से परिस्थितियां ऐसी बनी।
12: जी बिल्कुल अंजना, आई थिंक किसी ने सोशल मीडिया पे बहुत सही लिखा था कि इस तरीके का एक मॉर्निंग कभी किसी को ना मिले, एंड वही इमोशंस आज फैंस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई और बहुत ही एक सडन न्यूज थी ये, किसी को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था, सडनली न्यूज आई कि वो चल बसे हैं। और हॉस्पिटल से डेफिनेटली अभी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि रात को करीबन 3 बजे तक वो अनवेल फील कर रहे थे और उन्होंने अपने दोस्त उसको बताया। सबसे दुखद चीज जो शायद उनके फैमिली के लिए है वो ये है कि वो अकेले थे उस वक्त अपने घर पे, और कोई भी फैमिली परिवार जो है वो साथ नहीं था उनका, वो सारे पुणे में रहते हैं। एंड नाना पाटेकर कुछ समय से गोवा में एक फार्म हाउस में रह रहे थे। उन्होंने डेफिनेटली अपने दोस्त को जब बताया तो एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस लेकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंची जहां पे डॉक्टर्स ने ट्राई किया उन्हें रिवाइव करने का, बट नहीं बचा पाए। बहुत ही एक शॉकिंग, जब आप इस तरीके से सडनली किसी की डेथ होती है तो हम सब फील कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक शॉक होता है। बट जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रही थी कि सिनेमा जगत के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, एंड कहीं ना कहीं इतने फैंस हैं उनके, क्योंकि 4 दशक के करीब उनकी उनका करियर रहा है और आज इतने इम्पैक्टफुल रोल्स उन्होंने किए, इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस किए, एंड शायद यही एक लेगेसी जो वो छोड़ के जा रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं कंडोलेंस के काम आएगा उनके फैंस के लिए, और डेफिनेटली सब उन्हें बिल्कुल प्यार से याद करेंगे हमेशा।
13: और कहते हैं हमेशा सना कि एक एक्टर जो है या कोई संगीतकार होता है, कोई गायक होता है, वो अपने फन के जरिए, अपनी कला के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए, अपने अपने डायलॉग डिलीवरी के जरिए वो हमेशा जिंदा रहता है। मतलब आप जब चाहे कम से कम उनको देख तो सकते हैं स्क्रीन पर। आइए एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं उनके वो दमदार डायलॉग्स, वो अदाकारी, वो अंदाज, वो तरीका, वो अभिनय जिसने नाना पाटेकर को नाना पाटेकर बनाया।
14: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, तो जिए मालूम नहीं क्यों मरे।
15: अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं।
16: इजाजत है।
15: थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे, और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो?
17: यह तो अभी तक सुना नहीं कभी।
15: कारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला, हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है, यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो, जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो।
16: आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती।
15: कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की, मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
14: चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।
18: ठंडा कर,
14: यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है।
19: यहाँ ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन 4 दीवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वही फांसी दे दो क्रांति मैदान में सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना समरने से क्या फायदा।
14: तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए।
13: वो जज्बात जो आम आदमी के थे, वो जज्बात जो एक जिसको कहते हैं कॉमन मैन, जिसकी वो डायलॉग डिलीवरी आपने देखी, उनके नजरिए से जब दुनिया को देखा जाता है तो फिर कैसे उस पर चर्चा हो। तो इस तरह की जो एक्टिंग नाना पाटेकर ने की, नाना पाटेकर ने जिस तरह से अपने अभिनय के जरिए उस आम आदमी को आवाज दी, वो भी शायद उनकी पहचान बनी, क्योंकि वो तमाम ऐसी व्यवस्था जिसमें एक एक भ्रष्ट तरीका घुस गया था, रिस गया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया अपने अभिनय से। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि आम लोगों को लगता था कि कोई तो है जो आज इस अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, कोई तो है जो जो आम आदमी की भाषा को स्क्रीन पर उठा रहा है, और लोग उसे कनेक्ट करने लगे। चाहे कानून की पेचीदगियों को लेकर उनका अभिनय रहा हो, भूमिकाएं रही हो, अन्य भी है। सोनाली कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ जानी मानी अभिनेत्री जुड़ रही है। सोनाली जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मतलब सभी लोग इस वक्त स्तब्ध हैं, सबने देखा था कि अभी भी वो एक्टिंग कर रहे थे, हर जगह एक्टिव दिख रहे थे। कैसे याद करेंगे आज आप उन्हें?
18: अंजना, मुझे लगता है एक तो ये जो खबर हमें मिली है आज सुबह सुबह, वो मुझे सच नहीं लग रही है, क्योंकि नाना सर को याद करना बहुत मुश्किल है। नाना सर मतलब जिंदा दिली, नाना सर मतलब फिटनेस। मैंने नाना सर के साथ 3 फिल्में की हैं, टैक्सी नंबर 9211, देउड़ जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण कमल मिला था, और डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे। तो पिछले कुछ 15-20 सालों में सर के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। सर, मेरी जो किताब पब्लिश हुई थी तो सर चीफ गेस्ट थे उस फंक्शन के, और बहुत प्यार से उन्होंने पुस्तक पढ़ा था मेरा। मेरे परिवार से उनका बहुत अच्छा मतलब लगाव है। मेरी बेटी जो है, कभी भी फोन करेंगे आउट ऑफ द ब्लू, तो नाना सर का ये होता था कि पहले बताओ कावेरी कैसी है। तो इतना उन्हें अचरज होता था कि बापरे 5 साल की हो गई, अरे बापरे अब और भी बड़ी हो गई, अब 4th कक्षा में है, अरे बापरे। और क्या अच्छा लगता है उसे नचिकेत के, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे, नचिकेत कैसा है, तबले का रियाज चल रहा है। तो ये जो उनका अपनापन था, मुझे ऐसे उन्होंने हमेशा लेटली मतलब जैसे दोस्ती बढ़ती गई, मुझे हमेशा ऐसे लगा कि नाना सर मेरे परिवार का हिस्सा है। और जितने मतलब जितना अपनापन था, उतना ही काम के बारे में वो बहुत पैशनेट रहे हैं, बहुत ही। क्योंकि काम अच्छा करना, कुछ भी करो, तुम जो खाना है खाओ, जो कपड़े पहने पहनो, लेकिन जब शॉट देते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस होना ही चाहिए। मतलब वो इतने डिमांडिंग थे एज अ को-स्टार। नाना सर का ये था कि मैं देखूंगा तुम्हारा शॉट, जबकि वो डायरेक्टर नहीं है, वो महज एक को-स्टार है, लेकिन वो बोलेंगे कि मैं रहूंगा, तुम अच्छा शॉट दो। और वो डरते नहीं थे किसी के अच्छे काम से, उनका हमेशा ये कहना था कि तुमसे अच्छा काम मैं करूंगा, इसलिए तुम अच्छा काम करो। तो मतलब मेरे पास इतने सारे क्षण हैं चेरिश करने के लिए। सर ने बहुत ही एनरिचिंग मेमोरीज दी है मुझे।
13: मतलब हम लोगों के लिए इतना मुश्किल है जिन्होंने उनकी एक्टिंग देखी, जिन्होंने आइडलाइज किया एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि कई बार सोनाली जी ये भी तय होता है कि हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग हैं जो पहले से ही वेल कनेक्टेड होते हैं, लेकिन नाना पाटेकर ने अपने अभिनय के दम पर एक ऐसी जगह अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। आप सोचिए कि फिल्में ऐसी बनने लगी उस दौर में जब नाना पाटेकर हैं, तो लोग ने कहा कि नहीं भाई हम तो जाएंगे नाना पाटेकर, चाहे फिल्म का मेन हीरो कोई और हो, लेकिन नाना पाटेकर की जो अदाकारी इतनी दमदार, इतनी ऊर्जावान रहती थी, इतना एनर्जेटिकली वो बोलते थे, और जिस तरह से डायलॉग्स को वो इमोट करते थे या फिर परतों में लेयर्स में घुसते थे किसी कैरेक्टर के, वो लोगों को खींच कर लाता था। मतलब आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ रहता होगा उनको देखकर समझने और सीखने के लिए। सोनाली जी,
18: जी अंजना, मेरे मतलब उनको मैंने काम करते हुए देखा है, उनकी पैशन देखी है, उनकी इंटेंसिटी देखी है। ऐसे कितने सारे क्षण हैं, मुझे आज भी याद है सर अपने बहुत ही करीब कजिन को खो चुके थे, और हम शूटिंग कर रहे थे, अगर अगर सर मुंबई चले जाते तो शूटिंग यूनिट का काफी नुकसान होता, क्योंकि सर जाते तो हेमलकसा से मुंबई आने में टाइम लगता। तो सर ने जिस प्रकार से निर्णय लिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काम काम होते रहना चाहिए. मेरा भाई तो मुझे प्यार देके चला गया है ना, अब उसके लिए मैं काम कैंसिल करूं तो अच्छी बात नहीं होगी. तो हमेशा काम को अहमियत दी है सर ने.
13: और वो बहुत मायने रखता है, वो अपने आप में एक अनुशासन दिखाता है और अनुशासन से ही कोई भी जो कला है वो बहुत निखरती है और आगे बढ़ती है. चलते चलते अगर आप सोनाली जी कुछ कहना चाहें, क्योंकि आज मतलब एक एक्टर तो आखिरकार हमेशा जिंदा रहता है क्योंकि उनका काम, उनके डायलॉग्स, उनको अभी भी हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके डायलॉग्स दर्शकों को सुना रहे हैं, तो एक सेकंड को इंसान एकदम ठहर जाता है. चलिए आपको लिए चलते हैं, प्रदीप सरदाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रदीप जी, ऐसी कुछ बात बताइए आज नाना पाटेकर जी के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हो, क्योंकि स्क्रीन पर हम उस व्यक्ति को देखते थे और देखिए वो एक ऐसे एक्टर भी थे जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे भी बहुत जुड़े रहते थे. किसानों के मुद्दे पर वो खुलकर बोलते थे, वो अन्य मुद्दे जो हैं किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पर, महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कोई चिंता नहीं की कौन सी पार्टी क्या सोचेगी, कौन सी पार्टी क्या सोच रखती है, क्या है नहीं है, खुल के बोले. और वो उनका जो एक पैशन था ना कि आम आदमी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको जब वो बोलते थे तो फिर उनका जो लेवल और जो पावर जो एनर्जी आती थी वो अलग ही रहता था.
20: बिल्कुल, बड़ा हो रहा है और बहुत दुख हो रहा है और बड़े चांस की बात है कि मैं अभी सुबह 4 बजे भी कुछ काम कर रहा था तो उनको याद कर रहा था, क्योंकि आज जो दिग्गज अभिनेता है राजकुमार, उनका जन्म शताब्दी है और राजकुमार और नाना पाटेकर ने तिरंगा फिल्म में साथ काम किया था, तो मुझे वो दिन भी याद है. मेहुल कुमार है, उनके डायरेक्टर से भी बात हो रही थी कि दो ऐसे लोग जिनके अलग अलग, क्योंकि राजकुमार भी कैसे अभिनेता थे जो अपने उसके लिए जाने जाते थे, ईगो के लिए, अलग स्टाइल के लिए, अपने अलग अंदाज के लिए, और कहते थे बहुत मुंहफट हैं और बड़े साफ हृदय हैं, ये काम बहुत अच्छा करते हैं, अलग हटकर करते हैं. और नाना पाटेकर की भी उसी स्कूल के को छात्र कहूंगा जो उसी स्टाइल के थे कि वो जो भी बात करते थे बड़ी साफ गोई से करते थे, ये चिंता नहीं करते थे किसी को बुरी लग रही है अच्छी लग रही है, उनको अपने काम से मतलब होता था और अपनी बात कहने से मतलब होता था, तो ढोंग और पाखंड उनकी बात में नहीं होता था. अभी कुछ दिन पहले ही अभी गणेश उत्सव गया है, हमेशा की तरह वो जिस तरह गणेश जी को घर बुलाते थे और बोलते थे अगले बरस तो जल्दी आना.
13: प्रदीप जी टोक रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए शोक जाहिर किया है. प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बहुत कम ही ऐसे अभिनेता होते हैं जिनके अंदर वो गहराई, वो बिल्कुल इंडिविजुअलिटी, मतलब बिल्कुल अलग अभिनय, जो अपने एक अलग पहचान बनाते हैं और जिनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जिनकी जो अनमिस्टेकेबल प्रेजेंस है, वो नाना पाटेकर जी की जैसी होती है. उन्होंने एक अलग अलग किरदारों के जरिए, अभिनय के जरिए बिल्कुल एक नयापन वो स्क्रीन पर लेकर आते थे और तमाम भूमिकाएं जो उन्होंने निभाई है उस वो हमेशा हमेशा पीढ़ियां तमाम जो है वो याद करती रहेंगी. उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी इस बात के लिए भी बहुत प्रशंसा और वो लोकप्रिय थे कि वो किसी भी मुद्दे पर बहुत बेबाकी से, बहुत फ्रैंक तरीके से और बहुत सीधापन के साथ जो भी उनका उनकी सोच होती थी या जो उनका उस पर राय होती थी उसको वो खुलकर दिखाते थे, बताते थे. उनके जाने से एक सूनापन सभी में आएगा और प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से उनके परिवार, उनके दोस्तों और अनेकों जो उनके चाहने वाले हैं उन सबको संवेदनाएं प्रकट की हैं और ओम शांति. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट जिसके जरिए वो इस वक्त शोक संदेश आप कह सकते हैं नाना पाटेकर के लिए, लेकिन इसी के साथ याद करते हुए कि नाना पाटेकर क्या है, जो गहराई नाना पाटेकर लाते थे प्रदीप सरदाना जी वो अपने आप में है. लेकिन अगर निजी तौर पे भी जो लोग उन्हें जानते थे, मतलब बड़े ही मिलनसार टाइप के और उनका जो ह्यूमर था, उनका जो तरीका था हंसकर बात करने का, उसके लोग बहुत मुरीद थे जो उनके करीब थे. अभी सोनाली जी थी लाइन पे हमारे साथ, 3 फिल्में की हैं उन्होंने नाना पाटेकर के साथ, वो भी बता रही थी कि कैसे वो मतलब बहुत ही ये कहते थे कि करो मेरे सामने करो, मैं तुझसे बेटर करूंगा, मतलब अपने आप में और उनके परिवार के लोगों से भी टच में रहते थे, तो ये दिखाता है कि कैसा मिलनसार स्वभाव उनका था.
20: जी बिल्कुल, मिलनसार बहुत थे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और हालांकि मुफ्त भी बहुत थे, कोई बात किसी की बुरी लगती थी तो उसको भी साफ बोल देते थे, चिंता नहीं करते थे, हंसी मजाक भी बहुत करते थे. मेरे को मुझे उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें याद आ रही हैं, और वो भी याद आ रहा है जब पहली बार मैंने उनको उनकी फिल्म देखी थी, आज की आवाज, रिया चोपड़ा की फिल्म थी और दिल्ली में उसका स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, तो सभी का ध्यान गया कि ये अभिनेता कौन है जो इतना अच्छा अभिनय कर रहा है। तो उससे पहले हम उनको नहीं जानते थे, मराठी में उन्होंने कुछ फिल्में की थी, तो हम देख के चौंक गए। तो हमने कहा ये नाना पाटेकर है, तो तब से पहली बार पहचान बनी। उसके बाद वो अंकुश फिल्म में आए एन चंद्रा की, एन चंद्रा की जब अंकुश फिल्म आई तो वो उसको लेकर दिल्ली आए और उन्होंने मुझे बताया मैंने ऐसी फिल्म बनाई है, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। तो प्रतिघात फिल्म थी एक जो अपना राजश्री वालों ने अपना डिस्ट्रीब्यूट की थी, उन्होंने रिलीज की थी और जो रामोजी राव है उन्होंने बनाई थी। तो ये तीन चार फिल्में भी शुरुआती फिल्में ही ऐसी थी कि वो आती इंडस्ट्री में इस तरह छा गए। जबकि मैं आपको बताऊं उनका नाम जो पहले विश्वनाथ था और वो जो है मुंबई पुलिस के लिए, जो बॉम्बे पुलिस कहते थे उस समय, उसके लिए अपराधियों के स्केच बनाते थे, तो उसी से उनकी पहचान बनी। अपराधियों के स्केच बनाते थे, उस तरह वो सब चलता रहता था। लेकिन अचानक जब वो नाटक करने लगे, मराठी थिएटर करने लगे, पुरुष नाटक उनका आया था मुझे याद है, उसमें उनका एक ऐसा रोल था जो एक बलात्कार करते हैं उसके साथ, तो वो इतना नाटक मशहूर हुआ तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी इस तरह की भूमिका लोगों ने बहुत पसंद की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी जो माँ थी वो बहुत नाराज थी उनसे, कहती है कैसा रोल किया तूने, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा रोल बिल्कुल मत कर। तो जिस तरह बताते हैं व्यक्तिगत जीवन और जो उनके रील और रियल लाइफ होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कई बार बिल्कुल सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही है, लेकिन नाना इससे अलग थे। ये जरूर है कि मुफट थे तो बात थे, साफ कर देते थे, कभी नहीं डरते थे कुछ भी कहते हुए, तो ये उनकी खासियत थी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आज राजकुमार की जन्म शताब्दी है और नाना पाटेकर भी उसी स्कूल के छात्र को कहूंगा, इसी परंपरा की अगली कड़ी कहूंगा, जिन्होंने उसी तरह का अंदाज अपनाया, एक अलग अभिनय, एक अलग तरह का अंदाज और अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे। हालांकि वो राजकुमार जो थे वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक जीवन में नहीं आते थे, लेकिन नाना पाठक ने जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर एक आम आदमी की आवाज बने, वो भी बहुत बड़ी बात है। कि आप देखिए हर आदमी तो उन पर विश्वास हो गया कि ये नाना जो है ये खाली फिल्मों के नायक नहीं है, ये जन जन के नायक है। तो नाना की इतनी बातें याद आती है, जब आज बात करो तो इतना अफसोस हुआ, इतना चौंका कि वो फिट रहते थे, इतना अच्छा
13: परिभाषित भी करती थी। मुझे लगता है कि परिंदा, क्रांतिवीर, अपहरण उनकी ऐसी फिल्में थी जो कि मतलब अनेकों फिल्में हैं, अनेकों उन्होंने किरदार निभाए, लेकिन ये फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने गहरी छाप लोगों पर छोड़ी। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो उनकी एक्टिंग को बहुत गहराई देती थी वो थिएटर में उनकी जड़ें, क्योंकि उन्होंने थिएटर इतना किया इसलिए उनको एक जिसको कहते हैं कि उनको ये पता था। और कई बार होता है ऐसा कि आप पर्दे पर जब आप एक्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स डाले जाते हैं। और इस वक्त प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद सावंत जी, किस तरह से आप जानकारी देंगे आज सुबह इस घटना के बारे में, क्योंकि अचानक उनके बेटे ने बताया है, नाना पाटेकर जी के बेटे ने, कि उनको दर्द हुआ, थोड़ा दिक्कत हुई, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया है। और इसी के साथ नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर जो कि लेजेंडरी एक्टर हैं, उनको आप किस तरह से याद करेंगे?
0: मुझे आज सुबह 6 बजे कॉल आया कि नाना पाटेकर का देहांत आने हॉस्पिटल में 5:30 बजे घोषित कर दिया। उनको चेस्ट पेन हो रहा था और उनको मैंने ट्रीटमेंट के लिए वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, तो उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। नाना पाटेकर मेरे पर्सनली फ्रेंड रह चुके हैं। नाना पाटेकर यानी कलाकार बोल के उनको तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके नाम फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह का काम पूरे महाराष्ट्र और पूरे बाकी देश में भी कर रहे थे, डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान, यानी देश को कला क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैंने मेरा पर्सनल एक दोस्त गवाया है, इट्स अ बिग लॉस फॉर नेशन।
13: प्रमोद जी, किस तरह से आप उनको याद करेंगे आज, क्योंकि आपने कहा कि आपकी निजी दोस्ती भी थी उनके साथ, बड़े ही दिलदार किस्म के इंसान थे, लेकिन कई बार बेबाक अंदाज में फोर्थराइट व्यू किसी इशू पर रखना हो, जैसा प्रधानमंत्री ने भी लिखा है, वो हर मुद्दे पर बोलते थे, किसानों के मुद्दे पर, वो सिर्फ पर्दे पर जननायक नहीं बल्कि असल मुद्दों पर भी वो नायक के तौर पर जनता के सामने आते थे।
0: जी हाँ, जब भी नाना को मिलना होता था, फिर नाना को जो कुछ लगा तो पर्सनली डायरेक्टली बोलते थे कि ये बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बात अच्छी की है तो आपका काम ये बहुत ही अच्छा हुआ है, इस बारे में भी हमेशा उनके वो बात करते थे। मैं उनको हमेशा के लिए वो मेरे याद में रहेंगे, क्योंकि उसके नाम फाउंडेशन का जो काम है वो पूरे हमेशा के लिए याद रहने वाला, उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका काम है, क्रांतिवीर से लेके यानी नट सम्राट तक, सभी हमेशा के लिए यादगार रहेंगे. थैंक यू, थैंक यू.
13: बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद सावंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. मुख्यमंत्री गोवा के जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आज किस तरह से अस्पताल में लगभग 5:30 बजे के आसपास इनका कहना है कि उनको मृत घोषित किया गया, उनको 6 बजे इसकी जानकारी दी गई. निजी तौर पर भी वो कह रहे हैं उनके दोस्त थे तो उनके लिए भी पर्सनल लॉस है. और मुझे लगता है कि उस पूरी पीढ़ी के लिए, मतलब एक क्या कई पीढ़ियों के लिए, और सोशल मीडिया पर भी आज भी अगर आप देखेंगे मिस्टर सरदाना, तो बहुत सारे जो युवा हैं वो भी उनके फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के लिए. तो ये दिखाता है कि मतलब जब आपकी एक्टिंग में दम हो तो फिर आपको कोई भी किरदार मिले, आपको चाहे 5 मिनट का ही सीन क्यों ना फिल्म में.

0: आपको चाहे 5 मिनट का ही सीन क्यों ना फिल्म में मिले, लेकिन वो काफी होता है इस बात के लिए कि लोग बोलें कि भाई हमको तो सिनेमा ये वाली देखनी है, नाना पाटेकर है।
1: बिल्कुल, देखिए वो सभी जो युवा वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी वर्ग के जो आयु वर्ग के लोग हैं उन्हीं के पसंदीदा अभिनेता थे। जब वो थिएटर में आए तब भी यही आती, जैसे आप थिएटर की बात कर रही थी अभी, तो हम जैसे मैंने आपको बताया पुरुष नाटक में वो आए तो उसको सबसे ज्यादा चर्चा मिली, और उसके अंदर उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो एक रेपिस्ट है इस तरह की, और जैसे आपको बताया क्योंकि माँ बहुत नाराज हुई कि ऐसे रोल मत करो, तो उसके बाद उनसे उम्मीद करते थे वो कॉमेडी तो शायद कर ही नहीं सकते, लेकिन तभी उन्होंने हमीदा बाई की कोठी नाम का नाटक किया था, वो उसके अंदर उन्होंने कॉमेडी की, तो उनका वो कॉमेडी अंदाज भी देखने को मिला, और बाद में जिस तरह हम देखते हैं कि फिल्मों में उनका वो अवतार भी वेलकम फिल्म हो या और हो, तो उनके कॉमेडी के रंग भी दिखे, और वो विलेन भी बने, आम अच्छे आदमी भी बने, देशभक्त के भी बने, तो अलग अलग तरह के रोल थे। उनसे जब भी बात होती थी, मुलाकात होती थी, मैं उनको कहता था आप इतने अच्छे किस तरह भूमिका कर लेते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। कहते हैं मैं जब फिल्म की कहानी सुनता हूँ तो उसको कई दिन तक लगातार उसी में उसको आत्मसात करता रहता हूँ, उसी में खोया रहता हूँ, और एक एक चीज समझ लेता हूँ क्या मेरा करेक्टर है, मेरे सामने कौन है, ये है।
0: हाँ,
1: इससे क्या होता है कि मैं बिल्कुल जब
0: यही एक एक्टर को अलग भी बनाता है, यही एक एक्टर को अलग भी बनाता है, क्योंकि आप परतों में जाते हैं किसी भी किरदार, किसी भूमिका की परतों में जब तक आप नहीं जाएंगे, उसके सभी लेयर्स को नहीं समझेंगे, तो आपके लिए एक्टिंग करना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है थिएटर एक ऐसी चीज है जो कई एक्टर्स को इसलिए भी बहुत गहराई देती है, क्योंकि देखिए फिल्मों में तो कई तरह के इफेक्ट्स लग जाते हैं, और आज डिजिटल तरीके से इतना कुछ एडवांस हो चुका है, लेकिन जो थिएटर करता है वो रॉ उतरता है जनता के सामने, वो लोगों के बीच में उतर के अपने अभिनय के दम पर तालियां बटोरता है, तो वो जो आपकी बेसिक्स है और जो आपका तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब 200, 500, 400 लोगों के सामने एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, आप उनके सामने हैं, और सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर क्या जनता आपके सामने के लिए तालियां बजाएगी, वो कौन सा अंदाज होगा जो लोगों को आपसे जोड़ेगा, कनेक्ट कराएगा, इस पर अपने आप में पूरी रिसर्च आप कह सकते हैं ऐसे एक्टर्स की हो जाती है जो थिएटर पे करते हैं। और जब कोई संगीन और थिंकिंग एक्टर हो नाना पाटेकर के कद का, तो वो उसमें और भी गहराई ले आता है, और मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी खूबी प्रदीप जी मानी जाएगी कि उन्होंने थिएटर से लेकर पर्दे तक अपने अभिनय में जो एक एक धार और लकीर खींची है वो अमिट रहेगी।
1: बिल्कुल, उन्होंने जो काम किया है बिल्कुल अमर रहेगा, और उनका जिस तरह का भी जो व्यवहार है वो भी अमर रहेगा, हमेशा याद किए जाते रहेंगे उनकी एक एक फिल्में, जितनी फिल्में सोचते जाएं देखते जाएं कॉमेडी रंग की, जैसे मैंने आपको बेलगू की बात की, और शुरुआती फिल्में तो बिल्कुल ऐसी जो दिलों में आज भी घर की हुई है, मैं उनकी प्रतिघात फिल्म को नहीं भूल सकता, एक इस तरह का व्यक्ति जिसका मानसिक इस तरह का दिखाया गया है, लेकिन जब वो देखता है कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो जब झंडा ऊंचा रहे हमारा और तिरंगा की बात करता है, तो ऐसा बात करते करते जो उनके मुंह से लाल टपकती है और जो उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, वो लगता है कि देखिए ये रोल है, मतलब ऐसे दिलों में घर कर गए इस तरह की जो उनकी भूमिका है। ऐसे आज की आवाज की बात बताई मैंने आपको, तो ये शुरुआती फिल्मों में ही उन्होंने अपना, जो परिंदा आई तो परिंदा में जो अरुणा की भूमिका थी उनकी, वो भी इतनी वो हुई एक खलनायक के रूप में, और उसके बाद तो उनको लगातार ऐसी 20-25 भूमिकाओं के ऑफर होने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ही चाहता हूँ कि अलग अलग भूमिकाएं करूं। तो कई बार ऐसा होता था खाली बैठे रहते थे, इनको काम नहीं मिलता था, परिंदा जैसी फिल्म करने के बाद, आज के बाद, प्रतिघात करने के बाद, कई बार वो खाली बैठे थे काफी समय तक, लेकिन उन्होंने रिपीट नहीं किया अपने आप को। ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं कलाकार क्या होता है कि पैसे के लिए या फेम के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए फिल्में करते रहते हैं, या
0: फिल्म में होता है कि भाई ये वाला रोल अच्छा, बिल्कुल हाँ ये होता ना कि एक रोल में आपको पसंद आ गए तो यही वाली भूमिका एक बार फिर से कर दीजिए, इस फिल्म में भी यही कर दीजिए, ये इस तरह की फरमाइशें आने लगती हैं, तो वो होता है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ अन्य मेहमानों से जुड़े हैं, एक बार फिर से आपको उनके कुछ डायलॉग सुनाते हैं, क्योंकि देखिए अब नए सिरे से लगभग 9:30 बजे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहते हैं किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो अभिनय करते हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो कोई भी फन उनके पास हो, तो वो अपने काम से हमेशा जिंदा रहते हैं, उनका काम, उनका जो उनके गाने हो या उनका अभिनय हो, वो उनको जिंदा रखता है। और नाना पाटेकर का तो जब आप काम देखेंगे, उनकी फिल्में देखेंगे, उनके डायलॉग डिलीवरी देखेंगे, तो आप समझेंगे कि आखिर इस व्यक्ति को लेकर इस तरह का क्रेज क्यों रहा। देखिए
2: बाबा खेलो ना मेरे साथ, बाबा खेलो ना।

0: बड़े हो गए तेरे जीजा के तेरे आंखों के सामने भूल गए कोई मुंडी उठा के ला रहा है कोई हाथ उठा के ला रहा है आएगा वापस वो
1: इल्दास मध्ये केलेल्या पाहिजे जातीचे मध्ये मी पहिल्यांदा बघितलं तेव्हापासून अगदी रवींद्र नाट्य मंदिरच्या पायऱ्यांवर बसून गप्पा मारताना नंतर
0: चार पाई पे हकता है चार पाई पे मुत्ता है बुढा अब बाप का काम बेटा ना करल तो कौन करेगा
2: दादू प्लीज किसी को कुछ नहीं मिलेगा खून खराबे से किसी को कुछ नहीं मिलेगा दादू
0: देख देख क्या नखरे दिखा रहा है भरी जवानी में है ना माधुरी दीक्षित की तरह नाच रही है
3: दादू पाए लगू
0: हाँ का है रे
4: दादू लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि यहाँ एक मर्डर नहीं मैं जानता हूँ यहाँ पे खून नहीं हो सकता अब पुलिस पे जो हूँ ड्यूटी तो करनी पड़ेगी हाँ
5: इस वक्त शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोएब जी आप किस तरह से याद करेंगे हर कोई स्तब्ध है ये सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई है
6: जी जी सुबह उठे तो ये बहुत दिन की बहुत खराब शुरुआत है मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि परिवार का कोई हिस्सा चला गया और जिससे मैंने उनसे दो चार बार मेरी जिंदगी में मुलाकात हुई उनके इतने पहलू थे जिंदगी के कि उनको समझना आसान नहीं है ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इंडियन सिनेमा इज एवर प्रोड्यूस्ड थिएटर से लेकर उनके दिनों की जो शुरुआत हुई और जिन यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया ऐसा भुलाया नहीं जा सकता देयर कैन बी नोबडी बेटर देन नाना पाटेकर फॉर मेनी इयर्स टू कम और जितनी सादगी भरी जिंदगी वो जीते थे अन्ना जी आप देखें कि इतनी थिएटर से निकले कोई इतने ही वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टार्स लेकिन कभी कोई स्टारडम वाला जो एक एटीट्यूड या जिसको हम बहुत आजकल जमाने में एरोगेंस की तरफ भी देखते हैं वैसा कुछ कैरी नहीं करते थे इतनी सिंपल उनकी क्लोदिंग इतना सिंपल उनका रहन सहन और इतना ह्यूमन उनका जो एंगल था वो बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहा बहुत ज्यादा बहुत अफसोस भरी सुबह की शुरुआत हुई है आज जिस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए बहुत आसान नहीं है किसी भी दूसरे एक्टर को ऐसा करना इनको कोई रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता अंकुश पतिघात परिंदा क्रांतिवीर कितनी फिल्में और हर एक डायलॉग ऐसा कि आदमी बच्चे बच्चे की जबान पर रहता है ये यकीन नहीं आ रहा अभी जस्ट वी आर टेकिंग टाइम टू गैदर द इंफॉर्मेशन और हुआ क्या कैसे हुआ वो कुछ समझ में आ नहीं रही बात दो ही लेड अ वेरी गुड लाइफ और जिस तरह से उन्होंने गरीबों की मदद की एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मैं कई बार उनसे बात हुई काम तो हमने कभी साथ में नहीं किया लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नेशनल लेवल के शूटर्स हैं और नाना साहब को भी बहुत शौक था शूटिंग का तो बहुत रेंज पे ये लोग जाया करते थे साथ में बहुत इंटरेस्टिंग इनके जो किस्से वो आपस में सुनाते थे और बातें भी हुई और ही वॉज एक्सीलेंट कुक ऑल्सो लेकिन कितनी कितनी कितनी सारी बातें हैं जो न जाने किस तरह से उसको पेश किया जाए there can be nobody better than Nana Patekar in times to come.
5: बिल्कुल और सबसे बड़ी बात शोएब जी मुझे लगता है ये भी थी कि फिल्मों में मतलब अगर कानून पुलिस कई मायनों में एक भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर लोगों में गुस्सा होता है तो अगर एक्टर उसको अच्छे से स्क्रीन पर रिमोट करता है तो लोग जुड़ते हैं उनको लगता है कि भाई ये हमारा नायक है लेकिन फिर वही किसानों के मुद्दे पर जब वो जनता के बीच खुलकर बोलते भी हैं ये सोचे बिना कि कौन अच्छा मानेगा मुझे कौन सी पार्टी इसको सही मानेगी कौन सी पार्टी नाराज हो गए ये सब की चिंता नहीं होती थी किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा है किसानों का मुद्दा है तो खुलकर बोलते थे तो स्क्रीन पर नायक से लेकर द रियल लाइफ नायक वो बताता है कि वो उनका उनकी जड़ें कहां पर थी उनकी सोच कैसी थी
6: अब बहुत बहुत बार हमने देखा कि जो बहुत एक्टर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि वो हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं या और जिसमें हम लोगों का बहुत एक आसान बन गया कि हम एक साइड ले रहे हैं इधर वी आर प्रो गवर्नमेंट और वी आर एंटी गवर्नमेंट बीच का कोई रास्ता नहीं है सरकारें अच्छा भी काम करती हैं कुछ गलत काम भी उनसे हो जाते होंगे और वो ही एटीट्यूड नाना साहब का था मैंने कई बार देखा कि वो सरकार के फेवर में बोलते थे तो सरकार के खिलाफ भी अगर उन्हें कोई बात लगती थी वो बोलते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था उन्हें किसी बात का कोई ये मसला नहीं था कि साहब अब जैसा कहा कि कोई नाराज हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात थी। हम लोग साइड पे रहते और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हर इंसान उसमें है कि साहब आपको या तो चीजें अच्छी लग रही है या खराब लग रही है, बीच का रास्ता हम लोग नहीं देख रहे। और नाना साहब के अंदर ये था कि वो कितनी बार उन्होंने कहा कि वो सरकार के खिलाफ किसानों के फेवर में आवाज उठाई, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें जो सरकार की उन्हें अच्छी लगी उसके हक में भी उन्होंने काफी आके बात की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी चीज मैंने देखी, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, ये कितने लोगों के दिलों में ये बात होगी, ये जनसेवा की जो भावना हम कह सकते हैं कि वो कोई करोड़ों रुपए की कार खरीदने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किया। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत उससे इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है। और जब उन्हें पता चला कि कितने लोगों ने यहाँ किसानों ने सुसाइड किया है, तो उन्होंने वो पैसा अपना जो इकट्ठा किया था एक लग्जरी कार खरीदने के लिए उन किसानों में बांट दिया, और अपनी जिंदगी उसी सादगी के साथ जीते रहे। वही सादे कॉटन के कपड़े पहनकर उन्होंने, कोई उनके अंदर बनावट नाम की चीज
5: बिल्कुल
6: नहीं थी। इतना
5: बिल्कुल
6: सिंपल
5: सही सर,
6: आदमी आज के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में देखना तो बहुत मुश्किल है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और मिथुन चक्रवर्ती जी, जाने माने अभिनेता, इस वक्त हमारे साथ मिल रहे हैं। मिथुन जी अपने आप में एक ऐसे कल्ट रहे हैं हिंदी सिनेमा के, जो कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। मिथुन दा, बड़ी ही बुरी खबर के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है। नाना पाटेकर, मतलब एक ऐसा एक्टर जिसने अभिनय में कैरेक्टर रोल्स को नई अपनी परिभाषा गढ़ी, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, आप कैसे याद करेंगे उन्हें?
3: देखिए, नाना पाटेकर जी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से थे, ये वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। उसके जाने से बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इतना बड़ा झटका लगा क्या बताऊं। और कुछ दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट में थे, अभी मैं कैसे बयान करूं, बिकॉज ही वॉज अ डिफरेंट मैन, वॉज एन एक्सीलेंट एक्टर, बहुत अच्छे इंसान वो इंसान थे। देखिए तो किसकी मदद ने की, वहां जितने किसान थे सबकी मदद करते थे। मैं उनके पुणे के हाउस में देखा, घर में गया था पुणे में। लाइक बट लोग बोलते इनको गुस्सा आता है, सभी आता है, गुस्सा तभी आता है जब मैनेजमेंट सही ना हो, नहीं तो गुस्सा होने की कोई वजह ही नहीं। कैसे भी मैं चीजों में नहीं पढ़ूंगा, खाली इतना ही बोलता हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ। हेलो,
5: बहुत सादगी से जीते थे वो मिथुन दा, मतलब बहुत सादगी से जीते थे, और उसी अंदाज में वो सबसे बात भी करते थे, कुछ अच्छा लगा तो हंसी मजाक भी, कुछ बुरा लगा तो वो भी सामने बोल देते थे। और एक्टिंग में भी आप देखिए तो उनका एक अलग तरीका था, मतलब एक जो सेट रोल्स होते हैं उससे एक एक एनर्जी लाते थे वो, और न्याय की बात करते थे स्क्रीन पर, तो आम आदमी बड़ा जुड़ा उनसे।
3: मैं बोलूं कि वो देखिए ना, उसके वेशभूषा से पता कर लीजिए, बिल्कुल आम आदमी रहता था, आम आदमी की तरह बिहेव करता था। और दूसरी बात यह है कि अब उनके बारे में इतने कंट्रोवर्सी करेंगे तो रहेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी की कोई वजह नहीं। ही इज अ वन ऑफ द एक्सीलेंट पर्सन आई हैव मेट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। थैंक यू वेरी मच।
5: कुछ ऐसा क्षण जो आप आज याद करना चाहें, जो आपने उनके साथ बिताया हो, कोई बात जो उन्होंने कही हो आपके दिल में बसी हो? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती हमारे साथ एक्टर जुड़े हुए थे, वो भी अपने आप में एक कल्ट हैं हिंदी सिनेमा में, लेकिन दूसरी तरफ जब आप सुन रहे हैं कि वो भी बता रहे हैं कि वो नाना पाटेकर के घर तक गए थे, बड़ी सादगी से नाना साहब जीते थे और बहुत सादगी से ही वो लोगों के बीच में रहते भी थे। कुछ और उनके डायलॉग्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि शायद कई पीढ़ियां सोशल मीडिया पर तो उनके डायलॉग्स को देख लेती हैं इधर उधर कुछ हिस्से, लेकिन जब आप उनके अंदाज को देखेंगे, उन्होंने अभिनय को एक ऐसी गहराई दी, एक अपनी पहचान बनाई, मतलब नाना पाटेकर ने क्या डिफाइन किया एक्टिंग में, आप इन डायलॉग्स को सुनिए तो समझिएगा।
7: चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।
8: ठंडा कर,
7: यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है।
9: यहां ऐसे घुटन सी होती है,
8: मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना समरने से क्या फायदा।
9: तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी।
10: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा, 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
11: रियल्टी पार्टनर टीडीआई इंफ्राटेक, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
12: हेल्थ पार्टनर वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
13: बैंकिंग पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
14: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
9: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
10: गड़बड़ है।
11: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: यार लोन भूल गया। मैरी
15: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
16: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
15: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
16: स्मॉल
17: working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
18: There's nothing small about
19: it. Ujjivan, nothing small about us.
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
10: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
12: इट्स अ माय वे।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: दो सौ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करके आदिवासी छात्र नासिक से मुंबई आए थे। छात्रों को लगा था कि नासिक में उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन राजधानी मुंबई में सरकार उनकी मांग सुनेगी, उनसे संवाद करेगी, उनकी मांगें मंजूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने आदिवासी छात्रों को जबरन बसों में ठूस कर वापस नासिक भेज दिया। इस दौरान जिन छात्रों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने अपनी शैली में उन्हें समझाकर बस में जबरन भर दिया। ऐसे में छात्रों ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है।
4: ये पुलिस गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी, गुंडा कर दिया। हम स्टूडेंट है, हमें गुंडा कर देने करते, हमें अकेला है।
3: नासिक से मुंबई पहुंचने के बाद से आदिवासी छात्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में शरण लिए हुए थे। आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र मुंबई पहुंचे थे। इन आदिवासी छात्रों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद वो तिलक भवन में रुके हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती वो अपना आंदोलन अलग अलग जिलों में जारी रखेंगे।
5: विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे। विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून या ठिकाणी अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न आहे।
3: अब आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने 25 अक्टूबर को दोबारा मुंबई आकर अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।

0: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: रियल्टी पार्टनर TDI इंफ्राटेक नॉर्थ इंडियाज लीडिंग टाउनशिप डेवलपर।
2: हेल्थ पार्टनर
3: वृंदा लाइफ, वी आर नोन फॉर क्वालिटी मेडिसिन।
2: बैंकिंग पार्टनर
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: स्पेशल पार्टनर ग्रेट खलीज चॉइस फॉर पावरफुल फिटनेस लिफ्ट्स बाय पोलो एलिवेटर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मित मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मित की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नहीं रहा सिनेमाई पर्दे पर बगावत का सबसे बड़ा चेहरा। बहुआयामी प्रतिभा वाले फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक। सदमे में बॉलीवुड। चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा। लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव। दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। नितिन नवीन का पलटवार। अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कांस्टेबल से मारपीट का आरोप। आरएमएल अस्पताल में भर्ती है दिल्ली पुलिस का सिपाही। 30-35 लोगों पर घेर कर अंकित पर हमले का इल्जाम।

पंजाब और हरियाणा के सियासी हलचल पर सबसे बड़ा मंथन आज तक के मंच पर सीएम भगवंत मान और नायब सिंह सैनी समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पहिला तुझा डोळ्यांचा थ्रू कधी शंभर एक कधी शंभर टू, त्या दिवशी झाला फीवर सुरू कधी शंभर एक कधी शंभर टू।
2: कहां बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशली इस्टवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। नाना पाटेकर नहीं रहे हैं, महान अभिनेता अब हमारे बीच नहीं है, इस पर हम आगे आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन आज तक पर पंचायत हरियाणा पंजाब का महामंच सजा है, जिस पर हरियाणा और पंजाब के सियासी दिग्गज के साथ साथ एशियाई खेलों के मेडल वीर भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में शुरू होगा पहला सेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से जानेंगे कि सरकार के दो साल पर क्या क्या कमाल हुए हैं। चुनाव में 217 संकल्प लिए गए थे, हम जानेंगे कि आखिर पूरे कितने हुए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक दुखद खबर। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज सुनाई देती थी तो पर्दे पर सिर्फ एक किरदार नहीं, पूरा किरदार जीवंत हो जाता था। आज वो आवाज खामोश हो गई है। 75 साल की उम्र में गोवा में दिल का दौरा पड़ने के बाद नाना पाटेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। करीब 5 दशक के अपने फिल्मी सफर में नाना ने अभिनय को सिर्फ एक पेशा नहीं बनाया, उसे अपना अंदाज बना दिया। फिल्म गमन से शुरू हुआ ये सफर, परिंदा के अन्ना से लेकर क्रांतिवीर के तेवर, प्रहार की वर्दी, तिरंगा का जुझारूपन, खामोशी की संवेदनशीलता और अब तक 56 के सख्त पुलिस अफसर तक पहुंचा। और फिर आया वेलकम का उदय शेट्टी, जिसने नाना के अभिनय का एक ऐसा रंग दिखाया जिसे शायद ही कोई भूल पाए। नाना की खासियत यही थी कि वो किरदार में उतरते नहीं थे, किरदार को अपने भीतर ही उतार लेते थे। उनके संवाद की अदायगी में गुस्सा भी था, दर्द भी था, व्यंग भी था और जिंदगी की कड़वी सच्चाई भी कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। नट सम्राट ने उनके अभिनय के उस रूप को सामने रखा जहां एक कलाकार खुद को पूरी तरह किरदार के हवाले कर देता है, समर्पण कर देता है। 5 दशक, सैकड़ों किरदार और हर किरदार के साथ नाना की एक नई पहचान। पर्दे पर ये नाना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार, उनकी आवाज, उनका अंदाज सिनेमा के पर्दे पर हमेशा जिंदा रहेगा। नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि आज तक की तरफ से। और गोवा के मुख्यमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सीधा वहीं चलते हैं।
1: मिली और उनके दुख में शामिल हो। आज की जो GST की बैठक है उसमें वेरियस इश्यूज डिस्कस होंगे। पहले तो एक बार रहने एजेंडा।
0: तो आप सुन रहे थे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को, जो कि दुख अपना जता रहे थे। लेकिन आइए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। नाना पाटेकर के निधन पर अब डॉक्टर का बयान आया है। ये गोवा का डॉक्टर है जिस अस्पताल में उन्हें लेकर गए थे। सुबह 4:30 बजे एम्बुलेंस उनके घर पर गई थी क्योंकि उन्हें इतला किया गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। CPR देते हुए उन्हें अस्पताल लाया गया था, यानी उन्हें हर प्रकार का फर्स्ट एड उस वक्त दिया जा रहा था। नाना पाटेकर के निधन पर डॉक्टर ने यह बताया है कि जब उनको खबर मिली तो वहां पर एम्बुलेंस भेजी गई थी। आइए सुनिए क्या कहा।
2: नाना पाटेकर हमारी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उनका केयर टेकर आया था हॉस्पिटल में अराउंड 4:18 और सो आवर एम्बुलेंस रीच टू 4:20 एट अराउंड हिज हाउस एंड इज अ फ्लैट नियर बाय आवर हॉस्पिटल में थे इधर ही नजदीक में। और उधर उनका देखा तो ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव, सो दिस वो लोगों ने CPR, हमारे टीम ने CPR चालू किया और CPR करते करते उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बाय अराउंड 4:20-4:30 एंड बाय द टाइम यू नो दे ऑल्सो लीड अस मैक्सिमम सब लोगों ने CPR किया और 5:20 को डिक्लेयर किया कि वो डेड हो गए। उनकी फैमिली कोई नहीं थी लेकिन उसके केयर टेकर थे और उनके फ्रेंड्स थे। अभी मेडिको लीगल केस किया है बिकॉज इट इज़ ब्रॉट डेड एंड बॉडी इज शिफ्टेड टू गोवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए हैं। उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, बाद में इट विल रिलीज टू द रिलेटिव्स। हमको जो पता चला उसमें हमको ऐसा हो गया कि 2:30 नाना जी ने उनके फ्रेंड को SMS किया कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट नाइट होने के कारण उसने पढ़ा नहीं और 4 बजे उसको उसके घर पहुँचा वो पढ़ने के बाद। तभी बाय दैट टाइम ही वॉज रियली स्वेटिंग, ही वॉज रिमूव हिज स्कूल, ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड देन व्हेन आवर उनके केयर टेकर इधर आ गए, वो लोगों ने एम्बुलेंस लेके गए बिकॉज ही स्टेज हमारे नज़दीक ही रहते हैं फ्लैट में। और CPR करते करते वो हॉस्पिटल में लेके आए लेकिन ऑलमोस्ट 45 एक घंटे में CPR करने के बावजूद उनको हम बचा नहीं सके। सो ही वॉज ब्रॉट डेड।
0: नाना पाटेकर आज तक के न्यूज रूम में भी आए थे जहां उन्होंने हमारे पत्रकारों के साथ इंटरेक्ट भी किया। गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी उस वक्त उनके साथ बातचीत कर रहे थे। हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं।
3: Gaurav, yaar, you're too good, man. I love you.
4: Thank you very much.
0: तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने मुलाकात की पत्रकारों से। एक जिंदा दिल इंसान थे वो, जो उनके दिल में था वही जुबान पर था। हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आपको इस वीडियो में हम देखते हैं, वो गले लगा लेते हैं। बातचीत क्या हो रही थी, किस तरह की शख्सियत थी जब वो यहाँ आए, तो आपको आपकी उनसे किस तरह की बातचीत हुई थी?
5: नाना पाटेकर से मेरी पहली मुलाकात 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान। इससे पहले प्रहार फिल्म के लिए, जिसमें उन्होंने एक आर्मी कमांडो की भूमिका निभाई थी, उसके लिए उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक ट्रेनिंग की। और बहुत सारे लोग संभवतः ये जानते नहीं है कि उनके दिल में एक सैनिक बसता था। वो एक सोल्जर थे, एक सिपाही थे, और इसीलिए मतलब जो आप कह रही थी ना कि वो उस किरदार में पूरी तरह से ढल जाते थे, उतर जाते थे। कमांडो ट्रेनिंग उन्होंने केवल औपचारिक तौर पर नहीं की, वो पूरा जीवन उन्होंने जिया। और जब कारगिल की लड़ाई हुई तो उन्होंने उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किया और कहा, मैं आना चाहता हूं, मैं देश सेवा करना चाहता हूं। तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको कहा, लेकिन नाना तुम तो सिविलियन हो। ही सेज, नहीं, मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है, तो मैं अभी आना चाहता हूं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला, ठीक है, आ जाओ। वर्दी पहनकर वो पहले पूरी बारामूला के इलाके में पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी सेवा दी। फिर कारगिल द्रास के इलाके में पहुंचे, लद्दाख पहुंचे, न केवल सैनिकों का मनोबल ऊंचा किया, बल्कि एक बात जो बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, नाना पाटेकर एक बहुत अच्छे शूटर भी थे। उनको उसके लिए कई पदक मिल चुके हैं शूटिंग के लिए। और उन्होंने फिर कारगिल की लड़ाई में जैसे एक दुश्मनों से लोहा लेना और एक दुश्मन पीछे से घात लगाकर आप करना हमला कर दे, आतंकवादी हम लेना हो जाए, उसके लिए QRTs बनाई जाती है, क्विक रिएक्शन टीम। नाना पाटेकर एक QRT के को लीड कर रहे थे एज ए TA, एज ए टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, और उन्होंने वो भूमिका लगातार निभाई। कारगिल की लड़ाई लगभग 2.5 महीने चली, वो 2.5 महीने वहीं रहे। और फिर हम लोग ऑफकोर्स उनके संपर्क में लगातार रहते भी थे। फिर जब वो वैक्सीन मैत्री पर या वैक्सीन बनाने पर उनकी फिल्म बनी विवेक अग्निहोत्री जी के साथ और पल्लवी जोशी जी के साथ, तो उसमें पल्लवी जोशी इतनी मतलब सीनियर कलाकार हैं और इतनी वो फिर भी हम्बल है, इसी पर एक चर्चा हो रही थी जिसमें ये थोड़ा सा हास्यास्पद। तो नाना पाटेकर वहां पर एक डॉक्टर की भूमिका में थे, हल गए थे उस भूमिका को निभाने में।
0: बिल्कुल, और जाहिर तौर पर आपकी यादें जो उनसे जुड़ी हुई हैं उनको आप ताजा कर रहे हैं आप जब वो जा चुके हैं। हमारे साथ रवि किशन इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। रवि जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप कैसे याद करते हैं नाना को?
6: एक बहुत बड़े नट सम्राट को आज हम लोगों ने खो दिया। मैं बहुत करीब था, मैं मित्र कहूं, कलाकार कहूं उनको, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन रहा। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। बहुत कम लोगों को पता है कि वो सिनेमा में, पहले सिनेमा के पोस्टर्स बनाते थे, 35 रुपया महीना मिलता था। सड़क पे जो जेवरा, जो रोड क्रॉसिंग का था, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जेजे आर्ट ऑफ स्कूल में मुंबई में पढ़ते थे, फिर वहां से वो कैसे आगे बढ़े, कैसे देखिए, बहुत कलाकार बहुत हैं, हमने बहुतों के साथ काम किया, लेकिन ऐसे कलाकार जो दूसरे कलाकारों के लिए जीते हैं, ऐसे कलाकार जो रवि तू कैसा है, रवि कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, सूखाग्रस्त इलाका हो गया तो नाम का एक फाउंडेशन उन्होंने खोल दिया, अपनी कला की फीस से भी वो मदद करते थे, गरीब बेटियों की शादी करवाते थे। सो अनगिनत बातें उनकी रे। पिछले महीने मेरी बात हुई थी, ही वाज शूटिंग समवेयर इन भोपाल, और मैं बोला, कैसा है तू? मैं बोला, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो बोला, ठीक है यार, मैं शूटिंग कर रहा हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है, और मैं तेरे गोरखपुर भी आना चाहता हूँ, सुना है तेरे बारे में काफी, तो मैं आना चाहता हूँ गोरखपुर और मिलना चाहता हूँ तेरे से। तू ये अपनापन गोवा में जहां पर ये हुआ वहां पर मैं उस घर में था, गया था मैं पिछले साल किसी इवेंट में, तो घर बुलाया था उन्होंने मुझे, ने हाथ से भोजन करवाया था बना के, खुद वेजिटेरियन हूं मैं, उन्होंने वेज खाना बहुत अच्छा बनाया था, ध्यान देते थे, ख्याल करते थे। लापता लेडीज देखी थी, उन्होंने फोन किया था, रवि अच्छा काम करने लगा तू आजकल, तो ये सारी बातें। ये हेल्थ फ्रीक भी थे, कसरत रोज करते थे, अपने पूना के पास एक फार्म है उन्होंने लिया था, अपने ही अनाज अपना खेती का ही लेते थे। बहुत बड़ा ये आज का दिन, बहुत बड़ा एक शॉकिंग है पूरे देश के सिनेमा के लिए, मराठी जगत के लिए। मुंबई के चकाचौंध में रह के सादगी, संस्कृति, मराठापन, अपना महाराष्ट्र, अपना भारतीयपन, पॉलिटिकली बहुत अवेयर थे समाज के प्रति, काम अच्छा कर, तू सांसद है, तू खासदार, मराठी मध्य खासदार, तू खासदार आता तू बर काम कर मनुन। ही टू ऑलवेज टेल मी वी टू स्पीक हाफ इन मराठी, एंड मैं उनके नाटक, एक नट सम्राट नाटक भी देखने जाता था। ऐसे कलाकार परिंदा की परफॉर्मेंस, परिंदा मतलब उनसे कॉमेडी करवा लो वेलकम में, या परिंदा में एक साइको या एक लवर की भूमिका माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने की, या एक पॉजिटिव लवर के रूप में मनीषा कोराला के साथ एक फिल्म की उन्होंने, वो जितने रूप उन्होंने धारण किया अंकुश में या प्रहार में, या उन्होंने फौजी की खुद ट्रेनिंग ली, गन वगैरह खुद चलाते थे, और कारगिल वॉर में जैसा कि आपके उन्होंने कहा बताया, इट वाज ऑल ट्रू, ही वाज देयर इन दैट वॉर, उन्होंने कभी इसकी बड़बाई नहीं की, कभी बोला नहीं, कभी जताया नहीं कि मैं क्या मदद कर रहा हूँ लोगों की, मैं फीस मेरी कमा के मैं कहाँ देता हूँ, या मैं किस कैसे सूखाग्रस्त इलाके की मदद करता हूँ। ऐसे कलाकार, ऐसे नाना पाटेकर को मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत कलाकारों के साथ काम किया, कर रहा हूं, लेकिन नाना पाटेकर, नाना पाटेकर बनना, नाना पाटेकर की तरह मुंह फट रहना कि सीधे मुंह पर बोल देना, काले को काला बोलना है, गोरे को गोरा बोलना है, जो दिल को अच्छा नहीं लगे, जो स्क्रिप्ट नहीं पसंद आ गई नहीं कर देना है। बहुत चुनिंदा फिल्में की उन्होंने, बहुत कम फिल्में की, लेकिन जितनी फिल्में की वो इम्पैक्टफुल रही।
0: जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि जी। और आइए अब सीधा रुख करते हैं पंचायत आज तक हरियाणा का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री आ गए हैं।

नमस्कार, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के 2 साल और पंजाबों में चुनावों का हाल, आज इसी पर पंचायत की शुरुआत हो रही है जिसमें हम हरियाणा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा की जनता 2 साल के नायब सिंह सैनी की 2.0 सरकार पर क्या कह रही है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मंच पर पहुंच रहे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा।

0: मुख्यमंत्री सैनी साहब, आपका बहुत स्वागत है पंचायत आज तक के मंच पर। 17 अक्टूबर 2024 को आपकी सरकार बनी थी और नायब सैनी 2.0 में 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे करने पर हरियाणा सरकार के ऐसे कौन से काम है जो आप गिना सकते हैं जनता को, या बता सकते हैं कि भाई मैंने ये कहा था और मैंने ये काम किया है?
1: थैंक यू अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आज तक को बधाई देना चाहूँगा कि जो कन्क्लेव आपने आयोजित किया है, मैं हरियाणा की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आज तक की पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 साल पूरे कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में हर दल लोगों से कुछ वायदे करते हैं और सरकार आने के बाद उन वायदों को पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी ये नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब ये तीसरे टर्म में हमारी सरकार बनी तो हमने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प वायदे किए थे। हम संकल्प बोलते हैं, पंजाब में वादे बोलते हैं, हरियाणा में जो हमारे और दल हैं वो घोषणाएं करते हैं कि हम ये घोषणा करते हैं, पंजाब में वादा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं। हमने संकल्प लिया, 217 संकल्प हमने लिए। मुझे खुशी है 217 संकल्पों में से गति से हमारी सरकार ने उनको पूरा किया। 70 संकल्पों को हमने पूरा किया है, 143 संकल्प ऐसे हैं अंजना जी जो गति से काम चल रहा है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और मुझे खुशी है बताते हुए आपको, वो संकल्प हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। जो दल सत्ता में आने के बाद ये बात बोलते हैं कि मुझे तो 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के लिए बहुमत मिला है, अंत में पूरा करेंगे, जो अंत वाले विपक्ष के लोग जो दल पूरा करते थे अपने समय के अंदर, हमने उन वायदों को प्रायोरिटी पे उनको पूरा किया है। उन 70 संकल्पों से जो हमने बातें कही थी, लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गति से काम करने वाली है, खाली काम करने वाली नहीं, धरातल पर काम दिखाई देता है, और उससे एक बड़ा विश्वास लोगों के अंदर जग रहा है। मुझे खुशी है कि हमने 70 संकल्पों को पूरा किया है, 143 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे।
0: मुख्यमंत्री जी, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से आपके विधायकों की मुलाकात हुई, आपकी भी 1-to-1 PM से बात हुई है, थोड़ा हमें बताइए कि क्या बताया गया, क्या चर्चा हुई उस दिन?
1: अंजना जी, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके पास समय का अभाव होता है, क्योंकि उनका एक एक मिनट वो लगा होता है, सेकंडों में बात करते हैं, कई बार इतना टाइट होता है, उस समय में से हरियाणा के हमारे प्रतिनिधियों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जो समय दिया और उससे जो मार्गदर्शन हमें मिला है वो हमारे लिए अभूतपूर्व है, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें सभी जनप्रतिनिधियों को कही गई, हमारे हरियाणा के लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए वो काम करेंगे। बहुत सारी बातों के ऊपर उन्होंने हरियाणा के विकास के बारे में, हरियाणा के लोगों के बारे में और कामों के बारे में, और प्रतिनिधियों को कहा कि हम कैसे जनता के साथ जुड़े रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है, उनका जो समय हमें मिला वो अद्भुत था। उस जो मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और जो उन्होंने कहा है उसको हम जीवन में उतारते हुए हरियाणा के हित में काम गति से हमारे सभी जनप्रतिनिधि करेंगे, हमारे लिए गर्व की बात है।
0: 1-to-1 में क्या कहा आपको?
1: देखिए वन टू वन सभी से सामूहिक उन्होंने बात किया है और प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि हम लोगों की समस्याओं को नजदीक से देखें, समझें, उनका निवारण करें।
0: कुछ खिलाड़ियों पर भी कहा उन्होंने, खिलाड़ियों पर भी कहा, कुछ स्पोर्ट्स को लेकर भी कुछ कहा था।
1: अलग अलग विषयों के ऊपर कहा है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, तो उसके अंदर हमें लोगों की समस्याओं को और ऐसा वातावरण हमें खिलाड़ियों को भी, किसान को भी और महिलाओं को भी और हमारे व्यापारी हैं उनके लिए भी हमने काम उनके नजदीक से समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे, उसका निवारण करेंगे, तो उसका लाभ पार्टी मजबूत होगी और पार्टी जब मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी और सशक्त तरीके से सरकार काम कर पाएगी लोगों के समस्याओं को लेकर के। उन्होंने बहुत अच्छा जो एक कई बातें कही हैं उसका मार्गदर्शन किया, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे।
0: अब इस इंटरव्यू का वार्म अप राउंड तो खत्म हो गया है सैनी साहब, तो अब आते हैं असल सवालों पर। सिंगापुर के दौरे पे आप गए, 3 दिन वहां पर गए, असल सवाल यह है कि आप हरियाणा में कितना निवेश ला पाए हैं, क्या काम आप ला पाए हैं, रोजगार आपने कितना दिया है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में है। सबसे पहले निवेश आप कितना लाए, 3 दिन के दौरे पर आप थे सिंगापुर में, क्या निवेश आप लाए हैं, किन क्षेत्रों में लाए हैं और आपने रोजगार कितना दिया है, एग्जैक्ट नंबर बताएं।
1: अंजना जी, मैं बताना चाहूंगा, मेरा ये दूसरा विजिट है। मेरा पहला विजिट जापान का था, जापान के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, वो भी मेरा बहुत शॉर्ट वहां विजिट था, मात्र 2 दिन का था, यहां पर भी 2 ही दिन का था। नेक्स्ट डे तो मैं, तीसरे दिन तो वापसी आ गया मैं, बहुत शॉर्ट था। उस शॉर्ट के अंदर वहां पर भी जापान के अंदर मैंने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए और मुझे खुशी है 60% जो MOU हम वहां साइन किया था वो धरातल पर उतर गया। यहां पर उन्होंने जमीन भी ली है और काम भी शुरू कर दिया है 60%, और जो 40% उसके ऊपर लगे हुए हैं वो भी जल्दी आ जाएगा। मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर गया तो वहां पर 5,500 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं और मुझे खुशी है कि वो भी, क्योंकि आज जहां भी मैं जाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लोग लेते हैं, उनका जो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और एक विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दुनिया के लोगों का है, लोग चाहते हैं कि हम भारत के अंदर निवेश करें और उन्होंने हरियाणा को लेकर के बड़ा पॉजिटिव वो हैं कि हम हरियाणा के अंदर निवेश करेंगे। मेरे से बात की, 5,500 करोड़ रुपए के हमारे वहां MOU साइन हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग जल्दी ही यहां पर, चाहे मेडिकल के अंदर है, चाहे एजुकेशन के अंदर है, चाहे अन्य मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो लोगों ने निवेश करने का यहां मन बनाया है और मुझे खुशी है। आपने बात जो कही है कि रोजगार कितना, मैं बताना चाहूंगा अंजना जी, पिछले दिनों हमने हरियाणा के युवाओं से, क्योंकि जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी उस समय के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव आचार संहिता लगी, लोकसभा के तुरंत बाद मेरा जो टारगेट था उसको, टारगेट को हमने करने के लिए उसको प्रगति से काम शुरू किया और मात्र 56 दिन के अंदर ही आचार संहिता लग गई दोबारा विधानसभा की। लगभग मैंने उस समय तक 16-17 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, लगभग मेरे पास काफी 25-26 हजार का रिजल्ट तैयार था, आचार संहिता लग गई, रिजल्ट नहीं निकाल पाया। यूथ मेरे पास संजना जी इकट्ठा होकर के आया हरियाणा का और वो कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी हवा चल रही है गलत और आप ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने उनको कहा, मैं देखिए मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मेरे को एक लेटर जारी किया है, ईमेल जारी किया है कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे, आचार संहिता लग गई है। मैंने कहा मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, परंतु एक आपको लोगों को एक मैं विश्वास ये दिलाता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 8 तारीख के बाद

0: हर महीने मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 46,500 युवाओं को मैं अपनी टर्म के अंदर युवाओं को रोजगार दे चुका, और लगभग 5600 पुलिस की भर्ती चल रही है, और उसके साथ साथ लगभग 8,500 के करीब में अन्य डिपार्टमेंट के पेपर चल रहे हैं, वो भी जल्दी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और जो ही ये भर्ती होगी इसके बाद हम दूसरा भी कर लेंगे। हमारे सामने अग्निवीर भी आ रहे हैं, अग्निवीर की पहली लिस्ट आ रही। मैं कल ही बैठा था बल्कि मैं अधिकारियों के साथ, आते ही मैं जब सिंगापुर से आया सीधा अधिकारियों के साथ बैठा, और बैठ करके मैंने कहा कि लिस्ट आई है अग्निवीर की, कितनी आई और उसका कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमने लेना है। एक भी बच्चे को हम नहीं छोड़ेंगे जो अग्निवीर हमारे पास आएगा, हर बच्चे को हम हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम
1: अग्निवीर के बाद।
0: अग्निवीर को कल ही मैंने उसकी बैठक की है शाम को, और उसके अंदर हमने तय कर लिया कि कहां कहां इनको रजिस्टर करना है। हमारी सरकार जो बोलती है मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम हम करते हैं। नहीं तो अंजना जी मैं देखता हूं घोषणाएं हो जाती हैं, लोग एक दो साल तो देखते हैं कि घोषणा की थी पूरी नहीं हुई, फिर भूल जाते हैं, फिर वो नए उसके ऊपर डेंट पेंट करते हैं, फिर नई घोषणाएं लेके आते हैं लोग, फिर बातों में अब इनकी बातों में नहीं आते। अब ये मारे मारे घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहा है, कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है, कोई कोर्ट को बदनाम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश, संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पर ये इनके समय के अंदर अगर ये अच्छे काम करते तो लोग इनको नहीं जाने देते। इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, देश को भ्रष्टाचार की दलदल में इन्होंने फंसाया, और लोगों के साथ भद्दा मजाक इन्होंने किया है किसी भी क्षेत्र के अंदर। अंजना जी चाहे राहुल गांधी है या कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग, आप लोग मैं तो देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कौन सा मुद्दा लेकर के आते हैं। वोट चोरी हो गया का? अरे भाई वोट चोरी किसका हो गया? हर व्यक्ति को अधिकार है वोट पाने का, हर व्यक्ति के नाखून को सही लगती है वो बटन दबाता है, एक एक व्यक्ति दबाता है बटन।
1: मुख्यमंत्री जी हरियाणा को तो एग्जाम्पल बताया जा रहा है ना इस वक्त।
0: नहीं ये
1: नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी से ये सरकार बनी है, वरना सारे लोगों में बहुत गुस्सा था बीजेपी।
0: अंजना जी मैं बार बार कई बार मंचों के ऊपर से बोल रहा हूँ, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा आप कोई अच्छे पंडित को देखिए और राहुल गांधी के नाम से कोई हवन कराइए, वो कम बुद्धि तो ठीक हो ना। अरे मैं ये नहीं कहता हूँ, मुद्दा तो ठीक हो ना कि किस मुद्दे के ऊपर वो उठा करके जनता के बीच में। वोट चोरी का क्या मतलब है? वोट चोरी का क्या मतलब? पहले इन्होंने ईवीएम को गाली दिया कि ईवीएम गलत है, आज ये उसी दिशा में जाना चाह रहे हैं जो इनके पूर्वज थे, कहा जी वो बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए, कहां जाना चाह रहे हैं।
1: एसआईआर में नाम कट रहा है लोगों का, और ऐसे ही नाम उसमें रखे जा रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वोटर।
0: अंजना जी ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, पूरा देश चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे कोर्ट के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे लोकतंत्र के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारी संवैधानिक पीठों के ऊपर विश्वास कर रहा है। विश्वास अगर कोई नहीं कर रहा तो कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं कर रही, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो विश्वास नहीं कर रहे, परंतु उसके अंदर भी कांग्रेस के अंदर भी जो लोग समझदार हैं प्रबुद्ध जन हैं वो तो अंदर बैठ कर ये कहते हैं भी ये गलत कर रहा है राहुल गांधी।
1: किसने कहा आपको? दीपेंद्र हुड्डा तो वहां लगातार लगे हुए राहुल गांधी के साथ, पूरे सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस पार्टी।
0: दीपेंद्र तो परिवारवाद में फंसा हुआ है, दीपेंद्र को तो लग रहा है कि शायद मैं कहीं मुख्यमंत्री बन जाऊं, परंतु आप देख रहे हैं ना कांग्रेस में क्या हाल हो रहा है भी, नहीं भाई कोई नाम नहीं लेगा भी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सारे के सारे ज्वाइंट होकर के लड़ेंगे, ये बात हो रही है कांग्रेस के अंदर हो रही है। आपके सामने आए उनके बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे नाम रख दिया, कहा कैसे इसको प्रपोज कर रहे हैं अभी ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये परिवारवाद में फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है।
1: एक सवाल और है इस पर जिसके बाद हम अन्य सवालों पर जाएंगे। चुनाव भी पंजाब में हो रहे हैं, आप वहां प्रचार पर जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, सरकार क्या इस वजह से बैकफुट पर नहीं? आप देखिए दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली, सीजेपी वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे कहते हैं हरियाणा में आप सबको डिटेन करते जाते हैं, सीजेपी वाले प्रोटेस्ट ही नहीं कर पा रहे।

0: ये सच है क्या?
1: अंजना जी, आप इसके ऊपर, ये विषय वैसा समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है और मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा आज तक चैनल ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है जो समाज को एक दिशा दिलवाने का भी काम करता है कि समाज किस दिशा में जाए, समाज के अंदर किस प्रकार के भाव होने चाहिए, आपका चैनल उसमें बड़ी भूमिका अदा करता है। अंजना जी, समाज ने भी देखा है, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है, जो हमारे विपक्षी दल हैं किस प्रकार के, हम ये नहीं किसी का विरोध नहीं करते, विरोध करिए, गाली दीजिए, हम ये नहीं कहते, मर्यादा रखिए, मर्यादा रहना बड़ी जरूरी है। जिसके माँ बाप ने भी बच्चे को देखा है या सुना है, वो आंखें नहीं मिला सक रहा, किस प्रकार का यूथ ये खड़ा करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोग। सेम डे जिस दिन ये यहां चल रहा था, अंजना जी शायद आपने दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा, जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके प्रोटेस्ट के ही समय के अंदर मेरा यमुनानगर के अंदर नशा मुक्त हरियाणा को लेकर के एक बहुत बड़ा यूथ के साथ मैराथन थी। 1,00,000 यूथ था मैराथन के अंदर, 1,00,000 यूथ। उससे कंपैरिजन अगर आप करेंगे, समाज को दिखाएंगे, एक यूथ इसलिए दौड़ रहा है कि समाज की बुराई खत्म हो, हमारा युवाओं में से नशा खत्म हो, दूसरी तरफ यूथ क्या है,
0: पेपर लीक के खिलाफ उतरा था।
1: नहीं देखिए, पेपर लीक उनके समय के अंदर जो लोग वहां जाकर के कर रहे हैं, मैंने तो कहा है, मैंने ये भी कहा है कि उन्होंने लोकसभा के अंदर पेपर लीक को लेकर के कब कब कोई कानून सख्त बनाने के लिए चर्चा की है। राहुल गांधी बता दे, अपने पूरे परिवार का बता दे, अपने बापू का बता दे, अपने दादा का बता दे, अपनी दादी का बता दे, अपने पड़दाना का बता दे, किसी का बता दे भी उनके समय के अंदर किस व्यक्ति ने नकल रोकने के लिए लोकसभा के अंदर क्या विषय उठाया, क्या कौन सा बिल लेकर के आए ताकि इसके ऊपर सख्त कानून बने। इन्होंने तो देश के इस प्रकार की स्थिति पैदा की है अंजना जी, देश के अंदर भी हम ही राजे हैं। आज भी वो मानसिकता नहीं गई, आज भी ये सोचते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं, इनके दिमाग के अंदर आज भी यही बात है। परंतु ये लोकतंत्र है, आज तो एक एक वोट से चुना जाता है। आप हरियाणा के अंदर देखेंगे या देश के अंदर भी देखेंगे, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं बहुत कम मार्जिन से जीत हार होती है, बहुत कम मार्जिन से। तो वहां क्या होता है, वहां तो एकदम ट्रांसपेरेंसी है जी, और उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उंगली उठाना, मैं नहीं मानता कि ये विपक्ष की भूमिका ठीक निभा रहे हैं, इनके लिए तो अलग प्रशिक्षण की जरूरत है विपक्ष के लिए।
0: अगले सवाल पर आते हैं, मैंने आखिरी के 3 कहे थे, आखिरी के 2 सवाल मेरे बचे हैं। गुरुग्राम, ये जो जिसको कहते हैं अर्बन एपथी, मतलब आप सोचिए कि लोगों के लिए इतनी मुश्किल होती है सर, सड़कों पर ट्रैफिक का ऐसा जमावड़ा रहता है क्योंकि कहीं पर पानी का एक गड्ढा है, पानी जमा हुआ है, बहुत कंजेशन, पानी का जल भरा, और आप गुरुग्राम को बनाना चाहते हैं भाई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिटी, मिलेनियल सिटी, अब उसमें ये पानी कब ये खत्म होगा, ये अभिशाप है वहां के लोगों के लिए।
1: अंजना जी बिल्कुल आपने बात ठीक कही है, मैं देखता हूँ हमारे विपक्षी दल के लोग भी फोटो उतरवाने के लिए गुरुग्राम में एकदम भाग जाते हैं। क्योंकि क्रिटिसिज्म करना आसान है। मैंने पूछा, फिर एक दिन मैं बात कर रहा था विधानसभा के अंदर, हमारे विपक्षी नेता खड़े हुए, कहा जी आप बोल लो जो बोल लिया जा, मैं बैठा सुन रहा, पर एक बार बोल लो, बार बार ना बोल लो। मैंने कहा किसी से तो कंपेयर करेंगे जी हम, आपने क्या किया, आपकी सरकार से हम अपने कामों को कंपेयर करेंगे भी, हमने ये अच्छा किया है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं अंजना जी, अपने यूथ को कहना चाह रहा हूं आज आपके माध्यम से, कांग्रेस ने जो लोगों को प्रताड़ित किया, हमारी इस पीढ़ी को नहीं पता उसके बारे में, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से रोजगार के नाम के ऊपर युवाओं का शोषण किया, किस प्रकार से किसानों का शोषण किया, गरीब का शोषण किया, महिला का शोषण किया,
0: तभी तो आपको हमारी, सत्ता सौंपी जनता
1: हमारी, ने। हमारी पीढ़ी को इसको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, हम उसके अंदर सुधार कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा, हमारा युवा देख रहा है कि अच्छा हो रहा है और अच्छा हो।
0: गुरुग्राम का पानी कैसे निकलेगा?
1: मैं गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ अंजना जी। गुरुग्राम के अंदर हमारे जब ये ड्वेल्प होना शुरू हुआ, गुरुग्राम जब इसका हमारा डेवलपमेंट प्लान बना, उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी, ये कहीं ध्यान नहीं किया गया कि यहां से ये गुरुग्राम हमारा बढ़ेगा, इसके ड्रेन कहां निकलेगी पानी की, जो पानी के रास्ते थे वो भी बंद हो गए, बंद हो गए। समस्या हमारे सामने खड़ी, हमने एक एजेंसी लगा रखी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है जल्दी। एक ड्रेन हम लो लाइन एरिया से बाहर निकाल रहे हैं, और हमने जहां पर अंजना जी पानी भरता था, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आप देख भी रहे हैं, गुरुग्राम को धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे 90 पॉइंट हमने चिन्हित किए थे जहां पर बरसात के समय में पानी भरता था। आज मात्र 5-6-9 एक ऐसे रह गए हैं जहां पानी भरता है, बाकी हमने सारा का सारा उसको क्लीन कर दिया है, ठीक हो गया है, और आगे भी आने वाले समय के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो जल भराव होगा। परंतु कई बार आजकल जलवायु परिवर्तन भी है, हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी, यहाँ की बात बता रहा हूं मैं अंजना जी, पिछले दिनों इतनी एकदम बरसात गिरी कि 3-3 फुट पानी हमारे चंडीगढ़ की सड़कों पर आ गया। कई बार जब बरसात एकदम ज्यादा गिरती है, व्यवस्था भी अव्यवस्था में बदल जाती है, परंतु 2-3 घंटे इससे ज्यादा पानी नहीं रहता, निकल जाता है।
0: कोशिश होनी चाहिए थोड़ी और गुरुग्राम की
1: स्वच्छता को लेकर के भी।
0: आखिरी सवाल,
1: हमने स्वच्छता को लेकर के भी गुरुग्राम की बड़ी एजेंसी को, जो बॉम्बे और लखनऊ जैसे शहरों की सफाई व्यवस्था देखती है, उस इस प्रकार की एजेंसी को हमने यहाँ पर हायर किया है, ताकि यहाँ की स्वच्छता भी वो हमारे लिए प्रायोरिटी आदि, प्रधानमंत्री जी का सीधा इसके अंदर ध्यान रहता है कि यहाँ कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि हमारे ये सिटी हरियाणा की सिटी नहीं है अंजना जी, ये हमारी इंटरनेशनल सिटी है, ग्लोबल सिटी है, और इसकी व्यवस्था को, इसकी सुंदरता को बनाना हमारी सरकार का काम है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
0: डेरा पॉलिटिक्स की बात होती है, आखिरी प्रश्न है मेरा डेरा पॉलिटिक्स की। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बाबा राम रहीम परोल फलों का भरपूर 100% इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि ऐसे जो बाबा हैं उनका जन प्रभाव बहुत होता है, तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनको फेवर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: अंजना जी देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लोग करते थे, हमने कभी राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इन चीजों को नहीं देखा है, ना हम देखते हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट के ऊपर हम विश्वास करते हैं। कोर्ट कई चीजों को देखता है, प्लस भी देखता है, माइनस भी देखता है, और उसके बाद वो निर्णय लेता है
0: जी।
1: और कोर्ट जो निर्णय लेता है उसका हम स्वागत करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मैंने कहा है कांग्रेस इंडी गठबंधन ने ना तो कोर्ट का सम्मान किया, ना लोकतंत्र का सम्मान किया, ना प्रधानमंत्री का सम्मान किया, ना राष्ट्रपति का सम्मान किया, ना उपराष्ट्रपति का सम्मान किया, ना हमारी संसद का इन्होंने सम्मान किया। ये तो आज भी अपने धुन में है, इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। लोग देश के जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और इसलिए करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए भारत को विश्व के अंदर चमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ा है। अगर हम देखते हैं पिछले 12 वर्षों के अंदर हरियाणा जो एक कोने से दूसरे कोने में, अगर नारनौल से हम चले चंडीगढ़ पहुंचे तो लगभग 14 घंटे के करीब हमें लगते थे। आज मोदी जी ने वो भारत बदला है, वो हरियाणा बदला है कि अगर नारनौल से हम चलते हैं मात्र हम 4 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये बदलता हुआ मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, और ये चमकता हुआ विश्व के अंदर भारत है। ये गाली दें, मोदी को गाली दें, परंतु हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस गाली ना दे, इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। क्योंकि मोदी काम कर रहा है, मोदी गरीब को मजबूत कर रहा है। उन्होंने 25 करोड़ गरीब रेखा से बाहर निकाला है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। ये मोदी को गाली दें भी, आप क्यों महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, क्यों गरीबी से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, मोदी को गाली दें, परंतु हमारी संवैधानिक पीठ को गाली ना दें। मैं इनसे आग्रह करूंगा, ये ना आपके उसमें अच्छा है ना देश के इसमें अच्छा।
0: एक हमारी सहयोगी कमलजीत का सवाल है, पूछे।
2: प्रॉब्लम है पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, वो है गैंगस्टर्स की। और जो ट्रेडर्स हैं हरियाणा में, वो भी खुश नहीं है, आए दिन फिरौती की कॉल्स होनी। ये गैंगस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कर पा रहे हैं?
1: इसके ऊपर देखिए, हम बड़ी सख्ताई से काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस बड़ी सख्त होकर काम कर रही है। बाहर बैठ करके जो लोग कॉल करते हैं, लगभग ऐसे 14 लोगों को हमने बाहर से डिपोर्ट भी करवाया है, जो हार्डकोर क्रिमिनल थे, और उसके पीछे हम लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करे। हमारी पुलिस उसके ऊपर सख्ताई से काम कर रही है, आप देख भी रहे हैं। कोई समझौता नहीं है जी किसी प्रकार का, हमने ये बोल रखा है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, हरियाणा के लोगों को सुरक्षित माहौल देना, ये मेरी सरकार का काम है जी, और उसको लेकर के जिस कदम तक भी आप वो जाएं, वो जा सकते हैं। हमने कहा है गलत काम मत करिएगा, परंतु गलत को छोड़िएगा भी नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिएगा, और ये हमारा एजेंडा क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, हम सपोर्ट करते हैं जी।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, आप आज तक पंचायत के मंच पर आए, आपने अपना वही जो चित परिचित आपका अंदाज है उसमें सभी सवालों का जवाब दिया मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स माई वे।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
8: Maddie, I need to open a savings account.
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक?
9: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
8: ओके
9: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
11: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
12: Money, money, money, money, every month.
13: सोच बदलो और बैंक भी.
14: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, complete oral health का सच. In association with
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। कल राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है। FIR में पुलिस से उलझने और काम करने से रोकने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक FIR में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र है, लेकिन आरोपियों का कॉलम अभी खाली रखा गया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, आइए सीधा वहीं चलते हैं।
17: कल ही मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देश की सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे लिए ये सेवा की सहज यात्रा रही है। मैं हर देशवासी का दुनिया भर में भारत के हर मित्र का शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये भी संयोग ही है कि इसी अवसर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सम्मेलन के भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस साल जीएसएम में बोर्ड की बैठक के लिए भारत को चुना गया। मैं दुनिया भर से आए टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया और स्टार्टअप्स के आप सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का भारत में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में के कई एडिशंस में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे इवॉल्व हुई, ये प्लेटफॉर्म इसका साक्षी रहा है। 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी मंच पर 2024 में हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की मौजूदगी देखी। तब हमने डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर बात की थी और पिछले साल इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया पर चर्चा की थी। आज भारत टेलीकॉम सेक्टर में जहां पहुंचा है, उसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है। इसलिए मैं आप सभी का विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस साल आप सभी ने इस समिट में अपने मंथन के लिए विषय तय किया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, हर सीमा से परे जाकर विस्तार। मैं आपको भारत के अनुभवों से बताना चाहूंगा कि हमने कैसे स्केल विदाउट बाउंड्रीज के सपने को जीकर दिखाया है। साथियों, जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की चर्चा होती है, स्पेक्ट्रम पर डिबेट चलती है, टावर्स की रीच की, स्पीड की बातें होती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी अहम टूल बनकर सामने आया है और ये हमारे डिजिटल इंडिया विजन के कोर में रहा है। साथियों, आज हम सुनते हैं कि भारत में डेटा सस्ता है, मोबाइल फोन सस्ते हैं, मोबाइल फोन यूजर बेस इतना एक्सपेंड हो गया है, ये अपनी जगह सब सच है। लेकिन ये हुआ कैसे और ये सब किया क्यों गया, ये जब हम समझेंगे तो सभी को भारत का फोकस एरिया एकदम क्लियर होगा। साथियों, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज बनती जा रही थी, यानी जिसके पास साधन है वही आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता था। भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। डिजिटल इंडिया अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी और इसके सेंटर में मोबाइल फोन को लेकर के आए। ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रयास था। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में हर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया। हमने फोकस किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बने। साथियों, ऐसे हर प्रयास से मोबाइल फोन और डेटा तक भारत के आम नागरिक की पहुंच और सुलभ हो गई और आज ये भारत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सब कुछ रुक गया था, लेकिन भारत में दफ्तर चलते थे, बैंक चलते रहे, पढ़ाई चलती रही। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के कारण हुआ। मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर सुदूर गांव गरीब के बच्चे भी क्वालिटी नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सबकी पहुंच में आ रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट और ज्यादा पता चलता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत भाषा और भूगोल हर प्रकार से डाइवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डाइवर्सिटी को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानी कुछ भी काम करना हो सरकारी सर्विस लेनी हो तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है। सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे गए बैंक अकाउंट में पहुंचे और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था। यानी साथियों, मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है। और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है। साथियों, बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है। रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ। इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है। इससे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई। आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए, एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के युवाओं की है। टीयर टू और टीयर थ्री शहरों का युवा भी इससे जुड़ा है। अब वो गेम से जुड़ने के साथ ही ई स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहा है, गेमिंग कंटेंट बना रहा है और नए गेमिंग बिजनेसेस खड़े कर रहा है। यानी भारत में मोबाइल फोन आज गेमिंग कंसोल भी है और क्रिएशन का स्टूडियो भी बन गया है। साथियों, भारत में हुई टेलीकॉम क्रांति ने यही बदलाव कंटेंट की दुनिया में भी ला दिया है। बेहतर फास्ट कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा ने अनेक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया और रीजनल ओटीटी को गांव कस्बों तक पहुंचा दिया है। इससे भाषा से जुड़ी जो समस्याएं आती थी, वो बंदिशें थी, वो भी दूर हो गई है। यानी केवल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी इंडस्ट्री ही भारत में आज हजारों करोड़ रुपए की हो गई है, जिससे लाखों लाख लोगों को कमाई हो रही है। यानी मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है। जब मैसेज आए तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक। जब पेमेंट हो तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है। और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते, वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक्स कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा। और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएमसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे और मोबाइल के जरिए कैसे क्रिएटर्स बन रहे हैं, कैसे व्यापार बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, इसको लेकर भी अपनी बात रखी। साइबर ठगों को लेकर भी कहा उन्होंने कि एक देश से बैठकर दूसरे देश में ठगी होती है, लेकिन यह भी कहा उन्होंने कि गलत लोगों की जेब तक पैसा पहुंचने के हमने रोका है, हमने कदम उठाए हैं, सही लाभार्थियों तक उनका हक हमने पहुंचाया है, हमने बिचौलियों का जो सिस्टम था जो किसी के हक का पैसा खा जाते थे उन तक कार्रवाई की है और उन बिचौलियों को बीच से हटाया है। किसानों तक योजनाओं का लाभ पहले नहीं पहुंचता था लेकिन उसके बाद हमारी सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया।
16: उनका कहना था कि करीब 5 लाख करोड़ रुपया जो पिछली सरकारों के दौरान लीक हो जाता था, गलत हाथों में चला जाता था, वो उन्होंने रोक दिया जब उनकी सरकार आई और जिन लोगों तक ये पैसा पहुंचना चाहिए था यानी कि जो लाभार्थी थे बेनिफिशियरी उन तक पहुंचा। तो आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नाना पाटेकर को भी श्रद्धांजलि दी। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा।
17: कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: तो देखिए, पूरे देश में शोक की लहर है, नाना पाटेकर को याद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी लोग कम में डूबे हुए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी।
18: भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही मजबूत कलाकार और एक बहुत उत्तम व्यक्ति ऐसे श्री नाना पाटेकर जी, इनका अचानक निधन होना ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्रांतिवीर से लेकर नट सम्राट तक अलग अलग प्रकार की फिल्मों से उन्होंने न केवल लोगों का मन रिझाया बल्कि जन प्रबोधन भी किया और एक देशभक्त के रूप में हम उनको जानते हैं। उनका जाना ये निश्चित रूप से सभी को खलेगा। एक देशभक्त, एक समाज सेवक और एक अभिनेता आज हमारे बीच से निकल गए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।
19: नाना पाटेकर एक महान कलाकार थे, वैसे ही महान मनुष्य थे। उनकी सोच, उनका अभिनय, ये दोनों चीजें अनमोल थी। क्योंकि जिस तरह से वो अपनी भूमिका में जान डालते थे और पूरा 100% प्रकट होते थे, सिनेमा कोई भी हो, नाटक कोई भी हो, नाना एक सच्चा कलाकार थे।
20: तो मन बहुत ही दुखी है, मन बहुत ही उदास है। नाना पाटेकर जी महाराष्ट्र के सपूत के साथ साथ देश के भी सपूत थे। बहुत अच्छा अभिनय करते थे, रुलाते थे तो ऐसा रुलाते थे कि लोग रोने लगते थे, हंसाते थे तो ऐसा हंसाते थे कि लोग हंसने लगते थे। एक उम्दा कलाकार, एक बेहतरीन कलाकार हमने आज खो दिया। नाना पाटेकर को, उनके पूरे परिवार को हम यही कहेंगे कि हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। नाना पाटेकर जी के आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं।
16: तो फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: यार लोन भूल गया। मैरी
4: इट्स
3: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रुक, ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायबिटीज जूस।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
16: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
10: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुँच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद पांच दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूं। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात। देखिए पंचायत आज तक हरियाणा 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया, मोबाइल और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसलिए बेचैन है बिचौलिए।
1: चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे तेजस्वी, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल।
0: राहुल प्रियंका के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 3 FIR, काम करने रोकने और जबरदस्ती करने के आरोप, आकाशवाणी भवन के धरने पर भी केस, नितिन नवीन ने कहा अराजकता फैला रहे हैं राहुल।
1: पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 70 वादे पूरे करती है, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, दोपहर 2 बजे आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: एक और 1:11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में आरजेडी प्रदर्शन पर उतरी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खुद तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़े, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और अब आरजेडी में भी प्रदर्शन से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चढ़ गए।
1: कल जो तस्वीरें आपने दिल्ली में देखी थी, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और अब पटना में मोर्चा संभाला है आरजेडी ने। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सीसी के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन होता है, जहां तेजस्वी और बताया जा रहा है कि मीसा को हिरासत में लिया गया। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि बताइए क्या हो रहा है वहां भी?
3: देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट दिए देता हूं हिमांशु। तेजस्वी यादव जो सबसे शुरू में पहुंचे पटना में, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहां पे, फिर बाद में वो राजभवन, वहां से गए हैं राजभवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। लेकिन देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहां पर इकट्ठा हैं, आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं और ये विधानसभा के सामने जो सप्तमूर्ति शहीद स्मारक है वहां पर से ही राजभवन मार्च का कॉल दिया गया था विपक्षी दलों की तरफ से। कांग्रेस, वीआईपी, आरजेडी, तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं वो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भले ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे हों ज्ञापन देने, लेकिन जो तमाम दूसरे दलों के नेता हैं वो अब एक एक करके यहां पहुंच रहे हैं और यहीं पर मोर्चेबंदी है उनकी तरफ से। और पुलिस का इंतजाम देखिए, पूरा बैरिकेड्स लगाया हुआ है हर तरफ, जहां भी नजर जाती है, ये सचिवालय थाना है पटना का, ठीक उसके सामने बैरिकेड्स लगाई गई है और बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन ने घेरेबंदी सुबह से ही कर दी थी कि जो विपक्षी कार्यकर्ता है या विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो आगे न बढ़ने पाए। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं हिमांशु, ये आगे की तरफ जो सड़क जाती है ये मैंगल्स रोड है पटना का और यहीं पर चुनाव आयोग का दफ्तर है जहां तेजस्वी यादव से थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे। वहां पर उनको पुलिस और प्रशासन ने रोका और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए हैं। और ये सामने हमारे देखे कैमरे के फ्रेम में, ये बिहार विधानमंडल भवन है जहां पर इस वक्त पूरा विपक्ष ने रण जमाया हुआ है और जो ज्ञानेश कुमार को लेकर के प्रदर्शन देश भर में हमने देखा, कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने किया, उसी तर्ज पे आज बिहार में महागठबंधन का प्रदर्शन जो है वो जारी है। जी
0: जी शशि, लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हमने दिल्ली में तो देखा ही कांग्रेस पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन चला, लेकिन अब पटना में इस मुद्दे को कैसे आगे ले जाने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि आरजेडी ने आज जो तस्वीरें मीडिया चैनलों पर चढ़ा दी है उसमें तेजस्वी भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं, तो लगातार सभी ऑपोजिशन के नेता अपनी ऐसी तस्वीरें सामने ला रहे हैं।
3: अंजलि देखिए, हमको नहीं भूलना चाहिए कि SIR की जो पहली प्रक्रिया शुरू हुई थी इलेक्शन कमीशन ने जो की, वो बिहार से उसकी शुरुआत हुई और बिहार में ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों ने जो वोटर अधिकार यात्रा है उसको कॉल किया था। राहुल गांधी लगातार दौरा करते रहे बिहार के अलग अलग जिलों का, तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहे। बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले उसको मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ की गई, लेकिन जो जनादेश आया वो एनडीए के साथ आया। विपक्ष को अब एक बार फिर से आधार मिला है जो तमाम चीजें कंट्रोवर्सी और चीजें निकल के आ रही हैं। उसके बाद अब जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस ने घेरेबंदी की है, उसके बाद तेजस्वी यादव को भी या बिहार में जो महागठबंधन है उसको ये लगता है कि 25 का जो जनादेश था उस पर सवाल खड़े करने के लिए बहुत मुफीद मौका है, और यही वजह है कि इस वक्त अगर राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन है। हालांकि 10:30 का कॉल था, कांग्रेस के नेता थोड़े पीछे छूट गए, लेकिन अभी भी आप देखिए तमाम जो वर्कर्स हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, वीआईपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं की यहां मौजूदगी है शहीद स्मारक पे विधानमंडल भवन के सामने। और तेजस्वी यादव तो खुद राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंच भी चुके हैं राजभवन में, जहां वो ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग को लेकर के अपनी तरफ से एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। अंजलि,
1: देखिए कोशिश तो यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है सीसी का घिराव करने की, और ये तस्वीर एक बार फिर से हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि विरोध कैसे किया जा रहा है। काले रंग के कुर्ते में आपको दिखाई देंगे तेजस्वी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले आप देखिए कोशिश की जा रही है विपक्ष की एकजुटता दिखाने की भी। दिल्ली में आपने वो तस्वीरें देखी, कल जो जनपद पर हुआ उससे पहले भी आपने देखा था कि कैसे आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी पहुंच गए थे, और उसके बाद अब ये तस्वीरें पटना से दिखाई दे रही हैं। पटना से हमारे सहयोगी सुजीत कुमार की एक और रिपोर्ट वहां दिखाते हैं, जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था सीसी के खिलाफ उस वक्त की एक और रिपोर्ट।
4: तेजस्वी यादव एक बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए ये दूसरी बैरिकेडिंग है जो चुनाव आयोग के दफ्तर जाती है, और तेजस्वी यादव देखिए अब इसे पार करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव देखिए, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी साथ में है और इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा बलों ने रोक दिया है, यहाँ पे पटना पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उन्होंने इन सभी को फिलहाल, देखिए महिला कांस्टेबल ने सभी को घेर लिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ये दूसरी बैरिकेडिंग है जो चुनाव आयोग के दफ्तर जाती है, और यहाँ से अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ भी जो बैरिकेडिंग है काफी मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि पटना मेट्रो का जो लोहे का चादर जो सड़कों पे लगाया जाता था उस चादर से बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे। और ये तस्वीर देखिए, अब इस बैरिकेडिंग को पार करने की पूरी कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। अब देखने वाली बात होगी इस बैरिकेडिंग को तेजस्वी यादव पार करते हैं या नहीं। देखिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया है, और देखिए तेजस्वी की जो कार्यकर्ता है कारी शोएब हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मना किया। और देखिए और भी कार्यकर्ता देखिए चढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव के बाकी कार्यकर्ता, और देखिए बैरिकेडिंग को फांद चुके हैं एक कार्यकर्ता, इसे पुलिस अब पीछे की ओर ठेल रही है कि बैरिकेडिंग को पार ना कर सके। देखिए अब जो पीछे पीछे ठेल दिया गया, देखिए जो भाग कर आगे गए थे उन्हें अब पीछे ठेल दिया गया है पुलिस के द्वारा, और नीचे तेजस्वी यादव है। अब तेजस्वी यादव भी चढ़ चुके हैं, देखिए तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, और अब तेजस्वी यादव देखिए इस बैरिकेडिंग को पार करते हैं या पुलिस इन्हें भी उसी तरह ठेलती है जैसे उनके कार्यकर्ता को ठेली थी। देखिए तेजस्वी यादव है और देखिए ये तस्वीर चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की ओर जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उस बैरिकेडिंग पर तेजस्वी यादव तो चढ़े लेकिन पार नहीं कर सके, क्योंकि उधर सुरक्षा बल हैं जिन्होंने रोक दिया है। और तेजस्वी यादव देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे हुए हैं और आगे जाने से पुलिस ने रोक दिया है। तेजस्वी यादव देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को पार करें, पुलिसकर्मियों से भी भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है और बैरिकेडिंग पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, आप देखिए फिर से एक बार दूसरा प्रयास कर रहे हैं बैरिकेडिंग पार करने की तेजस्वी यादव, देखिए दूसरा प्रयास यानी सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे ठेल दिया। तेजस्वी यादव को सुरक्षा बलों ने पीछे ठेल दिया है और पूरी कोशिश करने के बाद देखिए बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं तेजस्वी यादव। दोनों बैरिकेडिंग पार करके अब जो है आगे बढ़ चुके हैं चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं या राजभवन। सुजीत कुमार, आज तक पटना।
1: तो कल और परसों जो तस्वीरें आपने दिल्ली में देखी वो तस्वीरें आज आप पटना में देख रहे थे, और ऐसा माना जा रहा है कि आज दिल्ली में फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है, और कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर इस वक्त सीसी और सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया है, जिसके बाद कनॉट प्लेस इलाके में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। कल जनपद पर लंच पर बुलाया था, उसके बाद क्या हुआ था देखा था। अब सीपी कनॉट प्लेस पर लंच के लिए बुलाया है, तो उसके बाद देखिए अभी से बैरिकेडिंग की तैयारी। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, कल से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस की आज क्या तैयारी है और कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है?
5: हिमांशु, देखिए पहले उस रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखा देते हैं जहां पे आज इंडिया गठबंधन के सांसदों की मौजूदगी 1:45 पे रहेगी। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे मॉइट्स रेस्टोरेंट है, कल साउथ इंडियन खाना था तो आज नॉर्थ इंडियन और चाइनीज क्विजीन वाले इस रेस्टोरेंट में विपक्षी सांसदों को बुलाया गया है। दरवाजा बंद है सुरक्षा के कारणों से, दिल्ली पुलिस यहाँ पहले से तैनात है। अब सुरक्षा के लिहाज से या पुलिस की डिप्लॉयमेंट के लिहाज से आप तस्वीरों को देखिए, बैरिकेडिंग पहले से हो गई है। ये पार्किंग का स्पेस है, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का हिस्सा है ये। आप और हम जब यहाँ से जाते होंगे तो आगे मिंटो ब्रिज का कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट, और यही वजह है कि मॉइट्स को चुना गया है, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजिकली समझेंगे तो यहाँ से राजघाट जाना बहुत ही आसान है। आप मिंटो ब्रिज का इस हिस्से को क्रॉस करते हैं और फिर राजघाट के लिए रास्ता आपके लिए खुल जाता है, तो राजघाट जा सकते हैं यहाँ से। और अगर जंतर मंतर की तरफ बढ़ने की कोशिश का मन हो कि मनसा हो सांसदों में, तो पैदल चल के भी जंतर मंतर यहां से जाया जा सकता है। कम से कम सीपी के सर्कल को क्रॉस करने का प्रयास विपक्षी सांसद कर ही सकते हैं। हमने देखा कि कल किस तरह से जद्दोजहद दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से करनी पड़ी। यही वजह है कि पहले से ही इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो लगातार सिक्योरिटी रेकी यहां कर रहे हैं, और ये कोशिश की जाएगी कि सांसदों को यहां से आगे ना बढ़ने दिया जाए। कम से कम जंतर मंतर की तरफ तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के इन सांसदों को राजघाट जाने से भी दिल्ली पुलिस रोक सकती है, ये सवाल है। क्योंकि आप कैसे विपक्षी नेताओं को या विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष को राजघाट जाने से रोक सकते हैं, ये अपने आप में सवाल रहेगा। इस आज के इस लंच में एक और अहम डेवलपमेंट है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज अटेंडेंस इंश्योर किया जा रहा है, राजीव राय आएंगे, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी खुद आज मौजूद हो सकते हैं आज के इस लंच के बाद जो प्रोटेस्ट वाला कार्यक्रम रहता है उस।
0: जी जी बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन कल और परसों दो दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद इन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से एक सांसद इमरान मसूद भी हैं। उन्होंने क्या कहा हमारे सहयोगी से सुनिए।
5: थर्ड डे थर्ड प्रोटेस्ट, क्या है आज लंच का मेन्यू क्या है और उसके बाद क्या प्रोग्राम है?
6: कल साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पियेंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
5: लेकिन ये कैसे हो रहा है सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
6: अब ये तो देखिए अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग, जाकर एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
1: मतलब तंदूरी रोटी लच्छा पराठा और कढ़ाई पनीर की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। एक बार बताइए हमें, कल हमने देखा था कि कुछ बसें पहले से मौजूद थी, क्योंकि लंच के बाद अचानक से बसों में बैठ के कांग्रेस के जो सांसद थे वो निकल गए थे, तो क्या आज कुछ ऐसी बसों की तैयारी या फिर पुलिस ने पहले से ही बसों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस एरिया में, ऐसी कुछ खबर?
5: देखिए मैं एक बार तस्वीरें भी दिखाता हूं अपने दर्शकों को। ये आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का, जहां से आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी है, और यही सड़क आगे मिंटो ब्रिज की तरफ जाती है। फिलहाल आप देखेंगे ट्रैफिक सुचारू है, मैं कम से कम इस वक्त कोई बस नहीं देख पा रहा हूं। जिस तरह की वॉल्वो बसेस की तस्वीरें हमने कल देखी थी वैसी बस अभी तक यहाँ नहीं लगी है, लेकिन समय है अभी तो 12 भी नहीं बजा है। लंच जो है 2:45 का समय तय
0: किया। आपके पास हम लगातार आते रहेंगे और इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज सुनाई देती थी तो पर्दे पर सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म जीवंत हो जाती थी, आज वो आवाज खामोश हो गई है।
7: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
8: एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी था और समाज की सच्चाई भी।
9: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं।
10: कंट्रोल।
8: गोवा से आज सुबह सुबह नाना पाटेकर की मौत की खबर आई। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें गोवा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नाना नहीं रहे।
11: नाना पाटेकर हमारी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उनका केयर टेकर आया था हॉस्पिटल में अराउंड 4:18 और सो आवर एम्बुलेंस रीच टू 4:20 एट अराउंड हिज हाउस एंड इज अ फ्लैट नियर बाय आवर हॉस्पिटल में रहते इधर ही नजदीक में। और उधर उनका देखा तो ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव, सो दिस वो लोगों ने CPR, हमारी टीम ने CPR चालू किया और CPR करते करते उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बाय अराउंड 4:20-4:30 एंड बाय द टाइम यू नो दे ऑल्सो डिड अ मैक्सिमम, सब लोगों ने CPR किया और 5:20 को डिक्लेयर किया कि वो डेड हो गए।
8: नाना का जाना हिंदी सिनेमा की अपूर्णीय क्षति इसलिए है क्योंकि वो एक असाधारण अभिनेता थे। सितारों से भरे बॉलीवुड में नाना की एक अलग जगह थी, एक अलग मुकाम था। ७८ में फिल्म गमन से उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। शुरुआती वर्षों में संघर्ष के बाद अंकुश और फिर परिंदा जैसी फिल्मों ने उन्हें एक दमदार अभिनेता के तौर पर स्थापित किया। 1989 की परिंदा में उनके अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। इसके बाद क्रांतिवीर में उनके अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तक पहुंचाया।
7: तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की।
8: उनकी खासियत थी संवाद बोलने का अलग अंदाज, आंखों से भाव व्यक्त करना और किरदार में पूरी तरह उतर जाना। लेकिन नाना पाटेकर ने खुद को सिर्फ गंभीर भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखा। वेलकम में उदय शेट्टी के किरदार ने उनके अभिनय का एक बिल्कुल अलग रंग दर्शकों के सामने रखा। गंभीर और तीखे किरदारों के लिए मशहूर नाना पाटेकर ने कॉमेडी में भी अपनी खास पहचान बनाई। अभिनय के साथ साथ उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। प्रहार द फाइनल अटैक में उन्होंने अभिनय के साथ निर्देशन भी किया। मराठी सिनेमा में नट सम्राट जैसी फिल्म ने उनके अभिनय की गहराई को एक बार फिर सामने रखा। नाना पाटेकर का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये उस दौर के एक ऐसे कलाकार का जाना है जिसने पर्दे पर किरदार निभाए नहीं, उन्हें जिया है।
1: अनीता ब्रिटो इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अनीता, पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है और किस तरह से अब अंतिम कार्यक्रम, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं?
12: तो आज सबसे दुखद भरी दिन पूरी इंडस्ट्री के लिए है, बिकॉज सुबह सुबह ये फर्स्ट न्यूज आया था कि नाना पाटेकर नहीं रहे। गोवा में उनका डिमाइस हुआ था। अभी इंडस्ट्री बहुत सारे इवेंट्स आज जो ऑर्गेनाइज किए थे आज इंडस्ट्रियल सब ने कैंसिल किया है। एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं नाना पाटेकर के लिए, बिकॉज ही वॉज अ वेरी लव्ड एक्टर, ही सच अ लॉन्ग करियर ही हैड। एंड हम बहुत रिसेंटली तक उनको देख रहे थे, हमने उनको अभी प्रमोशंस करते हुए बीच में नजर आए थे। वो उनके एक शो आई थी संकल्प करके, उनका प्रमोशन करते हुए हमें वो नजर आए थे। इट इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज, बिकॉज हमने उनको हमेशा हेल्दी फिट देखा है। रिसेंटली उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां वो कसरत करते हुए नजर आ रहे थे, तो ही वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड दिस कम्स एज अ बिग शॉक टू द एंटायर इंडस्ट्री। एंड वी हैव सीन अक्षय कुमार से लेके बहुत सारे एक्टर्स, सुनील शेट्टी, साउथ के एक्टर्स, जूनियर NTR, सब ने अपने सोशल मीडिया पे जाके ये न्यूज को नाना पाटेकर के लिए एक बहुत अच्छा सा नोट भी दिया है। सबके एक्सपीरियंस जैसे थे उनके साथ, रवीना टंडन ने उन्होंने उनके साथ काम किया, सब ने
0: बिल्कुल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वो और उन्हें सभी याद करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नहीं रहे सिनेमाई पर्दे पर बगावत का सबसे बड़ा चेहरा। बहुआयामी प्रतिभा वाले फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक। सदमे में बॉलीवुड।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बाल सर एक बार धोती थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे, सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

0: पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल लायंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: JK Maxx Wipe Easy दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नहीं रहा सिनेमाई पर्दे पर बगावत का सबसे बड़ा चेहरा, बहुआयामी प्रतिभा वाले फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक, सदमे में बॉलीवुड। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन, 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया, मोबाइल और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसीलिए बेचैन है बिचौलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी विपक्ष का बड़ा मोर्चा, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे तेजस्वी, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल। आज फिर खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता, दिल्ली के नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाया, समाजवादी पार्टी के राजीव राय शामिल होंगे, प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने दर्ज की 3 FIR। अब पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायर सिंह सैनी, 70 वादे पूरे कर दिए, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, दोपहर 2 बजे आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजभवन मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मीसा भारती को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले पटना की सड़कों पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने बैरिकेटिंग से तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश की तो तेजस्वी बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। आज का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के 2 से 8 अक्टूबर तक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि भूषण। शशि, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? क्या प्रदर्शन शांत हो चुका है या अभी भी हंगामा जारी है?
1: नहीं, देखिए अभी भी प्रदर्शन जारी है अब हिमांशु, और हम आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाते हैं जो शहीद स्मारक है विधानमंडल भवन के सामने, और वहां से जहां तमाम जो विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सभी दलों के कार्यकर्ता यहां खड़े हैं, और पुलिस ने बजाता जबरदस्त घेरेबंदी कर रखी है, और कोशिश यही है कि यहां से आगे किसी को बढ़ने न दिया जाए। हालांकि हमने देखा था थोड़ी देर पहले जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे तो वो बैरिकेड्स को पार करके इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है पटना में वहां तक पहुंचे। पुलिस ने उनको थोड़ी देर के लिए वहां पर डिटेन किया और उसके बाद में वो राजभवन गए, राज्यपाल को जाकर के उन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो दिया है। लेकिन जितने भी झंडे महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के हैं, उन झंडों के नीचे जो बैनर है ना, जो प्लेकार्ड्स है, वो एक ही है। उसमें सिंपल और सीधा एक ही मैसेज है कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए, जो सीईसी हैं उनके खिलाफ जो लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, जैसा आप खुद बता रहे थे कि 2 अक्टूबर से जो शुरू हुआ और 8 अक्टूबर जो आज इस पूरे एजिटेशन का आखिरी दिन भी मान लीजिए, उस दिन कम से कम महागठबंधन सड़क पे है। तेजस्वी यादव अपना काम करके निकल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ है, वीआईपी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं, और सामने पुलिस है। जहां तक नजर जाती है, देखिए ये पीछे मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था दर्शकों को, ये सामने मैंगल्स रोड है और इसी सड़क पे आगे जो घेरेबंदी की गई है, उसी सड़क पे आगे जो चुनाव आयोग का कार्यालय है पटना में वो है, और यही वजह है कि यहीं पर बैरिकेड्स लगा करके तमाम जो विपक्षी कार्यकर्ता हैं उनको रोका गया है,
0: रोक लिया गया। वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि बैरिकेड के उस पार उनको रोका गया है। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा गया वो सुनाते हैं।
2: लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, जिस हिसाब से लोकतंत्र का मजाक ज्ञानेश कुमार ने बनाया है, जिस हिसाब से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, ये बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र की जननी से इन लोगों ने एसआईआर की शुरुआत की। इसको हरगिज हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी तरीके से संविधान में मानने वाले लोग हैं, भाईचारा में मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा पूरा इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, ये चलने वाला ज्यादा देर तक नहीं है। पोल जो है खुल चुका है, इनका जाने की शुरुआत जो है हो चुकी है।
0: और ये उस वक्त की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जब तेजस्वी यादव बैरिकेटिंग पर चढ़ गए थे। हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे।
3: पुलिस ने तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को डिटेन कर लिया है। देखिए पुलिस जो है अब इसी वज्र वाहन में तेजस्वी यादव को डिटेन कर रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों को डिटेन किया जा रहा है। देखिये मुकेश सहनी को पुलिस ने डिटेन किया है और मुकेश सहनी विक्ट्री दिखा रहे हैं। वही तेजस्वी यादव देखिए मुकेश सहनी बाहर निकल गए, तेजस्वी यादव को दूसरी गाड़ी में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद जो है मुकेश सहनी भी बाहर निकल गए और तेजस्वी यादव के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसी गाड़ी में अब मुकेश सहनी को ले जाया जाएगा। देखिए ये सचिवालय एसपी की गाड़ी है जिसमें मुकेश सहनी को अब डिटेन किया गया है। देखिए मुकेश सहनी को अब जो है डिटेन कर लिया गया है और बाकी नेता भी हैं जिन्हें डिटेन किया जा रहा है। तो देखिए मुकेश सहनी को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है और तेजस्वी यादव को भी डिटेन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी गिरफ्तारी दे दी है और तेजस्वी यादव को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम था अब जाकर यहाँ अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को कल जंतर मंतर से रोकने और हिरासत में लेने के खिलाफ आज कांग्रेस काला दिवस मना रही है। बेंगलुरु से तस्वीरें आई हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी में दिख रही है। कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को कनॉट प्लेस पर लंच पर बुलाया है और कनॉट प्लेस पर सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं।
4: माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजेस की खंडपीठ ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है और फैसले में बड़ी स्पष्टता से जो बातें कही हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं। 50 जो वार्ड हैं, यहां पे जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे उसे रद्द किया है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तथ्य और बड़ी स्पष्टता से सर्वोच्च न्यायालय भारत का यह कहता है कि जो पार्टी स्वराज का नारा लेकर राजनीति में कूदी थी, पापी आप, वो आज गुंडा राज वाली पार्टी बन गई है। मैं सबसे पहले इसी आदेश में से कुछ तथ्य रखते हुए बताना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। ये सिविक बॉडी पोल्स जो हुए मई 2026 अभी का मामला है, इसमें 50 वार्ड, 28 पटियाला जिले में और 22 मोगा जिले में, इनमें जो चुनाव हुए जिसकी जिम्मेदारी प्रमुखता से प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की थी, वहां पर जो तथ्य सामने आए।
0: तो देखिए, तो बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा था लेकिन कांग्रेस आज काला दिवस मना रही है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस की तरफ से देश भर में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस पर आज कांग्रेस के सांसदों को बुलाया गया है, विपक्ष के सांसदों को बुलाया गया है, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। बेंगलुरु में तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये भी आपको बता दें, ये कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया था। दिल्ली में भी तैयारी है कनॉट प्लेस पर, आज विपक्ष के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। प्रदर्शन पहले तो लंच की तैयारी है कल की तरह और उसके बाद हो सकता है कि आज फिर प्रदर्शन करें। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या अपडेट आपके पास आ रहा है अभी मौके से?
5: मानशु, देखिए सुरक्षा की तैयारियां यहां पे बढ़ा दी गई है। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाऊंगा कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में, जहां मॉइट्स रेस्टोरेंट लोकेटेड है, जहां 1:45 पे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सांसद सब शामिल होंगे सेकंड लंच, लेकिन तीसरा प्रोटेस्ट। तस्वीरें देखिए कैसे बदली है। 15 मिनट पहले तक अगर आप यहां, जब हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे, तो पैरा फोर्सेस की ऐसी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अब पैरा फोर्सेस के जवान आपको दिखाई देंगे। बैरिकेडिंग पहले थी लेकिन अब पैरा फोर्सेस के जवानों को भी यहां डिप्लॉय कर दिया गया है। आगे देखिए, ये आरएएफ के जवान हैं जो लगाए गए हैं, आरएएफ की बस है, उसके आगे एक रॉयड कंट्रोल व्हीकल लगी हुई है और इस तरफ भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट पड़ी हुई है। बैरिकेड के दूसरे तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जो सेक्शन असल में मिंटो ब्रिज की तरफ जाता है। मॉइट्स रेस्टोरेंट क्यों चुना गया ये भी समझना होगा। मॉइट्स आउटर सर्कल पे लोकेटेड है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है विपक्ष के हिसाब से, जहां से अगर आप चाहें तो राजघाट की तरफ मोर्चा बंदी कर सकते हैं, बस में बैठ के राजघाट की तरफ जा सकते हैं और अगर चाहें तो जंतर मंतर की तरफ भी मूव हो सकते हैं। तो यहां भी दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे हमें बताया जा रहा है कि यहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हिमांशु,
0: शुक्रिया अमिताभ का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हैदराबाद में भी कांग्रेस काल दिवस मना रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने यहां लोकसभा तक के लिए मार्च शुरू किया है और ये वो तस्वीरें, ये देखिए हाथों में कांग्रेस का झंडा और जोरदार प्रदर्शन, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल। अब्दुल बशीर जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अब्दुल, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां पर प्रदर्शन की?
6: जी आप देखिए, यहाँ पर हैदराबाद में अंबेडकर स्टैचू से लेकर लोक भवन तक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रोटेस्ट मार्च आयोजित किया है। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑल पार्टी जो है मार्च, ये कहा जा रहा है कांग्रेस, सीपीआई और दूसरे जो पार्टीज है जो इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक के साथ है, वो यहाँ पर जुड़े हैं, मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर स्टैचू से लेकर, अंबेडकर के पुतले से लेकर यहाँ पर लोक भवन तक ये मार्च कर रहे हैं, जहाँ पर कई सारे तेलंगाना के मंत्री एमएलए यहाँ पर जुड़े हैं। वजह एक ही है कि सीसी ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा वो मांगते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बातचीत करते हैं कि कांग्रेस लीडर से और जानते क्या इनका जो है रोल है। सर, आप वाइस प्रेसिडेंट है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, क्या कहना चाहते हैं, किस प्रोटेस्ट को लेकर क्या आपका आगे का प्रक्रिया?
7: हम जो है इस देश का बुनियाद को रक्षण करना, वी वॉन्ट टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। द बीजेपी गवर्नमेंट वेन 2014 दे केम टू पावर, वो पूरा जो है ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को पूरा उनके हाथ में लिया गया और उससे जो है पूरा देश का जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में गरीब से लेकर धनवान तक जो है एक ही वोट का समानत्व दिया, लेकिन वो वोट चोरी भी कर रहे हैं।
0: तो पूरी तैयारी के साथ अब्दुल यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात दिल्ली पुलिस के एक्शन की। कल जो प्रोटेस्ट हुआ उस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की है। हालांकि आरोपियों का कॉलम खाली है, लेकिन एफआईआर डिटेल में राहुल प्रियंका का नाम शामिल है।
8: नई दिल्ली इलाके में बीते कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ लेफ्ट और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि लगातार पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ की वारदातें हो रही हैं। इस तरह के कई वीडियो दिल्ली पुलिस को मिले हैं। दिल्ली पुलिस को इस तरह के भी वीडियो मिले हैं जिसमें महिलाओं के साथ, खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको दांत काटा जा रहा है। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने अलग अलग कई एफआईआर दर्ज की है। कल कांग्रेस प्रोटेस्ट के दौरान एक कांस्टेबल को बुरी तरह से मारा गया, 30 से 35 लोगों ने बुरी तरह से घेर कर मारा। आज तक से बातचीत में जो कांस्टेबल है वो फूट फूट कर रोया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार हमें पुलिसकर्मियों की तरफ से और खास तौर से महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से शिकायत मिल रही है और शिकायत के आधार पर अलग अलग दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है।
0: अब इससे पहले राहुल गांधी पर 6 अक्टूबर को आकाशवाणी भवन में धरना प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पर कल राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर उनके लिए मेडल की तरह है, 45 हो चुकी है, 100 का लक्ष्य है।
9: मेरे पास 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है। मेरे पास 45 एफआईआर हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 एफआईआर लगे, हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल है।
0: इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने महिला कांस्टेबल से बदसलूकी की। बीजेपी ने एक पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी देश को पितृसत्ता को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। यहां कैमरे पर वो एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। राहुल गांधी का दोहरापन अब छिपा नहीं है। इस वीडियो का जिक्र करते हुए
10: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के सांसदों ने लगातार सरकार को घेरा हुआ है। इसी बीच कल जब राहुल गांधी जंतर मंतर के पास पहुंचे, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी उसमें दिख रही है। और इस वीडियो के बाद अब बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो स्मैश दी पेट्रियार्की की बात करते हैं वही महिला पुलिस कर्मियों के साथ गुंडई और बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे वीडियो के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि कैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस वीडियो पर अपनी सफाई देते हैं।
0: और पंचायत आज तक हरियाणा में, अब सुनते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इलेक्शन कमीशन जैसे के ऊपर सवालिया निशान हो जाएगा तो प्रजातंत्र सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: हुड्डा साहब, हरियाणा की बात करेंगे, और क्या वोट चोरी जो आप कांग्रेस का क्लेम है वो हुआ, या थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया, उस पर बाद में बात करेंगे, पर जो अब दिल्ली में हो रहा है उसकी बात करते हैं।
0: दिल्ली में ही हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कि भाई दो इलेक्शन कमीशन के आगे अब तक उनका डिनायल तो आया नहीं, हमने तो नहीं डाइसेंट किया, जबकि इलेक्शन कमीशन में यूनानिमस फैसले से होता है फैसला, या मेजोरिटी हो, उनका ये भी नहीं आया भाई। मेजोरिटी से डिसीजन लेने के दो ही तरीके हैं ना
1: जी,
0: मानो तीन मेंबर हैं, या तो यूनानिमस हो या फिर बाय मेजोरिटी हो। कोई आया स्टेटमेंट किसी का कि भाई जो हमने लिखा या जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखाया है कि वो गलत है इलेक्शन कमीशन का? ये सवाल लेना, इसी वास्ते आप देख रहे हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है ज्ञानेश्वर कुमार जी, उनका इस्तीफा मांगने पार्टी तो कह रही है, और उनको देना पड़ेगा। राहुल जी ने कहा है और दिल्ली में यही है कि आज नहीं तो कल देना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब सवालिया निशान खड़ा हो गया और पूरे देश में व्यापक रूप पे ये कार्रवाई चल रही है। पार्टी सारी इंडिया ब्लॉक की जितनी दल है वो सब इस बात पे।
1: हुड्डा साहब, खड़गे जी ने कल न्योता दिया था सारी इंडिया अलायंस एमपीज को कि आइए आप लंच करिए जनपथ होटल पे। वो लंच इतना लंबा चला कि रात तक छत्रसाल स्टेडियम तक खींच गया। आज फिर न्योता है दोपहर में कि आइए कनॉट प्लेस में लंच करिए। दीपिंदर जी कल भी थे, वो तो बस के ऊपर भी चढ़ गए थे तिरंगा को लेकर, आज भी लंच के लिए गए थे, सुबह आना था आज नहीं आ पाए, तो वो भी उधर गए हुए हैं धरना प्रदर्शन में। आप इस पूरे दौरान भाजपा कह रही है ये धरना नहीं ड्रामा है।
0: ये देखिए प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र को हर उसको अधिकार है किस तरह से प्रदर्शन करना है। जब जाने नहीं देंगे तो करेंगे, और विपक्ष के पास क्या है, एक इशू है और उसके लिए जब ये सरकार आंख बंद करे बैठी है, कान बंद करे बैठी है, तो यही तरीके हैं जगाने का, जनहित के लिए बात।
1: डंडे वंडे पड़े कल दीपिंदर जी को? कोई डंडे वंडे पड़े?
0: कौन
1: दीपिंदर जी को? क्योंकि सारे कांग्रेस एमपीज कह रहे थे कि बर्बरता हुई।
0: आप पूछो, तो मेरे को पता नहीं।
1: आपको नहीं बताया?
0: मैं तो यही हूँ, चंडीगढ़ हूँ।
1: अच्छा, नहीं हुड्डा जी, इस दौरान बीजेपी ये भी कह रही है कि ये देखिए ये कांग्रेस का ड्रामा है, आप ये देखिए कितने एमपीज आए, कांग्रेस के खुद के जो 90 के ऊपर एमपी हैं, आधे से ज्यादा एमपीज नहीं आए, टीएमसी से सिर्फ एक दो एमपीज आए, डीएमके नहीं आई, बाकी समाजवादी पार्टी भी नहीं आई।
0: पहले दिन सारी पार्टियां जितनी इंडिया अलायंस के सारी पार्टियां वहां थी, बाकी आज किसी को काम हो गया तो कोई नहीं आया होगा, कल आ जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब एकजुट है इंडिया ब्लॉक के जितने भी।
1: आपको सभी आ रहे हैं?
0: हाँ।
1: समाजवादी पार्टी कहती है हमें तो न्योता ही नहीं आया
0: है?
1: समाजवादी पार्टी कह रही है
0: उनका आए थे ना नुमाइंदे, आए थे उनके।
1: अच्छा, न्योता चला जाएगा उनको
0: आए थे।
1: वापिस हुड्डा साहब हरियाणा के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने बोला ये पूरी वोट चोरी की बात हरियाणा से शुरू हुई थी, कांग्रेस ने हरियाणा के बाद
0: नहीं महाराष्ट्र से भी हुई,
1: मतलब इकट्ठे चुनाव हुए थे, हरियाणा पहले हुआ था फिर महाराष्ट्र हुआ था, दोनों की तभी से बात शुरू हुई थी। पर हरियाणा में हुड्डा साहब, क्या सिर्फ जो कांग्रेस का चार्ज है वोट चोरी हुई थी, या सिर्फ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस
0: नहीं
1: हुआ?
0: मैंने जो कहा नहीं, बातों का सवाल तो नहीं मिला इलेक्शन कमीशन ने, जवाब क्यों नहीं दे रहा
1: इलेक्शन कमीशन?
0: हाँ देखो, बैलेट आमतौर पर क्या होता है, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, जो उसमें जीतता है वही पार्टी जीतती है। पोस्टल बैलेट में 90 में से 74 में हम जीते और मशीन आए तो हम 37 आ जाए, ये जतने वाली बात नहीं।
1: हुड्डा साहब, एक सवाल, जब हरियाणा के रिजल्ट्स आए थे सबको लगा था कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार है, आप कह रहे हैं वोट चोरी, बहुत लोग कहते हैं कि ये वोट चोरी नहीं, ये गुटबाजी थी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया, हुड्डा कैंप वर्सेस शैलजा कैंप वर्सेस सुरजेवाला कैंप हो गया, एक दूसरे को हराने में बीजेपी निकल गई।
0: ये आपकी बनाई हुई चीजें हैं, कोई कैंप नहीं है, कांग्रेस एक है, यूनाइटेड
1: कांग्रेस, यूनाइटेड है
0: कांग्रेस, यूनाइटेड, और यूनाइटेड ही इलेक्शन लड़े हम,
1: कोई गुटबाजी नहीं
0: हुई। नहीं, हाँ विचारों का स्वाभाविक है, हर परिवार में विचारों का मतभेद हो सकता है, मेरा आपका भी हो सकता है, मनभेद नहीं है हमारा किसी का।
1: अच्छा, मतभेद है, मनभेद
0: नहीं है।
1: तो अभी यूनाइटेड फ्रंट है।
0: मनभेद देखना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में देखो, वहां के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, वहां के एमपी जाते नहीं वहां, और अम्बाला चले जाओ, विज साहब से बात कर लेना, उनका क्या है, मतलब वो तो मनभेद की बात कह सकते हो, लेकिन कांग्रेस में कोई मनभेद नहीं है।
1: हुड्डा साहब, ऐसा क्योंकि अभी उस चुनाव की बात कर रहे हैं,
0: क्योंकि आपका तो काम है ये, आप तो पत्रकार हो, आपने तो ये दिखाना ही है।
1: चलिए, आप कह रहे हैं हमारा काम यही है, तो मैं
0: आपको भी आपको जो कुछ ना कुछ करना ही है ना भाई, मार्केटिंग करना भी तो आपका काम है ना, मार्केटिंग करते हो।
1: वो बयान हमने थोड़ा दिए थे,
0: कोई दिखा दोगे ने आके जो बोला। ये दिखा दोगे, ये यू बढ़ गया, ये यू बढ़ गया, यही दिखाते रहते हो भाई, कोई बात दिखाओ ना आप, कहां किसने कहा, या तो कोई आदमी बताओ भाई उसने ये किया।
1: अरे
0: चुनाव में सब एक हो गया,
1: जी ने क्या क्या नहीं बोला था उस वक्त, कुमारी शैलजा जी ने क्या क्या नहीं बोला था,
0: कांग्रेस की वोट मांगी, कांग्रेस की वोट मांगी, मेरे साथ कांग्रेस की वोट मांगी।
1: अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं सब, चलिए अब इस बीच में, क्योंकि आप कह रहे हैं मेरा जॉब है मार्केटिंग करना, पर इसमें एक और सवाल आता है, मैं अपना जॉब ही कर रही हूँ, उस वक्त ये भी बात हुई थी कि देखिए जो हुड्डा कैंप कहते थे उस वक्त आपको, इन्फ्लुएंस है,
0: कौन कहता था, आप कहते थे
1: सर, मीडिया मान,
0: आप तो
1: कह रहे
0: मीडिया, आप मीडिया मीडिया ही हो ना, आप लोग कहते थे कैंप, हमारे तो कोई कैंप कंपनी है, कोई पार्टी में किसी का कैंप नहीं होता, पार्टी एक होती है।
1: तो ये कहा जाता था क्योंकि जहां पर जो इन्फ्लुएंस था, चलिए आप कैंप ना कहिए, पर जो हुड्डाज का इन्फ्लुएंस था वो रीजनल पॉकेट्स में था, जो हुड्डा जी का इन्फ्लुएंस था, जो आपका इन्फ्लुएंस था जो आपका, वो रीजनल पॉकेट्स में था, साउथ हरियाणा में नहीं था, फिर जो नॉन जाट एरियाज में वहां नहीं था, तो इसमें थोड़ा रह गए।
0: कौन सा नॉन जाट एरिया
1: सर, ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस,
0: ये तो तुम्हारी बनाई हुई कहानी है, छत्तीस बरादरी कांग्रेस को वोट दी है, मेरी बात सुनो आप
1: जी,
0: बावजूद इसके वोट चोरी के, हमारा और बीजेपी का वोट का डिफरेंस 0.4

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
4: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
5: Money, money, money, money, every month.
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है.
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
9: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
10: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: पंजाब चुनाव से पहले सबसे बड़ी पंचायत. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हर सवाल पर होगी खुलकर बात. देखिए पंचायत आज तक पंजाब 8 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर.

और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसीलिए बेचैन है बिचौलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ आज फिर देश भर में विपक्ष का बड़ा मोर्चा। पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, जम्मू में इंडिया ब्लॉक, सड़क पर लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का हल्ला बोल।

नहीं रहे सिनेमाई पर्दे पर बगावत का सबसे बड़ा चेहरा। बहुआयामी प्रतिभा वाले फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक। सदमे में बॉलीवुड। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन। 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया। मोबाइल

आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता। दिल्ली के नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाया, समाजवादी पार्टी के राजीव राय शामिल होंगे। प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने दर्ज की 3 FIR। और पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 70 वादे पूरे कर दिए, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी। दोपहर 2 बजे आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान।

0: देखिए अपनी खास पेशकश में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दिया कि आज देश भर में जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है सीईसी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू में भी प्रदर्शन किया गया और जम्मू में भी विपक्ष सड़क पर उतर आया, प्रदर्शन किया, दिल्ली से पटना तक, जम्मू तक सीईसी के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। और यहां पर देखिए पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, भीड़ को रोका गया है, लेकिन उससे पहले जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर ही बैठ चुके हैं। ये जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले आपने पटना से देखी और हो सकता है कुछ देर बाद आप दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देख पाए। जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त पूरे देश भर से आ रही है, इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखा रहा है। और ये देखिए यहां पुतला फूका गया, चुनाव आयोग का पुतला फूका गया, तो देखिए देश पिछले तीन दिनों से वो प्रदर्शन देख रहा है। दिल्ली में पहले आपने आकाशवाणी भवन में देखा जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए थे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर, और उसके बाद आपने कल वो तस्वीरें देखी जब जनपद पर प्रदर्शन करते हैं, जनपद पर लंच के बाद प्रदर्शन किया जाता है, जंतर मंतर की ओर जब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आज आपने पटना से कुछ तस्वीरें देखी जहां पर तेजस्वी यादव बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू से। और यहां पर भी विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है और सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इस वक्त वो तस्वीरें आपको पटना के जम्मू से आपको दिखा रहे हैं। पटना से पहले आपने तस्वीरें देखी और फिर आपको याद दिला दे दिल्ली में भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। चार तस्वीरें देखी अलग अलग जगह की तस्वीरें, पटना में आपने वो तस्वीरें देखी तेजस्वी यादव चढ़ गए थे बैरिकेडिंग पर, उसके बाद हैदराबाद से आपने वो तस्वीरें देखी, बेंगलुरु से भी वो तस्वीरें सामने आई, और अब जम्मू से। ये चार तस्वीरें अलग अलग राज्य की, अलग अलग शहर की, जहां जमकर प्रदर्शन विपक्षी तरफ से किया जा रहा है, मुद्दा वोट चोरी का बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है और इस्तीफा मांगा जा रहा है ज्ञानेश कुमार का सीईसी। और आइए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी की चुनावी राजनीति में एक बार फिर भक्ति के रंग की चर्चा है। अब ये भक्ति का रंग चढ़ा है समाजवादी पार्टी पर और वो भी अयोध्या में। आज अखिलेश यादव अयोध्या जा रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया। अखिलेश उसी कथा में जा रहे हैं, खबर है कि हनुमानगढ़ी भी जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे।
1: अयोध्या के रसूलाबाद में भगवत भक्ति का मंच सजा है, जहां हजारों हजार की तादाद में भक्त हैं, मंच पर महंत हैं, समाजवादी रंग के गुब्बारों से सजे पंडाल हैं, श्री राधे कृष्ण की भक्ति है, नेता हैं, समर्थक हैं, ये चुनावी सियासत की शक्ति है। अयोध्या में रामलला के मंदिर से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर ये भक्ति कथा का पंडाल पिछले हफ्ते भर से सजा है। यहाँ इलाके के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज नारायण उर्फ पवन पांडे रोज कथा सुन रहे हैं, आरती भजन पूजन कर रहे हैं और अब इसी मंच पर अखिलेश यादव का इंतजार है, क्योंकि भक्ति कथा की शुरुआत से पहले ही पवन पांडे ने अखिलेश और डिंपल को इस पुण्य आयोजन का निमंत्रण सार्वजनिक तौर पर दे रखा था।
2: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है, वो कथा का श्रवण करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे और देवकुल क्षेत्रवासियों का
1: माफ भी करेंगे। अखिलेश यादव अयोध्या में जिस जगह पर भागवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं वहां से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बमुश्किल 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन खबर है कि अखिलेश रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे।
3: अच्छा मंदिर बन के करीब करीब तैयार हो रहा, वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए सब परिवार आएंगे।
1: हालांकि चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि मंदिर तो नहीं लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। इससे पहले 2022 के चुनाव के दौरान 25 फरवरी को अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए थे और गदा हाथ में लेकर संतों का आशीर्वाद भी लिया था। अखिलेश रामलला के दर्शन करने जाएं या ना जाएं, उनकी सहयोगी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिन पहले ही अयोध्या दौरे से लौटे हैं और उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। अजय राय सलाह देते हैं कि अयोध्या की पावन भूमि पर आने वालों को भगवान राम के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए।
4: अब तो उनकी अपनी इच्छा है, पर अयोध्या धार्मिक नगरी है, ये धर्म की नगरी है, सभी के लिए भगवान का आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद मिलता है।
5: चुनाव तो लेकिन राम जी के नाम पे एक बार लड़ रहे हैं, तो राम जी का दर्शन भी नहीं करने जा रहे हैं।
4: तो ये भगवान राम तो कणकण में विराजमान है, हम सबके दिल में भगवान राम है और भगवान का स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
1: दरअसल 2027 के चुनाव करीब आते ही सियासी दलों और नेताओं का धर्म प्रेम सार्वजनिक रूप से दिखने लगा है और इसके पीछे कहीं न कहीं वोट जोड़ने का लक्ष्य नजर आता है। चाहे वो अयोध्या से 100-125 किलोमीटर दूर रायबरेली के ऊंचाहार में यूपी के मंत्री मनोज पांडे की ओर से कराई गई शिव महापुराण कथा हो या फिर समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे की ओर से कराई जा रही भागवत कथा। प्रखर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की इस सियासी पेशगी में हर दल की नजर वोटर पर है। दरअसल जिस मनोज पांडे की ओर से आयोजित कथा के मंच पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे, वो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, लेकिन पाला बदलने के बाद रायबरेली के इलाके में बीजेपी के पास एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा था जिसके पास समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गैर यादव वोट बैंक भी था। अब अखिलेश ने उसी का मुकाबला करते हुए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पवन पांडे को यूपी चुनाव का सबसे पहला उम्मीदवार अयोध्या सीट से घोषित कर रखा है। मयंक शुक्ला के साथ समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: अखिलेश के अयोध्या दौरे पर जाने और राम मंदिर दर्शन को नहीं जाने को अब बीजेपी पूरे सनातन का अपमान ठहरा रही है।
6: जयशंकर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव अब राम जा रहे हैं, कह सकते हैं कि अयोध्या जा रहे हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे।
7: जब राम मंदिर नहीं जाएंगे तो प्रायश्चित कैसे कर पाएंगे? पहले राम अयोध्या जाएं और अयोध्या जा करके राम मंदिर न जाएं, तो फिर अयोध्या जाने का मतलब क्या है? जिस तरह से दुनिया में हर जो क्रिश्चियन ये चाहता है कि वेटिकन सिटी में जा करके अपने जीवन को धन्य करें, हर मुसलमान चाहता है कि मक्का मदीना में जाके अपने जीवन को धन्य करें, हर हिंदू का ये सपना होता है कि अयोध्या में जा करके जो उस पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। तो 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, न उसमें भाजपा थी, न सपा थी, न कांग्रेस थी, 500 वर्षों से। और अखिलेश जी अयोध्या जाके और राम जी का दर्शन न करें, उनसे जा करके अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित न करें, जो उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, माँ सरजू जी के नदी को लाल कर दिया, तो जाके प्रायश्चित करें, वहाँ क्षमा मांगे। तो भगवान है, हम लोग तो रोज गलतियां करते हैं और समान भगवान के सामने जाके क्षमा मांगते हैं, तो भगवान के यहाँ जाके क्षमा मांगेंगे तो हो सकता है भगवान इनको पूर्व कर्मों के लिए क्षमा कर दें और अयोध्या में जा करके राम का दर्शन न करें। तो ये तो पूरे सनातन धर्म का अपमान है, ये कि आप वहाँ जा करके और क्या करेंगे? अयोध्या में क्या है भाई? अयोध्या तो भगवान श्री राम की नगरी है, और वहाँ जा करके या पूरा प्रचार करके कि हम अयोध्या जा रहे हैं और राम का दर्शन न करें, तो इससे बड़ा सनातन का अपमान क्या हो सकता है?
0: तो अखिलेश का अयोध्या दौरा चुनावी सियासत के लिहाज से कई मायनों में अहम है, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते समाजवादी कदम की बात हो या पीडीएम में पी फॉर पंडित वाले सवर्ण वोटर की एकजुटता की बात। लेकिन क्या राम मंदिर नहीं जाकर अखिलेश अपनी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व फॉर्मूले पर फिट सियासत कर पाएंगे? हमारे साथ अयोध्या में मौके से संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। समर्थ, ये बताइए वहां इस वक्त क्या क्या इंतजाम है अखिलेश के दौरे को लेकर? वहां वो आज पहुंच रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में।
8: रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सियासी बिसात बिछना अभी से शुरू हो गई है। ये जंग कुल मिलाकर प्रखर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की है। कुछ दिन पहले रायबरेली में एक ऐसा ही मंच सजा था जहां कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने आयोजन किया था और मुख्यमंत्री योगी पहुंचे थे। अब कुछ दिन बाद एक भागवत हो रही है रामनगरी अयोध्या में, जहां पर मंच सजाया है पूर्व मंत्री पवन पांडे ने, जो अयोध्या से उम्मीदवार भी हैं समाजवादी पार्टी के, और मुख्य अतिथि के तौर पर आज समापन का दिवस है तो पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहले आपको तैयारियां दिखा दें और मंच दिखा दें कि मंच जो है वो कुल मिलाकर यहां पर सज चुका है। ये पूरी भागवत कथा 2 तारीख से चल रही है और लगातार चल रही है। हमारे साथ पवन पांडे साहब भी हैं जिनसे हम यहाँ बातचीत भी कर लेते हैं। पवन जी, सनातन समाजवादी पार्टी और ब्राह्मण सम्मेलन, और अब आप ये भागवत करा रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे, सियासी संदेश क्या देना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर यहाँ?
9: नहीं, ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा थी। आज 8 अक्टूबर है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में, और हमारे देवतुल्य क्षेत्रवासी सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना और देखना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2011 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और फिर आज 2026 में आ रहे हैं। व्यासपीठ पर परम पूज्य हमारे कथावाचक डॉक्टर जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं, उनके सिर्फ मुंह से
0: तैयारियां तो यहाँ पर की, लेकिन जबरदस्त ये बताइए कि अवधेश प्रसाद ने भी ये कहा है कि जब तक इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर नहीं बनता अखिलेश रामलीला के दर्शन को नहीं जाएंगे, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए?
8: कर रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं राम मंदिर का।
9: देखो, ऐसा है, हम बीजेपी के कोई बात के जवाब नहीं देनी चाहिए। जिस दिन बीजेपी वाले ये बता देंगे कि बीजेपी संघ और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी जो राम मंदिर में किया है, इनके मुख पे कालिक पुत गई है और इस कालिक को ये चाहे जितना फिनाइल लगा के साफ करे साफ न होए, तो ऐसे चोरों की बातों का जवाब हमें देते
8: आने वाले दिनों में।
0: चलिए, शुक्रिया शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। और देखिए, वैसे अयोध्या यू तो यूपी की सियासत में पिछले 4 से 5 दशकों में सबसे बड़े फैक्टर के रूप में चली आ रही है, लेकिन इस बार अयोध्या में विपक्षी सियासत के मौके और दांव भी है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अयोध्या में 5 सदियों बाद रामलीला के भव्य मंदिर की स्थापना का श्रेय लेती है, सीएम योगी भी अक्सर सार्वजनिक मंचों से यूपी की धार्मिक सांस्कृतिक पहचानों की भव्यता दिव्यता की पुनर्स्थापना के दावे करते हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी के ऊपर संगीन सवाल खड़े करती है।
10: विरासत के रूप में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और मां विंध्यवासिनी के धाम में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो या भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की परिकल्पना काशी में हो, मथुरा वृंदावन की चहल पहल हो, आज ये नए यूपी की नए भारत की पहचान बन गई है।
0: यूपी की राजनीति में अब बात दलित वोट की सियासत की करते हैं, और इस बार इस सियासत में नई एंट्री बिहार से हुई है, वो चिराग पासवान की है। यूपी में दलित सियासत को लेकर चिराग कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस कार्यक्रम से लगाया जा सकता है। आज रामविलास पासवान की 6ठी पुण्यतिथि है, अक्सर चिराग पासवान इस मौके पर पटना में आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार यह आयोजन बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर रिसोर्ट के अंदर पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को चिराग पूरी तरह पारिवारिक कार्यक्रम बताते हैं, लेकिन दरअसल ये राजनीतिक कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम में चिराग ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक को निमंत्रित किया है। सीएम योगी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, लखनऊ में इस आयोजन के बहाने चिराग पासवान ने यूपी की सियासी नब्ज टटोलने की शुरुआत की है, क्योंकि चिराग कह चुके हैं कि यूपी में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तय हो चुका है, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, किससे होगा, कब होगा। चिराग ने हमारे संवाददाता से क्या बात की वो आपको सुनाते हैं।
11: चिराग जी, आपने सभी दलों को, यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सभी को बुला रहे हैं और 2027 में चुनाव भी है, क्या कुछ कनेक्शन?
12: मैं कतई आज के दिन को या आज के इस मंच को, आज के इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ के नहीं दे सकता।
11: अगर इन केस एनडीए के साथ आप हैं यहाँ या 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये समय नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से है ये सवाल।
12: देखिए आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि अलायंस का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा। गठबंधन की राजनीति में मैं मेरी पार्टी लंबे समय से हम लोग रहे हैं। वीपी सिंह जी की सरकार में भी गठबंधन की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल साहब की हो, अटल जी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो या मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, गठबंधन राजनीति का हिस्सा लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा रही है कि जहां पे गठबंधन हो अच्छी बात है, बट जहां पे गठबंधन अगर नहीं भी होता है तो पार्टी की तैयारी हर सीट पर हम लोग।
0: और आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की तो खबर है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को लेकर अभी तक कोई खबर सामने आई है, वो भी पहुंच रहे हैं?
6: देखिए मानशु, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ उनको न्योता दिया गया है, साथ ही साथ और अन्य दलों को दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस समय और गवर्नर उत्तर प्रदेश की वो भी पहुंची हुई हैं। और जिस जो प्रोग्राम है कह सकते हैं उसके लिए साफ तौर से सभी दलों को एक साथ एकजुट रखने की बात कही गई थी, इसीलिए चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सभी दलों को इन्वाइट किया था। हालांकि अभी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर पहुंचे हैं, लेकिन बाकियों की भी आने की उम्मीद है। प्रोग्राम लगातार जारी है, एक साथ एकजुट, 2027 का चुनाव भी है और ऐसे में पहली बार जिस तरीके से आयोजन यहां पर किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही, श्रद्धांजलि मनाई
0: जा रही, लक्ष्य लंबा है और दूर के लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को जोड़ के। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा के खातिर भारत में
1: 25 साल पहले 2001 को आज की ही तारीख जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 से जनसेवा की जो शुरुआत हुई वो बिना रुके आज भी जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर और अब सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे। मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं में शामिल है। गुजरात में 3 लगातार चुनावी जीत के बाद 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 में भी बीजेपी को लोकसभा में सरकार बनाने का जनादेश मिला। मोदी के 25 साल के शासन की कहानी को उनके समर्थक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में देखते हैं। गुजरात में प्रशासनिक सुधारों से लेकर केंद्र में जनधन, उज्ज्वला आवास, स्वच्छ भारत, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलुओं तक सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
2: सेवा का संदेश सिर्फ कथन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए और वो आप सभी मेरे नौजवान साथी, देश के कोने कोने से मोटरसाइकिल पर निकले हुए साथी, आप सबने करके दिखाया है।
1: आज जब जनसेवा के क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यक्रमों के साथ इसका जश्न मनाया जाएगा। पीएम मोदी की जन्मभूमि वड़नगर से उनकी कर्मभूमि वाराणसी के लिए निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा वाराणसी पहुंचेगी तो वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वड़नगर पहुंचेगी। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो।

वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा।

0: पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल लायंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

हमेशा के लिए सो गया सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाला क्रांतिवीर, सिनेमा के नट सम्राट नाना पाटेकर का निधन, गोवा में पड़ा दिल का दौरा, आज ही पुणे में अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने जताया शोक। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन, 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया, मोबाइल और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसलिए बेचैन है बिचौलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ आज फिर देश भर में विपक्ष का बड़ा मोर्चा, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, जम्मू में इंडिया ब्लॉक सड़क पर उतरा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज फिर खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता, दिल्ली के नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाया, समाजवादी पार्टी के राजीव राय भी शामिल होंगे, चारों तरफ दिल्ली पुलिस की किलेबंदी। पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 70 वादे पूरे कर दिए, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, दोपहर 2 बजे आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल, आज तक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप 100 से।

0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह निधन। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोवा स्थित अपने घर पर हार्ट अटैक आया। उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक CPR दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया। वहां पहुंचने पर वो बेहोश मिले। गोवा के जिस अस्पताल में नाना पाटेकर ने अंतिम सांस ली, वहां के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आखिरी पलों में नाना पाटेकर बेचैन थे और पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने एक दोस्त को मैसेज कर लिखा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार पुणे स्थित उनके फार्म पर किया जाएगा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे बॉलीवुड समेत फैंस में शोक की लहर। मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक सभा के दौरान नाना पाटेकर की मौत का किया जिक्र। बोले, नाना फिल्मी आसमान में परिंदे की तरह थे। पीएम ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वो एक बेहतरीन कलाकार थे जो कभी बंधन में नहीं रहे, परिंदों की तरह उड़ान भरी। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे। नाना पाटेकर ने अपने करियर में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए। गंभीर और दमदार भूमिकाओं के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी और व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अंकुश, प्रतिघात, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, खामोशी, द म्यूजिकल, अब तक 56, अपहरण, राजनीति, वेलकम और वेलकम बैक उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल। 1994 में आई क्रांतिवीर नाना पाटेकर के करियर की सबसे अहम फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले परिंदा और बाद में अग्निसाक्षी के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। कुल मिलाकर उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार मिले हैं। कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। नाना पाटेकर ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उनकी निर्देशित फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में रही। नट सम्राट जैसी मराठी फिल्म में भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। वो हिंदी और मराठी दोनों सिनेमा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक की तैयारी के दौरान मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ कड़ी सैन्य ट्रेनिंग भी ली थी। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर जवानों के साथ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 2 हफ्ते से ज्यादा समय सैनिकों के बीच बिताया और अलग अलग पोस्ट पर जाकर उनका हौसला बढ़ाया। बाद में उन्होंने बताया कि वे उस दौरान क्विक रिएक्शन टीम यानी कि QRT का हिस्सा भी रहे थे। सेना के जवानों के प्रति उनका सम्मान कई मौकों पर भी सामने आया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर। कई नेताओं ने जताया दुख। पीएम मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, उनके निभाए किरदार कई पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने इसे कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। महाराष्ट्र CM फडणवीस ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया। बोले, जितने शानदार पर्दे पर थे उतने ही शानदार उनके विचार भी थे। CM फडणवीस ने नाना पाटेकर को याद करते हुए कहा, बेबाकी और निडरता नाना पाटेकर के व्यक्तित्व की पहचान थी। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि मशहूर अभिनेता और संवेदनशील समाज सेवी का निधन कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी नाना पाटेकर की मौत पर दुख जताते हुए कहा, भारतीय सिनेमा ने अपनी सबसे दमदार, सच्ची और बेमिसाल आवाजों में से एक खो दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, उनके जीवंत अभिनय ने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया। उनका निधन फिल्म और कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया। कहा, नाना पाटेकर ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, नाना पाटेकर ने अपनी दमदार अदाकारी और संवाद अदायगी और खास अंदाज से कई किरदारों को अमर बना दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर मन भारी हो गया। नाना की फिल्में और उनके किरदार लंबे समय तक लोगों को याद रहेंगे। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने नाना पाटेकर के निधन को चौंकाने वाला और बेहद दुखद बताया। कहा, बॉलीवुड ने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाने में माहिर कलाकारों को खो दिया। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने नट सम्राट, क्रांतिवीर और परिंदा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को याद किया। बोली, सच्ची अभिव्यक्ति और सामाजिक जागरूकता का बेहतरीन संगम है। अक्षय कुमार ने वेलकम फिल्म की सीन का एक फोटो पोस्ट करते हुए नाना पाटेकर की मौत पर जताया दुख। कहा, खुशकिस्मत मानता हूं कि आपके साथ काम करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। मौके पर सभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को कहा कि आज दुनिया भर में गेमिंग सेक्टर में करोड़ों लोग भारत से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय युवा ई स्पोर्ट्स से लेकर गेमिंग क्रिएटर्स बन गए हैं। आज भारत में ऑडियो विजुअल गेमिंग तेजी से बढ़ी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान तेजी से हो रहे डिजिटल क्रांति में साइबर सुरक्षा और फ्रॉड को लेकर चिंता भी जताई। बोले, लोगों को साइबर फ्रॉड से सजग रहने की जरूरत है। आईएमसी 2026 इवेंट के दौरान टेलीकॉम कंपनियों समेत कई टेक्नोलॉजी कंपनियां भी शामिल हुई। 6G AI और साइबर सिक्योरिटी पर हुई चर्चा। SIR के विरोध में पटना में विपक्ष का हल्ला बोल, तेजस्वी यादव समेत कई RJD नेता हिरासत में। सचिवालय के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिस पर तेजस्वी यादव चढ़ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस आज पूरे देश में काला दिवस मना रही है। आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता। समाजवादी पार्टी के राजीव राय शामिल होंगे। प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने दर्ज की 3 FIR। CDI चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। 15 अक्टूबर से लगने वाले UPI MDR शुल्क को वापस लेने की अपील की। आज तक पंचायत हरियाणा के मंच से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार का सियासी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बड़ा दावा किया। बोले, हर अग्निवीर को देंगे सरकारी नौकरी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 में से 70 वादे पूरे कर दिए हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है। इसके साथ ही किसानों की फसल MSP पर खरीदने का दावा। अकाली दल से गठबंधन के सवाल पर हरियाणा CM बोले, हमारा गठबंधन पंजाब की जनता के साथ। गुरुग्राम के जल भराव के लिए पुरानी प्लानिंग को जिम्मेदार बताया। आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय विस्तार के साथ जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का किया ऐलान। कहा कि पद से हटाने तक जारी रहेगा उनका आंदोलन। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को संविधान पर हमला बताया। आरोप लगाया कि सरकार संविधान के सिद्धांतों के मुताबिक काम नहीं कर रही और विपक्ष के प्रदर्शनों को रोका जा रहा है। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को CEC को हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। राहुल गांधी ने खुद पर दर्ज होने वाली FIR को लेकर भी तंज कसा। कहा, वे हर FIR को अपने लिए एक मेडल की तरह मानते हैं। अखिलेश यादव का दिल्ली पुलिस पर तंज। कहा, दिल्ली पुलिस के पास FIR दर्ज करने के अलावा कोई काम नहीं। बीजेपी का राहुल पर पलटवार। अध्यक्ष नितिन नवीन ने हमला बोलते हुए दिल्ली में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा, जिन देश विरोधी तत्वों का नाम हटाया जा रहा है, कांग्रेस उनका बचाव क्यों कर रही है। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। महिला पुलिस अधिकारी से कथित अनुचित व्यवहार का लगाया आरोप और कहा कि राहुल की कथनी और करनी में फर्क है। कैमरे में लाइव दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने मारपीट का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक करीब 40 से 50 प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर कर बदसलूकी, गाली गलौच और मारपीट की। दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती। 50 और अतिरिक्त CAPF की कंपनियां दिल्ली में की गई तैनात। पहले से ही करीब 150 CAPF की कंपनियां हैं तैनात। लखनऊ में जलभराव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा, वीडियो शेयर कर लिखा तैरिए कि आप लखनऊ में। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा पानी पर चलने वाला बुलडोजर ले आओ और जल भराओ भाजपा सरकार गिराओ। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा चिर परिचित धमकी भरे अंदाज में ये स्वीकार कर लिया कि उनके शासन में पीडीए का उत्पीड़न रुकने वाला नहीं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण ऐसे असंतुलित बयान आ रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में दंगे के बजाय गंगा को चुनेगी। आज भारतीय वायुसेना का 54वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में आईएएफ की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान में वायुसेना के विमानों का दिखा पराक्रम। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जांबाजी, फ्लाई पास्ट में हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। वायुसेना दिवस की इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य सटीक। साल 1932 में आज ही के दिन हुई थी वायुसेना की स्थापना। पटना के फुलवारी शरीफ में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, आग में झुलस कर महिला की मौत, घर का सामान खाक। यूपी के महोबा में 3 साल की मासूम से हैवानियत और झोपड़ी में सो रही बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी युवक हिरासत में। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े पुलिस चौकी के पास युवक की बदमाशों ने जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एसएचओ और चौकी प्रभारी को किया लाइन हाजिर। एमपी के खरगोन में कुएं में डूबी 2 मासूम बहनें, एक को बचाने के प्रयास में दूसरी ने भी गंवाई जान। मेरठ में शादी के अगले दिन युवक ने फंदा लगाकर दी जान, खेत में पेड़ से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश में छापेमारी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सामने विनायक गेस्ट हाउस में लगी आग, दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। बेतिया में खेलते खेलते अचानक गायब हुई 2 साल की बच्ची, सीसीटीवी में महिला के साथ जाती देखी पुलिस ने, 3 लोगों को लिया हिरासत में। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी की शिकायत पर युवक को पकड़ने गई पुलिस के साथ मारपीट, आरोपी ने वर्दी फाड़ डाली। शिमला में भारी भूस्खलन, संजौली बाईपास पर दर की पहाड़ी, बाल बाल बची गाड़ियां, वीडियो वायरल। लुधियाना में तेज रफ्तार स्कूल बस ने साइकिल सवार छात्रा को कुचला, छात्रा की हालत नाजुक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने बस स्टैंड गेट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोग गोली लगने से घायल। हैदराबाद में सिरपुर कागज नगर एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। इंदौर में सवारी का बैग लेकर फरार हुआ ऑटो चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीमापुर में 4 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। इंदौर में फिर धसी सड़क, नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज से बना गड्ढा, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में हवा में उछलते दिखे 2 सवार। देहरादून के कॉलेज में बड़ा बवाल, कॉलेज के बाहर तलवार, ईंट और पत्थर लेकर खड़े छात्र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सतना में रेत कारोबारी पर फायरिंग, 2 सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस। नागपुर में छोटी बच्ची से अश्लील कृत्य देख भड़के लोग, आरोपी को पीट पीट कर ली जान। एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर संभावित हमलों के लिए अमेरिकी सेना को तैयार रहने के आदेश, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले हो सकता है हमला। IRGC ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप करने की दी धमकी, हॉर्मुज से हो रही आवाजाही को बताया गैर कानूनी, कहा हॉर्मुज पर है ईरान की सेना का पूर्ण नियंत्रण। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हुती विद्रोहियों के हमलों में 3 लोगों की मौत, राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमलों में 1 शख्स की गई जान। ट्रंप ने हमास के 7 अक्टूबर हमलों की बरसी पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बात, इजरायली लोगों के प्रति जताया मजबूत समर्थन। ट्रंप ने 8 जंग खत्म करने की बात करते हुए खुद को बताया नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार, पहले के नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं से ज्यादा काम करने का दावा। टेक्सास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सभा में हंगामा, प्रदर्शन के चलते कई बार रोकना पड़ा भाषण। ट्रंप ने विरोधियों को बताया पेड़ प्रदर्शनकारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार को रूसी हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत की बात कही, कहा पुतिन ने अपने जन्मदिन पर दिया तोहफा। स्पेन में प्रदर्शनकारियों ने 87 साल के बुजुर्ग महिला की को दी श्रद्धांजलि। बुधवार को पिछले महीने घर से बेदखल की गई बुजुर्ग महिला की मौत पर भड़के थे लोग। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समर्थकों का इस्लामाबाद मार्च जारी, इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई कार्यकर्ताओं का मार्च। फिलीपींस में बॉक्सिंग रिंग में नजर आए पोलैंड के राष्ट्रपति, फिलीपींस के मशहूर बॉक्सर मैनी पेक्याओ से बॉक्सिंग के गुर सीखते दिखे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
0: और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आज एक बार फिर विपक्ष सड़कों पर है। देश के कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर और जम्मू में आज प्रदर्शन हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में आज प्रदर्शन का मोर्चा आरजेडी के तेजस्वी यादव ने संभाला। लोक भवन की तरफ मार्च करते वक्त तेजस्वी यादव और मीसा को पुलिस हिरासत में भी ले गई। इधर हैदराबाद में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोक भवन की तरफ मार्च किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को कल जंतर मंतर से रोकने और हिरासत में लेने के खिलाफ आज कांग्रेस काला दिवस मना रही है। बेंगलुरु से तस्वीरें आ रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज कांग्रेस फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी में दिख रही है। कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया है, जिसके बाद कनॉट प्लेस इलाके में सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और पुलिस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस आज काला दिवस मना रही है और इसी की तैयारी कर रही है कांग्रेस, जो अब कनॉट प्लेस में सांसद जुटने वाले हैं लंच के लिए। और हमारे साथ सीधा इस वक्त कनॉट प्लेस से जुड़ रही है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मौसमी, क्या तैयारी दिख रही है वहां पर?
3: देखिए, कल साउथ इंडियन क्विजीन था खरगे साहब के निमंत्रण में जो सागर रत्न था, और आज मल्टी क्विजीन है। कल इनर सर्कल जनपद के पास था और आज आउटर सर्कल आप देखिए तो आउटर सर्कल मोएट्स का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे है। पर यहाँ पे आप देखिए कि मेहमान नवाजी कह लीजिए या सुरक्षा बंदोबस्त कह लीजिए, यहाँ पे कितनी तैयारी है। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको टॉप एंगल से कि कितनी, यहाँ पे पीछे भी आप देखिए तो तमाम रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी रायट व्हीकल्स यहाँ पे लगी है, पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं। और कल बैरिकेडिंग इस तरह नहीं थी, आज तो मोइट्स के बाहर बैरिकेडिंग भी, डबल बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, एक इधर अंजलि और एक इधर, और कैमरा पर्सन जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं तो कल जो स्टोरी में ट्विस्ट आया था वो इन बसों की वजह से आया था।
0: जी मौसमी, आपके पास हम लगातार लौटते रहेंगे, वक्त कम है, फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो कुड़ू।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
5: गैसो फास्ट 27%,
4: इनो 9.2%।
6: गड़बड़ है।
7: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
8: यार लोन भूल गया। मैरी
9: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
10: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
11: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
8: इट। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक दो तुम थमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: JK Maxx Wipe Easy, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक बार दो तो थमका लगाने बस
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायट्री जूस।
9: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
3: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस।
10: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
3: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हमेशा के लिए सो गया सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाला क्रांतिवीर, सिनेमा के नट सम्राट नाना पाटेकर का निधन, गोवा में पड़ा दिल का दौरा, आज ही पुणे में अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने जताया शोक। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन, 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया, मोबाइल और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसलिए बेचैन है बिचौलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ आज फिर देश भर में विपक्ष का बड़ा मोर्चा, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, जम्मू में इंडिया ब्लॉक सड़क पर उतरा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज फिर खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता, दिल्ली के नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाया, समाजवादी पार्टी के राजीव राय शामिल होंगे, चारों तरफ दिल्ली पुलिस की किलेबंदी। पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 70 वादे पूरे कर दिए, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, दोपहर 2 बजे आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सिनेमा की दुनिया में कई सितारे आए, कई चमके और वक्त के साथ पर्दे से दूर हो गए, लेकिन एक नाम ऐसा रहा जिसकी आवाज सुनते ही किरदार आंखों के सामने जीवंत उठता, वो है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरूड जंजीरा में हुआ था। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। नाना का बचपन किसी फिल्मी सितारे की तरह आराम में नहीं बीता। कम उम्र में ही उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को करीब से देखा। घर चलाने के लिए सिनेमा के पोस्टर पेंट करने और जेब्रा क्रॉसिंग बनाने जैसे काम भी किए। इन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। शायद इसी वजह से उनके अभिनय में आम आदमी का दर्द दिखता था।
1: पहला शिकार गिराने के बाद 5 किलो मिठाई खिलानी पड़ती है।
2: एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा।
0: नाना ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और युवा उम्र में कला की ओर आकर्षित हुए। उनके भीतर कुछ अलग करने की इच्छा लगातार बढ़ती गई। उन्होंने विज्ञापन और आर्ट से जुड़े काम भी किए, लेकिन मंजिल आखिरकार उन्हें अभिनय की दुनिया तक ले गई। फिल्मों में आने से पहले नाना ने थिएटर में खुद को तराशा। उन्होंने मराठी और हिंदी थिएटर में एक लंबे समय तक काम किया और अपनी कला को निखारा। स्टेज ने उन्हें संवाद, भाव और किरदार की गहराई समझना सिखाया। यहाँ उन्हें अभिनय की असली परीक्षा का सामना करना पड़ा। यही रंगमंच आगे उनके फिल्मी सफर की मजबूत नींव बना। आज जिस नाना को पूरा देश पहचानता है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें लगातार मेहनत और इंतजार करना पड़ा। उन्होंने छोटे छोटे काम करते हुए अपनी पहचान बनाई, लेकिन संघर्ष को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। नाना ने फिल्मों में कदम रखने के बाद धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उनका अंदाज उस दौर के पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर सादगी और आवाज में गहराई उनकी ताकत बनी।
2: नेताओं के और गुंडों के धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो।
0: दर्शकों ने जल्द ही इस नए अंदाज को पहचान लिया। शुरुआत में छोटी भूमिकाएं करने के बाद उन्होंने 80 के दशक के मध्य में नकारात्मक और संजीदा किरदारों से लोगों का ध्यान खींचा। नाना पाटेकर ने 1978 की फिल्म गमन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनके भीतर बड़ा कलाकार छिपा था। इसके बाद उन्हें अलग अलग तरह के किरदार मिलने लगे। उनका नाम मजबूत होता गया। अंकुश ने नाना को गंभीर और प्रभावशाली अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने आम आदमी की बेचैनी और गुस्से को पर्दे पर उतारा। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा। यहीं से उनकी खास अभिनय शैली और मजबूत होती गई। परिंदा नाना पाटेकर के करियर की बेहद महत्वपूर्ण फिल्म बनी। फिल्म में उनका किरदार खतरनाक होने के साथ बेहद जटिल भी था। नाना ने किरदार के गुस्से दर्द को बेहद प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा। इस भूमिका ने उन्हें एक दमदार और बहुमुखी अभिनेता के तौर पर और मजबूत पहचान दिलाई। परिंदा के बाद नाना की पहचान और मजबूत हुई। बाद में क्रांतिवीर के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह सम्मान उनके अभिनय सफर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हुआ। लेकिन नाना के लिए असली पुरस्कार हमेशा दर्शकों का प्यार रहा।
3: यहाँ ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में।
0: क्रांतिवीर में नाना ने प्रताप नारायण तिलक का किरदार निभाया। उनका गुस्सा, दर्द और व्यवस्था के खिलाफ आवाज दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिल्म के कई संवाद आज भी याद किए जाते हैं। ये भूमिका नाना के करियर की पहचान बन गई। अग्निसाक्षी में नाना ने एक बिल्कुल अलग रंग दिखाया। उनका किरदार डरावना भी था और मानसिक रूप से जटिल भी। उन्होंने खलनायकी को सिर्फ गुस्से से नहीं, मनोविज्ञान से निभाया। यही वजह है कि उनकी भूमिका आज भी याद की जाती है। नाना पाटेकर को हिंदी सिनेमा के सबसे गंभीर अभिनेताओं में गिना जाने लगा। उनकी आवाज और चेहरे के भाव ही पूरा माहौल बदल देते थे। वो कम संवाद में भी बहुत कुछ कह जाते थे। अभिनय में ठहराव, संवादों में धार और चेहरे पर भावनाओं की गहराई, इसकी बदौलत नाना ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जिस अभिनेता को लोग गंभीर किरदारों के लिए जानते थे, उसने कॉमेडी में भी कमाल कर दिया। नाना ने साबित किया कि उनकी कला किसी एक शैली तक सीमित नहीं है। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, संवाद बोलने का अंदाज और चेहरे के हाव भाव ने कई सीन को यादगार बना दिया।
4: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं।
5: कंट्रोल।
0: वेलकम में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी का किरदार निभाया। गंभीर चेहरा, खतरनाक अंदाज और मजेदार संवाद का उनका ये किरदार अनोखा था। दर्शकों ने पहली बार उन्हें इस अंदाज में जमकर पसंद किया। उदय शेट्टी आज भी उनके सबसे लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है।
6: लोगों की मां बहन होती है।
0: वेलकम ने नाना की कॉमेडी को घर घर पहुंचा दिया। उनकी संवाद अदायगी और चेहरे के एक्सप्रेशन फिल्म की बड़ी ताकत बने। जिस अभिनेता से लोग गंभीर भूमिकाओं की उम्मीद करते थे, उसने सबको हंसा दिया। यही नाना की बहुमुखी प्रतिभा थी। अब तक 56 में नाना फिर एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आए। उनका किरदार कम बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी। आंखों और आवाज से उन्होंने किरदार की कठोरता दिखाई। ये फिल्म उनके गंभीर अभिनय की एक और मिसाल बनी। अपहरण में नाना ने एक अनुभवी और ताकतवर पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया। उनके अभिनय में सत्ता, राजनीति और अपराध की दुनिया की जटिलता दिखाई दी। किरदार छोटा नहीं बल्कि कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक बार फिर नाना ने अपनी मौजूदगी से सीन पर कब्जा कर लिया। राजनीति में नाना ने राजनीति की दुनिया का एक मजबूत किरदार निभाया। उनका अभिनय शांत था, लेकिन भीतर से बेहद प्रभावशाली। उन्होंने दिखाया कि ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कभी कभी एक नजर भी पूरी राजनीति बदल सकती है। नट सम्राट में नाना ने एक बुजुर्ग रंगमंच कलाकार का किरदार निभाया। किरदार में एक कलाकार का अहंकार, अकेलापन और टूटन सब दिखाई दिया। नाना ने इसे बेहद भावुक और गहराई से निभाया। फिल्म ने उनके थिएटर प्रेम को भी फिर से सामने ला दिया।
2: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
0: नाना के अभिनय में थिएटर की छाप साफ दिखाई देती थी। संवाद बोलने का तरीका और भावों को पकड़ने की उनकी क्षमता अलग थी। वो सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय नहीं करते, किरदार को महसूस करते थे। यही वजह है कि उनके सीन इतने प्रभावशाली लगते थे। नाना की आवाज उनकी सबसे बड़ी अभिनय शक्तियों में से एक थी। वो एक ही वाक्य को अलग अलग भावों में बिल्कुल अलग बना सकते थे। गुस्सा हो या दर्द, उनकी आवाज सीधे दर्शक तक पहुंचती थी। यही आवाज उनके किरदारों की पहचान बन गई। नाना के कई यादगार सीन ऐसे हैं जहां संवाद बहुत कम है, उनकी आंखें ही किरदार की पूरी कहानी बता देती। दर्द, गुस्सा और बेबसी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। यही उनकी अभिनय कला की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। नाना ने पर्दे पर ऐसे कई किरदार निभाए जो आम जिंदगी से जुड़े थे। उनके किरदारों में मजदूर, पुलिस वाला, कलाकार और संघर्षकर्ता इंसान दिखाई दिया। शायद इसलिए दर्शकों को उनमें अपने आसपास का कोई व्यक्ति नजर आता था। यही जुड़ाव नाना को खास बनाता गया। फिल्मों से अलग नाना ने सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर चिंता जताई और मदद के प्रयास किए। उनका मानना रहा कि जरूरतमंद की मदद जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। इसी सोच ने उन्हें सामाजिक कामों से जोड़ा। नाना की पहचान सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं रही, वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी सामने आते रहे। कई बार उन्होंने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल सामाजिक कामों के लिए किया, यानी पर्दे का कलाकार असल जिंदगी में भी इंसानियत से जुड़ा रहा। नाना पाटेकर अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते थे। वो बात को घुमाने की बजाय सीधे शब्दों में अपनी बात रखते थे। उनकी यही आदत कभी तारीफ तो कभी बहस का कारण बनी, लेकिन उनकी शख्सियत में ये बेबाकी हमेशा दिखाई दी। बॉलीवुड में स्टारडम अक्सर दिखावे के साथ आता है, लेकिन नाना की पहचान हमेशा उनके कामों से ज्यादा जुड़ी रही। उन्होंने चमक दमक से ज्यादा किरदार की सच्चाई को महत्व दिया। शायद इसी वजह से वो भी जमीन से जुड़े कलाकार लगते थे। चमक धमक की दुनिया से दूर नाना हमेशा अपने किरदार को अलग अंदाज में जीने की कोशिश करते थे। नाना जब पर्दे पर आते थे तो कई बार अभिनेता दिखाई ही नहीं देता, सामने सिर्फ वही किरदार नजर आता जिसे वो निभा रहे होते थे। यही अभिनय की सबसे कठिन और खूबसूरत कला थी और नाना ने इसे अपने लंबे करियर में बार बार साबित किया। नाना ने नकारात्मक किरदारों को भी अलग अंदाज दिया। उनके विलन सिर्फ बुरे आदमी नहीं थे, उनके पीछे एक मानसिकता भी होती थी, इसीलिए दर्शक उनसे नफरत भी करते थे और उन्हें याद भी करते थे। ये उनकी अभिनय क्षमता की बड़ी मिसाल थी। एक तरफ क्रांतिवीर का गुस्सा और दूसरी तरफ वेलकम की कॉमेडी, नाना ने दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया को सहजता से निभाया। यही साबित करता है कि उनका अभिनय किसी एक रंग का नहीं था, उनके भीतर कई तरह के कलाकार एक साथ रहते थे। समय के साथ नाना ने अपनी भूमिकाएं भी बदली। युवा किरदारों से लेकर उम्रदराज और गंभीर भूमिकाओं तक उन्होंने सफर किया। उन्होंने खुद को किसी एक छवि में कैद रहने नहीं दिया। यही बदलाव एक लंबे करियर की पहचान थी। नाना की अभिनय यात्रा नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए बड़ी सीख है। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, मजबूत अभिनय जरूरी है। किरदार को समझना और उसे ईमानदारी से निभाना सबसे अहम है। शायद इसी वजह से उनका काम आज भी अध्ययन का विषय है। नाना ने कई बड़े पुरस्कार और सम्मान हासिल किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो किरदार हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। किसी अभिनेता के लिए दर्शकों की याद में रहना सबसे बड़ा सम्मान है और नाना इस मामले में बेहद सफल रहे हैं। बड़ी सफलता के बावजूद नाना की छवि एक सादगी पसंद कलाकार की रही। उनकी बातचीत में अक्सर दिखावे के बजाय सीधी बात सुनाई देती थी। वो खुद को बाकी लोगों से अलग दिखाने की कोशिश नहीं करते। यही सादगी उनकी लोकप्रियता का एक कारण थी। नाना ने जिस दौर से शुरुआत की वहां सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। हर मुश्किल के बाद उन्होंने खुद को और मजबूत किया। यही सफर आज उनकी कहानी को खास बनाता है। नाना के किरदार अक्सर गुस्से में दिखाई देते थे, लेकिन उस गुस्से के पीछे इंसान का दर्द भी छिपा होता था। वो सिर्फ चिल्लाते नहीं, उस भावना को जीते थे, इसीलिए उनका गुस्सा भी दर्शकों के दिल तक पहुंचता था। नाना का कमाल सिर्फ बड़े रोल में नहीं दिखाई देता, कई बार कुछ मिनट के सीन में भी वो पूरी कहानी पर छा जाते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। यही असली अभिनेता की पहचान होती है। जब किसी फिल्म में नाना का नाम आता था, दर्शकों को अभिनय की उम्मीद होती थी। उन्होंने वर्षों में ये भरोसा अपनी मेहनत से बनाया। उनकी फिल्में अलग अलग रहीं, लेकिन अभिनय की ईमानदारी कायम रही। यही भरोसा किसी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। उनकी आवाज, संवाद और अभिनय की शैली आज भी अलग पहचान रखती है। उन्होंने साबित किया कि अभिनय के लिए दिखावा नहीं, गहराई चाहिए, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। नाना पाटेकर को अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म क्रांतिवीर में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये सम्मान उनके लंबे और दमदार अभिनय की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। नाना पाटेकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये सम्मान कला के क्षेत्र में उनके योगदान की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना। फिल्मों में उनके अलग अलग किरदारों ने उन्हें घर घर तक पहुँचाया। वहीं सामाजिक कामों से जुड़े उनके प्रयासों ने उनकी पहचान को और व्यापक बनाया। नाना के अभिनय को फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भी सम्मान मिला। परिंदा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की खूब चर्चा हुई। उनके किरदारों में गुस्सा, दर्द और भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी। यही वजह है कि पुरस्कारों के साथ साथ दर्शकों का सम्मान भी उन्हें लगातार मिलता रहा। नाना ने सिर्फ अभिनेता बनकर ही सिनेमा में योगदान नहीं दिया, उन्होंने प्रहार का निर्देशन भी किया और कैमरे के पीछे की जिम्मेदारी संभाली। निर्देशन ने उन्हें कहानी और कलाकारों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। इससे साबित हुआ कि सिनेमा को लेकर उनकी समझ अभिनय से कहीं आगे थी। फिल्मों में पहचान बनाने से पहले नाना ने विज्ञापन की दुनिया में भी काम किया। उस दौर में छोटे छोटे कामों से अपने हुनर को आगे बढ़ाना पड़ा। यही अनुभव कैमरे के सामने उनके आत्मविश्वास का हिस्सा बना। धीरे धीरे विज्ञापन से उनका सफर फिल्मों तक पहुंच गया। नाना को अपने काम के प्रति गंभीर और अनुशासित अभिनेता के तौर पर जाना जाता था। शूटिंग के दौरान उनका ध्यान किरदार और सीन की जरूरत पर रहता था। उनके लिए संवाद बोलना ही अभिनय नहीं बल्कि परिस्थिति को महसूस करना भी जरूरी था। यही सोच उनके किरदारों को पर्दे पर ज्यादा वास्तविक बनाती थी। नाना पाटेकर के करियर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनकी फीस को लेकर भी सुनने को मलता है। बताया जाता है कि फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए मेहनताना मांगा था। पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने शाहरुख, सलमान, आमिर और अमिताभ से पहले अपना मेहनताना 1 करोड़ रुपए मांगा था। करगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर के जवानों के बीच करीब 60 दिन तक बिताने की बात कही जाती है। नाना के मुताबिक उन्होंने सैनिकों की जिंदगी, मुश्किलों और जज्बे को बेहद करीब से महसूस किया। बर्फीले पहाड़ों पर देश की रक्षा कर रहे जवानों को देखा। शायद यही वजह थी कि सेना से जुड़े किरदारों में नाना की भावनाएं पर्दे पर इतनी सच्ची नजर आती थी। नाना पाटेकर ने कमांडो फोर्स के जवानों के साथ भी समय बिताया। उन्होंने करीब से जाना कि कमांडो बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से गुजरना पड़ता है। शारीरिक चुनौती के साथ मानसिक मजबूती भी इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होती है। जवानों के इसी जज्बे को समझकर नाना ने अपने किरदारों में भी वही तेवर और अनुशासन उतारने की कोशिश की। कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, नाना पाटेकर का जुड़ाव राइफल शूटिंग से भी रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने राइफल शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक भी जीता। शूटिंग से इस अभिनय ने उनके भीतर अनुशासन, एकाग्रता और धैर्य को और मजबूत किया।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।
2: आ गया सोमवार और आ गए चकमक चाचा। एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा ना।
3: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
3: है।
2: हाँ,
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे, इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हमेशा के लिए सो गया सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाला क्रांतिवीर सिनेमा के नट सम्राट नाना पाटेकर का निधन। गोवा में पड़ा दिल का दौरा, आज ही पुणे में अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने जताया शोक। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन, 10 साल में तकनीक ने देश को बदल दिया, मोबाइल और डेटा हर आदमी के हाथ, डिजिटल विकास से रोका 5 लाख करोड़ का लीकेज, इसलिए बेचैन है बिचौलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ आज फिर देश भर में विपक्ष का बड़ा मोर्चा, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन, जम्मू में इंडिया ब्लॉक, सड़क पर उतरा, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज फिर खड़गे ने दिया इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लंच का न्योता, दिल्ली के नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में बुलाया, समाजवादी पार्टी के राजीव राय शामिल होंगे, चारों तरफ दिल्ली पुलिस की किलेबंदी। पंजाब और हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 70 वादे पूरे कर दिए, हर अग्निवीर को मिलेगी नौकरी, थोड़ी देर में पंजाब के सीएम भगवंत मान से खास बातचीत,

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बार फिर आज आपको बता देते हैं कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले कांग्रेस का लंच पार्ट टू की बात होगी, जो बस दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू ही होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भी कल की तरह लंच के बाद विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन चलेगा। बात होगी राहुल गांधी बनाम पुलिस की झड़प में वीडियो वॉर की, जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किसके क्या वीडियो हैं और किसकी क्या कहानी है। साथ ही हम आपको आने वाले वक्त में यह भी दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव की राहुल स्टाइल में बैरिकेटिंग वाला प्रदर्शन आज किस अंदाज में देखने को मिला, क्या हुआ पटना में। और आधे घंटे बाद देखिए नट सम्राट नाना पाटेकर पर खास पेशकश अलविदा नाना। लेकिन सबसे पहले जिस खबर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है वो हम आपको बता दें कि आज फिर से कांग्रेस की लंच पार्टी है। कल आपने जनपद पर कांग्रेस की लंच पार्टी देखी होगी, अब आज फिर से कनॉट प्लेस पर कांग्रेस की लंच पार्टी। अब सवाल यहां पर ये कि क्या आज भी बुधवार रिपीट होगा, यानी जो कल हुआ वो आज देखने को मिलेगा। क्या आज भी लंच के बाद विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरेंगे, क्या फिर जंतर मंतर की तरफ कूच किया जाएगा, और क्या फिर से पुलिस रास्ता रोकेगी, और अगर रोकेगी तो फिर कैसी तस्वीरें आएंगी, नारेबाजी होगी, धक्का मुक्की होगी, और क्या बात फिर हिरासत से लेकर रिहाई तक पहुंचेगी, क्योंकि दो दिन में दो बार भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये हिरासत में लिए जा चुके हैं, दो दिन में दो बार। तो क्या हैट्रिक आज लगेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि ये जो कल की तस्वीर है, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये कल की तस्वीर है, जहां सागर रत्न रेस्टोरेंट में पहुंचे थे जनपद पर, और यहां पर लंच करने के तुरंत बाद निकल गए। अब जो आप देख रहे हैं ना मोइट्स, ये आज की वेन्यू है, ये आज की जगह है जहां पर विपक्ष के सांसद पहुंचेंगे।
1: लोकतंत्र का हथियार है, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर देश के लोकतंत्र का चिरहरण पढ़ कर रहा है उसे देश को मुक्त कराना। लोकतंत्र का हथियार है, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर देश के लोकतंत्र का चिरहरण पढ़ कर रहा है उसे देश को मुक्त कराना।
0: मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौसमी, दो दिन से आप हर एक तस्वीर बता रही हैं और बता रही हैं कि कांग्रेस किस तरह से रणनीति अपना रही है और चुनौतियां खड़ी कर रही है दिल्ली पुलिस के सामने, सरकार के सामने। आज बताइए आज क्या देखने वाले हैं हम।
2: देखिए अभी आपको बता दें कि हम लोग वहीं खड़े हुए हैं आउटर आउटर सर्कल पे, सीपी के पीछे आप देख रहे हैं कि मोहित का पूरा रेस्टोरेंट है, पूरा मजमा है, तमाम नेता हैं। लेकिन आज कैसे मौजूद है, आज लाल टोपी यहाँ पे नजर आ रही है और राजीव राय यहाँ पे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राजीव जी कल नजर आ नहीं रहे थे, आज आ गए आप।
3: कल देर से सूचना मिली और मैं भी थोड़ा बाहर था, आते आते देर हो गई। सही समय पर सूचना थी, सही समय पर हम हाजिर हैं और लड़ाई को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे।
2: सर ये आज देखने को मिला कि आपके साथ कोई और भी सांसद आए हैं, क्या अध्यक्ष जी से आपको अखिलेश जी से ये संदेश आया कि आपको आना है?
3: हम कार्यकर्ता हैं, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के बिना संदेश और आदेश के हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई इन्वाइट करे।
2: कल हमने सुना था कि मिस कम्युनिकेशन हुआ, आप लोग को मैसेज नहीं पहुंचा था कि ऐसा खड़गे जी का सागर रत्ना का साउथ इंडियन लंच आप लोग नहीं किए।
3: देर से पहुंचा था, राष्ट्राध्यक्ष भी साउथ इंडिया से खा के पढ़ कर आए हैं, मैं भी वहीं से खाकर पढ़ कर आया हूं। तो मीनू ने देश के सामने मुद्दा, मीनू ने ये देश के सामने मुद्दा है, लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये लोकतंत्र के डकैतों से देश को बचाया जा सकता है नहीं बचाया जा सकता है, जो अघोषित आपातकाल है उसे छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस मुद्दे की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं।
2: तो यहाँ से आगे क्या योजना है? कल हमने देखा था कि चक्का जाम हो गया था, ली मेरिडियन के चौक पर हिरासत पे लिया गया।
3: राजघाट जाएंगे, यहाँ से हम
2: यहाँ से राजघाट जाएंगे। आगे अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि दबाव में आएंगे, सीईसी इस्तीफा देंगे या आप लोग को अपॉइंटमेंट ही दे दें?
3: अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बेसर्मी की पराकाष्ठा पार कर गए और सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद जहाँ उनको ऑलमोस्ट झूठा बोल दिया कि फार्म सिक्स को कोई उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, उसके बाद थोड़ी सी भी नैतिकता बची होती तो इस्तीफा दे दिए होते।
2: कल काफी गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया, ये कहा गया कि पीटा गया सांसदों को, जमीन पर फेंका गया, पुलिस ने हर जगह
3: महुआ मोहित्रा का फोटो मैंने देखा, आप ही लोगों के सेंडर पे बोला। और इस तरह का अगर आचरण जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहा है तो समझ जाओ कि तानाशाहों का अंत होने वाला है।
4: राजीव
2: यहाँ पे राजीव राय आज तक से खास बातचीत में हिमांशु ये बताते हुए कि हमें जैसे अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, यानी कि जो हमने खबर कल बताई थी कि कम्युनिकेशन गैप हुआ, मुलाकात समाजवादी पार्टी को मैसेज नहीं मिला, कल साउथ इंडियन लंच में मौजूद नहीं थे, क्योंकि सियासी मेन्यू है ना ये, तो आज मौजूद नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे, और पीछे आप देख रहे हैं कि मजमा तो लगा हुआ है, बैरिकेड आज पिछले कल से आज फर्क ये है कि कल इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी, रस्सी सिर्फ महज रस्सियां लगाई गई थी, लेकिन आज मोइट्स के चारों तरफ एक बैरिकेडिंग कर दी गई। आप लोग पीछे चलिए और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बसें लगी हैं, वही बसें जो हम लोग कल सोच रहे थे कि दिल्ली पुलिस की हैं, लेकिन एकाएक सांसद खुद उनमें बैठ गए थे। राजघाट यहाँ से जाएंगे, राजीव राय ने ये बता दिया है, और शायद मिंटो रोड पर आना के पास आना आउटर सर्कल पे सीपी के इसी की वजह
0: रंजीत रंजन क्या कह रही है सुनते हैं।
5: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा जा रहा है, लगातार हम अपनी मांगों को सरकार के पास रख रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। जो जवाब हम चुनाव आयोग से मांग रहे हैं वो जवाब ज्ञानेश कुमार के डिफेंस में सरकार दे रही है, यहीं से पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं है, पूरी दाल ही काली है।
0: देखिए ये आप रंजीत रंजन जो सांसद हैं उनको आप सुन रहे थे। अमित भारद्वाज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि बस वहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब बस वहां पर पहुंच चुकी है और वो फ्रेम में भी दिखाई दी मौसमी की। आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से आप क्या देख पा रहे हैं, क्या खबर आ रही है?
6: हिमांशु देखिए, जब हम बात कर रहे थे उससे मुश्किल से 10 मिनट के बाद एक के बाद एक तीन बसें यहां पर पहुंची थी। एक बार मैं मनीष को कहूंगा कि दूर से फ्रेम दे ताकि आपको होलिस्टिक व्यू जो होता है वो दिखाई देगा। यहां से तीन बसें लगाई गई हैं, ये वही बसें हैं जो कल भी लगी थी, जिसमें बैठ के इन्हीं बसों में सांसदों को आगे बढ़ना था और डिटेंशन की प्रक्रिया भी इसी से हुई। लेकिन आज मैनेजमेंट कैसे है, देखिए मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाला ये जो सड़क है ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क वैसे ही रहता है, इसमें बहुत जाम लगता है, और यहाँ पर क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है तो उसकी वजह से सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है। ये कांग्रेस के सेवा दल के सारे वर्कर्स हैं जो रोप का एक बैरिकेड बनाए हुए हैं ताकि जो सांसद आ रहे हैं वो इस रास्ते से मोइट्स तक जा पाए। आप आगे इस रास्ते में देखिएगा, मोइट्स जाने का पूरा रास्ता क्लियर करके रखा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आगे सेवा दल के जो वर्कर्स हैं वो लोग लगे हुए हैं, और इस पाथवे को बनाया गया है ताकि मोइट्स तक मूवमेंट हो पाए सांसदों की, और इसी रास्ते से लगातार सांसद आ रहे हैं। कुछ सांसद पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी भी मुझे लगता है पहुंच चुके, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी से वो आए हैं, आरजेडी से मैं सुधाकर सिंह को देख रहा था वो पहुंच चुके हैं। तो इस बार आज और कल में जो आप तस्वीर में डिफरेंस देखेंगे, ये बात मुझे कल रात सूत्रों ने भी बताया था कि आज वाले धरने में और भी ज्यादा जो संख्या है सांसदों की वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के सांसद आ रहे हैं। सर, राजघाट जाने का प्लान कन्फर्म हो गया है? जी, सारे कांग्रेस के सांसद अब एक एक करके मोइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2:10 हो गया है, तो आप समझ के चलिए कि थोड़ी देर में डिसीजन हो जाएगा कि अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। अगर बसों में बैठते हैं तो दिल्ली पुलिस आपको सचेत रूप में दिखेगी, अटेंटिव रूप में दिखेगी, और फिर यहां से आगे मिंटो ब्रिज की तरफ अगर गाड़ियां मुड़ जाती हैं तब तो राहत की सांस होगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि वहां से फिर रास्ता इसका मतलब है सीधे सीधे राजघाट के लिए जा रहा है। लेकिन अगर राजघाट नहीं जा रहे होंगे सांसद तो वैसी स्थिति में दिल्ली पुलिस फिर कल जिस तरह से डिटेंशन कर रही थी उसी तरह से करते हुए आपको हो सकता है दिखाई देगी। मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, खड़गे साहब वो पहुंचे हैं, और इनविटेशन आज का इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जयराम रमेश हमें दिख रहे हैं इस गाड़ी में, कम्युनिकेशन हेड हैं, वो अब बढ़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ रहे हैं मोइट्स की तरफ, और जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं कि खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पहुंच पाए। हम कोशिश करेंगे, अगर वो बात करते हैं तो उनकी बात आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि आरएएफ के द्वारा यहां पर सिक्योरिटी जो लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो सिक्योरिटी लगाई गई है वीआईपी मूवमेंट के लिए, वो जो है तरह से आप कहते हैं यहाँ पे एक लेयर बनाते हुए ताकि नेता वहां तक पहुंच पाए जहां मीटिंग चल रही है, लंच मीटिंग चल रही है। तो जिस बात के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि अब एक एक करके जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे,
0: अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, ये खबर बताना जरूरी है। जैसा आपकी तस्वीरों में भी कैद हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं जहां पर लंच होने वाला है। राजीव राय को तो आपने पहले सुन ही लिया, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त पहुंच चुके हैं लंच में, और इसके साथ ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयराम रमेश भी उनके साथ में बिल्कुल, और ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे गाड़ी से निकलते हुए और अब रेस्टोरेंट तक जाते हुए जहां पर बाकी के सांसद, विपक्षी सांसद पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद ये लंच अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, अब हो सकता है कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखें।
4: बाद में बोलेंगे, सब हम तैयारी करके बाद में बोलेंगे।
0: देखिए, बाद में बोलेंगे ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि जब निकलेंगे तब बोलेंगे। अब तब बोलेंगे या चल पड़ेंगे बस में बैठ के, इसका आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मौसमी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। मौसमी,
7: यहाँ का माहौल,
2: हाँ हिमांशु बताइए।
0: बीच बीच में बयान भी आ रहे थे इसलिए वो सुनवा रहे थे। मौसमी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और जब पत्रकारों ने पूछा कि बताइए क्या रणनीति, तो बोले बाद में बोलेंगे, आके बोलेंगे। तो आके बोलेंगे या चल पड़ेंगे बस में?
2: देखिए, रणनीति नहीं बताएंगे, यही स्ट्रैटेजी थी, लेकिन राजीव राय से हमने बुलवा ही लिया कि राजघाट जाएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अब राहुल गांधी और सारे जो नेता है वो किस तरह से के तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं। तो आउटर सर्कल पे कुछ इस तरीके की तस्वीर है। जयराम रमेश और सारे नेता, इनकी गाड़ियां यहां पे जा रही हैं और यहां पे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तैयारी पहले से ही है। एक लॉन्ग शॉट आपको अगर दिखाएं तो ये तस्वीर सीपी के आउटर सर्कल पर, जहाँ पे इधर बसें खड़ी हैं, आपको झंडे दिख जाएंगे पार्टी के, और बीच में जहाँ पे एंट्री पॉइंट है वहाँ तमाम कार्यकर्ता ऊपर खड़े हैं। सीपी की ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गई। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए ऊपर की तरफ भी तमाम मीडिया कर्मी और लोग खड़े हुए हैं, आउटर सर्कल जाम हो गया है। और यहाँ पे चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर बैनर भी लिए हुए हैं लोग अलग अलग। ये क्या हुआ?
8: ये जो घायल वोट है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने जो है इस वोट को काट दिया, मतलब कि घायल कर दिया, ये जिंदा है।
2: अच्छा, ये आप लोग कैसे पट्टी अलग अलग तरीके से, कोई भूत बन के आ रहा है यहाँ पे, कोई उंगली पे आप देखिए किस तरीके से पट्टी लगाया हुआ है एनएसयूआई का कार्यकर्ता कि उंगली टूट गई है और वोट चोरी हो गया एक तरीके से। और पीछे आप देखिए कि ये वो जंक्चर है जहां से तमाम नेता अंदर जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स।
0: अच्छा, बने रहिए, देखिए हम मौसमी आपके पास आते रहेंगे, वहां पर तस्वीरें देखते रहेंगे। अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे, क्या हो रहा है वहां पर सारी जानकारी दर्शकों को देंगे। लेकिन ये समझिए कि कांग्रेस ब्लैक डे मना रही है। दिल्ली से विरोध की आवाज निकली तो देखते ही देखते देश के कई शहरों तक वो आवाज पहुंच गई, कश्मीर से हैदराबाद तक, पटना से लखनऊ तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और निशाने पर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। कहीं काली पट्टी बांधकर विरोध हुआ और जहां कहीं आप देख रहे थे कि हाथ में एक पट्टी बांध ली गई थी कि घायल हो गया हमारा वोट, कट गया हमारा वोट, वहीं कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं नारेबाजी और प्रदर्शन के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला गया। और पटना में तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के अंदाज में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस के लंच से पहले दिल्ली में वेन्यू के बाहर हंगामा हो गया। बीजेपी समर्थक की नारेबाजी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस बीजेपी समर्थक की पिटाई कर दी। देखिए, कश्मीरी मुस्लिम युवक की नारेबाजी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रहा नहीं गया और उन्होंने जमकर इस युवक को पीट दिया। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये कश्मीरी मुस्लिम युवक है। कश्मीरी मुस्लिम युवक वहां नारेबाजी कर रहा था, बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था, जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा आ गया और इस कश्मीरी मुस्लिम युवक को बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी करने पर जमकर पीट दिया गया।
9: जाने दो, जाने दो।
0: तो बीजेपी ने भी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने बकायदा वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस वालों से बदसलूकी की है। ये कुछ वीडियो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तो अभी कुछ देर पहले जो कश्मीरी मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वो है। लेकिन सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको।
9: देश की जनता आज आपसे प्रश्न पूछ रही है, गरीब घर से आने वाले देश के पुलिसकर्मी, सामान्य परिवारों की हमारे माताएं बहनें बच्चियां जो पुलिस में सेवा कर रही हैं, उनके अधिकारों को भुला करके ऐसा कृत्य आप उन पर कैसे करने लगे? क्या यह है लोकतंत्र? संविधान की दुहाई देने वाले संवैधानिक मूल्यों को कब जाकर के पढ़ेंगे? आज देश की जनता ये बात पूछना चाहती है।
0: और अब आपको लिए चलते हैं पंजाब आज तक पंचायत, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आ चुके।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विपक्ष ये भी कह रहा था बिजली फ्री नहीं कर सकते। पहली कैबिनेट में हमने जुलाई 2022 में बिजली फ्री कर दी 600 यूनिट सबको, कोई नीला कार्ड पीला कार्ड नहीं उसमें, सबको। अगर किसी के घर पे दो एसी हैं वो इस हिसाब से एसी को चला ले कि दो महीने में उनको उसका जो मीटर की जो है रीडिंग वो 600 से कम आ जाए तो उसका भी बिल जीरो है। 90% पंजाबियों के घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। फिर विपक्षी कहने लगे कि इनसे सरकार एक साल नहीं चलेगी, जब एक साल हो गया कहते दूसरा साल पूरा नहीं करेंगे, जब दूसरा पूरा हो गया कहते जी बस ढाई साल बस बीच में ही टूट जाएगी, तीसरा भी हो गया, अब चौथा भी हो गया, पौने पांच साल हो गए। अब ये कहने लगे 27 में नहीं बनेगी, वो भी बनेगी, फिर 32 में भी कहेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि फिर ये कह रहे थे कि महिलाओं को जो 1,000 रुपया और 1,500 रुपया जो सम्मान के तौर पे देना था वो दे नहीं पाएंगे, वो भी हमने शुरू कर रखा है, दूसरी किस्त उसकी चली गई है, 3-3 महीने के एडवांस देते हैं। तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई उनके पास कोई विजन नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सीधा तीनों पार्टियां बीजेपी अकाली और कांग्रेस भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान। तो फिर अगर सरकार दिल्ली से चलती है तो मुझे गालियां क्यों देते हैं, उनको पता है कि सरकार यहीं से चलती है और पंजाब सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चलती है। और जितना भी पंजाब सरकार ने काम किया चाहे बिजली के लिए पानी के लिए, आगे हम बात करेंगे, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, तो पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है।
1: मान साहब जब हम आ रहे थे ना एयरपोर्ट से, बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं आपका इको नारा भगवंत मान दोबारा, पर इस बीच में मान साहब आपने जो आप कह रहे हैं कि आपने अपने सारे प्रोमिसेस डिलीवर किए, अभी जो महिलाओं को जो आपने राशि प्रॉमिस की थी वो तो जुलाई में ही आई है, 8 महीने चुनाव के हैं, तो क्या इस पे बेस्ड है आपका कैंपेन के?
0: देखो, जो जो मैनिफेस्टो में गारंटियां दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स का कहा जाता है कि 5 साल में अगर आप आ गए हम ये स्कीम लागू कर देंगे, तो हमने मतलब वो लागू कर दी, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम ये कहें कि ये तो सिर्फ इलेक्शन तक की सीमित, बिजली फ्री करने का फैसला भी हम आगे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जल्दी हो गया, हमने थर्मल प्लांट खरीद लिया, हमारी पछवाड़ा में छत्तीसगढ़ में हमारी कोले की माइन चल गई, कोला हमारे पास आम हो गया, तो हमने बिजली फ्री कर दी और एक थर्मल प्लांट भी खरीद लिया। तो बजट के मुताबिक चलते चलते हमने देख के, तो पहले 1,000 रुपया क्या था सभी महिलाओं को, अभी एक एससी महिलाओं को दलित महिलाओं को 1,500 कर दिया, तो अब ये स्कीम जारी रहेगी हमारी तरफ से। तो
2: अच्छा, कोई ये आप क्यों कह रहे हैं, जब भी आप कहते हैं ये देंगे उसके बाद आप कहते हैं कि हम अगर चलेंगे अगला जो आएगा वो बिल्कुल नहीं देगा, क्यों डरा रहे हैं?
0: वो तो अनाउंस कर चुके हैं विपक्ष वाले, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है पैसे दे के उनको सर पे चढ़ा रहे हैं, तो लोगों के टैक्स का पैसा है, क्या 1,000-1,500 से क्या कोई अमीर नहीं होने वाली वो? लेकिन 1,000-1,500 मान सम्मान, ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि मैंने अपने बेटे की ट्यूशन के पैसे दे दिए, मैंने दुकानदार का उधार देना था उसने मुझे सामान देना बंद कर दिया था सौदा पत्ता, तो मैंने उसके पैसे दे दिए, मैं अपने बच्चों के लिए आरओ वाटर का फिल्टर लगा लिया, मैंने अपने दोते के लिए पोते के लिए साइकिल खरीद के दे दी। छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको मान सम्मान देती हैं, और कोई इसमें मतलब अमीर होने वाली तो बात है नहीं ना। तो हमने एक अंदाजा लगाया है, सर्वे किया, पूरी स्कीम जो है चाहे हम आम आदमी क्लिनिक में दवाई फ्री है, फिर आपका बसों में किराया फ्री है, तो करके 1,82,000 पर फैमिली बचत हो रही है, 15,000 रुपये महीना। तो अगर आज के महंगाई के जमाने में किसी न किसी रूप में सरकार ने उन्हीं के टैक्स का पैसा उन्हीं को सड़कों के रूप में, स्कूलों के रूप में, आम आदमी क्लिनिक के रूप में दे दिया, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए?
1: मान साहब, आपकी सरकार ने अपने प्रॉमिसेस काफी डिलीवर किए हैं, 300 यूनिट बिजली, आपने अभी महिलाओं को भी जो राशि आपने प्रॉमिस की थी 1,500 SC ST और 1,000 जनरल आपने वो भी शुरू कर दिया। एक प्रॉमिस मान साहब, जब श्वेता और मैं इसी स्टेज पर थे, आपके साथ केजरीवाल जी भी थे, आप दोनों ने किया था कि हमको एक साल दे दीजिए हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब, वो अभी तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है।
0: ये जो है ना जो नशे का है, हमने पूरा होमवर्क करके उसका युद्ध नशे विरुद्ध हमने बहुत बड़े लेवल पे जो चल रहा है, हमारा पुलिस भी है उसमें, उसमें आम लोग भी हैं, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है, इसके लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है। लोगों में गांव गांव में कमेटियां बन गई हैं। अब शरेआम बिकने वाली बात तो भाई आपसे खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो लुकशिप के चलता है काम है, उसके उस पर भी हम हर रोज मीटिंग करके, हर रोज स्मगलरों को पकड़ रहे हैं, हर रोज हमारी रिकवरी हो रही है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ड्रोन की सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने पिछले दिनों नशा विरोधी एक यात्रा निकाली। बीजेपी किस मुंह से नशा विरोधी यात्रा निकाल रही है? पहली बात तो ये, 2017 से 2027 तक बीजेपी का यहां राज रहा अकाली दल के साथ। सबसे ज्यादा नशा उस समय जो है पंजाब में पनपने लगा। उसके बाद 3,000 किलो कांडला पोर्ट से पकड़ के लाए हैं पंजाब की पुलिस। 3,000 किलो ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से। गुजरात में किसका राज है? तीसरा बॉर्डर की 50 किलोमीटर की रेंज बीएसएफ के दायरे में आती है। तो बीएसएफ किसके अंडर आती है? अमित शाह के अंडर। तो यहां खत्म, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, गुजरात में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, पंजाब में अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, और उसके बाद आप यात्रा निकाल रहे हो। कितना रश हुआ, कहीं 10 बंदा कहीं 15 बंदे, बस ये मतलब मुझे
2: मान सब।
0: और एक और आज तक की ही खबर है, आप निकाल सकते हो कि कैग की रिपोर्ट है कि गुजरात पुलिस ने कोर्ट में वो दिया है एफिडेविट कि 2200 किलो ड्रग्स जो है चूहे खा गए। आपके आज तक की रिपोर्ट है ये? 2200 किलो ड्रग चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे दिखा दो, कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा उनकी डेड बॉडी दिखा दो फिर, और क्या करें। मतलब 2200 किलो जो ड्रग है वो खुर्द-बुर्द कर दी, कहां गई होगी? दिल्ली में भी नशा है, गुजरात में नशा है, राजस्थान में नशा है, हरियाणा में है, पंजाब को बस बदनाम करने के लिए रखा।
2: नहीं, लेकिन मुद्दा तो आपने भी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, अब देखिए जब अमरिंदर सिंह जीत कर आए थे तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार के विरुद्ध ड्रग्स को लेकर नाराजगी थी आम लोगों में। उसके बाद जब आप जीत कर आए तो आपने कहा कि यहां पर हम नशा मुक्त करेंगे।
0: नहीं नहीं, मैं
1: 6 महीने में और 1 साल में
2: अगली पार्टी कह रही है कि अब हमको दो, बीजेपी कह रही, अमित शाह कह रहे हैं कि हम ड्रग्स मुक्त बनाएंगे अब पंजाब को।
0: वो तो अगली डेट दे गए ना, लोकसभा, अगली लोकसभा के आगे की डेट दे गए वो, 31 दिसंबर 2029। 3 साल उन्होंने मांगे हैं। मतलब इतना जितना प्रचार किया जा रहा है पंजाब में उतना नशा नहीं है। ये है तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन हम जितना प्रहार उस पर कर रहे हैं, नशे की सबसे बड़ी, उसको खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कल्चर हमने पंजाब में डेवलप किया। इस वक्त खेड़ा वतन पंजाब दिया चल रहा है, मतलब पूरे तहसील लेवल पे चल रहा है। 3 पीढ़ियां उसमें ग्राउंड में, शाम को देखना पंजाब के ग्राउंड जो है भरे होते हैं, 3-3 पीढ़ियां खेल रही हैं। 60 साल की उम्र प्लस की कैटेगरी में दादा, 40 साल की प्लस की कैटेगरी में उसका बेटा, और 20 साल प्लस की कैटेगरी में उसका पोता। मतलब 3-3 पीढ़ियां वहां खेल रही हैं, और हम स्पोर्ट्स को जो है इनकरेज कर रहे हैं ताकि अगले बच्चे जो हमारे वो बचे रहें किसी बुरी संगत से या इधर उधर। सो पंजाब में नशे के खिलाफ हम जंग जारी रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह सफल हो गए, लेकिन काफी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया।
1: मान साहब, क्योंकि अभी भी नशा एक प्रॉब्लम है, जो आपने खुद जब आप कैंपेन कर रहे थे बार बार हर रैली में आपने उठाया था। इस बार जैसे श्वेता ने बोला कि बीजेपी अपनी एक यात्रा निकाल रही है, नशा मुक्त यात्रा, उसमें बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर उसका स्वागत अंडे और टमाटर से कर रहे हैं। आप वो रैली होने ही नहीं दे रहे हैं, वो यात्रा बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जहां जहां वो यात्रा जा रही है, राघव चड्डा जी और बिट्टू जी पर अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर पड़ रहे हैं।
0: देखो, ये आम आदमी पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती जी, तो उनकी करतूतें हैं। उनकी करतूतें ऐसी हैं कि बीजेपी को पंजाब में घुसने नहीं देते लोग, हम क्या करें इसमें। जब 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो उसके बाद किस मुंह से पंजाब में आएंगे बीजेपी वाले? जब खुद अकाली दल के साथ जो है गठजोड़ था, नशे उस समय डेवलप हुए, तो किस मुंह से कहेंगे कि हम नशा मुक्त कर देंगे? तो लोगों का विरोध तो झेलना पड़ेगा। तो वो तो
1: आपके वर्कर नहीं मार रहे अंडे टमाटर?
0: नहीं, हमारे लोग नहीं थे वो, तो मतलब जहां भी जाते हैं उनकी रैली में लोग नहीं आते, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लोग नहीं आते, हम रोकते हैं क्या? तो अभी अमित शाह आए थे जलंधर, क्या अनाउंस करके गए, मुझे गालियां देके गए हैं। अकाली दल वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, तो मतलब इनका मुद्दा ही भगवंत मान रह गया, अब कोई और मुद्दा नहीं इनके पास, भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान। अभी मेरे कैंप ऑफिस में सीबीआई भेजी है, तो इसका मतलब तो आपको तो ज्यादा पता होगा, आपको तो बीजेपी की अंदर की बातें पता है कि
2: छापे बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं, पर
0: हैं
2: छापे बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं।
0: नहीं नहीं मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ में हेमंत सोरेन पर ईडी का छापा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे जेल में, 3 महीने बाद इलेक्शन, ममता बनर्जी के सभी आसपास के जितने अधिकारी और उसके जो विश्वास पात्र नेता अभिषेक बनर्जी जैसे, उन पर ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, 2-3 महीने में इलेक्शन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को फर्जी शराब घोटाले में अंदर किया, 2-3 महीने में इलेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड, 2-3 महीने में इलेक्शन। राजस्थान में ऐसी रेड विपक्ष पर और 2-3 महीने में इलेक्शन। तो इसका मतलब

0: है सीबीआई की, तो कोर्ट ने जांच करवाई है सीबीआई की कि आपके खुद के ओएसडी की जांच हो
1: करप्शन के चार्जेस में कौन गया था?
0: ऑर्डर तो कोर्ट से ही आया है ना मान साहब,
1: ये भी आपको पता होगा, अंदर की बात है कि कोर्ट भी है ना, कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना।
0: कोर्ट में
1: हम तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में तो रुके क्यों नहीं? वो सीबीआई के पास 15-15 साल के पेंडिंग पड़े हैं केस, 15-15 साल से इंक्वायरी नहीं हो रही सीबीआई के पास। ये 15 मिनट में ऐसे लगता था जज साहब को ऐसे बोला हो, जल्दी जल्दी ऑर्डर डाउनलोड करके दीजिए सर, मैं जाना है, हमने जाना है। मतलब इतनी जल्दी क्या है? और क्या मिल गया वहां से? कुछ नहीं मिला, खुद भी कह के गए हैं जी कुछ नहीं मिला हमें। 20-25 हजार रुपए थे वो भी पूजा रूम में पड़े थे, वो भी वापस करके गए हैं। जाके मोदी जी को कहा होगा सीबीआई वालों ने कि ऐसे घरों में मत भेजा करो, यहाँ कुछ नहीं मिलता ऐसे घरों में। तो सीबीआई का टाइम खराब हो रहा है, वो वाली बात है हमारे घरों की।
2: नहीं, अभी तो कांग्रेस भी कह रही है ना कि अगर अपने व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ऐसा नहीं, वो ईमानदार सीएम, ऐसे ही कहा जा रहा है बिना भगवंत मान के।
1: पंजाब के लोग जानते हैं, ये तो पंजाब के लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये वही बीजेपी है जो 60,000 करोड़ का इल्जाम लगाती है एक नेता पर और उसके बाद उसको बीजेपी में शामिल करवा के उसको डिप्टी सीएम बनाया जाता है महाराष्ट्र का। ये वही ईडी है जो अशोक मित्तल के घर पे रेड करती है 3 दिन लवली यूनिवर्सिटी में या उनके उनके गुड़गांव के बिजनेस में, वो बीजेपी में शामिल हो गया, उसके बाद अगले दिन उसको जेड सिक्योरिटी दे देती है। तो ये तो सीधी सी बात है, वो ईडी को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, अभी इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये तो पूरे बच्चे बच्चे छोटे बच्चे को भी पता है कि कैसे काम करते हैं वो, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। सामना भी करना पड़ा, कर लें, जहां मर्जी छापे मार लें, जहां मर्जी ये इंक्वायरी कर लें, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, हम सामना करेंगे।
0: मान साहब, आपने अब खुद ही जिक्र कर दिया अशोक मित्तल जी का, तो जिक्र ये भी कर लेते हैं जो 7 MPs राज्यसभा आम आदमी पार्टी के छोड़ के गए, 6 तो आप ही की पार्टी में से थे, जो पंजाब यूनिट में से थे जो गए, तो क्या आपकी और पंजाब आम आदमी पार्टी की अपने MPs पे कोई पकड़ नहीं है कि सातों में से 6 पंजाब से नॉमिनेट होकर गए थे और वो एक रात बीजेपी में?
1: पता क्या, ये डराने की इनकी रणनीति है, और 7 ने चलो ठीक है वो चले गए, किसी के बंदे के दिल की पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ उनका? उसके बाद ना तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर वाली टेबल पे बैठते थे ना, अब वो कॉर्नर वाली चेयर पे बैठे होते हैं, ठीक है ना। बीजेपी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती है, वो ट्रेन में आते हैं, ठीक है। बीजेपी तो बंदे खानी पार्टी है, बंदे खानी मतलब ये तो बंदे खाते हैं, मतलब देख लो, मैं गिनाता हूं मैं वैसे निकाह, नीतीश कुमार कहां गया? पार्टी भी खा गए, उसको भी खा गए, चलो जी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी खा गए, उसका चुनाव चिन्ह भी खा गए, शरद पवार की पार्टी भी खा गए, शरद पवार का पूरा खानदानी खा गए, नवीन पटनायक उड़ीसा वाले हमेशा इनका साथ देते थे पार्लियामेंट में, उनकी पार्टी भी खा गए, उनको भी खा गए, मतलब जो तो जिसके साथ भी इनका होता थोड़ा बहुत। अब चिराग पासवान की बारी है, मैं बताता हूँ, शरद लाल
2: जो बचे हुए हैं आपके, आप उनको डरा रहे
1: हैं?
2: जो आपके साथ अभी भी हैं उनको आप डरा रहे हैं, जाओगे तो ये होगा?
1: नहीं, मैं क्यों डरा रहा हूँ, ये हिस्ट्री पढ़ लो ना, इनकी हिस्ट्री पढ़ लो ना, ये तो मतलब बाद में पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। सिंधिया कहाँ गया? ग्वालियर का राजा था,
2: मंत्री है,
1: कहाँ मंत्री, किस चीज का मंत्री, एविएशन का मिनिस्टर बना दिया था। मैं गया, मैं क्या मोहाली से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू करवा दो, कहता जी मैं तो ये करवा नहीं सकता, मेरे अंडर तो आता नहीं। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर तो तुम हो, कहता जहाज तो सारे बेच दिए, मैं नहीं एविएशन मिनिस्टर हूं। बिट्टू को एक हमारे पंजाब का भी खा गए, रवनीत बिट्टू, राजस्थान से एमपी बनाया, एमपी भी राज्यसभा में 2 साल के लिए बनाया, बस कि 2 साल में देखेंगे आपको, 2 साल में आपको हम निगल जाएंगे। रेल मंत्री बना दिया, रेल, मैंने कहा धूरी से संगरूर तक कुछ कोई या पंजाब से कुछ ट्रेनें चलवा दो, कहता जी मेरे अंडर तो आता नहीं। मैंने कहा आपके अंडर क्या आता है? कहता किसी रेलवे स्टेशन पर कोक वाली मशीन लगवानी है, कोई सीढ़ी वीढ़ी ठीक करवानी है, ये मंत्रालय देते हैं, ऐसे बंदे खाते हैं ये तो।
0: पर मान साहब, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो तो आप कह रहे हैं किसको क्या पता, मन में क्या है पता नहीं चलता, इसीलिए चले गए होंगे। राघव चड्ढा को एक वक्त था मान साहब, उसको नंबर 2 कहा जाता था पंजाब में, कि अगर मान साहब से मीटिंग नहीं है तो राघव चड्ढा से मीटिंग कर लो, इतना प्रोमिनेंट दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के भी खास थे, आपके भी बहुत क्लोज थे, आप दोनों उनकी शादी में भी गए थे। राघव चड्ढा आज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसे बिहेव करती है जैसे एक एक्स गर्लफ्रेंड है।
1: नहीं।

0: नहीं, इसका मतलब एक्स गर्लफ्रेंड गलत बिहेव करती है,
1: वो कह रहे हैं।
0: नहीं, वो लड़कियों को,
1: वो ही कह रहे हैं, राघव चड्डा कह रहे हैं।
0: नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड भी तो करते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: नहीं, ये महिला विरोधी बात नहीं कही उसने, इसको क्यों नहीं उठाते आप, उठाइए इसको। दंगल में आप दंगल शुरू कर लेते हो 5 बजे,
1: सीरियसली बताइए,
0: 5 बजे दंगल शुरू कर लेते हो, उसमें उठाओ बात। लड़कियों को क्या सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड गलत काम करती
2: है?
1: राघव चड्ढा का मन ऐसे कैसे बदल गया?
0: अब राघव, मुझे ये नहीं पता राघव चड्ढा गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, बताइए ना आप क्या है वो।
1: अब मान सम्मान, सवाल तो का जवाब,
2: विश्वस्त है आपके,
0: हम उसको मान सम्मान दिया, आप खुद मानते हैं मान सम्मान दिया, उसको राज्यसभा में भेजा, सबसे छोटी उम्र का, वहां पे भी डिप्टी लीडर था वो। लेकिन अगर किसी से मान सम्मान ना संभाला जाए तो उसमें हम क्या करें? जो राजनीति में जो मिलता है ना उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगले की अपेक्षा, वो कहते हैं कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो मतलब ये आप देखते हैं कहां जाते हैं, क्या मंत्री बना दिया वो, आप भी कहते रहते हैं कैबिनेट में, आने वाली कैबिनेट में शायद राघव चड्ढा को मिनिस्टर बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता, ये पहले कुमार विश्वास भी ऐसे कहते थे।
1: मान साहब, जो 6 MPs गए हैं, जाने से पहले किसी ने फोन उठाकर आपको बताया कि मान साहब टाटा बाय बाय जा रहा हूं?
0: नहीं, मतलब पता तो चल गया था 2-4 दिन पहले, 2-4 ने तो कहा भी था कि क्या करें सर, बिजनेस पे कह रहे हैं कि परिवार पे केस आएगा, अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, जैसे जैसे ये पहले भी करवाते, महाराष्ट्र से करवाया था, जहां ये जो बंगाल के मुख्यमंत्री उनको भी तो ज्वाइन कराया बंगाल से सारे उसके 80 में से 60 फिर तोड़ लिए। मतलब इनका जुगाड़, बीजेपी भारतीय जुगाड़ पार्टी है, मतलब इधर से ले लो 10-15 इसके ले लो, 15 इसके ले लो, चलो जी करो, है ना, जो बन गया बहुमत बन गया, जो जिनको पहले गालियां देते रहे उनको फिर बाद में सुरक्षा देते हैं।
1: हरभजन जी तो आपके खास थे, आपके क्लोज दोस्त रहे हैं, बुरा नहीं लगा आपको? बुरा नहीं लगा जब छोटे?
0: भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, मैं इन जो 6 गए हैं उनके बारे में पंजाबी का एक शेर कह रहा हूं, भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी।
2: अच्छा, आपने अभी बंगाल का जिक्र करते हुए खुद अपने एक सवाल का जवाब दे दिया, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गए हैं, टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था उन्होंने, लेकिन एक आरोप जो आप लगाते हैं और आम आदमी पार्टी लगाती है बीजेपी पे, वो ये कि आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो कुछ मुद्दों के साथ हम यहां पर आपसे उन सवालों के जवाब चाहते हैं। सबसे पहला नाम जो है गुलजार सिंह, एक व्यक्ति जो कहता है कि ड्रग्स के दर्द को लेकर उसने आपके एक मंत्री की सभा में कुछ बोला और इस तरह का प्रेशर बना कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी।
0: देखो, वहां पे वित्त मंत्री साहब गए थे, वित्त मंत्री साहब को उसने कुछ बताया, लेकिन वो आ गए, जो पहली वीडियो में ऐसा कोई नहीं था, गांव में उनका कोई कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, बहुत दुखद है ये। लेकिन इसका कोई इससे संबंध नहीं है कि हमने उसको कोई बोलने से दबाया या डराया या धमकाया। उस इलाके में वैसे भी नशे, संगरूर दिड़वा के इलाके में वैसे भी बहुत कम है, रेयर है। उसके बेटे की शिकायत थी, गांव वालों से पता किया, उसने पता नहीं किस बात को उसे दुखी होकर ये कर लिया। लेकिन इसमें हम आवाज दबाना या ये कराना, हमने तो लोगों को सवाल करना सिखाया है कि सवाल करो नेताओं को,
2: क्योंकि उसमें प्रीति बस एक उसमें ये भी कहा गया कि अगर ऐसा सब कुछ सही था तो फिर जल्दबाजी क्यों की गई अंतिम संस्कार के समय?
0: किस बात की जल्दबाजी?
2: ये आरोप लगे थे उस समय
0: जल्दबाजी
2: किस बात की? उनकी जो क्रीमेशन है उसको बहुत जल्दी से कर दिया गया ताकि
0: परिवार की सहमति से हुआ, उनके बेटों की वीडियो आई है कि हम जो है सहमत हैं इस बात के लिए, तो इसमें तो हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते ना। हाँ, सुरक्षा वहां लगाई गई थी ताकि कोई और शरारती अंसर आके कोई इसको इसमें कोई खलल ना डाल दे।
1: मान साहब, आप कहते हैं कि आवाज नहीं दबाते, एक MLA सुखवीर, उन्होंने आवाज उठाई कि देखिए स्कूल में कम टीचर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक दूसरे MLA उन्होंने आवाज उठाई फ्लड के टाइम पर कि यहाँ पर कुछ फ्लड के टाइम पर रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनकी सिक्योरिटी कम कर ली गई। तो सवाल ये है मान साहब के, और छोड़िए आप अपनी पार्टी की खुद की आवाज दबाते
0: हैं। देखो, आप जो सुखबीर मैसर खाना की, ये पहली गलती नहीं थी, पहले 2-3 बार उनको वार्निंग दे चुके थे, जो उन वहां के लोगों से शिकायत आई थी, कुछ जो ऐसी एक्टिविटी जो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी थी और डिसिप्लिन, जब किसी को कुर्सी नहीं देनी, किसी की कुर्सी नहीं लगानी, किसी को स्टेज पे नहीं आने देना, ऐसी बातें थी कि रोक रहे थे कि और ना आए मेरे सिवा। और उनका जो सर्वे आया, सर्वे दिखाया कि आपका सर्वे ठीक नहीं है, सर्वे के मुताबिक पार्टी चलेगी, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस बात से वो नाराज थे कि मैं मतलब मैं फिर बदनामी करूंगा, कर लें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी अपने बंदों की आवाज को दबाते हैं, देश में सबसे पहले हमने हमारे हेल्थ मिनिस्टर का, हमारे पास एक स्टिंग आया कि वो कहीं से पैसे मांग रहे थे कुछ दवाइयों का ठेका अपने बच्चों को भांजों को दिलवाने, हमने उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एक और मंत्री की सिर्फ ऑडियो आई, किसी भी पक्ष को नहीं पता था, किसी मीडिया को नहीं पता था, हमने तीन मंत्री जो है हम इस टेन्योर में तीन कैबिनेट मिनिस्टर को हमने बाहर निकाल दिया, ताकि मतलब कोई ये ना कहे कि ये करप्शन के अगेंस्ट तो पार्टी बन के आई थी तो अब यही करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। हमने लिया एक्शन, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं अगर कोई गलत काम करता है या कोई एंटी पीपल काम होता है। यहां पे आप देख लो, धर्मेंद्र यादव का इस्तीफा लेने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए कितना बड़ा जो है जनता जो है वो इकट्ठी हुई दिल्ली में, तब जाके प्रेशर बना, तब जाके उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया। अभी ज्ञानेश कुमार का पूरा देश कह रहा है क्यों मुझे समझ नहीं आती। जब भी कोई ईवीएम में गड़बड़ी का इल्जाम लगता है, बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? वो कहें कि हम तो मोदी की लहर से जीतते हैं, हमें क्या जैसे मर्जी वोट डलवा लो, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ईवीएम बिल्कुल सही है, नहीं ईवीएम ठीक है, वो ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाते हैं?
1: कांग्रेस का मान साहब कहना है, बस दो घंटे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने साफ बोला है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आम आदमी पार्टी के लिए जहां पर जिस स्टेट को वो गवर्न करते हैं उनकी हदें खत्म होती हैं, वहां से उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म शुरू होती है, नहीं तो उनके स्टेट में ना प्रेस को फ्रीडम है ना कोई किसी को फ्रीडम है, ये कांग्रेस का चार्ज है।
0: आप तो अभी हमारी राजधानी में बैठे हैं, आपको फ्रीडम तो है, प्रेस को कभी नहीं फ्रीडम, आप जो मर्जी सवाल पूछ रहे हैं। मैंने किसी मंत्री की तरह या दूसरों की तरह आपसे सवाल मांगे भी नहीं,
1: नहीं मांगे,
0: नहीं तो दो दिन पहले सवाल मांगते हैं वो कि कौन कौन से सवाल पूछे, फिर वो कटवाते हैं ये मत पूछना ये मत पूछना। मैंने आपसे सीधा आया, आपने
2: पर ये पार्टी से ऊपर मुझे लगता है ये भगवंत मान का
0: मुझे पता है ना, मैं
2: आप शुरू से नहीं करते थे ये चीज,
0: मैं कभी सवाल नहीं मांगता, मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे पास जवाब है ना, उनके पास कोई ना कोई बैगेज होता है।
2: लेकिन ठीक है, मैं अगला आरोप जो आप पर लगता है, और आपने चूंकि अभी जिक्र किया दिल्ली का जंतर मंतर वाले,
0: ये पंचायत पंजाब है ना प्रोग्राम का ना,
2: लेकिन
0: आप आरोप पंजाब ही बना रही हैं इसके।
2: अब इसके ब्रैकेट में डाल देंगे हम भगवान मान जी। आपने कहा कि सवाल से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने दिल्ली में जंतर मंतर का जिक्र किया, आपकी पार्टी ने भी बहुत कहा कि देखो स्टूडेंट्स पर प्रोटेस्टर्स पर कितना जोर लगाया गया, ताकत का प्रयोग किया गया, गलत तरीके से पीटा गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सेम चीज होती है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, पर यहाँ के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, क्यों?
0: नहीं, लवली यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो पहले यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस ने इंटरफेयर नहीं किया, मैनेजमेंट के साथ झगड़ा था, मैं उसको बिल्कुल मॉनिटर कर रहा था उसको बींग ए होम मिनिस्टर। तो जब बाहर आए स्टूडेंट तब भी हमने उनको कुछ नहीं कहा, बातचीत के लिए हमने SIT भी बना दी, FIR दर्ज कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ शरारती अंसर उनमें ऐसे घुस गए जिनको अभी पकड़ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। तो लेकिन फिर भी पुलिस ने मतलब उनको कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया, जो दिल्ली में तो गोलियां चलाई हैं, दिल्ली में तो सीधे बुलेट चलाई हैं, जो किसी की आंखें गई, किसी का जो
1: पैलेट गन्स,
0: हाँ, तो पंजाब पुलिस ने कभी ऐसा, हम उनको बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन जिन्हें तक नहीं बनती तो उनको स्टूडेंट्स को अंदर बिठा के उनकी मैनेजमेंट के साथ बात करा दी, स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। हाँ, पंजाब पुलिस की गाड़ियों का नुकसान हो गया, उसका हम ये कर रहे हैं कि जो उनमें कुछ आउटर स्टूडेंट आ गए थे वो यूनिवर्सिटी में नहीं थे उनको भी पकड़ा है। तो हम ऐसा नहीं करते हम कि हम कोई हर कोई स्टैंडर्ड जेड़ा जो देश के लिए कुछ और हो पंजाब के लिए कुछ और हो।
1: आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं मान साहब, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है, पर दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया अलायंस का, मान लीजिए आप इंडिया अलायंस में नहीं है, आपको फिर दो बार बोला गया, राहुल गांधी ने भी बोला कि DMK और आम आदमी पार्टी आए हमारे साथ, पर अभी भी क्या पंजाब का चुनाव उस अलीजेंस के बीच में आ गया है, क्योंकि पंजाब का चुनाव है, कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ना है, तो कैसे कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए?
0: नहीं देखो, ये तो पार्टी की पॉलिसी है। हम इलेक्शन कमीशन के या वोट काटने की सबसे पहली शिकायत हमने की थी कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा से 20,000 वोट काट दिए और 15,000 नए ऐड कर दिए, 5,000 पे उनकी हार हुई है। तो हम तो कब के उनके पास शिकायत लेके जाते रहे हैं, पुराने जो इलेक्शन कमीशन होते थे। तो हम इस चीज के मुद्दे पर उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन हाँ फिजिकली प्रोग्राम उनका है। जिस दिन कॉकरोच का प्रोग्राम था उस दिन राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए उस दिन पीएम के घर के सामने?
1: तो कहते हैं आप ही के हैं।
0: कौन कहता है कॉकरोच हमारे हैं? कौन कहता है? वो लड़का जो दीपक के है वो हमारे पहले हमारी पार्टी में वो सोशल मीडिया में काम करके गया, उसके बाद तो अमेरिका चला गया था वो।
1: सब कहते हैं टीम भी है कॉकरोच आम आदमी पार्टी के।
0: नहीं कॉकरोच तो हम टीम भी, अब वो हमारी टीम भी है। पहले कांग्रेस बी टीम होती थी, बीजेपी भी हमारी बी टीम रही है, मतलब पता नहीं क्या ये।
1: नहीं नहीं, पहले आप बीजेपी की बी टीम होते थे और अब कांग्रेस जनता पार्टी आपकी बी टीम है।
0: अच्छा,
1: ये कहा जाता है।
0: अच्छा, हाँ। सब क्लॉज आ गया उसमें।
1: सब क्लॉज आ गया।
0: तो ये बी टीम करने की बातें, हम ना किसी की बी टीम है ना किसी की सी टीम है, हम देश के 140 करोड़ लोगों की, पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों की ए टीम है, पंजाब के लोगों के पक्ष में।
2: अच्छा, ये वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, अभी हरियाणा सरकार के दो मंत्री यहां पर थे, उन्होंने कहा कि एक ही वोटर लिस्ट पर 2024 के चुनाव होते हैं जहां पर हरियाणा के भीतर 5 सीटें कांग्रेस हासिल कर लेती है और उसी वोटर लिस्ट पे होते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव, वहां हारने के बाद वो कहते हैं कि वोट चोरी कर लिया और इलेक्शन में गड़बड़ी कर ली। तो ये क्या आप इससे सहमत हैं कि आखिर तो उसी लिस्ट पे चुनाव हुआ?
0: जब भी कोई ऐसा कुछ मुद्दा उठता है तो इलेक्शन कमीशन को क्लियरेंस देनी चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर आपको ये शक है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने के नाम काट दिए बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? अगले इलेक्शन में दे देना वोट। अब कह रहे हैं ठीक करेंगे जी, अब कह रहे हैं ठीक करेंगे। तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कि बंगाल की जो पार्टी है उनको, मतलब उन्होंने बहुत सुप्रीम कोर्ट में अपील की, नहीं माना गया, इलेक्शन आ गई, इलेक्शन में बीजेपी जीत रही, उसके बाद सारा खत्म। ये इलेक्शन के बाद ईडी के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, इलेक्शन तक के होते हैं बस। इलेक्शन के बाद सीबीआई के सारे केस खत्म हो जाते हैं बस, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है।
2: इसमें क्या होना चाहिए? आप भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, आपको लग रहा है होगा?
0: देखो अगर उन्हीं के दो कलीग कह रहे हैं कि हमसे ये नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ये कलेक्टिव डिसीजन नहीं था, ये नहीं था, और उसके बाद अगले दिन वो करते भी हैं जारी कि अब से ये होगा ये, अब जाके कह रहा है देश का इलेक्शन कमीशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसको संभालता है, अब जाके कह रहा है कि जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनेंगे। अरे जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, उस सोसाइटी की मीटिंग पे भी मिनट्स बनते हैं क्या? इलेक्शन कमीशन की जो है मीटिंग होती थी उसके मिनट्स ही नहीं बनते थे, रिकॉर्ड पे नहीं लेते थे किसी चीज को। तो अब जाके कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष को ये शक है, तो ये शक इलेक्शन कमीशन को ही दूर करना चाहिए, ना कि उनको, मतलब वो बोलते हैं पंजाबी की कहावत है, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, ठीक है ना, आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता, आप सामने आके बातचीत करनी चाहिए।
1: एक शक मान साहब, सैनी साहब ने आज इसी मंच से दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप उन्हें बोलते हैं ना कि वो पगड़ी साथ लेके घूमते हैं, उन्होंने बोला कि देखिए मैं पगड़ी बहुत टाइम से पहनते हुए आ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पंजाब के चुनाव आ रहे हैं और मैंने पगड़ी उठा दी, और उन्होंने ये पूरा विस्तार से बताया बिल्कुल शेष पंजाबी में बोलकर कि मान साहब को गलत फहमी है, ऐसे ही चार्ज बोलते हैं, पगड़ी तो मैं कब से पहन रहा हूं।
0: मुख्यमंत्री वो हरियाणा के हैं, ज्यादा टाइम वो पंजाब में बताते हैं, क्या हरियाणा में सब कुछ ठीक हो गया? क्या हरियाणा में सब कुछ सही हो गया?
1: आप भी तो दिल्ली बैठे हुए थे जब दिल्ली में चुनाव थे।
0: चुनाव के समय 10 दिन 15 दिन चल जाओ, लेकिन ये तो पिछले एक साल से आ रहे हैं, कभी पठानकोट जा रहे हैं, कभी जलंधर जा रहे हैं, कभी पटियाला जा रहे हैं, और जहां आके मुझे गालियां देते हैं। मैं कभी हरियाणा जाके, हरियाणा में भी पंजाबी बसते हैं, मेरे तो इलाज भी हरियाणा में है।
1: वो तो पंजाबी में बोल के गए, आपको फिर हरियाणवी में उत्तर देना पड़ेगा इसका।
0: नहीं नहीं, वो मेरे इलाज भी पंजाब में है, हरियाणा में है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा, हरियाणा के साथ काफी मीटिंग होती रहती हैं, चाहे एसवाईएल की, चाहे किसी और नॉर्थ जोन काउंसिल की, होती रहती हैं, लेकिन सैनी साहब को इसलिए लगाया हुआ है कि आप हरियाणा छोड़ दो, आप पंजाब में चलो, शायद पंजाब के लोग पगड़ी देख के वोट करते हैं, अपना क्या नाम है मोदी जी भी जब आते हैं पगड़ी पहनते हैं और पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं, किमें हो पंजाबी हो, है ना,
2: तो सम्मान के लिए है ना, सम्मान दिखाने के लिए करते हैं।
0: नहीं नहीं वो मतलब पगड़ी पहन के आप पंजाब हर फैसला तो पंजाब के विरुद्ध ले रहे हो और आके यहाँ पे किमें हो पंजाबी हो, मैनू तो आड़े ते बड़ा मान है, है ना, ये इदा दी पंजाबी बोल के तक मैनू लगता नहीं कोई पंजाबी वोट पाऊ, जेड़ा कोई सोचता भी होगा वो भी बंद हो जाएगा भी छोड़ो परे यार की करना है। सो उनको अपना हरियाणा संभालना चाहिए, जब हरियाणा में सब कुछ ठीक हो गया पंजाब में वेलकम करेंगे उनका।
2: इस बार के चुनावों पर आते हैं, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अभी ये समझ नहीं आ रहा है अलायंस कहां पर क्या हो रहा है। कांग्रेस आपको लग रहा है अब क्योंकि नया चीफ मिल गया है उन्हें, वो मजबूत हो गए हैं, क्या सबसे बड़ा आपका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होगा यहां?
0: देखो कांग्रेस पार्टी की प्रधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, तो एक बनता है तीन चार उसकी टांगे खींचने वाले आ जाते हैं, तो कांग्रेस का तो सीधा सा मुद्दा है भाजपा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बड़ेंग से नहीं बनती, बड़ेंग की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती और नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती, ठीक है ना, उनका तो ये फॉर्मेट है। तो अभी भी वो मुझे पत्रकारों ने कहा कि प्रगट सिंह आ गए हैं, प्रगट सिंह हॉकी के कप्तान रहे हैं, प्रगट सिंह गोल करने में माहिर हैं। मैंने कहा गोल तो प्रगट सिंह तभी करेंगे ना जब उनको पास देंगे, चन्नी ने पास ही नहीं देना प्रगट सिंह को कि कहीं ये गोल ना कर दे, भाजपा के पास बॉल आ गई भाजपा अपने पास लेके घूमेगा, ब्रिंग के पास बॉल आ गई ब्रिंग नहीं प्रगट को देगा, प्रगट को हॉकी छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा, देखना शर्त लगा लेना, मैं लिख के तो नहीं दे रहा लेकिन ये कह रहा हूं ये होगा इनके साथ आगे।
1: पर मान साहब ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी बस इसी होप में बैठी है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस एक दूसरे से झगड़ के खत्म हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, कोई गेम प्लान है?
0: इस इलेक्शन में हम अपने कामों पर वोट मांगेंगे, किसी को आलोचना करके या किसी की मतलब मान हानि करके हम वोट नहीं मांगेंगे, हम वोट मांगेंगे बिजली के नाम पे, हम वोट मांगेंगे 14,000 किलोमीटर नहरी पाइपलाइन बिछा के हमने खेतों खेतों में पानी पहुंचा दिया, हम उस पे वोट मांगेंगे, हम मांगेंगे आम आदमी क्लिनिक पर 1100 आम क्लिनिक हैं, 5.5 करोड़ ओपीडी हो गई है उसकी जो लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, हम मांगेंगे 10 लाख के सेहत बीमा कार्ड योजना पे 10 लाख का उपचार, 650 प्राइवेट हॉस्पिटल 400 सरकार के 1000 हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, हम मांगेंगे SSF के नाम पे, हम मांगेंगे 70,885 नौकरियां दे चुके हैं सरकारी बिना किसी पैसे के बिना किसी सिफारिश के, तो हम उस पे वोट मांगेंगे, हम कांग्रेस की लड़ाई से या अकालियों की लड़ाई से हमें कुछ नहीं लेते।
2: पर ये अकाली और बीजेपी साथ आ जाएंगे तो आपको फायदा है या बीजेपी सारी अकेले लड़े सीटें उसमें आपको फायदा है?
0: देखो अकाली बीजेपी का जो गठजोड़ है ना ये कछुए और चूहे की दोस्ती वाला है, कछुए और चूहे में दोस्ती हो गई, उन्होंने दोस्ती कर ली कि हम इकट्ठे रहेंगे, उन्होंने एक दूसरे की टेल जो है बांध ली, एक दूसरे की पूंछ जो है वो बांध ली कि इकट्ठे रहेंगे, अब थोड़ा गर्मी हुई कछुए को गर्मी लगी, वो कछुआ जो है वो एक गहरे तालाब में नीचे चला गया, चूहा डूब कर मर गया, थोड़ी देर बाद कछुआ बाहर आया तो चूहा उसके साथ ही पूंछ बंधी हुई थी, ऊपर से कोई चील आई, चील ने देखा कि कछुआ चूहा मरा हुआ है, चील ने अपने पंजे से चूहा उठा लिया साथ में कछुआ भी उठ गया, 100-200 मीटर से कछुआ गिरा कछुआ भी मर गया, अब फैसला ये कर लें बीजेपी कछुआ है या चूहा है, अकाली दल कछुआ है चूहा, एक दूसरे को मारेंगे ये बस।
1: पर मान साहब इस चुनाव में कछुआ चूहा और चील के साथ एक और एंट्रेंट है वारिस पंजाब दे
0: जी।
1: और कहते हैं आप सर्वे आप भी कराते हैं, सर्वे में रिजल्ट्स भी आते हैं और सुनने में आया है जो पंथिक वोट है वो वारिस पंजाब दे को काफी हद तक जा रहा है रूरल में, तो वो कितना ये न्यू एंट्रेंट आपको कितना भारी पड़ेगा?
0: देखो लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है, लोकसभा में उन्होंने एक सीट जीती है ठीक है ना
1: जी,
0: लेकिन विधानसभा किसी और मुद्दे पे होती है, विधानसभा लोकल मुद्दों पे होती है, तो बहुत से स्टेटों में आप देखते होंगे लोकसभा के रिजल्ट कुछ और आते हैं विधानसभा के कुछ और आते हैं, लेकिन सबको पार्टी बनाने का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो अपना एजेंडा लेके जाएंगे लोगों के पास, लोगों को पंजाब के लोगों को एजेंडा पसंद आ गया उनको वोट डाल देंगे, हम भी अपना एजेंडा लेके जाएंगे हमारा पसंद आ गया हमको वोट डाल।
1: वारिस पंजाब दे किसकी टीम भी है?
0: उनको भी हमारी वी टीम का बोल दिया था, सुखबीर बादल कह रहा है भगवंत मान ने पैदा किया ये, मतलब हमको अपनी पार्टी का तो कोई कहता ही नहीं, कोई कहता कांग्रेस के हैं, कोई कहता बीजेपी के हैं, कोई कहता आप कहते हो कॉकरोच के हैं, कोई कहता
1: है बारिस के। हम तो कह रहे हैं कॉकरोच शायद आपके हो सकते हैं।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, संविधानिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और कोई हर एक को हक है वो भी आए आके अपना एजेंडा लेके जाएं, लोगों को अच्छा लगा लोग वोट डाल देंगे।
2: भगवंत मान जी पिछली बार जब चुनाव था तो दिल्ली में सरकार आपकी थी आम आदमी पार्टी की थी और दिल्ली मॉडल दिखाकर पंजाब को बताया गया हम ऐसा बनाएंगे, इस बार दिल्ली से सरकार जा चुकी है, ये बड़ा परिवर्तन यहां पर और आपके उन्हीं मॉडल्स को आपकी ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है?
0: नहीं, अब तो हमारे पास स्कूल ऑफ एमिनेंस का अपना मॉडल है पंजाब का, हमारे पास नहरी पानी, जब मैंने ओथ ली थी तो 21-22% हम नहरों का पानी सिंचाई के लिए यूज करते थे खेतों में, आज हम 88% पे पहुंच गए हैं। पहले 2021 में 80 बच्चों ने सरकारी स्कूलों के सिर्फ 80 बच्चों ने नीट का पेपर क्लियर किया था, हमने जो कायापलट किया है कि हमारे टीचर्स को हम फिनलैंड और सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं, स्कूलों में जो है क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम लैब्स बन गई, उसका नतीजा 4 साल में ये हुआ 21 में 80 बच्चे सरकारी स्कूलों के जो नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, वो भी वो बच्चे जिनके माता पिता के पास थोड़े पैसे हैं महंगी कोचिंग दिलवाने वाले, हमने कोचिंग फ्री कर रखी है। इस बार 882 बच्चों ने पंजाब में नीट का पेपर क्लियर किया सरकारी स्कूलों के, और कौन है वो, किसी की माँ घरों में सफाई करके झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है, किसी का बाप को खच्चर रेड़ा चलाता है, किसी का बाप ट्रक का ड्राइवर है, किसी का बाप किसी पुल के नीचे प्रेस करता है कपड़े, उनके बच्चे जब नीट क्लियर कर गए अब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल पे हम वोट मांगेंगे।
1: आपने स्कूलों की बात की मान साहब, पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली से पंजाब में है, को इंचार्ज सत्येन जी हैं, दिल्ली से पंजाब में है, कांग्रेस अकाली सब एक चीज कह रहे हैं कि देखिए फिर दिल्ली के सारे आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में आके बैठ गए हैं, उनको बड़े बड़े बंगले दे दिए गए हैं और इन बंगलों से वो पंजाब की राजनीति चला रहे हैं। ये बंगले दिए हैं, कितने लोगों को बंगले मिले हैं?
0: देखो नहीं नहीं कोई वैसे किसी मंत्री के घर पे कोई कटसी के तौर पे रह रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये हर रोज नहीं आते, जब भी कोई मीटिंग है आके पंजाब भवन में ठहर के चले जाते हैं तो। लेकिन मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं मनीष सोदिया दिल्ली से हैं, सतेंद्र जैन दिल्ली से हैं, वो हमारे ऑब्जर्वर हैं, राजेश पायलट मोगा से हैं,
1: सचिन पायलट
0: मोगा से हैं, वो कहां से हैं? वो राजस्थान से हैं। इससे पहले भूपेश बघेल कहां से थे? बागापुराना से थे। वो कहां से थे? अभी प्रगट सिंह 5 दिन दिल्ली बैठ के आए हैं, प्रधान बनने के बाद एकदम पंजाब नहीं आए, पहले दिल्ली वालों को मिले, कभी केसीबी नेवाल को, कोई खड़गे को, कभी किसी को, कभी अंबिका सोनी को, कभी किसी को। भाई नेशनल पार्टियां हैं वो भी दिल्ली से चलती हैं, हमारी भी नेशनल पार्टी है दिल्ली से हमारे ऑब्जर्वर आएंगे।
1: दिल्ली से चलती है बोल गए थे आप,
0: पार्टी तो दिल्ली से है ना, बेस है जी। पार्टी तो दिल्ली से, बीजेपी दिल्ली से चलती है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है दिल्ली से चलती है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, हमारा हेड ऑफिस तो दिल्ली है। तो हम गुजरात में भी लड़ चुके हैं, गुजरात में जो है हमारे 5 MLA हैं, गोवा में हमारे MLA हैं, हमारा जम्मू कश्मीर में डोडा में हमारा MLA है, हमारी पार्टी अभी 12-13 साल पुरानी है। तो इसलिए ये कहना कि हम दिल्ली वालों को यहाँ लाते हैं ये ठीक नहीं है। हम
2: वो रेसिडेंशियल घर, मतलब उनको घर यहाँ पर अलॉट करके छोड़े हुए हैं, नाम किसी और का है, रह रहे हैं दिल्ली के नेता, ये आरोप है?
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी घर में कोई आके कोई गेस्ट के तौर पे या कोई रह गया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो मेरे घर पे भी गेस्ट आते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी। पहले फिर अरूसा कहाँ रहती थी? अरूसा तो पाकिस्तान से थी, कांग्रेस वालों को ये पूछो ना, अरूसा तो पाकिस्तान से थी, वो तो उनकी डिफेंस जर्नलिस्ट भी थी, वो तो जासूस होने के भी चर्चे हैं, वो तो यहाँ पे बदलियां करती थी खुद, डीजीपी के डीजीपी पांव में बैठा है और उसको डीजीपी जिस दिन लगाया जा रहा है वो पांव में बैठा है, मतलब ऐसी फोटो आती थी। तो कम से कम हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसलिए ये पहले अपनी पीढ़ी के नीचे जो है वो सफाई कर लें, फिर बाद में देख लें।
1: मान साहब आखिरी 2-3 सवाल हैं, एक बहुत स्पेक्युलेटिव खबर चल रही है बहुत टाइम से कि हो सकता है आम आदमी पार्टी का स्प्लिट हो पंजाब यूनिट का, कि या पोस्ट पोल हो, अगर नंबर नहीं आते हैं, सीटें नहीं आती हैं, तो काफी एमएलए छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है उसके पहले भी हो।
0: देखिए, हमारी एक पार्टी है देश में जिसमें डिसिप्लिन है, हमारे बंदे हमारे, आप कांग्रेस में अभी देख लो बड़िंग के खिलाफ कि मुझे चन्नी ने कितना मुर्दाबाद जिंदाबाद करवाई, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। वो उसकी अपना भूपेश बघेल की हाजिरी में उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी, एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई, ये कांग्रेस का कल्चर है। अकाली दल खत्म हो गया है, अकाली दल के जो कह रहा था ना सुखबीर बादल राज करेंगे 25 साल, उनके पास 25 बंदे नहीं है टिकटें देने के लिए, उनके पास बंदे नहीं है, उन्होंने 4 बाई इलेक्शन छोड़ दी थी, बंदे नहीं है। ये टाइम टाइम की बात होती है, कभी दादे की कभी पोते की, तो इसलिए ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये वक्त, राजाओं से भीख मंगा देता है ये वक्त। हमारी पार्टी में ऐसा कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है कि हमारे 4 कैंडिडेट हैं, 4 चेहरे, या मेरा चेहरा अनाउंस करो, उसका करो, उसका करो, हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी एकजुट रहेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, और इतनी डिसिप्लिन पार्टी देश में कोई नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी।
2: ये सवाल पूछने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका आपने पहले एग्जाम्पल दिया, उसमें लड़कर भी पार्टी के अंदर है सब, आपकी पार्टी से थोड़ा सा मनमुटाव होता है, छोड़कर चले जा रहे हैं।
0: तो कैप्टन रविंद्र कहाँ है?
1: एक सुनने में आया है कांग्रेस वापस होने
0: वाली। मनप्रीत बादल कहाँ है? 2। रवनीत बिट्टू कहाँ है?
2: पार्टी कितनी बड़ी
0: है? रवनीत बिट्टू कहाँ है? 3। सुनील जाखड़ कहाँ है? 4।
2: और लड़ाई है इतनी है।
0: अपने आप ही सवाल बना लेते हैं यार।
1: कैप्टन साहब का तो सुनने में आया घर वापसी होने वाली है। कैप्टन साहब,
0: कैप्टन साहब ने कहा कांग्रेस मुझे लेती नहीं, बीजेपी मुझे कुछ मुझसे कुछ करवाती नहीं, मैं तो कुछ नहीं रह गया, बस फिर रिटायर हो जाएं, और क्या करें, क्या करें।
1: मान साहब, एक सवाल जो कहते हैं पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीतती है तो चलिए आपकी पॉलिटिक्स कायम है इन गवर्नेंस, पर अगर आपकी पार्टी ये चुनाव हारती है तो जिस फोर्स से ये पार्टी आई थी, दिल्ली में आई थी, जिस फोर्स से ये पार्टी पंजाब में आई थी, इसका क्या अस्तित्व रह जाएगा फिर?
0: देखिए, सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने इस पार्टी के पेड़ पर जो दिखाए थे, 4 एमपी जीते थे, मैं भी था उनमें
1: जी,
0: फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, संगरूर और लुधियाना और अपना पटियाला। तो पंजाब ने उम्मीद बनाई थी, पंजाबियों ने उम्मीद बनाई थी। अब आप कह रहे हैं दिल्ली में हार गए हैं, अगर पंजाब में क्या हुआ? आप, मैं एक बात और आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, आम आदमी पार्टी जो है, जो मोदी का रथ है, जो जीत वाला रथ, पहले भी पंजाबियों ने रोका था, इस बार भी, हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए, बिहार भी जीत गए, बंगाल भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए, पंजाबी उनका रथ पंजाब में रोकेंगे, हारने वाली बात ही ना करो।
1: बीजेपी का रथ तो रोक लेंगे, कांग्रेस निकल गई तो?
0: कांग्रेस का तो रथ ही, उसमें तो पहिए किसी, पता नहीं किसी और का पहिया, किसी टायर का, कोई ट्रैक्टर का पहिया उसमें किसी का, उसके तो पहिए ठीक नहीं है उसमें तो कोई।
1: तो आप कह रहे हैं बिगेस्ट थ्रेट बीजेपी है, कांग्रेस से भी बड़ी थ्रेट बीजेपी है?
0: नहीं, बीजेपी के पास ईडी सीबीआई ये वो करते हैं ना, पहले भी कर चुके हैं ऐसा, तो हम उनका भी सामना करेंगे, पंजाब में इनको हार का सामना करेगा पूरी तरह।
2: पिछली बार ही एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आप यहाँ लेकर आए थे, इस बार कोई लक्ष्य लेकर, कोई गोल लेकर चल रहे हैं?
0: पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ना है।
1: अच्छा, लिख के देंगे?
0: हाँ जी,
1: लिख के देंगे।
0: अगले बस इलेक्शन के समय आप आओगे, आप कौन सा यहाँ पे आना बंद हो जाओगे, आप मुझे बिठा लेना, कापी पेन ले आना, आज आपके पास कापी पेन नहीं है, लेकिन आज मैं इतना बोल देता हूँ के पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा।
1: तो 92 के ऊपर सीटें आएंगी, 117 में से 92 के ऊपर आएंगी, आप ये कह रहे हैं?
0: आएंगे, ये चला देना। थैंक यू,
2: बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
0: थैंक यू वेरी मच
2: हमसे बात करने के।
3: भगवंत मान को, पंजाब के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने लगातार कई आरोप लगाए और किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होगी आने वाले चुनावों को लेकर, यह भी क्लियर किया। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, लंच को लेकर। आज फिर से कांग्रेस के लंच को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई। सवाल यह है कि क्या आज भी बुधवार रिपीट होगा? क्या आज भी लंच के बाद विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरेंगे? क्या फिर जंतर मंतर की तरह कूच होगा? क्या पुलिस रास्ता रोकेगी? क्या नारेबाजी होगी? धक्का मुक्की भी होगी? और क्या बात फिर से हिरासत से लेकर रिहाई तक पहुंचेगी? क्योंकि मुद्दा भी वही है और विपक्ष के तेवर भी वही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लंच के बाद विपक्षी सांसद जंतर मंतर की तरफ निकले थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया था। सड़क पर बैठक कर उन्होंने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। लेकिन आज की तस्वीर भी आप देखिए कि कुछ इसी तरीके की है। आज भी लंच के बाद लगातार विपक्षी सांसद जो है वो जुटना शुरू हो गए। बसेस में बैठकर लगातार कहा जा रहा है कि वो जंतर मंतर की तरफ जाएंगे या फिर कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां से वो प्रदर्शन को आगे बढ़ा सके। और देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस समय कनॉट प्लेस के इलाके में राहुल गांधी मौजूद है। उनके साथ उनके कई नेता, उनके सहयोगी और इसके साथ ही उनके कई कार्यकर्ता भी उनके साथ वहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और आपको बताएं कि सीसी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी का तीसरा दिन है। राहुल गांधी लगातार लंच के लिए जा रहे हैं और आपको बताएं कि इसी के बाद माना जा रहा है कि विपक्षी सांसद एक बार फिर से सीसी के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर फिर प्रदर्शन करेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे। और ये तस्वीरें नॉट प्लेस किया जहाँ पे राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। दोनों तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। आप समझिए कि इस समय भी क्राउन प्लेस के मिंटो रोड इलाके में यानी आउटर सर्कल के पास किस तरीके से कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्षी सांसद और विपक्ष के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से मुद्दा वही है, तेवर भी वही है कि एक बार फिर से उन्हें ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष एकजुट और प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो राजघाट भी जा सकते हैं। लंच के बाद विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजीज पर आगे तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्षी तमाम नेता जो हैं वो राजघाट भी जा सकते हैं। लंच के बाद बसेस में सवार होकर बस के अंदर वो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गया। ऐश्वर्या वहां मौजूद है। ऐश्वर्या, इस समय विपक्ष की स्ट्रैटेजीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दा भी वही होगा, तेवर भी वही होंगे और शायद वही तस्वीरों में नजर आ रहा है। भारी संख्या में कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं नॉर्थ प्लेस के इस इलाकों में जुटना शुरू हो गए।
4: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सुमित, जहाँ पे ये लोग मौजूद है मोए, ये भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं एक तबके को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजघाट बोलकर अचानक से लेफ्ट टर्न ले लिया जाए। काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे कांग्रेस वाले वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं। अब NSUI IYC यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, झंडे आपको कांग्रेस के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा तैयारी है और हर कोई जो है अब इंतजार कर रहा है राहुल गांधी जो है वो बाहर निकले और ये बताया जाए आखिरकार जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बताया जाए, क्योंकि बसेस के अंदर MPs ने चढ़ना शुरू कर दिया है। ये कैनॉट प्लेस है, इसको राजधानी का दिल कहा जाता है और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के सपोर्टर्स पहुंच चुके हैं और जो MPs है उन्होंने बसेस में चढ़ना इस समय सुबह शुरू कर दिया है। अब देखना पड़ेगा थोड़ी देर के अंदर कि आखिरकार ये जो बसेस हैं राहुल गांधी समेत ये लोग उड़ते कहाँ हैं।
3: बिल्कुल। और ऐश्वर्या एक और बात, क्योंकि डिफेंस में हम अक्सर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की बात करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर भी जो विपक्ष है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना के रखता है कि कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेगा, ये नहीं बताया जाता आखिरी तक। एकदम जब लंच खत्म होता है उसके बाद तय किया जाता है कि चलिए वहां उस इलाके में जाना है, उस लोकेशन पे जाना है और सभी के सभी वहीं जुटना शुरू हो जाते हैं।
4: बिल्कुल सुबह देखिए इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने जाके बैठ गए थे। इसको ये जो इन्होंने धावा बोला था ये एक टॉप सीक्रेट मिशन के तौर पे इसको रखा गया था और वही हमने बीते दिनों में भी देखा है। आज भी MPs बसेस में तो चढ़ गए हैं लेकिन उनको नहीं मालूम कि बसेस लेफ्ट जाएंगी, राइट जाएंगी या राजघाट पहुंचेगी। सपोर्टर्स फिर भी काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कई सारे नेता आज लंच के अंदर थे, TMC के भी कई सारे नेता थे, तो यूनाइटेड विपक्ष इस समय ये कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ये बोले कि हम यूनाइटेड है, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट अभी भी बरकरार।
3: बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि आप उस इलाके में मौजूद है, ये वो इलाका है जो बहुत ज्यादा व्यवस्थित रहता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस समय पुलिस ने वहां पर कैसे इंतजाम कर रखे और कैसी भीड़ है वहां पर, क्योंकि देखिए हमारे बाकी के सहयोगी खासतौर पर मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाली है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप वहां से दिखा सके तो
5: हेलो
4: वेस्ट, तो लेकिन यही करना चाहूंगी कि ये जो सड़क है ये आउटर सर्कल है सीपी का, और यहाँ पे देखिए सड़क पे किस तरीके से धंडा प्रदर्शन किया जा रहा है। सपोर्टर्स इस समय सड़क पर ही बैठ चुके हैं, मुश्किल है यहाँ से गाड़ियों का निकलना। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि एक तरफ से जो है ये जो विरोध प्रदर्शन है इसको एक तरफ रखा जाए सड़क के, और दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकलने का मौका दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस समय चक्का जाम की सी स्थिति जो है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आपको नजर आएगी, और दिल्ली के भी दिल यानी कि कैनॉट प्लेस में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ट्रैफिक काफी ज्यादा है। पुलिस कोशिश कर रही है, आधे से ज्यादा सड़क जो है सुमित वो कांग्रेस सपोर्टर्स ने इस समय घेरा है।
3: ऐश्वर्या आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी देखिए ऐश्वर्या तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से वहां पे कार्यकर्ताओं कांग्रेस के विपक्ष के जुटना शुरू हो गए, नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां के आलम क्या है, वहां की तस्वीरें कैसी है?
5: देखिए दोपहर के लंच का डे टू और धरने का डे थ्री ये चल रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हम लोग कैनॉट प्लेस के उस आउटर सर्कल में हैं, जहां पीछे आप देखिए कि ये पूरा पैसेज बनाया गया है। इसी रास्ते से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता आएंगे। ये जो पहली बस आप देख रहे हैं वहीं पे हम इस जंक्चर पे खड़े हैं, जिस बस में राहुल गांधी और खड़गे और तमाम नेता बैठेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि पुलिस का किस तरीके से आपको खाकी भी दिख जाएगी, नीला जो रैपिड एक्शन फोर्स है नीली वर्दी में वो नजर आ जाएंगे, और एक पैसेज बनाया गया है उनको यहाँ से आगे राजघाट जब जाएंगे तो इस बस में राहुल गांधी किसी भी वक्त अब आ सकते हैं क्योंकि लंच खत्म हो गया।
3: बिल्कुल मौसमी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कवर करती आई, आपको पता है ये एकाएक कांग्रेस की और विपक्ष की स्ट्रैटेजीज में बदलाव कैसे आया, क्योंकि कहा यह जा रहा है किसी नेता को नहीं पता होता कि आखिरकार कहां का मोर्चा होगा, कहां पे कूच होगी, सिर्फ लंच पे बुलाया जाता है और उसी समय डिस्कस करके ये तय किया जाता है कि चलिए आज वहां पर चलना है, वहां पे दर्शन प्रदर्शन होगा।
5: जी देखिए मैं ये कह रही थी कि ये राहुल गांधी की गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं, या ये कहिए कि पॉलिटिकल जो रणनीति है उन्होंने इख्तियार की है कि शॉक सरप्राइज और अटैक, और ये सिर्फ टॉप ब्रास जो कांग्रेस का टॉप ब्रास है वो आपस में ही सिर्फ चर्चा कर रहा है, यानी कि खड़गे राहुल गांधी शायद प्रियंका गांधी के साथ स्ट्रेटेजाइज करते हैं और दो तीन लोग के से ज्यादा किसी को मालूम नहीं होता। तो ये और एक औचक तरीके से जगह पर पहुंच जाना, अब ये लोकेशन देखिए चूज की गई थी, सब लोग कर्तव्य पथ से इस पार आए हैं, लटियंस रैली से इस पार आए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सीधा रास्ता राजघाट को जाता है। और पीछे आप देखिए हमारे की आपको हरकत नजर आएगी, यहाँ पे नेता ऑलरेडी दो बसों में भर गए हैं, ये तीसरी बस है जो आखिरी बस है जो नंबर वन पे आपको नजर आ रही है। चाचा थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, ये नंबर वन पर नजर आ रही है। तो ये इस बस में सारे इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी होंगे, और एक तरीके से ये औचक तरीके से किसी को बताया नहीं जा रहा है कि राजघाट जाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे या जंतर मंतर। लेकिन अब राजीव राय बताए हम लोगों की राजघाट जाने का प्लान है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर राजघाट इन लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। हालांकि राजघाट क्योंकि बसों में जा रहे हैं तो जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर एक लेकिन की स्थिति पैदा होती है तो बस कहीं भी घूम सकती है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के की नींद उड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रखा है विपक्ष ने। लगातार तीसरे दिन भी पहले वहां ली मेरिडियन में चक्का जाम हुआ, परसों आकाशवाणी भवन में चक्का जाम हुआ, और अब पूरा सीपी कैनॉट प्लेस आप देखिए दिल्ली का दिल एक तरीके से 360 डिग्री आलोक आपको दिखाएंगे, टॉप एंगल से व्यू दिखाएंगे, 360 डिग्री व्यू में दाहिने से पूरा कैमरा अगर घूमे और पूरा मिंटो रोड तक पूरा कैनॉट प्लेस का आउटर सर्कल। ये राहुल गांधी आ रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए श्रीनिवास यहाँ पे, और राहुल गांधी जो है किसी भी वक्त इन तस्वीरों में राहुल गांधी समेत मानिकम टैगोर नजर आ रहे हैं, श्रीनिवास नजर आ रहे हैं और रास्ता खाली कराया जा रहा है। और ये वो वक्त है जब आज तक पर हमारे दर्शक, सर थोड़ा सामने सट जाइए, आज तक पे हमारे दर्शक ये तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे राहुल गांधी अभी देखिए एक एक करके सर तमाम नेता जो हैं वो आने लगे हैं, राजा वॉरिंग नजर आने लगे हैं, गठबंधन के नेता नजर आने लगे हैं और यहाँ नारेबाजी हो रही है और हरकत बढ़ गई है, यानी कि नेता जो हैं अब बसों में भरे जा रहे हैं। मनीष चतरथ यहाँ पे आप देखिए इंतजाम देखते हुए यहाँ पे लगातार कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। साकेत गोखले नजर आ रहे हैं सर।
6: Yes, we are going for a protest. We are going for recovering India. Yes, we are protesting for restore the democracy. So we are going for a historical protest.
7: So here the opposition parties together we are fighting for a genuine demand. The resignation of Ganesh Kumar is necessary for our nation.
5: तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम आपको नेताओं से करा रहे हैं और यहाँ पे राजा वॉरिंग जो कल बस पे चढ़ गए थे
8: ये भी पूछे कि आखिरकार ये राजघाट ही जा रहे हैं या फिर कहीं और जाने की भी स्ट्रेटजी है।
5: आज क्या प्लानिंग है?
9: कहीं भी अभी तो बस पर चढ़े हैं। अभी हमने जहाँ पर हमारा कमीशन का ऑफिस है उसके ऊपर भी चढ़ना है और गणेश कुमार की छाती के ऊपर भी चढ़ना है।
5: अभी अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे ये देखिए राजा वॉरिंग काफी तीव्रता से ये बोलते हुए और हम कोशिश करेंगे अभी अभी सवाल जवाब ज्यादा नहीं हो पाएंगे
8: जी।
5: अभी ग्राउंड जीरो पे हम आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं। देखिए बस के सामने किस तरीके से थोड़ा टॉपी रखेगा अगर बहुत टाइट फ्रेम हो रहा हो। यहाँ पे देखिए आप पारा मिलिट्री फोर्सेज जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो बस के सामने खड़ी हो गई है और अब राहुल गांधी किसी भी वक्त आ सकते हैं। सवाल
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए मौसमी वहां से तस्वीरें भेजती रही लगातार, हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमें ये तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन राजघाट पे किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे एक और सहयोगी सुशांत वहां से राजघाट पर मौजूद है। सुशांत वहां पर क्या इस समय वहां के क्या सीन है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें?
5: आप भी राजघाट मत जाइए, राहुल गांधी यहां पे दिखने वाले हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे किसी भी वक्त राहुल गांधी आ सकते हैं, प्रियंका गांधी आ सकती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनसे सवाल भी करने की। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सारे जो NSUI के झंडे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो बिल्कुल मुस्तैद हो गई हैं और तमाम नेताओं ने हमसे बात किया तो बोला कि हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जा रहे हैं। ये वो वक्त है जब लगातार तीसरे दिन ये धरना जो है चल रहा है, आकाशवाणी से पहले ली मेरिडियन और अब सीपी सर्कल में इसे ये धरना आगे एक तरीके से रणनीति के तहत यहाँ पुलिस देखिए अपना बंदोबस्त कर रही है क्योंकि एकदम से नारेबाजी जोरों से होने लगी है और इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का। मैं आपको इशारा करूंगी जैसे ही राहुल गांधी नजर आते हैं यहाँ पे, आप तब तक सुशांत के पास जा सकते हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल मौसमी सिंह का देखिए, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही है कि किस तरीके से एक एक करके सांसदों को नेताओं को बस में बैठाया जा रहा है और थोड़ी देर में राहुल गांधी भी वहां पर आएंगे और फिर आगे ये कार्रवाई या फिर ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ सुशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राजघाट से क्या तस्वीरें हैं सुशांत वो जल्दी से अगर आप बता सके और दिखा सके हमें तो।
10: देखिए आपको तस्वीरें दिखा दूं, राजघाट का ऐलान था कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है पहुंचेंगे लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता राजघाट पर बैठ गए हैं। रघुपति राघव के भजन के साथ यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त घूस दिखा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के तमाम लीडर इस वक्त नजर आ रहे हैं, सुभाष चोपड़ा, देवेंद्र यादव, जेपी अग्रवाल, तमाम सांसद जो पूर्व है वहां पर मौजूद है। लगातार तीसरा दिन आपके प्रदर्शन को, राहुल गांधी राजघाट पहुंच रहे हैं, क्या आगे की स्ट्रेटेजी?
11: देखिए तीसरा दिन है माने राहुल गांधी जी
8: बिल्कुल बिल्कुल आपका रुख करेंगे लेकिन देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी एक साथ फिर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी ठीक यहां पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अब ये प्रदर्शन के लिए आगे जाएंगे राजघाट, ये बताया गया है कि राजघाट जाने का प्लान है लेकिन कभी भी ये सरप्राइज में बदल सकता है। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और इसके साथ ही राहुल गांधी दोनों एक साथ आपको नेता नजर आएंगे, विपक्ष के नेता लगातार वो आपको वो भी नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर मौजूद हैं और इलावा आरजेडी और बाकी नेता भी इनके साथ मौजूद हैं। अभिषेक बैनर्जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और देखिए तीनों तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे विपक्षी सांसदों का नेताओं का जमावड़ा हुआ है और अब से थोड़ी देर में ये सांसद ये नेता लगातार प्रदर्शन के लिए बसेस में बैठ रहे हैं और वहां से फिर ये आगे बढ़ेंगे।
3: और देखिए शायद हो सकता है कि मीडिया से बातचीत करें और उसके बाद बताएं कि क्या प्लान है और उसके बाद ये फिर आगे प्रदर्शन के लिए जाएं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए तस्वीरों में आपको राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक बैनर्जी और तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे, बड़े नेता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
12: गठबंधन के सारे गांधी स्मारक जा रहे हैं, जहां पर हम वहां पर धरना करेंगे और वहां पर हम यही प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी सरकार को, मोदी को, शाह को सद्बुद्धि दे और वो जो कर रहे हैं देश के हित में नहीं है, वोट चोरी का मामला हो या देश में आज जो बढ़ती हुई महंगाई है और युद्ध की समस्या है और जो भी समस्याएं उन्होंने खड़ी की है सब जनता के विरोध में है। इसीलिए हम गांधी जी के स्मारक पर जाकर प्रार्थना करेंगे कि इनको तुम जो आज़ादी हमको दिलाई है उस आज़ादी को ये लोग छीन ले रहे हैं और इस आज़ादी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा वोट का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों को जो मिला हुआ है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे महान नेताओं ने हमको जो आपने सब मिलके हमको जो आज़ादी दिलाई है, हमको जो फ्रीडम मिला है, हमको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को ये छीन रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो, इस ये प्रार्थना हम वहाँ करने जा रहे हैं। वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
13: तकरीबन 300 MPs राज्यसभा, ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, राज्यसभा और लोकसभा के, इसको पीछे करिए, राज्यसभा और, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, you will see that these four people are brought to justice. Thank you.
3: Rahul
8: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। देखिए प्रोटेस्ट के लिए राजघाट जाने का ऐलान किया है और कहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना करना चाहते हैं। करीबन 300 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के हमारे साथ हैं। हम लोग लगातार दो दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरना करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं किया जा रहा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, साफ है कि अब राजघाट जाएंगे ये नेता और 300 MPs बताया जा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा के वहां पर मौजूद हैं। क्या अब से कितनी देर में इनकी रवानगी होगी, कितनी देर में यहां से निकलने वाले हैं सभी सांसद?
5: सुमित, देखिए यहां राहुल गांधी, पप्पू यादव नजर आ गए हैं और तमाम राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पे, तो राजघाट जाने की तैयारी है। पीछे आप देखिए कि पूरी
14: राजघाट
5: तो यहाँ पूरी केसी वेणुगोपाल तो केसी वेणुगोपाल यहाँ पे और देखिए इन्हीं के पीछे अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। कल वो यहाँ पे नहीं थे लेकिन डेरिक ओ'ब्रायन और तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और आज यहाँ पे देख रहे हैं कि राहुल गांधी आ गए हैं। पीछे राहुल गांधी पीछे नजर आ रहे हैं और उधर दिखाइए आप, उधर वहाँ पे राहुल गांधी जो हैं पीछे वहाँ पे और अलंकार जो हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब पीछे यहाँ पे पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये पूरा मजमा जो है वो नजर आ रहा है। और एक तरीके से ये वो वक्त है जब काफी भीड़ आ गई है। खड़गे जी को मनोज झा पकड़ के लेके जा रहे हैं और आपको बताया था मैंने पहले ही कि इसी बस में खड़गे साहब जाएंगे। खड़गे जी कह रहे हैं कि राजघाट हम जा रहे हैं गांधी जी के राजघाट।
8: बिल्कुल मौसमी, आपने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया था कि देखिए राजघाट जाने का प्लान है, ये जानकारी आप ही ने दी थी। और देखिए एक बार फिर से मौसमी सिंह जहां पर मौजूद हैं, आपको दिखा रही हो तस्वीरें जब राहुल गांधी बस में बैठकर अपने विपक्ष के
5: सांसद
8: जी
5: ऊपर
8: देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि
5: राहुल गांधी से हमने बात की। अभी राहुल गांधी कुछ बोले नहीं पर उन्होंने बोल दिया है कि पूरी ये लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। एक तरीके से ये वो वक्त है जब यहाँ पे इस बस में तमाम लोगों को, तमाम सांसद जो हैं वो अब बैठ गए हैं। राहुल गांधी सामने आगे की तरफ अंदर जाते हुए बस में और पूरे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पे आ गया है। आप देखिए कि ये नजर आएंगे आपको राहुल गांधी, खड़गे, ये सामने बस में बैठे हुए। आलोक थोड़ा टॉप एंगल से दिखा दिया। प्रियंका
8: जी, ये देखिए मौसमी सिंह लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी बस में चढ़ते हुए और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार आप देख सकते हैं कि बस के बिल्कुल बाहर हैं और वो भी इसी बस में अपने भाई यानी राहुल गांधी के साथ बैठकर सवार हो रही है। मौसमी सिंह लगातार हमारी सहयोगी हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है और देखिए मौसमी सिंह वहां से रिपोर्ट कर रही है, बता रही है कि सभी विपक्षी सांसद जैसा बताया गया कि राजघाट जाएंगे और वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं,
5: उनको ले जाया जा रहा है अब राजघाट। जरा क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरा जो बस है प्रियंका गांधी जा रही हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे निकल रहे हैं। एक तरीके से ये वो टाइम है जब लगातार तीसरे दिन विरोध अपना दर्ज करना चाह रही है और इस विरोध के जरिए ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया ब्लॉक ये साफ कर दे रहा है कि हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये जो भीड़ है ये आगे अब राजघाट की ओर बढ़ेगी। आप देखिए काफी गाड़ियों का मजमा है, काफी ताता है और थोड़ा लॉन्ग एंगल से, लॉन्ग शॉट से हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये देखिए जरा आलोक पीछे दिखाइए, ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक तरीके से अब तैयारी है राजघाट जाने की। सुमित,
14: और बिल्कुल देखिए विपक्ष का सियासी लंच 2.0। अब 2.0 इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौसमी कल की भी तस्वीरें आपने बखूबी दिखाई थी जब जनपद पर पहुंचे थे विपक्षी और उसके बाद लंच करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से। बस अंतर इतना है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे खिड़की की तरफ बैठे तो उनकी दाईं तरफ राहुल गांधी थे, आज वो बदल गया है लेकिन वही तौर तरीका जैसा कल था बिल्कुल वैसा ही आज देखने को मिला। और देखिए मौसमी ने जो खबर बताई थी सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम तो जाएंगे और देखिए जहां बताया था वहीं के लिए यानी राजघाट जाने का जो प्रण लिया था अब राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं और एक बार फिर से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, बैरिकेटिंग अलग अलग जगह पर की गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं और अब देखिए बस का दरवाजा भी बंद हो गया यानी अब बस चलना शुरू होगी। कल भी आपने देखा था कि मुश्किल से 50 मीटर का भी जो सफर है वो बहुत वक्त उसमें लग रहा था और ऐसे ही अब लगेगा। मौसमी के पास एक बार फिर से रुक करते, मौसमी आपने बताया था और वो बिल्कुल ठीक हुआ राजीव राय से जब आपने बात की कि वो राजघाट जाएंगे उन्होंने बताया। हाँ बोलिए
15: आओ राजघाट।
14: तो मौसमी जैसा आपने बताया बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है और कल जो तस्वीरें दिखाई थी वो ऐसा लग रहा है कि आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब आज सब वो तस्वीरें रिपीट हो रही हैं। आज भी ये शाम तक होते हुए दिखाई देगा।

0: आप आ रहे दोबारा जोड़ेंगे। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर, बहुत ज्यादा भीड़ है, और ऐसे में आप तक तस्वीरें पहुंचाना, हर एक हलचल को अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। और कनॉट प्लेस की इस भीड़ को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे प्रथम पंक्ति में इस वक्त बैठे हुए हैं, बाकी के सांसद उनके साथ बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, प्रियंका भी है ठीक उनके पीछे वाली सीट पर, आप देखिए प्रियंका बैठी हुई है, और प्रियंका के साथ में भी अब जो कांग्रेस के साथी सांसद है वो मौजूद है। तो पहले लंच और लंच के बाद प्रोटेस्ट, मतलब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं बिल्कुल वैसा ही अब कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, और ये कल भी हुआ आज भी हुआ। और देखिए हो सकता है, पहले तो ये तीन तस्वीरें आप देख लीजिए, अमित भारद्वाज जो हमारे सहयोगी थे, मौसमी हमारी सहयोगी, उन्होंने पहले ये बसें दिखा दी थी कि बसें वहां पर पहुंच गई, मौसमी जुड़ गई हमारे साथ, मौसमी ऐसा लग रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, कल जो हुआ बिल्कुल वही तस्वीरें आज भी देखी जा रही है, यानी ये माना जाए कि शाम तक ये कुछ ऐसा ही चलता रहेगा और शाम को एक बड़ा ड्रामा भी देखने को मिल सकता है।
1: बिल्कुल देखिए, अब ये हम लोग मिंटो रोड इस तरफ है, आप देख रहे हैं ये मिंटो रोड का रास्ता है, और यहाँ से दाहिने हाथ लेंगे तो आप राजघाट आ जाते हैं। हमारे पीछे आप देखिए ये सीपी का सर्कल है, आउटर साइड आउटर सर्कल, जो आगे जाएंगे तो बारह खंबा से भी आप उस तरफ जा सकते हैं, पर थोड़ा उल्टा पड़ेगा। अब ये गाड़ियां जो हैं इस तरफ स्टेशन हैं, दाएं भी मुड़ सकती हैं और सीधे भी जा सकती हैं। पीछे आप देखिए कितना लोगों का हुजूम है, मजमा है, और वो बसें आपको दिख रही हैं, भीड़ जो है, अब धीरे धीरे ये बसें आगे बढ़ेंगी। हालांकि दाएं बाएं सब जगह कार्यकर्ता खड़े हैं और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। अब ये आपने सही कहा कि ये रिप्ले हो रहा है कल का, जिस तरीके से सागर रत्ना से निकले थे और महज 500 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी को रोकना पड़ा, बस को रोकना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि मिंटो रोड पे क्या बैरिकेडिंग है, ये भी देखना जरूरी होगा कि उस तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोका गया है लेकिन जाने वाली गाड़ियों को नहीं रोका गया है। तो आप देखिए कि आने वाली गाड़ियों के लिए बैरिकेड तो लगाया गया है और अभी वहां से ट्रैफिक रोक दिया गया है, लेकिन जाने वाला रास्ता क्लियर है। और ये रास्ता इंटरेस्टिंगली बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए, इंदिरा भवन से होते हुए राजघाट जाता है, तो जो रणनीति के तहत राहुल गांधी इसी रोड से जाना पसंद करेंगे। बीजेपी का दफ्तर यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और काफिला अब चल पड़ा और इसी तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये काफिला चल
0: अच्छा,
1: पड़ा
0: इस दौरान एक और खबर आ रही है, मौसमी आपके पास तो हम आते ही रहेंगे, इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि राजघाट जहां पर पहुंचने की तैयारी इन सभी विपक्षी सांसदों ने की है, वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्सेस का। और सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए राजघाट से, सुशांत बताइए क्या तैयारी वहां पर, बस में बैठ के तो निकल चुके हैं कनॉट प्लेस से।
2: देखिए मानशु, लगभग अगर कहा जाए तो अगर आप कनॉट प्लेस से निकले हैं मिंटो रोड से होते हुए तो लगभग मैच 10 मिनट का रास्ता, और ये राजघाट का मेन रोड है जो कि जहां से सीधा उनकी बसेस जो है वो यहां से आ सकती है। लेकिन उससे पहले, उनके आने से पहले यहां पर हैवी पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय करी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के तमाम जवान आपको यहां पर नजर आएंगे, और उसके बाद एकाएक अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि राजघाट जाने का प्लान है। लेकिन अचानक से राहुल गांधी कब पलट जाए, किस मोड़ पर ये पूरा एजिटेशन जो है वो आगे तरफ चला जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये राजघाट का एक तो मेन गेट है, दूसरी तरफ सड़क की अगर आप देखेंगे तो वहां पर तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो रघुपति राघव का भजन जो है वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पूर्व सांसद, तमाम दिल्ली के जो इकाई के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे राजघाट का ये मेन गेट है, यहां से तमाम लोग जो है वो अंदर जाते हैं, चाहे वो पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम नेता यहीं से जाते हैं। लेकिन यहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है, अब देखना यह है कि कब राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद क्या उनको अंदर जाने की इजाजत मिलती है, क्योंकि वो अंदर जाना चाहते हैं। तमाम कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि वो
1: राजघाट
2: जो धरना है उसको लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाता जाऊं
0: कि
2: किस तरीके से, ये देखिए ये दूसरी तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहां पर जो राहुल गांधी की पर्सनल सिक्योरिटीज है वो भी अब धीरे धीरे यहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। ये दूसरी तरफ देखिए यहां पर रघुपति राघव जो है वो लगातार जारी है, और इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो राहुल गांधी के यहां पर लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ये पोस्टर्स भी जो है वो मानशु दिखाए कि किस तरीके के यहां पे पोस्टर्स जो है वो यहां पर नजर आएंगे, वोट चोरी के खिलाफ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए।

0: राहुल गांधी के संघर्ष को मजबूती देने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के पोस्टर कांग्रेस के तमाम लीडर्स, दिल्ली के देवेंद्र यादव यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे की और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, राहुल गांधी का एक अलग चेहरा नजर आया, काफी ज्यादा गुस्से में भी थे, लेकिन उसके बाद सवाल खड़े हुए कि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, लेकिन आज शांतिप्रिय ढंग से इस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो कांग्रेस दिखा रही है हाथों पर।
1: सुशांत जी बताइए, ये कुछ सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं या ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं?
0: भजन करते हुए तो देखिए मानशु, ये अभी फिलहाल एनएसयूआई दिल्ली कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व सांसद जरूर हैं दिल्ली के, यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन जो विपक्षी दल और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, सांसद हैं, वो अभी नहीं पहुंचे, धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू होंगे। ये तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे और बड़ी भीड़ इस वक्त जो है वो यहाँ पर पूरे राजघाट और उसकी रोड पर जो है वो नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस ने बैरिगेटिंग जो है वो कर दी है। तमाम रास्ते, चाहे वो दिल्ली सचिवालय से आने वाला रास्ता हो, चाहे वो राजघाट से आने वाला रास्ता हो, इन तमाम रास्तों पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो आपको नजर आएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे की तरफ भी आपको लेके चले, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां पर आप सड़कों पर देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर बैठे हैं और दूर दूर तक आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो आपको नजर आएंगे। यानी कि एक अलग तरीके से, एक नया अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी का इस जो प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है।
1: अब सुशांत एक बात और बताइए, देखिए ये भीड़ देखकर जहां तक अभी हम समझ पा रहे हैं, क्या यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बसों का इंतजाम किया गया है कि अगर भीड़ यहां पर ज्यादा बढ़ती है तो उसके बाद फिर यहां से डिटेन किया जा सके, जैसे हम पिछले दो दिन से लगातार देख ही रहे हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था यहां पर भी की गई है क्या?
0: हाँ देखिए मानशु, मैं आपको दिखा दूं, पीछे अगर आप देखेंगे तो कई सारी बसेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है और कार्यकर्ताओं के बीच में अगर एक बार फिर से उसी तरीके का माहौल कल की तरह नजर आता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की पूरी रणनीति है कि इनको बसों के अंदर भर करके डिटेन जो है वो किया जाए। दोनों तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि दोनों तरफ सड़क के आपको बसेस जो है वो नजर आएंगी। मैं संजय से कहूंगा, संजय, कि वो तस्वीरें जो है वो आसपास यहाँ के दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये लाइन से आपको बसेस जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी। दोनों तरफ इस तरीके से बसेस जो है खड़ी हैं और उस तरफ भी खड़ी कर रखी हैं। और कल आप देखेंगे तो इसी छोटी मिनी बस के अंदर राहुल गांधी जो है उनको जनपद से जो है वो डिटेन किया गया था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको
1: मतलब हूबहू कि किस तरीके से हूबहू बिल्कुल वही तस्वीरें हैं। कल भी बसों का इंतजाम किया गया था, आज भी बसों का इंतजाम है। मौसमी जुड़ी हुई है हमारे साथ, मौसमी बोलिए।
2: देखिए अभी हम लोग मिंटो रोड पर खड़े हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बस नजर आ रही है, उस बस में राहुल गांधी आ रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी कार्यकर्ताओं का भीड़ है, पूरा जमावड़ा है, वो आप देख रहे हैं नारंगी बस जिसमें राहुल गांधी है। ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से पूरा उस तरफ तक दिखाई है आलोक, मिंटो ब्रिज के बाद भी वो पूरा काफिला अब राजघाट की ओर बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ये काफिला जाएगा, वो वक्त होगा जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने से राहुल गांधी की ये यात्रा आगे निकलेगी। हालांकि खड़गे साहब ने कह दिया है कि राजघाट ही जाएंगे, लेकिन सियासी रूप से भी ये एक बड़ा संदेश होगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, संदेश देने की कोशिश होगी कि जो है हम रुकने वाले नहीं। आइए अक्षय, आप बताइए, यहाँ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है यहाँ पे, ये कहाँ आप लोग राजघाट जा रहे हैं, कब तक ये धरना चलता रहेगा, कितने दिन?
3: खाना पीना होके कांग्रेस पार्टी फुल होके राजघाट की तरफ कूच करेंगे। आज राजघाट है, कल जंतर मंतर था, परसों आकाशवाणी भवन था। जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, सड़कों पे आपको कांग्रेस संघर्ष करती हुई दिखेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार और भाजपा घुटने पे लेके आएंगे।
2: तो यहाँ पे ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली के जो बता रहे हैं। आप देखिए, मैं कह रही थी कि राहुल गांधी जब से रण में उतरे हैं, ग्राउंड पे उतरे हैं, उसके बाद से एक वक्त था जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्कर्स नजर नहीं आते थे, डांट पिटती थी, कई मीटिंगें हुई पिछले एक दो महीने में, एक चाबी भरी गई और एक अलग उत्साह यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ये जो आउटफिट है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं।
1: बहुत कुछ बदला सा नजर भी आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, जैसे सुशांत बता रहे थे आपने भी बताया कि करोंट प्लेस से 10 मिनट का रास्ता होता है राजघाट के लिए, 10 मिनट का रास्ता होता है, लेकिन जिस गति से चल रहे हैं, कल भी हमने देखा भीड़ बहुत ज्यादा थी, कितना वक्त लग सकता है राजघाट पहुंचने में? और वहां पर तो भारी डिप्लॉयमेंट है, वहां बसें इंतजार कर रही हैं, खाली बसें पुलिस की।
2: बिल्कुल देखिए आप, ये बस बिल्कुल हमारे बेहद करीब, और ये बस मुझे लगता है कि आधे घंटे ये फासला माप पाएगी। यहाँ राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल हमारे पीछे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे हाथ दिखाते हुए, और तमाम जो नेता है वो इस तरीके से राजघाट दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी के दफ्तर से होते हुए ये बस अब आगे जा रही है। आप देखिए आगे अभिषेक बैनर्जी, केसी वेणुगोपाल यहाँ पे बैठे हुए, पवन खेरा यहाँ पे, ये देखिए प्रणव झा, प्रणीति शिंदे, श्रीनिवास, तमाम सांसद यहाँ पे, इंडिया ब्लॉक के भी सांसद मौजूद है, और ये बस अब आगे बढ़ रही है। हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, पर इधर दाएं हाथ देखिए पैरा मिलिट्री और दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट पे कोई कमी नहीं है। और एक तरीके से ये वो वक्त है जब अब आप देख रहे हैं कि पूरा रिप्ले एक बार दोबारा यहाँ पे हिमांशु होते हुए।
1: आप भी आगे आगे बढ़िए मौसमी, तब तक हम राजघाट का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और सुशांत भी वहां पर बता रहे हैं क्या तैयारियां हैं। लगभग सुशांत मौसमी बता रही हैं कि 20-25 मिनट मान के चलिए, जिस हिसाब से अभी गाड़ी बस आगे बढ़ रही है, और 20-25 मिनट में वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी विपक्षी नेता पहुंच जाएंगे। अभी बताइए वहां पर क्या हो रहा है।
0: हिमांशु, कल भी हमने देखा था कि सागर रत्ना जो जनपद पर रेस्टोरेंट है जहां पर खाना खाया राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, और उसके बाद जब वो जनपद गोल चक्कर पे पहुंचे और जंतर मंतर की जो दूरी थी वह 450 से 500 मीटर की दूरी है, लेकिन वो सफर करीबन अगर कहा जाए 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो पाया। जिस तरीके से मौसमी बता रही है कि तमाम कार्यकर्ता जो है यूथ कांग्रेस के बसेस के आगे चल रहे, तो निश्चित
1: तौर पर काफिला और आगे बढ़ गया, काफिला और आगे बढ़ गया, भीड़ भी आगे बढ़ गई। सुशांत दोबारा हम आपके पास आएंगे, कुछ ही देर में आपके पास आएंगे, लेकिन मिंटो रोड एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं। मौसमी है और मौसमी हर एक तस्वीर बता रही है, और मौसमी बहुत बखूबी तरीके से जानती है कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पिछले 3 दिन से जो कुछ कांग्रेस की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से दिमाग से रणनीति बना रहे हैं, वो सारी रणनीति का एबीसीडी मौसमी बता चुकी हैं। मौसमी, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, जो 3 दिन से हो रहा है लगता है ये अभी आगे और भी जारी रहेगा।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये प्लानिंग कर ली है, और ये आगे जो कार्रवाई है, आप देखिए 10 तारीख बहुत दूर नहीं है, 10 अक्टूबर को सीजेपी ने कहा है कि वो लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, 9 तारीख जो है लगातार आपने देखा 6-7-8 जो है इंडिया ब्लॉक की ऊर्जा जो है या जमीन पर धरना है वो नजर आया। तो यहाँ पे आप देखिए ये तस्वीर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिए खड़ा है, कोई झंडा लिए खड़ा है अपनी अपने आउटफिट का, और पीछे वो बस, अब देखिए आप मिंटो रोड पे ये बस है, तमाम कार्यकर्ता हैं पूरी तैयारी के साथ, कांग्रेस राहुल गांधी की टीम उतरी है यहाँ पे, लगातार कवरेज भी जारी है। आपने देखा था कि कल ड्रोन शॉट से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किले जो है बनाई गई, लगातार इसको सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है एक जबरदस्त तरीके।
1: नहीं, मौसमी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन ये बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस के अंदर से खबर लेकर आती हैं और आपकी खबरें जो भी आती हैं वो 100% बिल्कुल सच होती हैं और लोगों को आपकी खबर पर भरोसा भी होता है, ये बताइए राजघाट पर पहुंचने के बाद क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, ये बताइए।
2: हम लोग को चलते रहना होगा क्योंकि फिर गाड़ी आगे आ जाएगी, और आप पीछे इस तरह से दिखाते रहिए तस्वीरें। मैं ये कह रही थी कि देखिए हर पत्रकार, हर रिपोर्टर कोशिश करता है, और खास तौर से आज तक पे, कि हम लोग सटीक जानकारी दें, अगर सटीक नहीं है तो जानकारी आपको आज तक पर नहीं मिलेगी, तो कोशिश यही रहती है। और हम लोग ने लगातार ये बताया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगातार चेंज हुई है, एक तरीके से औचक तरीके से सरप्राइज और शॉक करके एक राहुल गांधी का जो कैरेक्टर ट्रेट है, स्टबर्ननेस कह लीजिए या अड़ जाते हैं जो उनका रवैया है, उनके करीबी भी बताते हैं, तो वो इस पूरी धरना पॉलिटिक्स में नजर आता है। राजघाट अगर ये लोग भागते जाते हैं, वहाँ पे प्रार्थना सभा करते हैं, मुझे बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें सारे इंडिया ब्लॉक के नेता भी अपनी राय रखे। राजघाट कितनी देर धरने पर बैठते हैं ये भी दिलचस्प होगा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है आलोक को हम कहेंगे वो तस्वीर दिखाए, 1, 2, 3, 4 लगातार बसों का रेला, ऊपर एक ट्रेन गुजर रही है मिंटो ब्रिज से, नीचे ये तस्वीर जहां पे रेंग रेंग के ये बस आगे बढ़ रही है। मुझे दिलचस्प बात ये लग रही है कि आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और बीजेपी का दफ्तर है, तो क्या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के जरिए ही ये बस गुजरेगी? हालांकि उस एरिया का बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, तो जाहिर वही रास्ता है, वही रूट है। और यहाँ पे आप देखिए कि लगातार कभी लंच के जरिए और कभी धरने के जरिए प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो विपक्ष लगातार बना रहा है। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात का, हालांकि चुनाव आयोग ने उसमें अपने आप प्रेस नोट भी जारी किया है और कहा है ये कि आपको औपचारिक तौर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, जो शर्तें रखी गई कि पार्लियामेंट एनेक्सी में हम मुलाकात करना चाहते हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद करना चाहते हैं, उसको लेकर रजामंदी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। देखिए यहाँ पे ये तस्वीर, हम लोग आ गए मिंटो ब्रिज के बाद उस चौराहे पर, दाहिने हाथ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वो रास्ता है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दफ्तर पे जाता है। एक बस यहाँ पे बीच में लगाई गई है, नीली बस, जिसको एक साइड बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पे बड़े इत्मीनान से राहुल गांधी का जो स्टाइल है एक तरीके से आप देखे, चाहे वो पेड़ के नीचे आकाशवाणी भवन में था या पार्लियामेंट स्ट्रीट पे कुर्सी दे दी गई थी उनको थाने में, पर
1: सामने बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। पीछे आप देखिएगा मौसमी,
2: रोल्स भी मंगा लेते हैं, जूस भी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेते हैं। जी जी मैं देखती हूँ यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है एक तरफ, दूसरी तरफ रास्ता खुला होना चाहिए और यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग की गई है, ये आप सही कह रहे हैं। ये देखिए सामने पूरा बैरिकेड लगा है, यानी कि जो बात मैं कह रही थी कि आप बीजेपी के दफ्तर से इंडिया ब्लॉक का काफिला जाएगा बीजेपी के दफ्तर से, वो संभव नहीं है इस बैरिकेड के जरिए, संभव है कि नहीं मतलब अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेड लगा लिया है, हालांकि ये थोड़ा सी हो सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बैरिकेड लगाओ, लेकिन यही रास्ता है।
1: अच्छा मौसम, ये बताइए अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए राजघाट नहीं जा पाएंगे, बैरिकेडिंग लगेगी, तो क्या कोई और वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर अपनाया जा सकता है?
2: अब मुझे लगता है कि घुमा के ले जाएंगे, क्योंकि राजघाट जाने से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अगर प्रार्थना करना चाह रहे हैं सांसद तो उनको मना किया जाएगा, लेकिन ये बस किधर घूमती है ये सवाल है। वो देखिए सामने वो बस है, अब वो बस क्या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर घूमती है या सीधे चली जाती है? अभी तो मुझे लग रहा है कि यानी कि घुमा के सीधे की ओर ले जाया जाएगा। और ये देखिए पूरा ये जो रास्ता है जो बीजेपी ऑफिस का रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस की गाड़ी लगाई गई है और यहाँ पे जो सांसदों वाली बस है उसको आगे उस तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगे डाइवर्ट करके,
1: आप भी थोड़ा सा पानी पीजिए, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, एक एक तस्वीर आप दिखा रही हैं। देखिए आज की दो बड़ी खबर, दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक जगह मौसमी है, हर खबर दिखा रही है दिल्ली में राहुल गांधी के रण से जुड़ी हुई, कि राहुल गांधी ने प्रण कर लिया है कि राजघाट जाएंगे, 300 सांसदों के साथ बसों में भर दिए गए हैं और बसों में भर के अब राजघाट पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां बैरिकेटिंग हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 6A पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहां बीजेपी दफ्तर है वहां पर जाने ना जा पाए, इसलिए वहां पर बैरिकेटिंग हो गई। अब घूम के जाएगी बस या कैसे जाएगी ये पता चलेगा। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, अयोध्या में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव अब जिनको प्रत्याशी बनाया गया है अयोध्या से, उनकी यार श्रीमद भागवत गीता थी, अब वहां पर ये देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए। हालांकि बीजेपी यहां पर भी निशाना साध रही है, अब सुन लीजिए पहले
4: पंडित राजेश पांडे जी, महन शशिकांत जी, नीरज दास जी, महन सूरबान दास जी, आनंद दास जी, महंत अवधेश दास जी, महंत रामदास जी महाराज, महंत राकेश त्रिपाठी जी, महंत रामजी दास जी, बाल योगी रामदास महाराज जी।
1: तो देखिए बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। एक तस्वीर अयोध्या में अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, वहां किस तरह से क्या बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि अब निर्णायक क्षण आ चुका है। बैरिकेटिंग लग गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जा नहीं पा रहे हैं। अब बस वहां से घूम के जाएगी या फिर उसी रास्ते से जाएगी जैसे राहुल गांधी अचानक अपना फैसला लेते हैं, तो अब क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। आज तक तरह बने रहिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सर गैसोफास की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
12: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, परिंदा खुले आसमान जहां जीत रू सारा।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: JK Maxx Paints.
11: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

विपक्ष के विरोध का मंच, राहुल समेत तमाम नेता प्रदर्शन के लिए रवाना, कहा ज्ञानेश कुमार को देना ही होगा इस्तीफा। देश के कई शहरों में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताकर बोला हल्ला बीजेपी का आरोप, राहुल प्रियंका ने पुलिस से की बदसुलूकी, एफआईआर दर्ज। देश के 42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में लिखा खुला पत्र, चेतावनी देते हुए कहा संस्थानों की आलोचना एक लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन उन्हें बदनाम करना गलत। हमेशा के लिए सो गए सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाले क्रांतिवीर, सिनेमा के नट सम्राट नाना पाटेकर का निधन, गोवा में पड़ा दिल का दौरा, आज पुणे में अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने जताया शोक।

0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रणभूमि में बात करेंगे इस समय विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर। जी हां, राजघाट की तरफ एक बार फिर से विपक्षी नेता बढ़ रहे हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस से लंच करने के बाद विपक्षी सांसद अब बसों में सवार होकर राजघाट की ओर रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुए इस लंच के बाद अब विपक्ष का अगला पड़ाव राजघाट है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी सांसद बसों में सवार होकर आगे बढ़ हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के कई सांसद, कई नेता इस मार्च में शामिल है। और देखिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन का आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार अब ये नई लोकेशन, यानी पिछले दो दिनों से जिस तरीके का प्रदर्शन हम देख रहे थे, कि पैटर्न हम देख रहे थे कि लंच के बाद सीधा विपक्ष के नेता प्रदर्शन करने निकल जाते हैं, उसी तीसरी दिन आज उसी पैटर्न पे आज एक बार फिर से विपक्ष के नेता राजघाट की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, आप अभी कहां पर ये कारवा पहुंचा है, किस तरीके से ये जो प्रदर्शन के तमाम नेता हैं कहां पर ये लोग पहुंचे और अभी कितनी देर में राजघाट पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, अभी रामलीला मैदान ये काफिला पहुंच गया है और रामलीला मैदान से ज्यादा दूर, लगभग 1 मीटर की दूरी पर ही है। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग हम लोग पहुंच गए और पीछे आप देखिए कि बस भी पीछे आ रही है। तो जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वहां से ना लेके अब यहां से काफिला जो है राजघाट की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर 3 दिन का प्रदर्शन देखें तो ये सबसे लंबा मार्च है
0: जी।
1: आप देखिए 3-4 किलोमीटर का सफर है और जैसे कि जंतर मंतर जाने के लिए 500 मीटर में रोक दिया गया था, यहां 4-5 किलोमीटर बाकायदा मार्च करने दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी नहीं रोका जा रहा है।
0: बिल्कुल, और शायद मौसमी क्योंकि आप जैसा बता रहे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रोक दिया गया था, इसी वजह से रामलीला मैदान को का रुख करना पड़ा और उस रास्ते से जाना लंबा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो सांसद है, विपक्ष के जो नेता हैं, लगातार बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। कल भी हम इस स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे कि देखिए, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इस समय विपक्ष की तरफ से रखा जा रहा है कि लंच के बाद ही ये ऐलान किया जाता है कि आज कहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, आज कहां पर कार्यकर्ता रुख करेंगे। और शायद इसी वजह से इस समय ज्यादा आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। रामलीला मैदान के बाहर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं मौसमी।
1: बिल्कुल, देखिए, कंफ्यूज करना अपोनेंट को एक स्ट्रैटेजी के तहत ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, ये रणनीति अपनाई जा रही है। यहाँ पे हम लोग साइड में आ जाते हैं और यहाँ आप देखिए कि ढोल नगाड़े भी है, गाजे बाजे भी है। कार्यकर्ता कल और परसों के मुताबिक कार्यकर्ता अभी बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे देखिए, राहुल गांधी यहाँ पे सामने, ये तस्वीर भारत देश के 3 गद्दार मोदी, शाह, ज्ञानेश कुमार, ये पोस्टर में लिखा है जहाँ राहुल गांधी बैठे, सिर्फ एक पोस्टर लगा है और उसी पोस्टर में ये लिखा हुआ है इसी लूटेड बंगाल, इस तरह के बकायदा पैम्फलेट छपाए गए हैं। यानी कि कोई अपने आप नहीं लेके आया, एक पूरी स्ट्रेटजी हुई है, पैम्फलेट्स क्या छपेंगे, कितने कार्यकर्ता आएंगे, कितनी भीड़ होनी है, लेकिन कि कार्यकर्ताओं को बताया नहीं जाता है तो आपको करना क्या है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को कंफ्यूज किया गया है। राजघाट की इत्तला भी बहुत आखिरी मोमेंट पे दी गई, तो अपने आप में आगे बढ़ते हैं आलोक, अपने आप में ये वो वक्त है। देखिए कि पुलिस की बस आगे चल रही है और पुलिस का पूरा काफिला भी पीछे पीछे लगातार रामलीला मैदान के बगल से ये अब काफिला निकल रहा है।
0: बिल्कुल, देखिए हमारी सहयोगी मौसमी सिंह लगातार इस कार्रवाई के साथ है, इस काफिले के साथ है। लगातार 3 दिन से मौसमी सिंह विपक्ष की स्ट्रैटेजीज, कांग्रेस की लगातार स्ट्रैटेजीज और इसके प्रदर्शन को लेकर एक एक तस्वीर, एक एक खबरें हम तक पहुंचा रही है। मौसमी, एक और बात हमने खास तौर पे देखी कि पिछले 2 दिनों से तो ये कहा गया, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे वो चुनाव आयोग के पास, कि धारा 163 लागू कर दी गई थी, इन इलाकों में नहीं जा सकते, परमिशन नहीं ली गई। लेकिन क्या आज उसी तरीके की चीजें दिल्ली पुलिस की तरफ से कही जा रही है, जब ये विपक्ष का पूरा एक बड़ा काफिला जो है वो राजघाट की तरफ जा रहा है, वहां पर भी इसी तरीके का प्रभाव, उसी तरीके का नियम वहां पे भी लागू होते हैं?
1: देखिए, लगातार बीएनएस की धारा के तहत यह अनाउंसमेंट हो रही है की ज्यादा मात्रा में लोग एकत्रित नहीं हो सकते। यह अनाउंसमेंट हमने कैनॉट प्लेस में भी हमें सुनाई पड़ी थी। और यहाँ पे आप देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स कोई भी एक्सीजेंसी के लिए साथ में चल रही है, यानी कि पैरामिलिट्री की टुकड़ी और रैपिड एक्शन फोर्स भी। तो ये दिल्ली पुलिस को शक है कि राहुल गांधी कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, क्योंकि ये जिस तरह की लड़ाई आप देखिए, रामलीला ग्राउंड का वो बोर्ड आपको दिख रहा है, रामलीला मैदान अपने आप में ऐतिहासिक वो जगह है जहाँ पे जेपी आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ
0: बिल्कुल
1: जेपी साहब ने हुंकार भरी थी। और
0: मौसमी लगातार इंटरेस्टिंग है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कहते कुछ और एकदम से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ देते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो सुनाना चाहते हैं कि जब जिस प्रदर्शन के लिए बसों में बैठकर कांग्रेस के नेता जा रहे थे, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं।
2: हम वहां पर धरना करेंगे और वहां पर हम यही प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी सरकार को, मोदी को, शाह को सद्बुद्धि दे और वो जो कर रहे हैं देश के हित में नहीं है, वो चोरी का मामला हो या देश में आज जो बढ़ती हुई महंगाई है और युद्ध की समस्या है और जो भी समस्याएं उन्होंने खड़ी की है सब जनता के विरोध में है। इसीलिए हम गांधी जी के स्मारक पर जाकर प्रार्थना करेंगे कि इनको तुम जो आज़ादी हमको दिलाई है उस आज़ादी को ये लोग छीन ले रहे हैं और इस आज़ादी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा वोट का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों को जो मिला हुआ है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे महान नेताओं ने हमको जो आपने सब मिलके हमको जो आज़ादी दिलाई है, हमको जो फ्रीडम मिला है, हमको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को ये छीन रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो, इस ये प्रार्थना हम वहाँ करने जा रहे हैं। वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
3: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
0: राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि देखिए 300 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के हमारे साथ हैं और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी सांसदों के काफिला राजघाट की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर भी आ रही है, जी हां, 42 पूर्व जजों ने संप्रभात नागरिकों को मिलकर 272 लोगों ने खुली चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। इन पूर्व जजों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग और पर बार बार हमला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता कमजोर नहीं की जानी चाहिए। पूर्व न्यायाधीशों ने इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक दबाव बनाने की बात कही और पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई समेत कई पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसआईआर मामले पर मौजूदा जजों की सार्वजनिक टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व न्यायाधीशों का तर्क है कि विपक्ष में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन केवल माहौल बनाने और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने कहा है कि ये सारा शोर मतदाताओं की ओर से नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों द्वारा मचाया जा रहा है जो चुनाव जीतने में असमर्थ रहे हैं। देखिए वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ मुख्य बातें उसमें लिखी गई है, किस किस जज ने क्या क्या क्या है। और देखिए वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आकाशवाणी भवन जंतर मंतर के बाद अब विपक्षी सांसद राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं और विपक्ष लगातार एसआईआर में पारदर्शिता और मतदाता सूची के नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ राजघाट की ओर बढ़ता विपक्ष और दूसरी तरफ आयोग के बचाव में पूर्व जजों का ये खुला पत्र। देखिए एसआईआर पर सवाल अब भी सिर्फ सियासी नहीं है, कानून लोकतंत्र और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी बहस लगातार बढ़ती जा रही है। चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, 42 पूर्व जजों ने और कई बुद्धिजीवियों ने मिलकर ये चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि विपक्ष का जो मार्च है वो लगातार राजघाट की ओर बढ़ता हुआ। हमारे साथ हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ इस समय मौसमी सिंह और हमारे साथ इस समय सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ के सबसे पहले रुक करते हैं मौसमी का। मौसमी, रामलीला मैदान से लगातार ये प्रदर्शन का कारवा या फिर जो लोग हैं प्रदर्शन के वो काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, इस समय कहां पहुंचे हैं और कब तक कहा जा रहा है कि ये राजघाट पहुंच जाएंगे?
1: पीछे ही आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की बस है, रामलीला मैदान के दूसरी तरफ अब ये बस पहुंच चुकी है और यहां से अब लगभग 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की दूरी पर राजघाट है और आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। यहां पे कई बार हमने देखा है कि अन्ना आंदोलन के दौरान भी काफी भीड़ और मजमा रहता था, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि बहुत करीब राजघाट पहुंच गया है, आखिरी रेड लाइट है और उसके बाद राजघाट है। तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट और लगेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2 अक्टूबर को भी अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे पहुंचे थे और एक तरीके से कहीं ना कहीं चाहे वो बापू की का संदेश हो या देश के राष्ट्रपिता का संदेश हो उसको लेकर भी काफी सियासत छिड़ी है। राहुल गांधी ने लगातार मोदी सरकार पे इसको लेकर हमला किया है कि गांधी के विचारों को नहीं मानती है आरएसएस, इस तरह की बात किया। इसीलिए मोहन भागवत का जिक्र आपने जो सुनाया उसमें लगातार मोहन भागवत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा निशाना गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा निशाना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा को बिल्कुल बीजेपी के विपरीत रखे। पीछे आप देखिए कि अब ये आगे चल रहा है काफिला और कब तक आप लोग ऐसे चलते रहेंगे?
4: राहुल जी के लिए जान हाजिर है, हम तो राहुल जी के लिए जीते मरते हैं क्योंकि संविधान बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे भारत का मत ये ज्ञानेश कुमार के माध्यम से जी
1: कार्यकर्ता कहाँ से चले आ रहे हैं? बाहर से भी आए हैं कि सब देश
4: नहीं,
1: के
4: पूरे देश के आ रहे हैं। अभी ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दीदी
1: हम लोग कहाँ से चले आ रहे हैं?
5: हम लोग बिहार से आ रहे हैं।
1: बिहार से चले आ रहे हैं?
6: आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश से हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं और राहुल जी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद से लेकर सड़कों पर उतरने को आमादा है, भारतीय जनता पार्टी उसको चूर चूर करने का काम कर रही है।
0: बिल्कुल मौसमी, देखिए लगातार मौसमी, आप
1: कितने दिन से रुके हुए?
6: हम करीब 4 दिन हो गए, हमें लगातार इस लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए।
0: बिल्कुल मौसमी, देखिए आप लगातार ये तस्वीरें पहुंचाइए, आपको दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, इस समय राजघाट पे कैसी तैयारी है? क्योंकि देखिए हम जो मौसमी दिखा रही है, एक बहुत बड़ी भीड़ लगातार राजघाट की तरफ बढ़ रही है, विपक्षी सांसद है, विपक्षी नेता है, लेकिन उसके साथ भी कार्यकर्ता भी मौजूद है। इस समय वहां पर क्या इसको लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या वहां पर कहां पर बैठेंगे, कहां पर वो प्रदर्शन करेंगे, क्या वो जगह कहां तय की गई है?
7: देखिए
5: देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि राजघाट के मेन चौराहे पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है। मेरे पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल और उनके सामने की तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम यूथ के कार्यकर्ता काली पट्टी बांध करके यहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है वो इस वक्त हाथों में डंडे लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद है। और इसके ठीक सामने ये जो आप रोड देखेंगे ये दरअसल दिल्ली गेट का रोड है, क्योंकि तुर्कमान गेट से होती हुई ये पूरी राहुल गांधी की जो बसेस हैं वो दिल्ली गेट पहुंचेंगी और दिल्ली गेट से होती हुई राजघाट पहुंचेंगी। ऐसे में पूरे रूट को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि ये रिंग रोड है और यहाँ पर तमाम गाड़ियों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक पूरी तरीके से क्लियर रहे। महज अगर कहा जाए तो 10 मिनट का ये पूरा फासला जो है वो रह गया है। यानी अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी थी कि जंतर मंतर के पास आने से पहले जनपद के गोल चक्कर पर ही राहुल गांधी और तमाम नेताओं को डिटेन कर लिया जाए, आज उस तरीके की तैयारी दिल्ली पुलिस की लगती हुई नजर नहीं आ रही है।
0: बिल्कुल सुशांत, एक बात बताइए, क्योंकि आप वहां पर आप पीछे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर आला अधिकारी मौजूद हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से तर्क दिया जा रहा था कि क्योंकि इन इलाकों में आकाशवाणी भवन हो, जंतर मंतर हो, धारा 163 लागू की गई, क्या वहां पर भी, राजघाट पर भी ये धारा लागू है? क्या वहां पर भी जब ये लोग पहुंचेंगे, खासतौर पर विपक्ष पहुंचेगा, तो उनको डिटेन किया जा सकता है?
5: हाँ देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो राजघाट पर अंदर जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं है, लेकिन राजघाट के बाहर की अगर अब देखा जाए तो वहां पर बकायदा मंच जो है वो लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर मंच लगाए तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस ने इजाजत जो है वो दी है, अदरवाइज ये मंच जो है वो हटा दिया जाता, कार्यकर्ताओं को आने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन अब देखेंगे तमाम कार्यकर्ता आपको सड़कों के दोनों किनारे पर जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में अगर परमिशन नहीं होती तो निश्चित तौर पर इन कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया जाता। पुलिस भी नहीं चाहती कि इस तरीके की स्थिति जो पिछले दो दिन से लगातार बन रही है, चाहे वो जनपद पे हो, चाहे वो आकाशवाणी भवन के आसपास हो, कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से डिटेन किया गया था, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था, आज वो स्थिति ना हो, तमाम नेताओं को जो है वो राजघाट जाने की इजाजत जो है वो दी जाए, क्योंकि शांति प्रिय
0: धर्म। सुशांत, अगर आप तस्वीरें भी दिखाते रहे पीछे चलते हुए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएगी स्टेज कहां पर लगा हुआ, अगर आप दिखा सके हमारे दर्शकों को। तो
5: देखिए, जाहिर तौर पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें आगे की तरफ दिखाएं कि ये राजघाट का मेन चौक है, चौराहा है, और यहाँ पर पुलिस का एक बैरिकेड आपको नजर आएगा, और इससे ही तकरीबन अगर कहा जाए तो महज 200 मीटर की दूरी पर ही मंच जो है वो बनाया गया है, जहां पर कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस के तमाम इकाई के जो लोग हैं वो लगातार यहां पर रघुपति राघव का जो भजन जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। और यहां पर जहां तक आप देखेंगे तो दूर दूर तक सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जमीन पर बैठे हुए हैं।
0: जी,
5: उनके आसपास जितने भी इस पूरे रूट पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से राहुल गांधी जब यहां पहुंचे तो उनका स्वागत करें, ऐसे में हाथों में काली पट्टियां जो है इन तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ पर आपको नजर आएगी। कई लोगों ने अपने माथे पर भी काली पट्टियां बांध रखी है। यानी कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही थी पिछले कई दिनों से कि एक्टिव नजर नहीं आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने जोश भरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुशांत, आपका दोबारा से रुक करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, देखिए एक और बात, क्योंकि सुशांत जैसे बता रहे थे कि देखिए वहां पे तैयारियां की गई और ऐसा लगता है स्टेज जिस तरीके से बनाया गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत है राजघाट के अंदर नहीं लेकिन बाहर इकट्ठा होने के। मौसमी, आपको दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मौसमी, उसके बाद आप दोनों का रुक करेंगे और जानेंगे कि इस समय प्रदर्शन कहां तक पहुंच चुका और ये विपक्ष का किस तरीके से एक बड़ा हल्ला बोल है, खासतौर पे सरकार और जो सीसी के खिलाफ। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: एक रॉकस्टार होता है
11: अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
11: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर ली, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली पुलिस से कांग्रेस नेताओं की कई बार नोकझोंक हुई। जब पुलिस ने मीडिया को हटाया तो राहुल भी पास आकर खड़े हो गए। राहुल को धरने पर बैठा देख गेट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी कैंपस में खूब हंगामा किया। गेट के पास जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने हटा दिया।
1: देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है।
2: ईमानदारी से चुनाव में जनता बार बार उनको परास्त करती है तो रोज नया नया जो बतंगा खड़ा करते हैं।
0: राहुल गांधी से अलग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने बस में बिठा लिया। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन भी थे। इस दौरान अखिलेश चुनाव आयोग पर चुटकी लेना नहीं भूले।
3: अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है, चीफ इलेक्शन कमीशनर। उन्होंने ये कहा है कि वो व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे।
0: अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से बच रही है। दिल्ली पुलिस ने भले ही विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद नहीं जाने दिया लेकिन विपक्षी सांसद आर पार के मूड में है।
4: बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया।
5: वो वोट चोर गणेश को रिजाइन करना चाहिए, उसका पहले जाना चाहिए देश से।
6: जया जी, कहां तक जाएंगे आप लोग? लगातार आप लोग का ये आंदोलन चलेगा?
7: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।
0: पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं हो जाता वो पीछे हटने वाले नहीं।
8: पहले इस्तीफा होना चाहिए, मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अध्यक्ष की, उसके बाद मतलब ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है।
0: पुणे के नवी पेठ इलाके में 6 दिन से महाराष्ट्र भर के छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। ये छात्र सिस्टम के खिलाफ गुस्से में। छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन छात्रों को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष भी छात्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के इस्तीफे से कम में मानने को राजी नहीं है। इसीलिए छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया।
9: अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातामध्ये नाही। राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरनंच फक्त त्यांना हटवता येतं हे संविधानात लिहिलेलं आहे, ते त्यांनाही माहिती आहे, सर्व लोकांना माहिती आहे।
0: इन प्रदर्शनकारी छात्रों के धरने में रोज नए नए रैपर और मराठी कलाकार पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरा विपक्ष उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है।
10: एमपीएससी स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्रों का अभी तक मोर्चा जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 से 6 ऐसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं और पूरे आंदोलन का वैसे आज छठा दिन है। उपकरवा ब्यास तक।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अब आते ही बीजेपी भेजती है सीबीआई, जांच एजेंसियों का करती है गलत इस्तेमाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर अग्निवीर को दे रहे हैं नौकरी। हमेशा के लिए सो गया सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाला क्रांतिवीर। गोवा में नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। आज पुणे में अंतिम संस्कार। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी, सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71593 पर बंद हुआ। निफ्टी की 371 अंक से ज्यादा भी लुढ़का।

0: साथ मैं हूं सुमित चौधरी और देखिए राजघाट की तरफ लगातार विपक्ष का मार्च बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि कनॉट प्लेस में लंच के बाद विपक्षी सांसद बसों में सवार होकर राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें लगातार दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से डायवर्ट किया गया और अब वो रामलीला मैदान से होते हुए राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुए लंच के बाद विपक्ष का पड़ाव अब राजघाट होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े, सबसे पहले रुक करते हैं मौसमी सिंह का जो इस समय इस पूरे मार्च को रुक करें और फिर और हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ राजघाट से जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सुशांत का। सुशांत, इस समय की तस्वीरें दिखाइए और इस समय बताइए कि क्या वहां पर जो प्रदर्शन है या फिर जो मार्च है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गया?
1: हाँ, देखिए सुमित, आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से राहुल गांधी का पूरा मार्च हुआ है, वो अब राजघाट जो है वो पहुंच चुका है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हाथों में पोस्टर तकिया लेते हुए इस वक्त जो है वो राजघाट पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर बदली हुई आपको मैं आज आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो ये भीड़ है, कल पुलिस की तरफ से इन तमाम भीड़ को डिटेन किया जा रहा था लेकिन आज पुलिस जो है वो अलग रुख में नजर आ रही है। आप देखें कि राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान आपको नजर आएंगे लेकिन इस मार्च को कहीं पर भी अब रोका नहीं जा रहा है। यानी पुलिस की तरफ से इजाजत जो है वो इस मार्च को दी गई है ताकि ये लोग जो है वो राजघाट पर अपना प्रदर्शन जो है वो कर सके। देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो आपको जानकारी दे दूं कि जो बड़ी जानकारी आई है जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हैं वो जानकारी ये लगी है कि राहुल गांधी समेत कुछ लीडर्स को राजघाट के अंदर बापू की जो समाधि है वहां पर जाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा इस रोड पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो सड़कों पर बैठे हुए थे अब वो धीरे धीरे पूरी सड़क पर अब राजघाट पर जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी पुलिस की तरफ से परमिशन बेशक ना दी गई हो तो लेकिन आज पुलिस का रुख जो है वो अलग नजर आ रहा है क्योंकि कल किस तरीके से कार्यकर्ताओं पर डिटेन किया गया था तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद आज पुलिस का रुख जो है कुछ अलग है। और तस्वीरें भी देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर कार्य करते ही कार्यकर्ता जो है वो आपको नजर आएंगे। पुलिस के कड़े पहरे के बीच में इस वक्त जो है वो राहुल गांधी का काफिला और उनकी बसेस जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। ये देखिए राहुल गांधी का ये स्कॉर्ट्स है जो इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बस आपको यहाँ नजर आएगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पोस्टर्स
0: बिल्कुल, बिल्कुल सुशांत, देखिए आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये दरअसल जो नेता हैं विपक्ष के वो तमाम जो उनकी सिक्योरिटी है वो उसने पहले पहुंची। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ के, देखिए मौसमी आप कुछ कहना चाह रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखाई और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास?
2: राजघाट की चौक पे पहुंच गए, दाहिने हाथ पे आप वो बस देख सकते हैं जो राहुल गांधी को लेके आई है और राजघाट अब ये काफिला पहुंच गया है। इस तरह की भीड़ आपको नजर आ रही है, यहाँ पे राहुल गांधी और तमाम नेता इस बस में बैठे हुए हैं और ये जो काफिला है इधर आप दिखाइए आलोक ऊपर ऊंचे दिखाइए, ये देखिए एक

0: सारी बसें यहाँ पे आ चुकी है। राजीव शुक्ला आपको नजर आ जाएंगे, तमाम नेता जयराम रमेश आगे बैठे नजर आ जाएंगे, विक्ट्री साइन वहाँ पे जयराम रमेश विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और यहाँ पे देखिए सारे नेता मौजूद हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो राहुल गांधी ने कहा था कि राजघाट हम कूच करेंगे और यहाँ पे हाथ वेव करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं जयराम रमेश। तो एक मीडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनके लिए भी ये एक मील का पत्थर है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है कोशिश कर रही थी कि वो सड़क की राजनीति कैसे करे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा कैसे बढ़े भरे, एक तरफ बीजेपी की बड़ी मशीनरी है, संगठन की ताकत है, तो उसके सामने काफी बौनी नजर आ रही है थी कांग्रेस पिछले 10-12 सालों में। और ऐसे में ये तस्वीर शायद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उसको देख के, ये तस्वीर को देख के कुछ गदगद होंगे। लेकिन पुलिस काम दिखाना चाह रहे थे, एक 360 डिग्री व्यू दिखाइए, लेफ्ट से लेके अगर आप राइट तक देखिए पूरा ये चौक जो है वो जाम कर दिया गया है। तीसरी बस भी अब भीतर जा रही है, इसमें भी देखिए अमृता धवन, गुरजीत सिंह रंधावा और तमाम नेता जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके से काफी ऊर्जा में जो भी जिस पर भी कैमरा आ रहा है, दिलचस्प है हिमांशु सुमित, जिस पर भी कैमरा आ रहा है तो सारे लोग नारे भर रहे हैं, जयराम रमेश भी हम लोग के कैमरे को देख के विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, तो दिलचस्प है ये दौर
1: बिल्कुल। लेकिन मौसमी आप लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई है, आप पल पल की खबरें दे रही है, बता रही है कि क्या स्ट्रेटेजी है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है मौसमी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये बात है कि लगातार हम देखिए बात ये मौसमी बात यह है कि देखिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो पिछले 3 दिनों में जो प्रदर्शन किया, नो डाउट उससे चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है, लगातार इस मुद्दे को उठाकर एक तरीके का एक लहर तैयार किया है। लेकिन जब विपक्ष की बात करते हैं, हम विपक्ष के बड़े चेहरों को इस मार्च में नहीं देख रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे बड़े चेहरे, वो इस मार्च से दूर नजर आते हैं। क्या ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है या विपक्ष एक तरीके से मंच को साझा नहीं करना चाहते एक साथ?
0: देखिए ये सियासी उठा पटक आपस में चलती रहेगी, डैमेज कितना होगा या कितना मनमुटाव होगा या मतभेद को आपस में सुलझा लिया जाएगा, कांग्रेस की ताकत इस पर निर्भर करेगी, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस को उदारता दिखानी होगी, कांग्रेस को सम्मान देना होगा, कांग्रेस को मान रखना होगा, और कुछ न कुछ समन्वय की कमी अक्सर हमने देखा है कि नजर आती है, चाहे वो एकदम से दिन में अखिलेश यादव से मिलते हैं राहुल गांधी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास धरने पर जाते हैं लेकिन अखिलेश यादव को नहीं बताते हैं और बाद में अखिलेश यादव को फोन करते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने कहा। उसके अलावा फिर अगर आप देखें तो उधर ही से जाना पड़ेगा, तो उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरा कारण ये है कि परसों तक इन लोगों को नहीं पता था कि आकाशवाणी भवन में ही राहुल गांधी, परसों शाम तक नहीं पता था, फिर देर रात फोन आया, तो 4-5 घंटे बिना अखिलेश यादव के आप धरने पर बैठते हैं जबकि इंडिया ब्लॉक का धरना था। तो अपने आप में ये देखिए ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को, ये तालमेल अगर उसको आगे सत्ता में आना है या बीजेपी को चुनौती देनी है, एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना है एनडीए के अम्ब्रेला के तहत, आप देखिए कि सुख दुख में जेडीयू हो या टीडीपी हो, ये सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, इतना बड़ा बवाल हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, बीजेडी और बीआरएस मंथन चिंतन कर रहे हैं लेकिन बीजेपी अपने अलायंसेस को एक साथ लेकर चलने के लिए तो लगातार बैठकें और समन्वय बैठकें करती है। तो उसी तरीके से कांग्रेस के लिए अब ये एक एक्सरसाइज शुरू हुई और इसमें राहुल गांधी की लीडरशिप को भी टेस्ट पे है। क्या आप एक साथ फ्रेम अखिलेश यादव के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या आप अखिलेश यादव को अपने बगल में बिठा के उनको लीड दे सकते हैं या उनको लीड रोल में रख सकते हैं कोई इवेंट में, ये उदारता देखनी होगी राहुल गांधी कितनी दिखाते हैं कि, या फिर ब्रांड अखिलेश वर्सेस ब्रांड राहुल होता है।
1: और मौसमी बात कहते हैं ना कि लीडर रूल्स दी रूल्स, यानी रूलर्स दी रूल्स, यानी वो रूल कर रहे हैं इन सारी चीजों को, स्ट्रेटजीज को, और शायद यही वजह है कि वो किसी से सार्वजनिक नहीं करना चाहते। जब लंच पे तमाम नेता इकट्ठे होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे कांग्रेस पार्टी को, तब उनको लंच के दौरान बताया जाता है, और फिर एकदम से खबरें आती हैं जो कि देखिए आज राजघाट जाने वाले हैं, कभी जंतर मंतर जाने वाले हैं, शायद यही सरप्राइज वो अपने अपनी स्ट्रेटजीज में भी रखना चाहते हैं। मौसमी आपका रुख करूंगा इसी सवाल पर, लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए, वो कुछ इशारा करें। सुशांत प्लीज बताइए।
2: हाँ देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वो मेन गेट है राजघाट का, जहां से अब राहुल गांधी जो है, जो हमारी जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस से कि कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी जो है वो की गई है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ठीक यहाँ पर राहुल गांधी का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, यानी राजघाट पर अंदर जो है वो राहुल गांधी जो है वो जा सकते हैं, उनके साथ कई लीडर जो है वो जा सकते हैं। और उससे पहले अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जयराम रमेश विक्ट्री का साइन बना रहे थे, पिछले कई दिनों से लगातार जो कांग्रेस प्रदर्शन करना चाह रही थी उसको रोका जा रहा था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरीके से तैयारी की गई थी, राजघाट पहुंचाया गया तमाम विपक्षी दलों को, और तरने की तैयारी जो है वो की जा रही, ढोल नगाड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे, पोस्टर बैनर्स, यूथ कांग्रेस के तमाम वर्कर्स आपको नजर आएंगे। और उसके पीछे आगे भी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। कैमरामैन संजय ये तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से वो जो बस है ऑरेंज कलर की, वो बस जिसमें राहुल गांधी आगे की तरफ बैठे हुए हैं, और उनके आगे दिल्ली पुलिस और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उसके अलावा आगे की तरफ देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता, एक बड़ी भीड़ इस वक्त जो है वो कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जो है वो नजर आ रही है, इस धरने में जो है वो नजर आ रही है। आगे देखिए बस जो है वो आगे राजघाट की तरफ आपको टर्न होती हुई नजर आएगी, यानी राजघाट की तरफ गेट की तरफ जाती हुई ये बस आपको नजर आएगी अब कड़ी सुरक्षा के बीच में। हो सकता है कि अब जो हमने बात कही थी कि परमिशन बेशक नहीं है, कि अंदर जाने की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस आज जो है वो कहीं ना कहीं राहुल,
1: बिल्कुल बिल्कुल सुशांत आपको रोकूंगा, देखिए लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार बीजेपी क्या कह रही है।
3: मशीनरीज एंड इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू स्ट्रीट एनार्की, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो सड़क पर भीड़ को मोबिलाइज करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर करती है। और इसी से कुंठित होकर इस देश के 40 से ज्यादा पूर्व जस्टिसेस ने आज एक पत्र लिखा है, ओपन लेटर, कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहती है। और क्वेश्चन नंबर वन इज कि राहुल गांधी राजघाट गए हैं, राजघाट में उनको लोकतंत्र की अगर सद्बुद्धि मिल जाए तो जवाब उनको देना चाहिए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है तो क्या रील मेकर राहुल गांधी कोर्ट में उनका विश्वास नहीं है, क्या उनका केस इतना कमजोर है, या वो कोर्ट के प्रति अविश्वास और दबाव की राजनीति सड़कों से करना चाह रहे हैं। इसीलिए पिछले 3 दिन से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, गुंडागर्दी, अराजकता धरने की आड़ में करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सवाल, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये कोर्ट से इसीलिए घबराए हैं क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी का मामला कोर्ट के अंदर गया है कांग्रेस पार्टी के तथ्य हमेशा कमजोर हुए हैं। ये ईवीएम की बात करते थे, जब मामला ईवीएम का कोर्ट में गया तो कहा गया कि इफ यू विन ईवीएम्स आर टैम्पर्ड, व्हेन यू लूज दे कंप्लीटली गेटम टैम्पर्ड, तो कोर्ट ने इनके झूठ को एक्सपोज किया। उसके पूर्व में याद करिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ ये अविश्वास का प्रस्ताव लेके आए थे जो खारिज हो गया। सो द कांग्रेस हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंटिमिडेटिंग और अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बंगाल में 1977 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में 1990 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, उड़ीसा में 2000 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, आंध्र प्रदेश में 2014 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, इस समय कौन वोट चोरी कर रहा था? कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, क्या कांग्रेस पार्टी खुद केंद्र की सरकार क्या राज्यों के अंदर वोट चोरी कर रही थी? सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस जनता में अविश्वास हो चुका है, द पीपल ऑफ द कंट्री हैव स्टॉप बिलीविंग इन द एनआरकी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसीलिए इनका नया मॉडल आ गया है, हजार डेढ़ हजार लोगों को दिल्ली की सड़कों पे गैदर करो, धरना करो और धरने के बहाने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास करो। जो जो महात्मा गांधी जी में विश्वास रखता है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको इस सवाल का जवाब राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है? जब सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला सड़क से नहीं हो सकता, तो क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सड़क पे भीड़ को मोबिलाइज करके अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से कहीं किसी जगह घुस जाते हैं, कहीं भी धरने पर बैठ जाते हैं? दिस इज समथिंग विच इज अनडेमोक्रेटिक। जो राहुल कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है और क्रिमिनल है, और इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देना चाहिए। ये क्रिमिनलिटी की बात करते हैं, असली क्रिमिनलिटी ये होती है कि जब आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास रखते हो। आप सब बताइए, सब पत्रकार है, कितनी भी भीड़ राहुल गांधी मोबिलाइज कर दे, फैसला तो कोर्ट से होगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। जब कोर्ट दूसरी तारीख दे चुका है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि राहुल गांधी अराजकता की टूलकिट के आधार पर इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रेशर बना रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माय वे और दी हाईवे। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, ये परिवार का राज नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि जब मामला कोर्ट सुनती है तो सड़कों की भीड़ के आधार पर कोर्ट फैसला नहीं करती, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला करती है। क्या आपके केस में इतनी कमजोरी है कि आपको लग रहा है कि कोर्ट के अंदर आपका केस कमजोर है, इसीलिए आप बाहर से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, जो हमने देखा, एक युवक, इस देश का नागरिक, आप सब में से एक जिसने इस देश में सच्चाई बोलने का प्रयास किया, उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को रखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और वर्कर्स ने उसको घेर कर उसको पीटने का प्रयास किया। आज कांग्रेस पार्टी वी द पीपल ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रही है। संविधान के पहले तीन अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नारे लगाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वी द।
1: और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाते हुए। देखिए, हम आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें कि राजघाट जो विपक्ष का प्रदर्शन है वो पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। सुशांत मेहरा का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सुशांत, इस समय वहां पर क्या आलम है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है?
2: हाँ, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी। राहुल गांधी के मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस जो है वो आपको नजर आएंगी, आगे कार्यकर्ताओं का हुजूम और अगला गेट है जहां से राहुल गांधी जो है वो अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर मंच जो है वो बनाया गया था और जैसे ही राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद तमाम कार्यकर्ता उनकी बसों के आगे जो है वो पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे किस तरीके से तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। कोशिश यह है दिल्ली पुलिस की कि जो लोग।
1: और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पुणे में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के सातवें दिन भी हंगामा जारी रहा। एमपीएससी की कथित गड़बड़ियों से नाराज छात्र ये कह रहे हैं कि एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों की दिलचस्पी धरना प्रदर्शन में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, लेकिन अब पूरा माहौल खराब हो चुका है। भरोसा बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं है, गड़बड़ी का शक है तो छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार है। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सड़कों को जाम कर होने वाले आंदोलनों से आम लोगों को दिक्कत भी बर्दाश्त नहीं। आंदोलन से परेशान पुणे के नागरिकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया, छात्रों के आंदोलन से पूरे पुणे शहर को परेशानी हो रही है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही भी प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कथित धमकी और उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों से कथित मारपीट की शिकायत की गई है। इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अब तक संयम बरता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुणे की 70 लाख आबादी को इन प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना रखा है। सीएम फडणवीस भी कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगे पहले ही मंजूर हो चुकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही करीब 70,000 रिक्त पदों का विभाग और आरक्षण के आधार पर ब्यौरा देने और भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप 3 हफ्ते में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि जब मामला अदालत के सामने है तो उन्हें कोर्ट का भरोसा रखना चाहिए, और अगर आंदोलन जारी रखना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन किया जाए।
1: महाराष्ट्र सरकार हो या फिर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसे लेकर यहाँ के छात्रों के मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के जवाब कौन देगा, इसी पर पूरा आंदोलन की आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना अहम रहेगा। जवाब ले आज तक पुणे
2: रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग थी, पॉपुलेशन वाला इलाका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 8:30 जो हैं बज चुके हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जो जवान हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान हैं, पैरामेडिक्स की जो टीम है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका जारी है। क्योंकि जो बड़ी रूफ्स थी उनको तोड़ने के लिए जेसीबी और क्रेन्स यहाँ पर मंगाई गई, और बाद में देखा गया कि जो छोटा छोटा मलबा था उसको काटने के लिए कटर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और साथ ही जो स्निफिंग डॉग्स हैं उनके जरिए भी जो है यहाँ पर मदद ली जा रही। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मलबे में अपना सामान ढूंढ रहे हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो एनडीआरएफ का बचाव कार्य है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जेसीबी के जरिए, क्रेन्स के जरिए, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बचाव कार्य चल रहा है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं बचाव कार्य के लिए, और अधिकारी का भी जो हमें सूचना मिली उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो बच्चा बताया जा रहा है उसकी हादसे में जान चली गई, और तकरीबन 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और जो स्थानीय लोगों का कहना है और प्रशासन का कहना है, तकरीबन 5 से 6 लोग जो है अभी और अंदर फंसे हो सकते हैं, उसको देखते हुए अभी भी जो बचाव कार्य है यहाँ दिल्ली के सीमापुरी में चल रहा है। और ये पहला हादसा नहीं, तकरीबन आज से 1 महीने पहले देखा गया था कि दिल्ली के सत्यानिकेतन में एक पीजी गिरने से तकरीबन जो 7 लोग हैं अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एमसीडी के ऊपर और दिल्ली सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में बार बार क्यों ऐसे बिल्डिंग गिरने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा के खातिर भारत में
2: 25 साल पहले 2001 को आज की ही तारीख जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 से जनसेवा की जो शुरुआत हुई वो बिना रुके आज भी जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर और अब सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे। मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं में शामिल है। गुजरात में 3 लगातार चुनावी जीत के बाद 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 में भी
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: में लंच के बाद आज राजघाट बनेगा विपक्ष के विरोध का मंच। राहुल समेत तमाम नेता प्रदर्शन के लिए पहुंचे। कहा ज्ञानेश कुमार को देना ही होगा इस्तीफा। राहुल और विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसी बीजेपी। कहा जनता का आशीर्वाद खो चुकी है कांग्रेस, फैला रही है अराजकता। कई शहरों में विपक्ष का धरना विरोध। अयोध्या के दौरे पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा अगर मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं तो यहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम मान। चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है सीबीआई, जांच एजेंसियों का करती है गलत इस्तेमाल। सीएम नायब ने कहा हर अग्निवीर को दे रहे हैं नौकरी। हमेशा के लिए सो गया सिस्टम के खिलाफ पर्दे पर दहाड़ने वाला क्रांतिवीर। गोवा में नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। आज पुणे में अंतिम संस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। पिछले 3 दिन से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी गुरिल्ला टैक्टिक्स से प्रोटेस्ट कर रही है। न पुलिस को पता चल पा रहा है, न कार्यकर्ताओं को और न ही उन सांसदों को जो लंच पर बुलाए जाते हैं। दोपहर में लंच पर प्लान बन गया है और फिर नया घमासा। 3 दिनों में 3 तरीके से प्रदर्शन हुआ है। अब राजघाट पर प्रदर्शन करके मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इजाजत मिली तो कल राष्ट्रपति के पास भी इंडिया गठबंधन के सांसद शिकायत करने जा सकते हैं। उसके बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो है ही। इससे पहले आज दिल्ली के अलावा पटना में आरजेडी ने प्रदर्शन किया, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके वार्म अप कर रहे थे। मतलब विपक्ष अब एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ सिर्फ एक मांग दोहरा रहा है और वो मांग है सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की। हालांकि राहुल गांधी की लिस्ट में 4 नाम हैं जिन्हें सजा दिलाने की वो गारंटी तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस्तीफे की मांग ही अनसुनी की जा रही है। ऊपर से मुकदमे बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का मुकदमा हुआ तो 7 अक्टूबर को महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता का मुकदमा भी दायर हो चुका है। प्रदर्शन में दोनों तरफ से उत्पीड़न दमन के आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक लड़ाई अब अदालत में भी पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी आई जिसमें ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को ही चैलेंज किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली का पालन नहीं करते हुए की गई है। 2 पदों के लिए 10 लोगों की लिस्ट चाहिए थी, यानी सुझाव 10 लोगों का सुझाव 2 पदों के लिए चाहिए था जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 6 लोगों की ही लिस्ट बनाकर 2 लोगों को चुना दिया। इसमें भी जो चुनाव आयुक्त बना दिए हैं यानी ज्ञानेश कुमार, जिन्हें चुनाव करने का इससे पहले कोई भी अनुभव नहीं था। अब इस अर्जी पर सुनवाई बाकी है तो दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की ओर से प्रोटेस्ट का ये जो डेली डोज चल रहा है ये कितने रोज चलेगा, क्या सड़क से आंदोलन से इस्तीफा हो पाएगा, क्योंकि बार बार एक बार तो सड़क के आंदोलन से इस्तीफा हो चुका है लेकिन वो सरकार के हाथ में था कि वो इस्तीफा ले और जब 1 महीना वो आंदोलन चला उसके बाद वो इस्तीफा हो पाया। प्रदर्शन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है। और दूसरी तरफ 42 पूर्व जजों ने, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के, उन्होंने अब सवाल उठाना शुरू किया है विपक्ष के खिलाफ कि इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लें।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है, इसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दुहार। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम।
2: आज राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-star रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
0: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है।
3: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
0: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
0: ममता बनर्जी तो कोलकाता से रवाना भी हो चुकी है, कहती हैं अभिषेक वही हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है।
5: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। तो 8-9 को प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया, जो इंडियन अलायंस है, और सब लीडर को टाइम मांगा।
6: एक ही मांग को लेकर अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरता नजर आ रहा है। यहाँ पर पटना में राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तमाम आरजेडी के नेता उस आंदोलन में, हैदराबाद में विपक्षी मोर्चा एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जम्मू में भी विपक्ष का ब्लैक डे और विपक्ष का काला दिवस, बेंगलोर के भीतर भी, लेकिन वहां पर सीजेपी के प्रदर्शन में प्रकाश राज से लेकर बाकी नेता वहां पर पहुंचे हुए, और दिल्ली में तो लगातार 3 दिन से प्रदर्शन चल ही रहा है। और इसी पर चर्चा होगी, ये भोजन के लिए बुलाया जाना और उसके बाद आंदोलन के लिए ले जाना, ये आखिरकार किस तरीके की राजनीति है, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रवि कांत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में होंगे, आशुतोष और रजत सेठी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से भारतीय लोकतंत्र में अविश्वास का भ्रम फैल रहा है क्या? दूसरा सवाल, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप सिर्फ विपक्ष के सियासी शिगुफे हैं या सचमुच में उनकी शिकायत है और उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के दौरान कहीं कोई असंवैधानिक फैसला तो नहीं लिया? इसी बात को लेकर दरअसल पूरी लड़ाई चल रही है कि असंवैधानिक तरीके से फैसले लिए गए, और खास करके इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के बाद में यह लड़ाई अब सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर रवि कांत भाई, आप भोजन के लिए बुलाते हैं और लंच में मेन्यू आप सर्व करते हैं प्रोटेस्ट का, तो ये मेन्यू कब तक आपका सर्व होता रहेगा, कब तक ये आपका मेन्यू इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा?
7: देखिए, जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक SIR की प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, और जब तक EBM की जगह पर बैलेट और नहीं शुरू होगा, तब तक यही चलता रहेगा। ये नौटंकी मचा रखी है क्या कि लोकतंत्र का आप गला घोंट देंगे और कोई खड़ा नहीं होगा? ये लगातार जो चल रहा है इस देश में, मोदी और अमित शाह की तानाशाही चलेगी, छात्र नौजवानों से लेकर के और विपक्ष के लोग कभी भी अगर खड़े हो जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, तो उन पर पुलिसिया बर्बरता की जाएगी। ये लोकतंत्र में होता है कहीं? ये जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समूचा सड़क पर है। और हमें मालूम है, राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि अब हमें रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से खेल हो रहा है, चुनाव अब जीते नहीं जा रहे, चुनाव अब लूटे जा रहे हैं। जनता का जो जनमत है वो जनमत वोट से नहीं तय हो रहा है, वो ज्ञानेश कुमार के इशारे पर तय हो रहा है, मोदी और शाह के फायदे के लिए तय हो रहा है। तो फिर ऐसे में इस देश की जनता को, इस देश के विपक्ष को, इस देश के नागरिकों को सड़क पर खड़े होना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के नाम पर जो तानाशाही चल रही है उसको सबक सिखाना जरूरी है। तो ये तब तक चलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी को जीतने। जी,
6: 42 रिटायर्ड जज है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से लगातार इस ऐसे संस्थाओं पर सवाल उठाना, यानी चुनाव के रेफरी पर सवाल उठाना, लगातार सवाल उठाते रहना, इससे तो भरोसा उठ जाएगा लोगों का।
7: अभी लोगों को क्या दिखाई नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर्स के वोट काटे गए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया में 13 करोड़ लोगों के वोट काटे गए और रंगे हाथों पकड़े गए ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फॉर्म 6 में आप बदलाव नहीं कर सकते थे, आपने हमारा नाम लिया जबकि हमारी कोई अनुमति नहीं थी। ये जो भी महानुभाव है, जो भी सज्जन है, जिन्हें बड़ी लोकतंत्र की चिंता है, वो उन्होंने इस पर सवाल उठाया क्या? ये लिस्ट कई बार आ चुकी है इस तरह की, जो बराबर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करेंगे। आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, आपको चिंता यह है कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है जब सरेआम यहां लूट मची हुई है, उसके बाद भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। खैर, उनका पक्ष अपना है, वो उठाते रहें, उनको भी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आज मजबूर होकर के जो देश के नागरिक सड़क पर खड़े हैं, उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो खुशी खुशी में वहां जा रहे हैं। और जो पुलिसिया बर्बरता हो रही है, भाजपाइयों को ये कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि उनको इसका हिसाब जरूर मिलेगा। वो जो सोच रहे हैं, वो जो करके निकल जाएंगे, या ज्ञानेश कुमार से लेकर के जितने भी,
6: विपक्ष की राजनीति बहुत ही साफ इस पे नजर आ रही है कि सड़क पर उतर कर सरकार पर दबाव बनाओ। और अभी तो वो सीधे सीईसी के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं पर।
8: नहीं, देखिए साहिल जी, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। लगातार झूठ बोलने से यदि आपको लगता है कि देश की जनता आपके छलावे में आ जाएगी, मैं आपके सवाल को सुन रहा था कि भाई देश के लोकतंत्र में अविश्वास पैदा करने का, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, पहला सवाल था आपको, और बिल्कुल इसका जवाब है हाँ। 13 करोड़ का झूठ अभी आपके शो पे कहा गया, 13 करोड़ का ब्रेकअप कई बार दिया जा चुका है, 2.8 करोड़ मृत वोटर हैं, उनकी आत्मा करके वोट करेगी क्या? कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, ठप्पा लगा के चुनाव करवाएंगे। यही बिहार है जहां से मैं लाइव हूं, और इसी बिहार में लालू प्रसाद यादव बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाते थे। टीएन सेशन चुनाव आयुक्त थे, लालू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि सेशन वहां पगला गया है, जब बैलेट पत्र नहीं लूट पा रहे थे, जब चुनाव में हिंसा नहीं करवा पा रहे थे, किस प्रकार से जो वोटर लिस्ट में नहीं है उनका भी वोट डलवाते थे, और कैसे कैसे चुनाव यहां पे बिहार में हुए हमने देखा है। देखिए साहिल जी, बात इतनी सी है, जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी हार रही है। देश भर के छात्र संघ के चुनावों का देख लीजिए, पंजाब छात्र संघ, पंजाब विश्वविद्यालय में वही हुआ, कांग्रेस पार्टी हारी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में कांग्रेस पार्टी हारी। जहां ईवीएम से चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी हारी है। ज्ञानेश कुमार से पहले चुनाव हो रहा था कांग्रेस पार्टी हार रही थी, ज्ञानेश कुमार के बाद चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी हार रही है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, अगर बात लोकतांत्रिक असहमति की होती तो हमें स्वीकार था। हम लोग खुद आपातकाल से निकले लोग हैं, हमारे नेता अपनी गिरफ्तारी दे दिए थे, त्याग तपस्या बलिदान किए थे लोकतंत्र के लिए। संविधान की मूल आत्मा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था साहिल जी कि संविधान के प्रस्तावना में बसती है, उस प्रियम्बल की धज्जियां उड़ा दी थी इंदिरा गांधी की सरकार ने, और आज ये लोकतंत्र और संविधान का हवाला देते हैं, ये मेरे समझ से परे है। लगातार झूठ बोला जा रहा है, हम चुनाव आयोग जाते हैं 4 बजे तक मिलने का समय नहीं देते। या तो साहिल जी आज आपके शो पे क्लियर हो जाए, हम लोग जाने से पहले ये क्लियर कर लें कि राहुल गांधी इज अबव द रूल ऑफ लॉ, राहुल गांधी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पे निर्णय आता है कि एसआईआर संवैधानिक है, हमको नहीं मंजूर है। देखिए पैटर्न वही है जो चला था रफाल में, हिंडनबर्ग में, पेगासस में, 12 साल में इनका कसेट फंस गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। कुल मिलाकर के जो इनके लीडर हैं, देखिए इनके जितने भी लीडर हैं, कल मोदी जी के 25 साल पूरे हुए साहिल भाई, राहुल जी इनऑर्गेनिक लीडर हैं, ऑर्गेनिक लीडरशिप उनमें है नहीं, प्रियंका गांधी एंटाइटलमेंट प्रिविलेज डायनेस्टी, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे, अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे, तो बेटा भतीजा मां मौसी बुआ परिवार इनकी लड़ाई हो रही है। अपने पार्टी में तो लोकतंत्र को बचा नहीं सकते और देश के लोकतंत्र को बचाने चले हैं।
6: जल्दी से एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक तो आपने दो चीजें कही, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी आपने इस्तेमाल किया कि लोकतांत्रिक असहमति दिखाएंगे तो आपको मंजूर है। जरा उसका डेफिनेशन बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से ये लोकतांत्रिक असहमति क्या होनी चाहिए। मतलब क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक असहमति है या नहीं है, वो उसके दायरे में होता है कि नहीं होता है। दूसरा, आपने कहा कि एंटाइटल्ड है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एंटाइटल्ड का जो टैग है सड़क पर लेटने से थोड़ा सा हट जाता है? देखिए, कल प्रियंका गांधी पूरी तरीके से लेट गई थी, रोज वहां पर किसी ना किसी तरीके से पुलिस उनको उठाकर लेकर जा रही है, राहुल गांधी को तीसरी बार इस तरीके से उठाकर लेकर जा रही है। तो इसीलिए तो मैंने पूछा ना कि आप पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश, जो छवि बना के रखी हुई है उसको हटाने की कोशिश हो रही है इस बहाने।
8: साहिल जी, आपने भी वीडियो देखा होगा कि आपने विषय उठाया नहीं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा यहां पे। प्रियंका गांधी जी सम्मानित नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार वो कोहनी मारने का वीडियो, एक सामान्य परिवार की महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारने का वीडियो दिखाया गया है, राहुल गांधी जी का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, ये कैमरे का जमाना है, ये फोटो का जमाना है, यहां सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और लोकतांत्रिक असहमति क्या होता है साहिल जी, हम लोगों ने देखा है भाई, किसान कानून के खिलाफ में लोकतांत्रिक असहमति थी, सरकार ने कहा नहीं ठीक है इसको करना चाहिए, भूमि अधिग्रहण में लोकतांत्रिक असहमति थी, हमने कहा करना चाहिए, तो उसको स्वीकार किया है। लेकिन देश के लोगों की जो आस्था है, जो देश के लोगों का इकबाल है संवैधानिक संस्थानों पर, यह ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में नहीं बोले, सर्वोच्च न्यायालय पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है, चुनाव आयोग पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है। साहिल जी, मैंने आपको पहले भी कहा है और पुनः बोलना, यहां पे इस विषय पे जरूरी समझता हूं, हम जहां से लाइव है यह बांकीपुर विधानसभा सीट है, 35 साल से हम जीत रहे थे, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, हम लोग इस सीट में पराजित हुए, हमने विनम्रता के साथ स्वीकार किया, यहां भी ऐसा हुआ था, यहां भी ईवीएम का उपयोग हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता ने, किसी एक नेता ने ना तो ईवीएम पे ना एसआर पे सवाल उठाया, हमने अपने निर्णय पे आत्मंथन किया और अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया। आप पार्टी के अंदर, अब पांच प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं साहिल जी, आपने पांचों प्रांतों के अध्यक्ष बदल दिए हैं, फोकस वहां करना चाहिए, फोकस यहां कर रहे हैं आप। देखिए, यही कारण है ना, आप कितने नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, नॉन सीरियस लीडर्स हैं, यह दिखाता है इस प्रदर्शन के माध्यम से साहिल भाई।
6: ठीक है प्रोफेसर रविकांत, वो एक कोहनी का मुद्दा छेड़ी गया है इसमें कि भाई जो आंदोलन होता है उसमें अभी नया एफआईआर जुड़ गया है कि आपने पुलिस कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की, राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ है उस बात को लेकर।
7: देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले कह दिया कि अभी 45 हैं, 100 भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि उनके सीने पर एक एक तमगे हैं। और गुरु प्रकाश जी
6: को तो वीडियो है ना, वीडियो के आधार पर एफआईआर है,
7: वीडियो है, इतने पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, सुनिए ना पहले, इतने पुलिस वाले वहां जो बदमाशियां कर रहे हैं, और ये तो बेचारे अमित शाह के इशारे पर कर रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी से और प्रियंका जी से जितना वो चुपचाप जो कहते हैं कि सत्ता को हटाना जरूरी है, और वो अलग अलग ढंग से फुटेज आप निकाल के आएंगे कि साहब देखिए उसमें कोहनी मारी गई है, अब किसी को चारों तरफ से कोई घेर लेगा, पकड़ लेगा, तो अपने निकलने के लिए क्या करेगा? ये गुरु प्रकाश जी या तो फिर अंतरिक्ष में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि कैसे होता है। और इतना ही अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इतनी ही नरेंद्र मोदी में काबिलियत, लोकप्रियता और लोग जानते हैं, तो अब क्या दिक्कत है? लेकिन इनका ज्ञानेश कुमार पर अड़ना और ईवीएम की बार बार बार वो दुहाई देना, इसका मतलब है कि दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। और ये जानते हैं कि ईवीएम के जरिए, ज्ञानेश कुमार के जरिए ये चुनाव जीत रहे हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, सरेआम पकड़े गए, कितनी बार लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। और बंगाल में क्या हुआ, जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, उसमें 93% लोग वैलिड पाए गए, तो आप मार देंगे, कैसे मार देंगे, कितने लोगों को मार देंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि वो उसमें होना चाहिए,
6: नहीं जब 13 करोड़ की बात होगी रविकांत जी, जब नहीं जब 13 करोड़ की, जब 13 करोड़ की बात होगी ना, आप देश भर में 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं उसकी बात करते हैं, जिसका जिक्र गुरु प्रकाश कर रहे थे, वो एक बायफर्केशन दे रहे थे कि भाई कितने मरे हैं, कितने ट्रांसफर हुए हैं, किन्होंने अपना पता चेंज किया है, कोई पते पर मिला नहीं है, किन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरे नहीं है, वगैरह वगैरह उन्होंने पूरा यह दिया। अब बंगाल में 58 लाख लोगों की सूची जारी कर दी गई है, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में ही कट गए थे। और क्यों कटे थे, कई लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरे नहीं, कई लोग पते पर मिले नहीं, कई लोगों ने अपना पता चेंज कर लिया था। और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उन 58 लाख लोगों को सामने लेकर आइए, और जिनके नाम अगर गलत कटे हैं तो आप फॉर्म नंबर 6 भर के दोबारा इस सूची में ऐड हो जाइए। 27 लाख की बात तो अलग है ही, अब इन 58 लाख में से कितने लोग जुड़ते हैं वो भी देखना होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अगर 13 करोड़ कैलकुलेट हो रहा है तो बंगाल के 90 लाख में से कितने लोग जुड़ जाएंगे वो भी देखना होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं देखना होगा ना। इसमें बात सिर्फ यहां पर आकर नहीं रुकेगी,
7: चुनाव के बाद हो रहा है ना। ज्ञानेश कुमार के क्या घर की संपत्ति है क्या कि ज्ञानेश कुमार कोई भी फैसला ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे कि चुनाव खत्म हो गया उसके बाद हम ले लेंगे, अब साफ जोड़ लेंगे। फॉर्म 6 में आपने जो बदलाव किया उसमें क्या किया, पहले कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको अनुमति दी और उसके बाद अब नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, उसके एक्ट में लिखा हुआ है। ये जो नौटंकी इस देश में चल रही है इसको पूरा देश जान चुका है और इसीलिए इनको डर है, भयभीत क्यों है। राहुल गांधी जी अगर सड़क पर निकले हैं, इस देश की आवाम निकल रही है, इनको डर वही है कि ज्ञानेश कुमार कहां छुपे हुए बैठे हैं। डर क्यों है भाई, 200-300 सांसद गए थे मिलने के लिए, आप क्यों नहीं, कहां मुंह छुपा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहां है,
6: क्या दिक्कत है, गुरुप्रकाश जी मिल लीजिए ना,
7: बात क्यों नहीं कर सकते।
6: ज्ञानेश कुमार आखिरकार रेफरी है,
7: पकड़ी गई है,
6: अगर इसीलिए मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, दो टीमें खेल रही है, अगर एक टीम आकर कह रही है कि भाई रेफरी हमको मिल लीजिएगा, हमें दिक्कत है, आप जिस तरीके से फैसले लेते हैं उस पर हमें दिक्कत है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को मिलने से दिक्कत क्या है, आप भी बोल दीजिए कि भाई हमको भी मिल लीजिएगा। तमाम विपक्षी सांसद अगर खड़े होकर कह रहे हैं हमें मिलिए, तो मिलने में दिक्कत क्या है।
8: साहिल जी, नहीं नहीं साहिल जी, मैं इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इन्होंने कहा कि भाई डर गए हैं, भयभीत हुए हैं। डरे तो हम इंदिरा गांधी से भी नहीं थे, आसाम की सड़कें सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है, हम इनके दादी से नहीं डरे, राहुल गांधी किस खेत की मूली है, हम बताना चाहते हैं पूरी विनम्रता के साथ। और नौटंकी और घर की बात आप कर रहे हैं, नवीन चावला खुद को इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र बताते थे, उनको शाह कमीशन ने कहा था अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उनके कलीग जो बाद में सीसी बने एन गोपाल स्वामी ने कहा था कि मुझे ऑब्जेक्शन है ये व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनता है, उनको उस ऑब्जेक्शन को ओवररूल करके चुनाव आयुक्त बनवा दिया गया था ठीक 2009 के आम चुनाव के पहले। तो डर और भय की तो बात है नहीं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहने की 45 FIR और हुआ है, 100 FIR और होंगे, ये सुनकर के मुझे शहाबुद्दीन की याद आती है, एक आतंकी जो बिहार के सिवान में रहता था, वो भी इसी प्रकार कहता था कि और कितने FIR होंगे मेरे ऊपर। ये सुनकर के मुझे अतीक अहमद की याद आती है, ये सुनकर के मुझे मुख्तार अंसारी की याद आती है, ये सुनकर के मुझे तस्लीमुद्दीन की याद आती है। मतलब ऐसे ऐसे अपराधी के बीच नहीं बोल रहा सर। साहिल जी आप इनसे रेगुलेट करिए, साहिल जी मैं उनके बीच में बोल रहा, साहिल जी मैं नहीं बोल रहा, साहिल जी आप करवा लीजिए, साहिल जी आपको डिबेट करना है क्या, साहिल जी करना है क्या,
6: रविकांत जी कुछ नहीं बोल रहा, वो बात कह रहे हैं
7: साहिल जी, भाई था क्यों भूल जा रहे हो नरेंद्र मोदी को,
8: प्रोफेसर रविकांत से प्रोफेसर लिखा है भाई, साहिल जी आप शांत कराइए,
6: ठीक है आप आपत्ति उठा, प्रोफेसर रविकांत,
8: साहिल जी क्या लगातार बोलने दे रहे हैं
6: आप, आप आप आपत्ति उठा सकते हैं, उनको बात खत्म करने दीजिए,
7: नाकाबिले बर्दाश्त है ये चोर,
6: रविकांत जी उन्होंने आपकी नब्ज पकड़ ली है।
8: अरे नहीं,
6: शहाबुद्दीन आरजेडी के सांसद थे, मुख्तार अंसारी थे ना, वो तो विपक्षी सांसद थे, आपकी सहयोगी पार्टी, आप क्यों उसमें, वो आपको आपको वो आपको वो उकसा रहे हैं, आप उकस रहे हैं, आपसे उकसाने की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है,
7: ठीक है,
6: कोई बात
8: साहिल जी, साहिल जी मैं पूरी
6: समाजवादी पार्टी के लोगों को पूछेंगे कि भाई उनको तो ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले गुरुप्रकाश जी
8: साहिल जी मुझे बीच में रोका गया था, साहिल जी मुझे बीच में रोका गया,
7: साहिल
8: जी बीच में प्लीज, ऐसे नहीं होता है,
6: आपको आपको आपत्ति उठाने का पूरा अधिकार है रविकांत जी, लेकिन आपके समय पर उठाइए ना, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप आपत्ति नहीं उठा सकते, आपको अधिकार है, गुरुप्रकाश जी आपकी बात खत्म करिए, मुझे रजत जी के पास जाना है,
7: गुरुप्रकाश गुजरात का गुंडा,
8: साहिल जी ऐसे थोड़ी होता है, साहिल जी ये समय बर्बाद करना है, साहिल जी पूरा डिबेट बर्बाद करना है क्या, ये व्याकुलता है, यही आप
6: ठीक है, चलिए चलिए
8: साहिल जी देखिए ये व्याकुलता आज दिख गई, ये मैं अपनी बात पूरी कर दूं, साहिल जी आप लगातार उनको हैकल करने दे रहे हैं, मैं शांत बैठा हूं, इसका
6: करिए आपकी बात,
8: लगातार ये व्याकुलता दिख गई है, ये व्याकुलता है ये व्याकुलता आज दिख गई कांग्रेस पार्टी की, नहीं बेहूदगी नहीं चलेगी तो कोहनी मारिएगा क्या, प्रियंका गांधी ने कोहनी मारना सिखाया है क्या, राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना सिखाया है क्या, डरा रहे हैं आप, देश में लोकतंत्र है, आपातकाल नहीं है, ये खानदानी अहंकार जो है आपका,
6: या एक संजीवनी मिली है, नया मुद्दा मिला है,
8: खानदानी अहंकार घर में रखिए,
6: ठीक है,
2: देखिए साहिल
6: ठीक है हो गया,
2: साहिल
6: हो गया, ये व्याकुलता है या नई संजीवनी मिली है विपक्षी पार्टियों को,
2: साहिल एक
9: चीज जो सिर्फ डिस्कस होनी चाहिए, बाकी किसी चीज का डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, वो क्या है? दो चुनाव आयुक्तों ने साफ तौर पे कहा है ज्ञानेश कुमार जी इल्लीगल तरीके से चुनाव आयोग में बैठ के फैसला कर रहे थे। ये तो राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये अखिलेश यादव ने भी नहीं कहा, ना नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये किसने कहा है? दो चुनाव आयुक्तों ने बाकायदा किया और आज तक उसका खंडन। अब आप मुझे हैकल कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के तरीके से बिहेव मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता की गालियां देते आप नहीं देते, मैं जानता हूं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता माँ बहन की गालियां देते लाइव टीवी में, आप नहीं करते, आप अच्छे आदमी है, मैं इसलिए आपका सम्मान करता हूं।
8: अरे सर, आप
9: महत्वपूर्ण सवाल क्या है?
8: वो पूछ रहे हैं एविडेंस
9: जी। एक मिनट, अगर ज्ञानेश कुमार जी के अंदर हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे विवेक जोशी और संदूक गलत कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा करे, पहली बात। दूसरा सवाल क्या है कि इस देश के अंदर एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त है जो प्रेस रिलीज जारी करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, देश को गुमराह करने का काम करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा यह बात साफ होनी चाहिए कि मैंने फॉर्म 6 में किसी तरीके के बदलाव को अनुमोदित नहीं किया। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है इस देश की राजनीति का कोई बहुत पावरफुल आदमी उनके पीछे है जो बार बार कह रहा आप इस्तीफा मत दीजिए। राहुल गांधी आरोप लगाते तो मैं समझ सकता था, अखिलेश यादव आरोप लगाते मैं समझ सकता था, मायावती लगाते समझ सकता था, लेकिन खुद चुनाव आयुक्त 10 महीने के अंदर 14 आपत्तियां और कह रहे हैं ये फैसले इलीगल तरीके से हो रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, उसके बाद एक आदमी अपने पद पर बना हुआ, इससे ज्यादा खतरनाक बात लोकतंत्र के अंदर क्या हो? और दूसरा देखिए, ये जो बार बार कहा जाता है ना, देखिए संविधान की चिंता वो करे जो संविधान के लिए लड़े। सुदर्शन जी ने करण थापर को इंटरव्यू में कहा था स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो लोग संविधान की बात नहीं कर सकते। जब जब जब 1974 में जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो आरएसएस के प्रमुख देवरस ने माफी मांगी थी चिट्ठी लिखकर, इंदिरा गांधी की खुशामदें कर रहे थे, इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे, संघ परिवार के न जाने कितने स्वयंसेवकों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर माफी मांगकर बाहर आए थे, इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं। तो आज इनको लगता है कि ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं।
8: आशुतोष जी
9: भाई, हाँ
8: मुझे मुझे जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए, फिर मुझे रजत जी के पास जाना है इस बात को लेकर ही, क्योंकि क्या ये प्रोटेस्ट के जरिए, क्योंकि देखिए दो अलग अलग बातें हैं, आपका चुनाव आयोग पर कई सवाल है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार के काम करने के रवैये पर आपके कई सवाल है, और उस बात को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेस्ट के जरिए चुनाव में जो जो वोट वोट निकले हैं क्या उसको बदला जा सकता है? क्या क्या प्रोटेस्ट के जरिए ज्ञानेश कुमार अगर कल हट जाएंगे, चुनाव आयोग तो वही के वही रहने वाला है, उसकी नियुक्ति भी उसी तरीके से होने वाली है जो 2023 के कानून के तहत की जाने वाली है, तो क्या उससे चुनाव का रुख बदलेगा? क्या सवाल यहां पर आकर उठता है, आखिरकार चुनाव के जरिए ही हम तय कर सकते हैं ना कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी?
9: निश्चित तौर पर मैं आपकी राय से सहमत हूं, लेकिन अगर कोई संविधान को ही ना माने, संविधान को ही उल्टा करने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद अपने पद बना रहे, दो चुनाव आयुक्तों की टिप्पणी के बाद भी अपने पद बना रहे, तो क्या कहेंगे आप भाई? कम से कम संवैधानिक अधिकार है राहुल गांधी को अनशन करने का, कम से कम उन लोगों ने उस तरीके से वायलेंट तरीके से बाबरी मस्जिद तो नहीं गिरा रहे ना, जब पत्रकारों को पीटा गया था, पत्रकारों को खदेड़ खदेड़ के पीटा गया था, आप अच्छी तरीके से साहिल जोशी जानते, तो उनको लोकतांत्रिक आंदोलन के बारे में, सत्याग्रह के बारे में क्या पता? ये तो जो कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि इलीगल तरीके से लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, इलीगल तरीके से। कल्याण सिंह उस वक्त देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, संविधान को शपथ देकर आए थे,
8: आंदोलन में तो यही होता है, बेवजह इस आंदोलन को आपके मुताबिक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन रजत सेठी, कुल मिलाकर जो सवाल मेरे आशुतोष को पूछा था वही सवाल आपके पास, ये जो आंदोलन है ये आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन एनआरकी वेनआरकी सब बातें होगी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि गुरुप्रकाश पासवान ने किसान आंदोलन का जिक्र किया लोकतांत्रिक असहमति के लिए, क्योंकि उस आंदोलन के बारे में भी क्या कहा गया था वो आपको पता है, लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन हो रहा है वो सीसी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है, किसके खिलाफ आप देखते हैं इसको, निशाने पर कौन है?
10: साहिल, देखिए साहिल जी, विपक्ष को एक साथ आने का एक मंच मिल गया है, और थोड़ा सा खून चख लिया है तो वो शिकार के लिए सब तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के उन लोगों को भी मजा आ रही है विपक्ष को कि चलिए कम से कम हम लोगों ने चक्का जाम तो
6: क्या
10: किया,
6: आपने कहा खून
10: 10-12 साल
6: खून
10: लग गया
6: चाट लिया
10: चक्का
6: है।
10: जाम करने में। हाँ बिल्कुल, खून चखा है विपक्ष ने, तो उनको लग रहा है अब चक्का जाम करने में मजा आ रही है तो करना चाहिए। कुल
6: किसका
10: मिला के
6: खून
10: ये
6: चखा
10: है।
6: है?
10: बाकी साइड में देखिए, आप बातें सुनिए। अगर मैं बोलूं साहिल जी, मैं 2-3 पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी, इससे बड़े विद्वान कानून के कौन होंगे विशेषज्ञ, वो कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना, हम लोग तो सड़क पे ही तय कर लेंगे सब कुछ। लॉयर हैं, मतलब ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा है, सुप्रीम कोर्ट ही आर्बिटर है। बट विपक्ष क्या चाहता है कि हम ही जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाएं, हम ही तय करें कि इन्हीं को फांसी पे
6: अरे बट
10: लटकाओ और
6: अजय
10: वो
6: जी,
10: अगले दिन लटक
6: ये
10: जाए,
6: तो अरुण
10: ये
6: जेटली भी
10: कैसे हो
6: कहते
10: सकता है
6: थे।
10: साहिल जी? यहां पर
6: अरुण
10: आपने
6: जेटली भी
10: एक्सेप्शन
6: कहते थे,
10: किया,
6: अरुण जेटली भी
10: इलेक्शन
6: सुप्रीम
10: कमीशन
6: कोर्ट के
10: बोल रहा है
6: लॉयर
10: कि ये
6: थे,
10: सही नहीं है।
6: अरुण जेटली भी राज्यसभा के नेता विपक्ष थे। अरुण जेटली का बयान भी मुझे याद है, 2013 में, आपको याद होगा, अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बयान दिया था।
10: नहीं देखिए, साक्षी जी बोलिए। नहीं मैं सिर्फ एक एक लाइन ही सिर्फ ये ऐड
6: नहीं नहीं
10: करूंगा।
6: बोलिए रजत जी
10: देखिए
6: आप
10: जब जी, मैं सिर्फ ये
6: जी।
10: कह रहा हूं कि देखिए, आपको अगर संविधान की दुहाई देते हैं ना, सारे विपक्ष के नेता संविधान की दुहाई देते हैं, इसी संविधान में लिखा है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या है, आप लेकर आइए ना। आप कहां से कह रहे हैं कि आपके पास जनादेश है तो आप जाइए वहां पर संसद में लेकर आइए, उनके इम्पीचमेंट मोशन को लेकर आइए। बट वहां पर आप उसके चिथड़े उड़ा देते हैं संविधान के, और आप यहां आके बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंतजार मत करो, जो है डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करती, वो सड़कों पर उतरती है, तो उतर के देख लीजिए। बट अगर आपको यह लगता है कि सड़कों पर आप अराजकता करके आपको सच मिल जाएगा, साबित हो जाएगा, क्योंकि आप ही एक तरफ एक्यूज कर रहे हैं और आप ही चाहते हैं कि सामने वाले को हम फांसी पे लटका दें, उसको सजा दे दें उठा के, तो ये कहां का प्राकृतिक न्याय है? मैं सिर्फ इस तरह लिमिटेड क्वेश्चन है, क्योंकि
6: ठीक है
10: ऑनगोइंग केस
6: ये
10: है सुप्रीम कोर्ट में, तो होने दीजिए केस को सुनवाई, तार
6: एक
10: तार हो
6: सवाल
10: जाएगा
6: एक
10: सब मामला क्या है।
6: नहीं ये एक सवाल मैं दोनों के लिए रखता हूं, ये आशुतोष और रजत सेठी आप दोनों के लिए, और उसके बाद घनश्याम तिवारी के पास चलूंगा कि भाई कौन सा खून आपने चख लिया है जो रजत सेठी यहां पर कह रहे हैं। एक सवाल मैं आप दोनों के सामने रखता हूं, कल भी मैंने ये एनालॉजी देने की कोशिश की थी, भाई क्रिकेट का मैच चल रहा है, दो टीमें क्रिकेट खेलने के लिए पिच पर उतरी हुई है, एक टीम कहती है कि भाई ये जो यहां पर अंपायर है ये तो गलत फैसले देता है, हमें तो या तो थर्ड अंपायर दे दीजिए या अंपायर को बदल दीजिएगा। ऐसी सूरत में उस दूसरी टीम के पास जिसको अंपायर पर भरोसा ही नहीं रहा, उसके पास क्या चारा है? या तो वो फील्ड छोड़कर चली जाए या वहां पर आंदोलन करे उसके खिलाफ ताकि अंपायर चेंज हो जाए। क्या होना चाहिए ऐसी सूरत में? अगर विपक्ष कहता है कि हमें ज्ञानेश कुमार पर भरोसा नहीं रहा जो भी घटनाएं हुई है उसके वजह से, तो क्या होना चाहिए ऐसी सूरत में? मान लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? रजत सेट्टी पहले आप, उसके बाद आशुतोष।
10: देखिए अगर भारत और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है और जिम्बाब्वे आके बोल दे कि देखिए हमको तो खेलना ही नहीं है क्योंकि विराट कोहली के सामने तो हम टिक ही नहीं सकते, और आप बोल दें कि नहीं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की, पूरा आंगन ही टेढ़ा है, हम तो जी चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो किनारे बैठिए। आपको मॉरल प्रेशर चाहिए ना, तो आप विपक्ष में बैठिए, आप चुनाव में मत हिस्सा लीजिए, अपने आप एक मॉरल प्रेशर रहेगा। ये बीएनपी पार्टी ने बांग्लादेश में यही किया था, उसी से उनकी एक मॉरल लेजिटिमेसी बनी थी। आप 10 साल सत्ता से विमुख रहिए, आप बोलिए कि नहीं हमें नहीं है भरोसा, और आपको चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी। आपके पास ऐसे कई सारे मौके आए, बिहार चुनाव के बाद आया, बंगाल चुनाव के बाद आया, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए खटखटाते हुए बोलते हुए कि एसआईआर गलत है। सुप्रीम कोर्ट किसी तो संस्था पे आपको भरोसा करना पड़ेगा ना, कि वरना एक ही संस्था है कांग्रेस पार्टी और उसका शिखर पुरुष जो है वही सब कुछ है संविधान के हिसाब से, जो वो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा क्या पूरे देश को? ये अराजकता का स्तर आ चुका है। मैं सिर्फ फिर से ये बोलूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है कि ये मैच रिग्ड है, तो आप मैच में बिल्कुल मत खेलिए, आप किनारे बैठिए, आप सिद्ध करिए कि आपके अंदर एक मॉरल करेज है किनारे बैठने कि आप सत्ता के लिए लोलुप्त नहीं है, आप सत्ता के लिए लालची नहीं है, आप चुनाव दर चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं, आप किनारे बैठ के वहां से विरोध करेंगे, देख लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि अखिलेश यादव जी भी चुनाव में किनारे हटते हैं कि नहीं, अखिलेश जी वही दामन छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी का।
6: पहली बार रजत सेठी की मांग और सीजेपी की मांग एक जैसी दिख रही है, क्योंकि सीजेपी भी यही मांग करने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव से बाहर हट जाइए, और रजत सेठी भी आज वही कह रहे हैं।
9: साहिल मुझे बहुत हैरानी है कि भारतीय लोकतंत्र की तुलना बांग्लादेश से की जा रही। अगर यह स्थिति है तो कल फिर जैसे मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ तो फिर हिंदुस्तान के अंदर भी होगा,
10: चाहत तो यही है।
9: मतलब कहां हम क्या तर्क दे रहे हैं, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग किस तरीके के तर्क दे रहे हैं? क्या भारत के तुलना, भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से करेंगे? भारत के लोकतंत्र की तुलना बांग्लादेश से करेंगे? कल आप सूडान से कर देंगे, परसों युगांडा से कर देंगे, मतलब हम तर्क क्या दे रहे हैं, कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए। और क्या

0: ये नहीं होगा इस देश के अंदर। जब इंदिरा गांधी ने अधिनायक वाद शुरू किया तब जयप्रकाश नारायण जैसे लोग आए, बस जले, ट्रक जले, हिंसा हुई सड़कों के ऊपर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वो लोग जिनको भारत के लोकतंत्र में जरा सी भी आस्था नहीं, मैं हर बार कहता हूं इस बात के, और नहीं तो अभी साहिल आप करण थापर का वो इंटरव्यू उठाकर देखिए जो सुदर्शन जी ने कहा, रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कहा, गोलवलकर ने 1950 में संविधान लागू होने के बाद कहा, और भागवत ने कहा संविधान को रिव्यू होना चाहिए, वह संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कम से कम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र क्या बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं? मतलब हाउ लेवल हाउ लो वी कैन गो, क्या भारत के लोकतंत्र की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं? ये भारत के लोकतंत्र की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं? मतलब इतनी
1: लिखी हुई अक्षर से बातों को माने वहां नहीं मानेंगे, इनको चाहिए चुनरी मेरी पटनी मेरी, हम चुनाव में भी लड़ेंगे, चुनाव की मलाई भी खाएंगे जहां जीत जाएंगे, और हम लोग
0: यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है,
1: मेरी पटनी मेरी हिसाब
0: है, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर दे।
1: संविधान में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट पे बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन को कैसे हटाना है, तो वहां भूल जाएंगे संविधान, वहां बगल की जेब में डाल देंगे संविधान, फिर बाहर निकाल लेंगे अगली मोमेंट पे कि अब ये देखो संविधान के हम ही कस्टोडियन है, हम ही रक्षक है, बाकी सब भक्षक है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कैसा मापदंड है? कम से कम एक एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बीच में इतनी तो आस्था होनी चाहिए कि संविधान के सिर्फ अकेले आप रखवाले नहीं है यहाँ पर, आपने कोई ऐसा विशेष झंडा नहीं गाड़ दिया आज तक कि आप ही अकेले जो रक्षक बने बैठे हैं यहाँ पे संविधान के, जमीन पे उतरी आशुतोषी चुनाव आपने
2: देखिए
1: हारे हैं आप, इसी संविधान के तहत हारे हैं आप चुनाव, आपके पीछे जनता नहीं खड़ी है, जिन लोगों के पीछे जनता खड़ी है वो देश का शासन कर रहे हैं।
0: मुझे बड़ी बड़ी हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग संविधान की बात करते हैं,
1: तो
0: जिनको भारत के संविधान में जरा सी भी आस्था नहीं है।
1: आप तो इंदिरा
0: रजत प्लीज मैंने बीच में नहीं बोला। मैं अभी भी कहता हूं 2001 इंटरव्यू सुदर्शन से पूछा गया आप संविधान यकीन करते, बोला नहीं, स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है संविधान के प्रति आरएसएस के लोगों की आस्था। और मोहन भागवत ने कितने चुनाव लड़े हैं भाई,
2: तो
0: दर्शन ने कितने चुनाव लड़े हैं, गोलवलकर ने कितने।
2: चलिए इस वक्त खबर ये आ रही है कि जहां पर ये आंदोलन चल रहा था राजघाट में अंदर गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोग राजघाट पहुंच गए हैं। इस बार पुलिस ने उनको रोका नहीं है, कल जंतर मंतर जाने से रोका तो जो हुआ वो हमने सबके सामने देखा। लेकिन आज राजघाट जब विपक्षी सांसद पहुंचे तब लगता है पुलिस ने उन्हें जाने दिया है, वहां पर सिर्फ चुनिंदा लोग अंदर गए हुए हैं, कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता, सभी सांसद तो अंदर नहीं जा पाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में कुछ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजघाट के अंदर जाने का मौका उन्हें मिल पाया है। चलिए घनश्याम तिवारी, अभी देखिए यहां पर राहुल गांधी वगैरह पहुंच गए।
0: ज्ञानेश कुमार को इतनी मजबूती से डिफेंड क्यों रहे? मुख्य सवाल यह, ज्ञानेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर इतनी मजबूती से क्यों डिफेंड कर रही है? ये मेन सवाल,
3: लगातार ये बोल रहे हैं आप,
4: नमस्कार,
2: कुल मिलाकर
3: गलत नैरेटिव है चला,
2: कुल मिलाकर। अरे भाई
4: नमस्कार, नमस्कार साहिल जी, आपको
2: राजेश सेठी ऐसे ही बैठे हुए,
0: जवाब दे दीजिए ना आप,
2: गुरु प्रकाश जी क्या कर रहे हैं,
0: आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं बताइए जरा मुझे, आपकी क्या मजबूरी है?
2: ठीक है, ओके,
0: बताइए घनश्याम
2: तिवारी, घनश्याम तिवारी,
0: रजत सेठी आप भी जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों क्यों डिफेंड कर रही ज्ञान प्रकाश ज्ञानेश कुमार, कौन क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है जरा बताइए।
2: घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी बोलने दीजिए उनको, घनश्याम तिवारी
4: नमस्कार साहिल जी आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, अगर बाकी लोग अवसर दें तो मैं कुछ बात रखूं। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए तीन बातें अहम है, पहली बात तो बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हम ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं, आज आयुषी दर का आर्टिकल छपा है रिपोर्टर्स कलेक्टिव में कि उत्तर प्रदेश के जो सीईओ हैं उन्होंने 16,18,000 वोटों को ऐड करवाया बिना फॉर्म सिक्स के माध्यम से, जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश नहीं हुआ था। और जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम कोई सोशल समाज सेवा नहीं कर रहे हैं कि हम रिपोर्टर्स की बात का जवाब दें। तो हर शाख पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जिसे आज देश की जनता बेईमान और झूठी पार्टी मानती है उल्लू बिठा रखा है। आपने पूछा खून चखना क्या होता है, खून चखना क्या होता है आप उनसे पूछिए जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत सैकड़ों बीएलओ को मरवा दिया, जिनकी जान चली गई, खून चखना क्या होता है उनसे पूछिए। कोविड में जब जान जा रही थी तो वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, खून चखना उनसे पूछिए जिनकी शुरुआत ही गुजरात दंगों

0: से हुई थी। खून चखना क्या होता है, उनसे पूछे जिन्होंने रातों रात लॉकडाउन किया और मजदूर सड़क पर चलते चलते पटरियों पे मर गए। खून चखना उनसे पूछिए जो दंगे को
1: नहीं,
0: अपनी
1: लेकिन घनश्याम जी, अभी
0: राजनीतिक हैसियत
1: समस्या
0: का
1: क्या है
0: रास्ता
1: पता है,
0: मानते हैं, तो ये खून चखना होता
1: बाकी
0: है।
1: विपक्षी दलों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप लखनऊ में प्रदर्शन तो कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, 5 महीने के बाद वहां तो चुनाव होने वाले हैं, समस्या तो वहां पर है ना। और आपने जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार उतारे हैं वो तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, यहां पर आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन फैल जाता है ना उसमें, ये बड़ा गड़बड़ का
0: नवदीप,
1: माहौल है ये सब चीज भाई।
0: आप
1: एक एक
0: सवाल
1: राह पर चलना चाहिए।
0: जवाब तो सुनिए। शुरुआत में कहा कि
1: जी
0: उत्तर प्रदेश के जो सीईओ
1: जी
0: हैं चुनाव के, नवदीप सिन्हा, उनके खिलाफ रिपोर्ट छपी है। ऐसे लोगों को मैंने शुरू में कहा कि हर शाख पर बेईमान उल्लू बैठा हुआ है, और ये षड्यंत्र जो जो ज्ञानेश गुप्ता ने रचा है, अमित शाह के साथ रचा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ रचा है, इससे जब सवाल उठेंगे, जब ज्ञानेश गुप्ता को रिजाइन करना पड़ेगा, सवाल उठेंगे, तो सवाल केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से नहीं उठेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी उठेंगे। जिस तरीके के केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित हैं, जिनकी बुनियाद पर ज्ञानेश गुप्ता चुना गया, जिस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित हैं, जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ करके उनसे
1: ठीक,
0: उनके सिंबल चुनाव आयोग के माध्यम से हड़प लिए, जिस तरह के केस चुनाव आयोग
1: लंबी लिस्ट
0: के
1: है गुरुप्रकाश
0: ऊपर,
1: जी,
0: एसआईआर के ऊपर लंबित है,
1: सिर्फ
0: अगर आप
1: एसआईआर
0: बीच
1: का
0: में आके
1: मुद्दा नहीं तो
0: बोलेंगे।
1: पार्टी तोड़ने का मुद्दा भी उसमें है। और जो सवाल आशुतोष यहां पर उठा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को बोला जाता है तो चोट बीजेपी को क्यों लगती है, यह मुद्दा भी वहीं के वहीं है अभी भी। भाई
0: मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप एक दो
1: अंपायर
0: बैठो
1: को बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं?
2: नहीं, देखिए आशुतोष जी,
1: जी
2: आप आज तो अरे अब देखिए आशुतोष जी वरिष्ठ हैं भाई हम लोगों के, लेकिन एक सुर में बोलना शुरू करते हैं तो कुछ सुनते ही नहीं है, एक ही कैसेट फंसा देते हैं। आशुतोष जी, कुमी कपूर जी की पुस्तक है इमरजेंसी ईयर्स, उसमें पढ़िएगा, जब जयप्रकाश नारायण जी को लाठी पड़ रही थी वहां आंदोलन में, तो उनको बचाया किसने था? नानाजी देशमुख ने बचाया था। तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहां पे कोई प्रमाण पत्र बांटेंगे कि संविधान में किसकी आस्था है, किसकी श्रद्धा है और किसकी आस्था और श्रद्धा नहीं है। जिस संविधान की आत्मा, प्रस्तावना प्रियाम्बल को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसकी धज्जियां किसने उड़ाई थी, उसको ध्वस्त किसने किया था, आप जाके देख आइएगा। आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया साहिल जी कि भाई इनकी राज्यसभा की सूची आई है, उस राज्यसभा की सूची में कितने पीडीए हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अल्पसंख्यक है? एक भी नहीं। एक है परिवारवादी और एक है धनवादी। एक वही व्यक्ति जो 20 और 25 साल से राज्यसभा जा रहा है वही दोबारा राज्यसभा जाएगा, और एक धनवादी है, उसके पीछे का कारण तो मैं यहां पे बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन चलिए उनकी कुछ मजबूरियां होगी।
1: मेरे
2: और
1: सवाल
2: यूपी
1: का
2: में
1: जवाब तो आपने
2: बीजेपी की
1: नहीं
2: भी
1: दिया।
2: 8 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें पासी, खटिक, सोनकर, अति पिछड़े सब लोग हैं, मैं बता रहा हूं सर। अरे
1: ठीक
2: आपने
1: है,
2: मेरे ऊपर
1: मेरे
2: आरोप
1: सवाल का
2: लगाए
1: भी
2: हैं
1: जवाब
2: सर,
1: दीजिए ना
2: थोड़ी तो मतलब रहम
1: भाई।
2: खाई हो, कम से कम इनके
1: ज्ञानेश
2: जवाब
1: कुमार
2: देने का
1: को
2: मौका
1: बोला
2: दीजिए
1: जाता
2: सर।
1: है तो आपको
2: मैं दे
1: चोट
2: रहा
1: क्यों
2: हूं ना
1: लगती
2: सर,
1: है,
2: मैं
1: सवाल
2: दे रहा
1: पूछा
2: हूं
1: गया है,
2: सर।
1: उसका जवाब दे दीजिए ना, वो जो बार बार विपक्ष उठा रहा है।
2: नहीं, देखिए
1: हाँ
2: बीजेपी, हाँ देखिए भाई साहब, ऐसा है साहिल जी कि बीजेपी भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग डिफेंस ऑफ ज्ञानेश कुमार नहीं है, डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ज्ञानेश के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम चुनाव आयोग के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम लोकतंत्र और संविधान के पक्ष
1: चलिए
2: में बोल
1: उम्मीद
2: रहे
1: यही
2: हैं।
1: है।
2: और लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में कोई भी व्यक्ति, कोई माई का लाल भी अगर उंगली
1: यही बात
2: उठाएगा तो
1: कहीं ना
2: उसको
1: कहीं ध्यान
2: जवाब
1: में
2: सुनना
1: रखना बहुत
2: पड़ेगा।
1: जरूरी
2: ये
1: है।
2: इंदिरा गांधी का आपातकाल
1: नहीं,
2: नहीं चल
1: आपकी
2: रहा
1: बात
2: है,
1: बिल्कुल सही
2: ये
1: है, मेरा
2: इंदिरा
1: समय
2: गांधी
1: खत्म हो
2: का
1: गया है, माफ करिए। ये चर्चा ना लंबी चलेगी, क्योंकि अभी आंदोलन भी इसी तरीके से चल रहा है, ये दिख रहा है फिलहाल तो। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था, लोकतंत्र की नींव क्या होती है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस रेफरी पर होती है उस पर सभी को भरोसा कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। अगर भरोसा टूट गया है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यही चर्चा आज पूरे देश पे चल रही है, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
4: Maddie, I need to open a savings account.
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक?
5: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
4: Okay.
5: Ujjivan, nothing small about us.

0: सर
1: गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: My dad was actually very rich and he became so poor that factory nilam ho gayi, ghar nilam ho gaye. किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेकें सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे नहीं। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा। जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस।
3: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती,
2: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अल्लाह बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी ने ये वीडियो एक्स पर साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का। बीजेपी ने लिखा है, राहुल गांधी देश को पितृसत्ता को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। यहाँ कैमरे पर वो एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। राहुल गांधी का दोहरापन अब छिपा नहीं है, ये कैमरे पर साफ दिख रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, महिला पुलिसकर्मी के साथ राहुल गांधी जी का व्यवहार, सत्ता के लालच में आदमी कैसी हरकत कर सकता है, खुद समझिए। बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो की जांच कर रही है। इस वीडियो में महिला पुलिस अफसरों, महिला कांस्टेबलों और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ हमले की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा में FIR दर्ज कर सकती है। इससे पहले आकाशवाणी भवन में धरने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसे राहुल गांधी मेडल बता रहे हैं।
1: मेरे पास 45 FIR हैं। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
0: राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, खासकर राहुल गांधी की गुरिल्ला रणनीति से। 6 अक्टूबर के घटनाक्रम पर गौर कीजिए। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन मार्च कर रहे थे। उन्हें रोकने का पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में जाकर धरने पर बैठ गए। कल भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष के सांसदों के साथ जनपद के पास लंच का आयोजन और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और वो तैयार थी।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
0: दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। 21 जुलाई को भी ऐसा ही नजारा सामने आया था, जब नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस को चकमा देते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

0: बीच सड़क पर संविधान की प्रति के साथ लेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी को पकड़ कर ले जाती दिल्ली पुलिस। बस की छत पर झंडा लहराते कांग्रेस कार्यकर्ता। लगातार दूसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन का गवाह बनी।
1: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: कल जब दिल्ली का माहौल शांत नजर आ रहा था, तभी शाम करीब 3:30 बजे अचानक राजधानी का पारा चढ़ गया। जंतर मंत्र के पास राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं और दिल्ली पुलिस में संग्राम छिड़ा था।
2: ब्रूटली लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सीधे गुनाहगार हैं। ज्ञानेश जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये विजुअल्स कई साल तक हमने नहीं देखे थे।
0: दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मेजबानी में दिल्ली के एक रेस्तरां में लंच करने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन करने जंतर मंतर जा रहे थे। बस में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल और अन्य दलों के नेता मौजूद थे। लेकिन जंतर मंतर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही शांग्रीला होटल के पास अशोक रोड पर पुलिस ने बस को रोक लिया।
3: हम उनका इस्तीफा मांगना चाहते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उन्हें। ये जो चुनाव आयोग है ये किस लिए चलता है? इस देश की जनता के लिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, 250 जनता के प्रतिनिधि, उनमें से एक एक प्रतिनिधि कम से कम 20 से 30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। और हम सच में कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, बात करेंगे। और ये सरकार इतनी कायर है, इतनी डरती है इस जनता की आवाज से कि हर जगह प्रदर्शन रोक रही है।
0: पुलिस ने बस रोकी तो राहुल और प्रियंका दोनों बस से नीचे उतर आए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। काफी देर गर्मा गर्मी के बाद पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया।
4: अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत, एंड दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। माय गारंटी दैट ऑल फोर ऑफ देम विल बी ब्रॉट टू जस्टिस।
0: उधर प्रियंका को हिरासत में लेने जब पुलिस आई तो प्रियंका सड़क पर लेट गई।
5: पार्लियामेंट दैट पुलिस में दे हैव स्क्रैच मी ऑल ओवर, दे हैव थ्रोन अस टू द ग्राउंड एंड नाउ वी आर नॉट गोना मूव फ्रॉम हियर।
0: आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रियंका को हिरासत में लेने में कामयाब रही। राहुल गांधी को हिरासत में लेकर पुलिस बाराखंबा थाने ले गई, जबकि प्रियंका, महुआ मोइत्रा और कई अन्य नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वहां करीब 2 घंटे रखने के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस काला दिवस मना रही है, यानी लगातार 3rd दिन हंगामा तय है। अमित भारद्वाज, पीयूष मिश्रा, राहुल गौतम के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

0: पड़े
1: नहीं,
0: हैं
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: का जोरदार प्रदर्शन, राहुल की अगुवाई में राजघाट में धरना, कहा देना होगा ज्ञानेश को इस्तीफा, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने के लगाए आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं ये लोग। ज्ञानेश के खिलाफ आज बेंगलोर से बिहार तक विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे तेजस्वी, कई और शहरों में भी धरना। अयोध्या के दौरे पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा अगर मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं तो यहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। और पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है सीबीआई, जांच एजेंसियों का करती है गलत इस्तेमाल, सीएम नायब ने कहा हर अग्निवीर को दे रहे हैं नौकरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है।
3: चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है।
4: है हिम्मत तो राहुल गांधी जी को पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए, और जिस प्रकार से खेल रहे हैं वो पूरी तरह से जनता देख रही है।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और आप चंडीगढ़ से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि आज चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब पंचायत भी चल रहा है, तो यहीं से हल्ला बोल का ये कार्यक्रम। लेकिन वही राजधानी दिल्ली में जो स्थिति है वो आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से, और दिल्ली ही क्यों पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जारी है, और इसी कड़ी में आज ये पूरा विरोध प्रदर्शन पहुंच गया राजघाट। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सांसदों को न्योता दिया, एक लंच का आयोजन किया गया, और वहां से फिर ऐलान हुआ कि हम लोग आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे, राजघाट जाएंगे। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता राजघाट में अंदर मौजूद हैं, जहां वो बापू को श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध प्रदर्शन एक तरह से दर्ज करा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीधा आरोप है, उनका ये कहना है कि अगर वाकई वोट को लेकर ये नाराजगी है, अगर वाकई इलेक्टोरल रोल को और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी है, तो राहुल गांधी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी प्रक्रिया से जीतकर देश की संसद में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तो आप देख रहे हैं कई दिनों से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी है, वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आते हैं कि धक्का मुक्की हुई, भिड़ंत हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ राहुल गांधी ने गलत व्यवहार किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम आपको सीधे अपने रिपोर्टर के पास भी ले चलेंगे। हमारे साथ मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी, और सुशांत मेहरा, दोनों राजघाट के आसपास से इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई दिनों से चल रहा ये हाई वोल्टेज एक्शन जो है विपक्ष के विरोध का, वो एक बार फिर से आज राजधानी दिल्ली में दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग ने आज राहुल गांधी का रुख राजघाट की ओर मोड़ दिया। राजघाट बापू की समाधि स्थली, इंडिया अलायंस की ओर से आज संदेश यही देने की कोशिश हुई कि कथित चुनाव धांधली की लड़ाई महज राजनीतिक नहीं लोकतंत्र के बुनियाद को बचाने की है। राजघाट तक संग्राम पहुंचाने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे दिन इंडिया अलायंस के सांसदों को लंच दिया। बुधवार को खड़गे के लंच और फिर प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन आज सांसद राजीव राय मौजूद थे। एकजुटता के साथ ज्ञानेश कुमार को हर हाल में हटाने का साझा संकल्प दोहराया गया।
2: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका। उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है।
3: जो सुदर्शन चक्र है वो सज्जनों की रक्षा के लिए है, सज्जनों को डराने के लिए नहीं है। शक्ति दुरुपयोग के लिए होती है, शक्ति दुरुपयोग के लिए नहीं होती है। आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं, प्रेम और जनमत से मिलता है।
0: राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति सरकार को लगातार घेरने की है, तो इस बीच बुधवार के प्रदर्शन पर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पर ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, नामदार भाई बहन दोनों मिलकर अब खुलेआम गुंडई और मारपीट का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी महिला पुलिसकर्मी पर कोहनी चलाती है, तो दूसरी तरफ स्मैश द पेट्रियार्की का ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी खुद ऑन कैमरा महिला पुलिस अधिकारी से धक्का मुक्की और बदसलूकी कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी, काम सिर्फ गुंडई।
5: एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से कानून तोड़ना, यह भारत की संस्कृति नहीं है। गरीब घर से आने वाले देश के पुलिसकर्मी, सामान्य परिवारों की हमारे माताएं, बहनें, बच्चियां जो पुलिस में सेवा कर रही हैं, उनके अधिकारों को भुला करके ऐसा कृत्य आप उन पर कैसे करने लगे? संविधान की दुहाई देने वाले संवैधानिक मूल्यों को कब जाकर के पढ़ेंगे? आज देश की जनता ये बात पूछना चाहती है।
0: बीजेपी ने आज पीएम मोदी के समर्थन में कश्मीरी मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बुधवार के इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान अंकित नाम के कांस्टेबल की भीड़ ने पिटाई की थी। उन्हें आई चोट के बाद अस्पताल में उनका इलाज कराना पड़ा है।
6: मेरी वर्दी को फाड़ दिया गया, पीछे से इस तरीके से खींचा गया, नाखून मारे गए, एक आदमी ने मेरे हाथ को काट लिया और मेरा मांस निकाल लिया। मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो। ये लोग टारगेट करते हैं, ये लोग टारगेट करते हैं।
0: एक वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र के साथ मारपीट सामने आई।
7: हम उनको एक एक करके बस की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन जब हम उसको खींचने लगे तो हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हमारे को पीछे से खींचा उन्होंने, कमर से पकड़ के, जैसे हम खींचते हैं तो हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और हम डिसबैलेंस होकर भीड़ में धक्का मुक्की होकर गिर गए।
8: पीछे से एक लड़का, एक आदमी आया था जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसने ऐसे कंधा हमें पीछे खींचा तो गिरा दिया तुम दोनों को, फिर उन्होंने पड़े हुए लात मारी, फिर सर को लात मारी है।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी की शिकार महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पाले अलग अलग लेकिन नारीत्व एक समान। प्रदर्शन के नाम पर ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के साथ ऐसे सलूक के आरोपों के बीच कांग्रेस ने बुधवार के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुलिसकर्मियों को राहुल पानी की बोतल देते दिख रहे हैं। इस बीच राहुल पर महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता के बीजेपी के आरोपों पर पार्टी ने बचाव किया है।
9: देखा आपने उस वीडियो को, दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को इस चीज को भी दिखाइए ना, एक ही एंगल से दिखा रहे हो, दूसरा एंगल भी दिखाइए।
0: आरोप प्रत्यारोप के बावजूद दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया अलायंस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हंगामे से पीछे नहीं हट रहा। गुरुवार को पटना में तेजस्वी यादव भी राजभवन तक मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया।
10: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
0: दिल्ली हो या पटना या देश का कोई और कोना, विपक्ष अब इसे नाक की लड़ाई बना चुका है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के नाम पर विरोध प्रदर्शन अभी शुरू हुआ है। कांग्रेस नवंबर तक ऐसे हंगामों का खाका खींच चुकी है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार मेहमानों को दिखा दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, दिख रहे हैं। और मनोज काका समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और मलुक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी जी, ये विपक्ष आज आपको सिखा रहा है कि सत्ता प्यार से मिलता है। और प्रदीप भंडारी जी, उनका कहना है कि सत्ता प्यार से, स्नेह से मिलता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं मिलता है। और अब तो मतलब राजघाट में जाकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, और आप लोग कई सारे आरोप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या ये जो लगातार एक प्रोटेस्ट विपक्ष का हो रहा है, सभी सांसद पहुंच पहुंच कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि एक दबाव आप लोगों की सरकार पर है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर? और अभी यूपी और पंजाब के क्रूशल इलेक्शंस है, पंजाब की भी पंचायत हम कर रहे हैं यहां।
11: अंजना जी, आप पंजाब में हैं और पंजाब में आज ही सुप्रीम कोर्ट का कल ही वर्डिक्ट आया है, जिसके हिसाब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने विरोधियों को चुनाव के अंदर वोट नहीं डालने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 50 वार्ड्स के इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी चल रही थी। इसको कहते हैं लोकतंत्र की डकैती। बापू अगर आज जिंदा होते तो जरूर राहुल गांधी को सद्बुद्धि देते कि अराजकता की आड़ में लोकतंत्र को तबाह मत करिए। और आज सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान के लिए कोई खतरा है वो राहुल गांधी। मैं बताऊंगा कैसे। जरा आपने कहा कि बिल्कुल प्यार से सत्ता आती है, तो ये राहुल गांधी जी ये पकड़ते हैं महिला पुलिसकर्मी को, जो एक ऑन ड्यूटी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अपराध है, ये देखिए कैसे पकड़ते हैं। फिर तीसरी बार पकड़ते हैं, फिर महिला पुलिसकर्मी राहुल गांधी को कह रही रुको राहुल गांधी रुको, फिर भी राहुल गांधी उनको धक्का देने का प्रयास करते हैं। ये होता है असली गुंडागर्दी की दुकान और गुंडागर्दी की राजनीति। अब मैं अंजना जी, आप इतनी सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ये इलेक्शन कमिश्नर का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला अगर 1 लाख की भी भीड़ सड़क पर राहुल गांधी ले आए, 500 की भी ले आए, 1000 की ले आए, सुप्रीम कोर्ट तो तथ्य के आधार पे सब जुडिस मामले का फैसला करता है। तो ये सड़क से अचीव क्या करना चाह रहे हैं? तीन ही चीज हो सकती है। एक, या तो इनको अपने केस के ऊपर विश्वास नहीं है, इनको पता है कि जैसे इनका महाराष्ट्र का केस बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था तो ये फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए इनका केस सुप्रीम कोर्ट में वीक है। दूसरा, या तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने परिवार को समझते हैं, या तीसरा ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए 50 पूर्व जस्टिसेस ने ये लिखा है कि भाई ये इंटिमिडेशन का तरीका है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। तो भाई कोर्ट का फैसला सड़क से थोड़ी होगा, कोर्ट का फैसला तो कोर्ट से होगा। तो रील मेकिंग अगर राहुल गांधी को करनी है तो मैं राहुल गांधी को मुबारक देना चाहता हूं कि रील मेकिंग कॉम्पिटिशन में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को पीछे छोड़ दिया। पर इससे वोट नहीं मिलने वाले राहुल जी, इससे जनता का समर्थन नहीं जीता जाएगा। और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है नहीं है, यह भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको? यह मेरा एक छोटा सवाल है। और 5 सेकंड में अपनी बात अंजना जी, हम तो अभी सत्ता में आए हैं, परंतु 1962 से लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार तमिलनाडु के अंदर नहीं है, उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी की पिछले 20 सालों से सरकार नहीं है, यूपी की आप बात करें 1989 से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो तब से लेकर अभी तक क्या कांग्रेस पार्टी की सरकारें वोट चोरी करती आ रही थी, या उनका इलेक्शन कमिश्नर कमीशन बिका हुआ था इसलिए कांग्रेस की यूपी में सरकार नहीं बनी? परिवार जनता का विश्वास खो चुका है, इसलिए अब उसने अराजकता का सहारा ले लिया, ना कि लोकतंत्र का।
0: अखिलेश जी अब आप जवाब दीजिए इस बात का। भाई नितिन नवीन तो सीधा कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही गलत तरीके से चुनाव हुआ है तो राहुल गांधी इस्तीफा दे।
12: देखिए अंजना जी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने मत संहार किया इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। हमने अपने सबने नरसंहार सुना था, एक कुछ आतताई राजा होते थे, उसी प्रकार से आज के जो हमारे आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने मत संहार किया है। और इन बातों को उन्हीं के त्रिसदस्यीय चुनाव आयुक्तों में से दो ने ये सारे खुलासे किए हैं, वो भी रिटर्न में किए हैं, 14 बार किए हैं, बताया है कि चुनाव आयुक्त किस तरह से तानाशाही रवैये से इसे चुप हो जा मेरे भाई, बदतमीजी मत करो, अपनी बारी आएगी तो बोलना मेरे भाई। हाँ भाई प्लीज प्लीज शांत रहो मेरे भाई। एक तो कटघरे में है चुनाव आयुक्त, सवाल होता है चुनाव आयुक्त से, दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बीजेपी उनके पक्ष में, मीडिया में आती है बीजेपी, यही तो रिश्ता है, इसी कारण से तो सड़कों पे आज लोग हैं। जब संसद में न्याय नहीं मिलेगा तो जनादेश जनता सड़क पे आएगी और सड़क पे
0: लेकिन ये जो वीडियो बार बार बीजेपी दिखा रही है, मैं भी आज तीसरी जगह पर हूं, दोनों एक साथ बोलिएगा तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो वीडियो प्रदीप भंडारी दिखा रहे हैं और हमने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाई है, भाई जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, क्या आपको लगता है? और ये आरोप बीजेपी लगा रही है उनके साथ गलत व्यवहार का, उस पर आप पहले एक जवाब दे दीजिए ताकि ये मामला तो आगे बढ़े।
12: अंजना जी देखिए
0: ऑन स्क्रीन दिखा भी रहे हैं, एक बार मौसमी और सुशांत को भी दिखा दीजिए, मौसमी और सुशांत के पास इसके बाद फौरन चलेंगे। अखिलेश जी पहले बात पूरी कीजिए इस पे। हाँ
12: मेरे बोलने में तो हर कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है, बीच में अपना एजेंडा लेके आ जा रहा है अपनी बात रखने का, थोड़े 1-2 मिनट हमें भी समय दें। हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है उससे हम नहीं भटकेंगे, बीजेपी भटकाने का प्रयास कर रही है आप लोगों के सहयोग से, हम उन बातों पे नहीं जा रहे हैं, न जाएंगे, सबको पता है।
0: अखिलेश जी एक सेकेंड उनकी आवाज नीचे कीजिए। अखिलेश जी देखिए दो बातें, जब पुलिस की मतलब ज्यादतियां जो अलग अलग जगहों पर हुई, उन्होंने छात्रों के आंदोलन में किया या किसी दूसरी जगह गया, तब भी हमने उस पर सवाल किए, आज अगर ये वीडियो आया तो इस पर भी सवाल होगा। तो ये सहयोग या अयोग वाली ना पुरानी थ्योरीज को आप रखिए सर, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए बराबरी से, है ना। एक बार आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी राजघाट से निकले हैं। मैं आपका जवाब पूरा लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से चलते मौसमी, क्या अब मतलब उन्होंने अंदर में जाकर श्रद्धांजलि दी, पूजा की, उसके बाद से वो लोग निकल गए हैं गाड़ियों से या फिर अभी ये मार्च चलेगा, क्या जानकारी है दिखाएं और बताएं।
13: नहीं देखिए, इनको अनुमति 6 बजे की बात की नहीं थी अंजना, और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वो सब यहाँ से निकल गए हैं। आप देखिए ये तस्वीर आप देख रही हैं राजघाट के बाहर किस तरीके से, एक तरीके से ट्रैफिक पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल हो गया है, क्योंकि अभी सिर्फ राहुल गांधी खड़गे निकले हैं, बाकी सांसदों को अभी निकलना बाकी है। आप देखिए यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, ये बात करते हैं अगर आपका अनुमति टाइम हो तो मैं बताती हूँ। देखिए चन्नी से लेके राजा वॉरिंग और तमाम सांसद
0: बिल्कुल
13: कुछ इस तरीके से बाहर इस रास्ते से निकल रहे हैं, ऊपर दिखाइए आलोक, उधर। हाँ जी हाँ, ये देखिए ये विजुअल्स दिखाइए। तो ये देखिए अंजना, मैं ये कह रही हूँ कि 3 दिन से ये चल रहा है, और आज उधर देखिए काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो ओतप्रोत है, उत्साहित है कि कांग्रेस पे तमाम आरोप लगते थे और कांग्रेस पे लगता था, कहा जाता था कि सड़क की लड़ाई नहीं लड़ती, और अब आप देखिए हमारे राहुल गांधी लगातार 3 दिन से सरकार और चुनाव आयोग पर प्रेशर बना रहे हैं। तो एक तरीके से जो धरना पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की और उनका जो आक्रामक तेवर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे धरने को एम्प्लीफाई कर रहा है।
0: बिल्कुल, और अब क्या देखिए लगातार कुछ दिनों से मौसमी, शाम में आप सड़क पर रहती हैं और कभी मैं स्टूडियो में रहती हूँ, आज चंडीगढ़ से लाइव कर रही हूँ क्योंकि आज चन्नी साहब को भी आना था, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था लेकिन वो सभी वहां पर व्यस्त हैं। लेकिन क्या इस प्रदर्शन का जो एक तरह से प्रदर्शन का प्राइम टाइम रोज चल रहा है, अच्छा, सीरीज चल रहा है कुछ दिनों से आज, लेकिन लग रहा है कि पहले ही समापन हो जाएगा। बात कीजिए सांसदों से,
13: लाइव है। अब आपने चन्नी साहब का अंजना आपने चन्नी साहब का नाम लिया, आलोक जी इधर आ जाइए, तो हम लोग लाइव पे हैं चन्नी साहब, और अंजना ये कह रही थी कि आपके साथ उनका था रूबरू हुए पर ये होना था वहां पे, चंडीगढ़ में इंतजार कर रही थी, पर यहाँ पे आप बताइए कि क्या देखने को आपको मिला, राहुल गांधी और सारे इंडिया ब्लॉक के नेता है, क्या आप लोग क्या करना चाह रहे हैं?
14: माफी चाहता हूं, पहले तो मैं वहां पहुंच नहीं सका क्योंकि यहां जरूरी हो गया था आना, इसलिए मैं वहां मिस करना पड़ा। हम गांधी स्थल पे जाकर आए हैं, जब तक वोट काटने बंद नहीं होते, वोटों का हक महफूज नहीं होता लोगों का, जब तक ये लोग मशीनों में गड़बड़ी करना बंद नहीं करते, हमारी शांतिपूर्वक लड़ाई चलती रहेगी और हम लड़ेंगे। ये हमारे पे FIR करें, ये हमें मारें, ये हमें मार ही डालें, हम लड़ने से नहीं हटेंगे।
13: कोई सवाल है अंजना, क्योंकि प्रमोद तिवारी भी यहाँ से आ गए, अगर चन्नी साहब से कोई सवाल है तो आप बताइए, तो हम एक बार पूछ लेते हैं। तो ये लड़ाई आप लोग, आपको लगता है चुनावी मुद्दा भी,
0: तो आगे की क्या रणनीति है, अब ये पूछिए कि, और ये मार्च के आज भी चलेगा, शाम में भी चलेगा,
14: तो वो लड़ेगा और लड़ना भी चाहिए। धन्यवाद
13: जी। जी देखिए, कह रहे हैं कि लड़ना भी चाहिए। प्रमोद तिवारी जी, आप बताइए, क्योंकि एक पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, अंजना भी कह रही है कि आगे क्या आप लोग इसी तरीके से धरना देते रहेंगे?
15: सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल है भारत के संविधान को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की। ये जन जन का विश्वास है और परिस्थितियां भी बता रही है कि ज्ञानेश प्रकाश ने 13 करोड़ वोट काटे, ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13 करोड़ से ज्यादा वोट काट कर कुछ स्थिति ऐसी कर दी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया।
13: ये आप लोग लड़ते रहेंगे आगे भी। अभी राष्ट्रपति, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी से आप लोग ने समय मांगा है और लगभग 15 से 20 नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे कल।
15: देखिए, मैं साफ बताऊं आपको, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है अलग बात है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं
13: समय मांगा है कि नहीं।
15: लोकतंत्र हम लाए, कांग्रेस लाई है, इंडिया अलायंस में शामिल लोग लाए हैं, तब भी ये अंग्रेजों के साथ थे, आज भी ये अंग्रेजों के बताए राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
13: शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंजना, देखिए ये खबर भी आ रही है कि राष्ट्रपति से समय मांगा है इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने, तो कल शायद ये रणनीति होगी कि जाके राष्ट्रपति से मिले, उनको ज्ञापन दे। बहरहाल यहाँ पे तमाम नेताओं के जाने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ जारी है। और ये देखिए, ये मैं कह रही थी कि ये सबसे, आज अभिषेक बैनर्जी भी मौजूद थे और आज राजीव राय भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व हुआ। तो एक तरफ ये बदलाव था, दूसरा ये काफी लंबा स्ट्रेच था और दिल्ली पुलिस ने ये अनुमति दी इनको कि आप 4-5 किलोमीटर की पूरी यात्रा निकाले, तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो जो टकराव की स्थिति कल देखने को मिली आज नहीं मिली।
0: बिल्कुल, तो ये भी अपना एक तरीके से, सुशांत आप भी वहां पर मौजूद हैं, जल्दी से एक बार नजारा दिखा दीजिए और कोई सांसद मिले तो बात कीजिएगा एक स्ट्रैटेजी में, क्योंकि बीते दिन ये चर्चा हुई कि भाई नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया नहीं बुलाया, उस पर जयराम जी ने पोस्ट भी किया। आज ये सुनिश्चित किया गया है कि हर पार्टी का प्रतिनिधित्व हो।
16: देखिए अंजना, आज पुलिस ने भी स्ट्रैटेजी जो है वो बदली है। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम सांसदों के जाने का सिलसिला जो है वो अब धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब स्ट्रैटेजी है जो है वो बदलेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वो शांतिप्रिय ढंग से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो वो करेंगे। यानी मकसद साफ है, कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर रही है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से, ये राजघाट की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज पिछले 2 दिन से जिस तरीके से पुलिस और कांग्रेस नेताओं और तमाम विपक्षी दलों के बीच में झड़प देखने को मिल रही थी, किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, बीजेपी ने भी उसको ट्वीट जो है वो किया, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस और नेताओं के बीच में जिस तरीके का टकराव देखने को मिला था, आज पुलिस नहीं चाहती थी कि इस तरीके का टकराव देखने को मिले। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच जो है वो दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया, राजघाट जाने की परमिशन दी गई। हालांकि अंजना, अगर ये परमिशन राहुल गांधी अगर वो जंतर मंतर जाने के लिए कहते या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर जाने कहते तो शायद आज ये नजारा नहीं होता। आज कहीं ना कहीं विक्ट्री का साइन बनाते हुए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो बसीस से नजर आए कि उन्होंने जो अपना वादा किया राजघाट पहुंचने का वो पहुंचे भी। हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो सांसद यहां से निकल रहे हैं उनसे भी जो है वो हम बातचीत जो है वो करें। दीपेंद्र हुड्डा तमाम यहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी जो है वो बातचीत जो है वो करें। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं दीपेंद्र हुड्डा से। यहाँ पर आप देखिए कि हम चाहेंगे कि अब आगे जाने की इजाजत जो है वो मिले, आगे जब पहुंचे मैडम आगे आने। अंजना देखिए दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे और अभी थोड़ी देर पहले जब दीपेंद्र हुड्डा से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, दीपेंद्र जी लाइव पर आज तक पर क्या आगे की रणनीति की, अब कांग्रेस किस तरीके से पूरे आंदोलन को लेकर
17: देखिए रणनीति यही रहेगी जब तक देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। और न्याय कब होगा? जब चुनाव आयोग निष्पक्ष हो देश में। अगर देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो देश की जनता किसी सरकार से कितनी नाराज हो जाए, कोई सरकार कितनी विफल हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग से मिलीभगत करके वो सरकार मैनेजमेंट से सत्ता में रह सकती है जैसे भाजपा रह रही। ऐसे में प्रजातंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? आज हम प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रजातंत्र का मतलब देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा नहीं होता, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती और जब तक ये विश्वास देश के लोगों को नहीं मिलता कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, भाजपा के रबर स्टैंप कठपुतलियां नहीं बैठी वहां, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।
16: बीजेपी अब राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग रहे हैं आप लोग,
17: ये कौन सी अराजकता है? ये सरकार अराजकता फैला रही है, ये सरकार अराजक सरकार है। पहले दिन हम चुनाव आयोग से मिलने जाना चाहते थे, वो मात्र 250 विपक्ष के सांसद, हमें रोका गया कि चुनाव आयोग से आप नहीं मिल सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं जा सकते। किस कानून के अधिकार से रोका गया? क्या देश के चुने हुए विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग की बिल्डिंग में नहीं जा सकते? कौन अराजक हुआ? सरकार रोका गया हमें जबरन। दूसरे दिन हमने कहा कि ये रोका गया है, गलत है, इसीलिए हम जंतर मंतर बैठ के उस पर विरोध करेंगे, धरना देंगे। हमें जंतर मंतर जाने से रोका गया, किसने अराजकता फैलाई? आपने देखा किस बर्बरता से कांग्रेस के तमाम नेताओं को निशाने पे लिया गया, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सबको। किसने अराजकता फैलाई? सरकार ने। तो ये सरकार स्वयं अराजकता फैलाने में विश्वास रखती है।
16: क्या आगे भी ये प्रदर्शन की कल की रणनीति क्या रहने वाली?
17: देखिए अभी तक तो हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद ही इस्तीफा दिलाओ और कानूनी कार्रवाई करो, मगर हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारे संघर्ष को और धार मिलेगी। अभी तक तो याचना कर रहे थे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा।
16: दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पे कहते हैं।
0: चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और लाइव ये बातचीत दीपेंद्र हुड्डा से करने के लिए उनको भी आज हरियाणा कॉन्क्लेव में आना था, लेकिन ये सभी नेता इस वक्त वहां पर डटे हुए हैं और ये कर रहे हैं। जल्दी से अखिलेश जी, हालांकि आपके नेताओं के एक एक सांसद से मुझे लगता है अभी मौसमी भी बात करी, मौसमी थोड़ा सा सुना दीजिए।
18: अधिकार खत्म कर दिए गए तो ये देश के साथ बहुत बड़ी बेवफाई और बड़ा सितम ढाया है उन लोगों ने ढाया है।
13: अंजना देखिए, रामपुर के सांसद हमारे साथ हैं और यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी आज हिस्सा ली थी, सॉरी सर अभी हम लोग लाइव पे गए हैं, तो क्या आपको अखिलेश यादव जी ने, अध्यक्ष जी ने खुद बोला कि आज जाके लंच में भी हिस्सा लो और पूरी तरह से?
18: माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से ही साथ हैं, कोई ऐसा वो नहीं, शुरू दिन से हम लोग साथ हैं। हम ऑल इंडिया रेडियो में जब बैठे थे तब भी हम थे और आज भी थे और उससे पहले भी थे, कोई ऐसा वो नहीं।
13: कल कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, कल आप लोग नहीं आए थे साउथ इंडियन खाना?
18: नहीं नहीं, जाहिर सी बात है कि एक बड़े उसमें वो ऐसी कोई वो नहीं थी मैं समझता हूँ, लेकिन सब लोग साथ में हैं, पूरा इंडिया एलायंस साथ में, एक साथ है।
13: अच्छा इंटरेस्टिंग ये है अंजना कि इमरान प्रतापगढ़ी, ये जरा नीचे करिएगा शीशा नीचे करिएगा, एक इंटरेस्टिंग ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पे बैठे हैं और साथ में सर भी साथ में जा रहे हैं, तो दोनों सपा कांग्रेस एक ही गाड़ी में सवार है, अभी कैसा रहा?
19: पूरा विपक्ष एकजुट है। मीडिया जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है या जो सरकार ने जो कल जब लंच कब जब लंच में नहीं आ पाए, कोई लड़ाई नहीं, लंच में नहीं आ पाए थे, आज आए लंच में, पूरा विपक्ष एकजुट है इस सरकार के खिलाफ, राहुल जी की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट है और जब तक ज्ञानेश कुमार जी जाएंगे नहीं प्रदर्शन चलता रहेगा।
13: तो यहाँ पे देखिए सपा कांग्रेस दोनों एक साथ एक गाड़ी में जा रही है अंजना, और इस बात के मायने काफी ज्यादा है। इमरान मस सूद साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको बोल दो शीशा नीचे करेंगे।
0: चलिए अब जल्दी से, धन्यवाद आपका मोहिबुल्ला नदवी रामपुर से एमपी, और उधर आपने इमरान प्रताप गढ़ी को भी सुना दिया, तस्वीरें दिखाते रहिए। जल्दी से अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, हालांकि आपके कई सांसद बोल चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए बात पूरी कीजिए, उसके बाद से मैं तुरंत आ रही हूं। प्रदीप जी,
12: अंजना जी,
0: मनोज का
12: जी, अंजना जी, जब तक मत संहारक मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश में बैठा रहेगा, लोकतंत्र का कोई भी जीवंत सिपाही कैसे घर बैठ सकता है, यही प्रश्न है। और अब सब जगह से प्रूफ हो चुका है, चुनाव आयुक्तों ने कहा, दो चुनाव आयुक्तों का कहना मतलब कि बहुमत से कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी के को भी इन लोगों ने झूठे में लपेटा कि हमारे जो फॉर्म सिक्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसको वेट किया था, वो भी सारे चली गई। आज देखिए, आज का गांधी राहुल गांधी राजघाट गया, एक गांधी ने अंग्रेजों को भगाया, इस आज के अंग्रेजों के अवशेषों को भी जाना होगा, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी जाना होगा। ये जितनी भी सरकारें बन रही हैं आज के तारीख में बीजेपी के, ये कोई जनादेश से नहीं बन रही हैं, ये ज्ञानेश आदेश से बन रही हैं, ये कोई सब इलीगल सरकारें बीजेपी की बन रही हैं।
0: चलिए आपकी इसी लाइन पर जवाब ले लेते हैं, वो कह रहे हैं ज्ञानेश के आदेश से बन रही हैं, जनादेश से नहीं बन रही हैं। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, फिर मैं काका जी के पास जाऊंगी, मनोज जी के पास।
11: देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं वापस से कहूंगा कि प्रोटेस्ट आपको करना है, पर इस तरीके से महिला पुलिसकर्मी को राहुल गांधी पीटने का प्रयास कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये सेक्शन 132, 121, 121 टू बीएनएस के तहत आपराधिक धारा है। क्या कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक वर्दी में यूनिफॉर्म में महिला पुलिसकर्मी को इस तरीके से धक्का मुक्की कर सकता है? ये अराजकता है, जैसे हमने नेपाल और बांग्लादेश के अंदर देखी थी, जो राहुल गांधी करने का प्रयास करें, लोकतंत्र नहीं है, सबसे बड़ा लोकतंत्र के खतरा है। अब इन्हें बोला इलीगल है, तो मुझे बताइए अंजना जी, मैं तारीख नोट कर रहा हूं आपके शो पे, क्या डीके शिवकुमार रात तक रेजिग्नेशन दे देंगे क्योंकि इसी चुनाव प्रणाली के अंदर वो मुख्यमंत्री बने? क्या केरला के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे? राहुल गांधी सांसद का अपना बेनिफिट क्यों इंजॉय कर रहे हैं? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव सांसद का बेनिफिट क्यों इंजॉय कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। सुक्खू जी इस्तीफा दे दें, उसके बाद रेवंत रेड्डी इस्तीफा दे दें। ये सब जो अपने मलाई खा रहे हैं सत्ता की अलग अलग राज्यों में, ये क्यों नहीं है धरना में? क्योंकि वहां पे मलाई उसी व्यवस्था से खा रहे हैं और यहां धरना करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं वापस से कहना चाहता हूं भाई, कांग्रेस पार्टी तो 1962 से तमिलनाडु में सत्ता में नहीं है, ज्ञानेश कुमार 1962 में नहीं आए थे, बंगाल के अंदर 1977 से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, ज्ञानेश कुमार 1977 में नहीं आए थे, बिहार में कांग्रेस पार्टी 1990 से मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं है, उड़ीसा में 2000 से नहीं है, मध्य प्रदेश में 2003 से नहीं है, गुजरात में 1995 से नहीं है, महाराष्ट्र में 2009 से नहीं है, त्रिपुरा में 1988 से नहीं है, झारखंड में कभी बना ही नहीं, तो ये सब क्या करेंगे भाई? अरे परिवार ऊपर नहीं होता, लोकतंत्र ऊपर होता है। और मुझे बताइए, अगर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ डिसीजन लेना है या उनके पक्ष में लेना है, आप कौन होते हैं अखिलेश जी? राहुल गांधी की पर्सनल बपौती नहीं है लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस इतना वीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर घबराए हुए थे, दीपक मिश्रा के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाने का काम कांग्रेस ने कहा था ना, जो कांग्रेस पार्टी कोर्ट को ना छोड़े, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को ना छोड़े, जो कांग्रेस पार्टी जनता को पीटे, आज तो जनता को पीटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये गुंडागर्दी राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ से इस देश का लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने देंगे, अराजकता नहीं फैलाने देंगे, ये समझ लीजिए अखिलेश जी। आपके हिसाब से लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से लोकतंत्र चलेगा। जितना ही करना है, 500 क्या, 600 क्या, 1000 क्या, अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है।
20: जी अंजना जी, देखिए कितना दुर्भाग्य।
0: मनोज काका जी, अखिलेश जी इसके बाद बोल लीजिएगा, क्योंकि मनोज काका जी की भी बात आए, और बीते दिन तो नहीं लेकिन आज हमने दिखाया है, आपके दो दो साल राजीव राय जी भी लगातार थे और नदवी जी भी वहां पर मौजूद हैं। अब सवाल यही है कि इससे आगे का रास्ता क्या है, आप लोग चाहते क्या है कि क्या हो, मतलब क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि अब वो तो एक तरह से अपनी बात रखते हैं कि भाई आप भी इस्तीफा दे दीजिए ना, जहां जहां आपकी सरकार बनी हुई है, इस पे आकर बात अटक जाती है।
20: देखिए ये किस तरह के तानाशाही भरी बात करी जा रही है, बात जवाबदेही की हो रही है तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, आप मलाई खा रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी का कोष जो 2014 से पहले 700 करोड़ रुपए का था, आज 12000 करोड़ रुपए का है, तो ये मलाई नहीं खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड और एडीआर की रिपोर्ट है कि देश के उद्योगपतियों से 85% चंदा ले लिए, तो ये मलाई नहीं खा रहे। आरएसएस का पूरा कार्यालय पूरे देश में बन रहा है, जो अनरजिस्टर्ड संस्था है, तो ये मलाई नहीं खा रहा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब 23 तारीख को एक रिपोर्ट आई और जब आप सबने डिबेट करना शुरू किया कि फॉर्म सिक्स में बदलाव क्यों किया गया, बिना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अनुमति के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक नोट बदला तो वैलिड है, उसको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, हमने कोई ऐसी अनुमति नहीं दी, आपने बिल्कुल अवैधानिक कार्य किया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लॉ मिनिस्ट्री को, इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि अगर आपने सर्वसम्मति से कोई फैसले नहीं लिया है तो हम देखेंगे और फिर हम आपके इलेक्शन कमिश्नर के जो अधिकार है उस पर हम रोक लगाएंगे। ये सवाल है, सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश में ये बात है, जब देश में ये बात है कि एक, अरे वो तस्वीर दिखाओ ना जो प्रज्वल रेवन्ना का नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, वो तस्वीर है कि नहीं तुम्हारे पास? प्रज्वल रेवन्ना का जो एक बलात्कारी और व्यभिचारी का नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं, वो तस्वीर है कि नहीं? वो तस्वीर दिखाओ ना, जल्दी से दिखाओ वो तस्वीर। तो आप पे सवाल ये है,
11: अंजना
20: जी ये बात है,

0: 76 सीटों पर जो एनडीए ने जीता उस पर 35,095 वोट ज्यादा गिने गए। तो ये सब धांधलियां हो रही हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर ये कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश का एक बड़ा वर्ग जो दलितों का है, जो पिछड़ों का है, जो आदिवासियों का है, वो देश के निर्वाचन की प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए। कुंदरकी में क्या हुआ, कुंदरकी में उस समय डीएम कौन था, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं समाजवादी पार्टी लगा, ये बेटियों के बड़े बहुत बड़े समर्थक है। एक बेटी को आकृति चौधरी को जब नोएडा में उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय ने न्याय दे दिया तो उस बेटी पर एनएसए लगा रहे, वो बेटी एक जेल में पड़ी रहे किसान की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी सरकार सॉलिसिटर जनरल को लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायालय चली गई। ये बेटियों पर बात करेंगे, बीएचयू की बेटी बेटी नहीं थी देश की, बीएचयू की बेटी देश की बेटी नहीं थी, जो 3000 लोगों के साथ जिसने व्यभिचार किया प्रज्वल रेवन्ना, वो सब बेटियां हमारी घर की बेटियां नहीं थी। किसी भी बेटी के, चाहे वो पुलिस में हो चाहे कोई भी, किसी भी बेटी का अपमान करने का हक किसी राजनीतिक नेता को नहीं, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे अपोजिशन हो। वो जो बात है, अंजना जी मैंने कोई इंटरप्शन नहीं करा है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे हितों का ध्यान रखेंगी।
1: मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को भी बोलने का अधिकार है। मनोज काका जी, आप तो समाजवाद पर बहुत अच्छा बोलते हैं, समझते हैं, आपके पास गायत्री प्रजापति हैं, उनके पास कुलदीप सेंगर, तो सब पार्टियों का वही हाल है इस मुद्दे पर। तो इस मुद्दे पर तो आप लोग जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा। जल्दी से एक प्रतिक्रिया मुझे मलुक नागर जी से लेने दीजिए, तो समय समाप्त हो जाएगा। मलुक नागर जी, आज ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट्स में भी देखिए मामला चल रहा है, अदालतों में चल रहा है ना, अदालत ने भी नोटिस दिया है ना भाई चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, किस मुद्दे पर दिया है, फॉर्म 6 में जो एनेक्शन लगाया गया था उस मुद्दे पर। क्या ये जो विपक्ष का एक तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन है, उसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक बात तो तय है कि एसआईआर में कई सारी, जिसको वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कह रहे हैं, अरे भाई तो ये आपका काम है, आप चुनाव आयोग हैं, डिसएनफ्रेंचाइज करना आपका काम नहीं है, आपका काम है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्टोरल रोल का हिस्सा बने। हाँ, जो नागरिक नहीं है उनको आप हटाइए।
2: सोचने वाली बात ये है कि प्रदर्शन के लिए ये पिछले 3 दिनों की जो तारीख थी ये क्यों रखी गई। एक तो ये है कि 25 साल नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सेवा करी, और इतिहास में 1913 में लेजिस्लेचर कलकत्ता में शुरू हुआ, 2021 में दिल्ली आया, 1947 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 47 से 52 तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और 1952 में पहली बार देश की संसद पार्लियामेंट शब्द आया, 2026 में आज खड़े हैं। तो एक भी व्यक्ति टेलीविजन पे बैठा हुआ ये कोई बता दे कि 4 बार लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री, फिर 3 बार लगातार बैक टू प्रधानमंत्री, उनका वो सेलिब्रेशन ना हो, देश में मैसेज ना हो, ये तो ये तारीखें तय करी गई इसलिए ताकि मीडिया फोकस होके इनकी तरफ आ जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये संविधान की बात करते हैं और अगर ये गैर कानूनी चुनाव हुए की बात करते हैं तो फिर ये लोग, इनके मुख्यमंत्री कैसे हैं, इनके मंत्री कैसे हैं, जहां जहां सरकारें हैं, और इवन यहां पे अब जो प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है वहां सांसद के अधिकारों का प्रयोग करके संविधान की कॉपी लेके हाथ में,
1: थोड़ा सा बीजेपी वालों के लिए भी छोड़ दीजिए, इस बात बीजेपी वालों को बोलने दीजिए। मतलब ये क्या तर्क है कि प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 25 साल का सेलिब्रेशन ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं? कुछ भंडारी जी के लिए भी छोड़ दीजिए ना, कुछ भंडारी जी बोलेंगे। भंडारी जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आपको इस बात पर घेर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में, और देखिए हाल में ऐसे कई मुद्दे हुए हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर भी फेजेस देखा गया बीजेपी के रिएक्शन में, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिनायल टू एक्सेप्टेंस, हम सुधार कर रहे हैं, हम पेपर अब एयरफोर्स के जरिए पहुंचाएंगे, और वहां से लेकर फिर जब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ तब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। क्या इस मुद्दे पर भी आप समझने में देरी कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बात तय है कि चाहे वो मुंबई का विरोध प्रदर्शन हो, और 10 अक्टूबर को तो आप देख रहे हैं सीजेपी फिर से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाला है।
3: अंजना जी, मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, कि इस देश के लोकतंत्र में जिसको विश्वास है संविधान में, वो मुझे बताएं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो क्या सड़क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के को दबाव बनाने का प्रयास विपक्ष कर रही है? विपक्ष को, कांग्रेस को पता है कि उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना वीक है, इसीलिए माहौलबाजी

0: कर रही है भाई। बंबई हाईकोर्ट के अंदर भी इनने का केस खारिज हो गया था, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त दीपक मिश्रा के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाने का प्रयास करा था, उसमें भी ये विफल हो गए। और बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली लेके गए, क्या बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइमा फेसी ऐसा नहीं कर सकते। मैं वापस से कहूंगा, अगर सीईसी के खिलाफ होता दिक्कत तो जाके द्वाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर वीटो कर सकते थे सीईसी के डिसीजन को। महिलाओं को पीटते हो तुम जाके सड़कों के ऊपर, महिला पुलिसकर्मियों के साथ में धक्का मुक्की करते हो, युवक को पीटते हो, ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता करा रहे हो। अराजकता के आधार पे देश का लोकतंत्र नहीं झुकेगा। और जाके जो खुद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेते हैं समाजवादी पार्टी वाले, वो समाजवाद की बात करेंगे क्या? फोटो की बात करते रहते हो सवाल का जवाब दो। 1960 से सरकारें नहीं आई है, 1960 से चीफ मिनिस्टर नहीं आई है, असली लुटेरे अखिलेश यादव को बोलो रिजाइन करे इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे दम है तो ऊपर चैलेंज करो, अखिलेश यादव का व्यवस्था खराब है,
1: अखिलेश जी मैं लौट रही हूँ अखिलेश जी बयालीस 42 जजेस ने कहा है कि ये एक प्लान्ड कैंपेन है चुनाव आयोग को बदनाम करने का, और वो समर्थन में उतरे हैं चुनाव आयोग के, ये फॉर्मर जजेस हैं कोर्ट के। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि पूरा देश आज चुनाव आयोग के खिलाफ है, पूरा देश आज ये चाहता है, पूरा देश आज वो चाहता है, ये एक तरफा, क्योंकि अगर 42 जजेस फॉर्मर जजेस सामने आ रहे हैं डिफेंड करने, तो भाई वो भी
2: सरकार बीजेपी की वहां तक सरकार डिफेंड कर, जी बीजेपी की तो पूरी सरकार डिफेंड कर रही है, उसमें क्या आश्चर्य है अगर 42 जज डिफेंड कर रहे हैं। तो अंजना जी मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी स्वयं इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं देना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि प्रेस नोट में अपने चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं। जब वो खुद स्वीकार रहे हैं तो हो सकता है वो इस्तीफा दे करके सरकारी गवाह बनना चाहते हो। एक प्रेस नोट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ कुछ बीच मेरे भाई आप लोग की बफलाहट बता रही है, अभी आप लोगों को दो चार 8 महीने और बचे हैं, प्लीज मेरे भाई चुप हो जाओ, बौखलाहट यार यहाँ पर चैनल पर बैठे हो, भंडारे में नहीं बैठे हो, भंडारी जी भंडारे में नहीं बैठे हो, चुप रहो, चैनल पर बैठे हो, व्यवहार से बात करें ना हम लोग, आप लोग व्यवहार से बात कर लें, आपस में एक दूसरे के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी, सुनने वाला भी सोचेगा कि हाँ हम लोग भी सज्जनता से बात करें। देखिए बात दरअसल में ये, चुनाव आयोग ने खुद अंजना जी ने स्वीकारा है कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और कोई पॉलिटिकल आदमी का आरोप का छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने ही चिट्ठी लिख करके रिटर्न में स्वीकारा है कि इन्होंने इस तरह से तानाशाहियां की हैं। जब
1: प्रदीप जी इस पर दो लाइन में जवाब, वो कह रहे हैं आप जिस चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं, ब्लैंकेट डिफेंस देते हैं, उसमें उन्होंने खुद प्रेस नोट में कहा है कि भाई मतभेद थे या फिर जो भी था, उन्होंने खुद उसको एक्सेप्ट किया है, कुछ गलतियों की बात, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात तो खुद ही करता है। जल्दी से सिर्फ दो लाइन है, टाइम खत्म हो चुका है।
0: वही अंजना जी, वही प्रेस नोट कहता है कि एसआईआर यूनानिमस डिसीजन था, 2,80,00,000 डेड वोटर्स का समर्थन करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा कुठाराघात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं फॉर्मर, क्या कांग्रेस पार्टी को लगते हैं ये इसके भी खिलाफ कांग्रेस वोटेगी? परिवार ऊपर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा इससे सड़क के बहाने पे सत्ता में नहीं आ पाओगे प्रधानमंत्री जी।
1: इसी के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आप देखिए 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
2: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
3: इट्स अ माय वे।

0: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले रहा हूँ, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रूँ सारा।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तुम थमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
10: कैसो फास्ट 27%,
9: इनो 9.2%।
11: गड़बड़ है।
12: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
19: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: यार लोन भूल गया। मैरी
14: इट्स
6: जस्ट अ गुड बैंक ना।
14: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
14: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
12: There's nothing small about
6: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.
5: In association with
8: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं, मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
0: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
0: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है, इसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दुहार। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम। हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है।
2: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
0: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है। ममता बनर्जी तो कोलकाता से रवाना भी हो चुकी है। कहती हैं अभिषेक वही हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। प्रदर्शन की इस जोर आजमाइश धक्का मुक्की में चोटें दोनों तरफ के लोगों को लग रही हैं। अब पुलिस वाले, खास करके महिला पुलिसकर्मी भी इसका शिकार हो रही है। प्रदर्शन में हिंसा की एक तस्वीर और दिखी है। कश्मीर से आए इस युवक की पहले तो प्लेकार्ड छीनकर फेंकी गई, फिर जवाबी नारेबाजी के साथ कांग्रेसियों ने इसकी पिटाई कर दी। दिल्ली के बाहर लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव, मीसा भारती प्रदर्शन कर रही थी। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन था तो बेंगलुरु में सीजेपी 10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन से पहले वार्म अप कर रही थी। सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: और मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानेश के इस्तीफे को लेकर राजघाट पर जुड़ा विपक्ष। राहुल गांधी बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से लेकर पटना तक SIR पर हल्ला बोल। विपक्षी प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। राहुल पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं ये लोग। अयोध्या से योगी को अखिलेश की चुनौती। कहा, दम है तो खुद यहां से लड़े चुनाव। सीएम बीजेपी के सवाल, यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए SP अध्यक्ष। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले मुख्यमंत्री मान। चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है CBI। सीएम सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। शो की शुरुआत ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के साथ, जहां आज विपक्ष के नेता राजघाट पहुंचे और गांधीगिरी के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। राजघाट के गेट पर भारी सुरक्षा बल और समर्थक मौजूद थे। वहां शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन के बाद सभी नेता वापस रवाना हो गए हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया ब्लॉक के नेता कल भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कल विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल के प्रदर्शन को लेकर क्या रणनीति है इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।
1: तीसरा दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ, गांधी जी के चरणों में आकर कोई स्ट्रेंथ दिखाता है। यहाँ तो स्ट्रेंथ लेने आते हैं, हम तो यहाँ स्ट्रेंथ लेने आए। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता महात्मा गांधी के सामने।
2: तो क्या मैसेजिंग है इसके थ्रू?
1: मैसेजिंग कुछ नहीं है, हम गांधी जी से आशीर्वाद लेने आए कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करें और सफल हों। ज्ञानेश को सद्बुद्धि दो कि वो इस्तीफा दे दे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सद्बुद्धि दो कि गलत काम छोड़ दें, कभी जिंदगी में एक सही काम कर लें। यही आशीर्वाद लेने आए और क्या लेने
3: आए। क्या स्ट्रैटेजी यही थी कि भाई हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, गांधी के चरणों में जाकर कह रहे हैं कि सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और इस तरह के जो है चुनाव धांधली करके न जीते जाएं, जो वोट जबरदस्ती काट दिए गए वो वापस जोड़े जाएं, हैं, और आम जनता को वोट का अधिकार मिले। एक नागरिक का अधिकार होता है कि उसे वोट देने का अधिकार, ये सरकार छीन रही है चुनाव आयोग के जरिए। तो चुनाव आयोग जो सरकार की जो मिली भगत है उसके विरोध में था। ये
4: अंतर को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल पहले संविधान बनाया, उस संविधान के द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई। चुनाव की व्यवस्था के द्वारा हजारों साल के गुलामी के बाद वोट का अधिकार दिया। जब वोट के अधिकार की वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और वोट चोरी करके गद्दी प्राप्त करते हैं, उस दृष्टिकोण से माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज इसका इस बार गांधी जी की सभा स्थली पर आकर इस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम की शुरुआत की है। थैंक यू।
0: आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी सिंह के पास, जो राजघाट पर मौजूद हैं। मौसमी, परसों आकाशवाणी भवन में प्रदर्शन किया राहुल गांधी ने और कांग्रेस के सांसदों ने, कल प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, आज राजघाट, और आपके सूत्र बता रहे हैं कि कल क्या पता पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन करे, तो क्या रणनीति कल रहेगी?
5: देखिए मारिया, मुझे जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब कि वहां से कंफर्मेशन नहीं आया है कि राष्ट्रपति भवन मिलने के लिए दरख्वास्त डाली गई है। हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाएं, अगर वो टाइम उनको मिले, और वो पूरी इस जो वोट चोरी की कहानी है, उनकी तरफ से जो दलीलें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो एक ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति को दे। तो और ये भी कहा जा रहा है कि इसको और बुलंद और मजबूत करने के लिए आप देखिए कि पिछले 3 दिन में आज 7 बजे ही ये पूरा धरना और ये एक तरीके से बस यात्रा जो थी वो रैप अप हो गई है। तो पहले दिन काफ़ी आक्रामक और दिल्ली पुलिस और विपक्ष के नेताओं और खासतौर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच हमने नोकझोंक देखी, जिसने कल बहुत ज़्यादा तीव्रता पकड़ी और लगातार तमाम ऐसे वीडियो आए जिसपे आरोप प्रत्यारोप हुआ। लेकिन उस तरीके का अग्रेशन या उस तरह का कन्फ्रंटेशन आज देखने को नहीं मिला। 5 किलोमीटर के सफर में बस यात्रा की परमिशन भी दे दी गई, पुलिस ने बंदोबस्त भी किए थे और तमाम कार्यकर्ता हजारों की तादाद में बस के साथ चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये लगातार 3 दिन हो गए हैं, तो 4थे दिन कुछ नया करने के और प्रेशर बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का द्वार खटखटाया जा सकता है, ये मुझे जानकारी मिल रही है।
0: और मौसमी, इंडिया ब्लॉक ने और खास करके कांग्रेस ने सीएसी से भी मुलाकात करने के लिए अर्जी दी थी, उसका क्या हुआ?
5: देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस अर्जी की सुबह हुई है, क्योंकि सारे इंडिया ब्लॉक के सांसदों से मुलाकात करना एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम की जो वेन्यू है वो अपने साथ से चुन नहीं सकते, एक प्रोटोकॉल है चुनाव आयोग का, ये प्रेस नोट में जताया और बताया गया है, और एक अपॉइंटमेंट मांगने का भी एक प्रोटोकॉल है। तो जो बातचीत दिल्ली पुलिस और उस दिन आकाशवाणी भवन में मध्यस्थता के जरिए हुई वो बात आगे बढ़ी नहीं है अभी, तो ये देखना होगा कि क्या वो दरवाज़ा कुछ खुलता है, कुछ चुनाव आयोग की तरफ से आता है, क्योंकि इस तरह की फॉर्मल, मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मल सबमिशन दिया गया है ज्ञानेश कुमार सीईसी से मिलने के लिए, तो वो अभी तो ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। दूसरे ठंडे बस्ते में इम्पीचमेंट वाला भी जो पूरा पूरी रणनीति है, अभी धरना पॉलिटिक्स प्रेशर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है, और उसकी वजह ये भी है कि 10 तारीख जो है सीजेपी का आंदोलन है, कल का विंडो है इंडिया ब्लॉक के पास कि क्या वो इस आंदोलन में किस तरह से इसको तीव्रता देते हैं, और वो विंडो जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं करना चाहेगा विपक्ष।
0: ठीक है मौसमी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज लगातार 3रे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे, अब सवाल ये है कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
6: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
7: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
6: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है, और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
8: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
6: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
9: Basically, we asked for an appointment for 7, 8, 9. Today is 8. We'll wait for tomorrow also.
10: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
6: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
11: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है।
6: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
12: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
6: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई। जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: प्रोटेस्ट की तस्वीरों को लेकर भी सियासत तेज है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा रही है। मामले पर FIR भी दर्ज हुआ है।
6: प्रोटेस्ट में हंगामे की तस्वीरों पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पर ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उनमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी से बात करती नजर आ रही हैं और राहुल गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को अमर्यादित तरीके से पकड़ते नजर आते हैं। इन मामलों में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, नामदार भाई बहन दोनों मिलकर अब खुलेआम गुंडई और मारपीट का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी महिला पुलिसकर्मी पर कोहनी चलाती हैं, तो दूसरी तरफ स्मैश द पेट्रियार्की का ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी खुद ऑन कैमरा महिला पुलिस अधिकारी से धक्का मुक्की और बदसलूकी कर रहे हैं।
13: एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से कानून तोड़ना ये भारत की संस्कृति नहीं है। गरीब घर से आने वाले देश के पुलिसकर्मी, सामान्य परिवारों की हमारे माताएं, बहनें, बच्चियां जो पुलिस में सेवा कर रही हैं, उनके अधिकारों को भुला करके ऐसा कृत्य आप उन पर कैसे करने लगे? संविधान की दुहाई देने वाले संवैधानिक मूल्यों को कब जाकर के पढ़ेंगे? आज देश की जनता ये बात पूछना चाहती है।
6: अब पुलिस वाले, खासकर महिला पुलिसकर्मी भी प्रोटेस्ट को लेकर अपनी आपबीती सुना रही हैं।
14: वहाँ पे पब्लिक क्या है कि हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, हमारी वर्दियाँ फाड़ रही है, हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मीडिया में ये चीज दिखाई जा रही है कि हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं।
15: हम उनको एक एक करके बस की तरफ लेके जा रहे थे लेकिन जब हम उसको खींचने लगे तो हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं लेकिन हमारे को पीछे से खींचा उन्होंने, कमर से पकड़ के, जैसे हम खींचते हैं तो हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और हम डिसबैलेंस होकर भीड़ में धक्का मुक्की होकर गिर गए।
16: पीछे से एक लड़का, एक आदमी आया था जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसने ऐसे कंधा हमें पीछे खींचा तो गिरा दिया तुम दोनों को, फिर उन्होंने पड़े हुए लात मारी, फिर सर को लात मारी है।
6: बुधवार के इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान अंकित नाम के कांस्टेबल की भीड़ ने पिटाई की थी। उन्हें आई चोट के बाद अस्पताल में उनका इलाज कराना पड़ा है।
17: मेरी वर्दी को फाड़ दिया गया, पीछे से इस तरीके से खींचा गया, नाखून मारे गए, एक आदमी ने मेरे हाथ को काट लिया और मेरा मांस निकाल लिया। मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो। ये लोग टारगेट करते हैं, ये लोग टारगेट करते हैं।
6: इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी की शिकार महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पाले अलग अलग लेकिन नारीत्व एक समान। प्रदर्शन में हिंसा की एक तस्वीर और दिखी है। कश्मीर से आए इस युवक का पहले तो प्लेकार्ड छीन कर फेंका गया, फिर जवाबी नारेबाजी के साथ कांग्रेसियों ने इसकी पिटाई कर दी जिसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है।
12: सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देख रहे हैं वो सिर्फ एक बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को वी द पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं है।
6: उधर जवाब में कांग्रेस ने बुधवार के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुलिसकर्मियों को राहुल पानी की बोतल देते दिख रहे हैं। इस बीच राहुल पर महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता के बीजेपी के आरोपों पर पार्टी ने बचाव किया है।
18: दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को इस चीज को भी दिखाइए ना, एक ही एंगल से दिखा रहे हो, दूसरा एंगल भी दिखाइए।
6: बहरहाल प्रदर्शन की तस्वीरों को लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों के साथ आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो।
0: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। वहीं सीजेपी ने भी आज बेंगलुरु में अपना मोर्चा संभाला।
6: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। यहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
19: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
6: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
20: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए, चूंकि लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है। और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
6: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी की सियासत की, जहां अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन ना करने पर सवाल खड़े कर रही है।
21: श्री अखिलेश यादव,
22: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
23: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
22: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
23: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश पर तंज किया है, जहां समाजवादी पार्टी की तुलना मगरमच्छ से की है।
1: इस बात को लेकर के जब समाजवादी पार्टी युवाओं की नियुक्ति की बात आज करती है, तो मुझे लगता है जैसे कोई मगरमच्छ पानी में बैठकर पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ वहां पर शांति का उपदेश दे रहा हो, तो ये शांति के उपदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहना।
0: 7 तक में वक्त है, अभी ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
24: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
24: स्मॉल Privilege Savings Account, Garima Savings Account, Maxima Business, Edge Current Account, Business, Maxima Business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
4: Okay.
24: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: सर, गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
5: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
6: गड़बड़ है।
7: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: प्यार प्यार उमदाबाद सर, एक बार दो ठुमका लगाने पर
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
6: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
7: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद,
8: रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं।
9: पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
10: इट्स माई वे।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
19: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
20: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
21: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज कई कड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल थे। जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी अधिकारियों के हाथ में जो गिरफ्तारी के अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया गया है। आसान रजिस्ट्रेशन को भी आसान करने की कोशिश की गई है।
5: Further, goods can be intercepted only on specific intelligence and with the authorization by at least a joint commissioner level officer. So any random GST officer cannot go stop a vehicle and say, come on, show it to me. This prevents arbitrary checks by GST enforcement wings that affect the movement of goods from one state to another.
4: सात तक में बस इतना ही, आगे देखिए विशेष।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
2: गैसो फास्ट 27%,
1: इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: tera pyar pyar pyar ulta baat sir ek do tum thumka lagane bas.
3: mere paas ek idea hai.
2: kya?
3: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye. rungta tmt bar se jo bana hai,
4: ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है.
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है.
4: कौन सी बनानी है?
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
12: सोच बदलो और बैंक भी.
13: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो.
14: एक दो, एक श्राम.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुँच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद पांच दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे नाना पाटेकर की, जिनका आज 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हो गया। सुबह नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक वो अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। अंतिम संस्कार गोवा में होगा। हिंदी सिनेमा में बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जिनके डायलॉग पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना पाटेकर ऐसे ही कलाकार थे। एक्टिंग ऐसी करते थे कि किरदार जीवंत हो जाए। उनकी एक्टिंग के बहुत सारे शेड्स थे और हर शेड को वो बखूबी निभाते थे।
7: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
8: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ। करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
9: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
8: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
7: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
8: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था।

0: दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
1: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
0: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगाई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
1: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
2: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
0: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
3: कमांडर,

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: ஆட்கள்.
1: பிரணாந்த து,
2: कहां है चुनाव
3: जी? 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
2: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गाँव मां सड़क ना, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
3: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग

0: अमर है।
1: दवा सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
0: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
2: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
1: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
3: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
3: क्या है?

0: मेरा मैं समझता हूँ प्रायोरिटी पंजाब में होनी चाहिए, और ये यही आम आदमी पार्टी ने बोला था चुनाव से ठीक पहले, मुझे याद है इसी चंडीगढ़ में, कि 3 महीने में सरकार बनाने के बाद हम ड्रग्स खत्म कर देंगे, 3 महीने में।
1: अमरिंदर सिंह जी ने भी कहा था कि हम 1 महीने में खत्म कर देंगे, जब बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की सरकार हटा रहे थे वो।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सबने क्लेम किया था, हम इतने कामयाब नहीं हो सके मैं मानता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी इज एन एब्जेक्ट फेलियर। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, लुक एट द डेटा, नेशनल डेटा, स्टेट डेटा, सीजर्स, पैसे पकड़े गए, नंबर ऑफ पीपल हु एडिक्टेड, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या हो रहा है, एंड आजकल जो वीडियोस देखता हूं मैं, दैट ज़ॉम्बी ड्रग, मतलब वो जहर है, अभी छोटी मोटी ड्रग्स नहीं है, दीज आर ऑल केमिकल ड्रग्स विच आर बींग ब्रॉट ऑन फ्रॉम द बॉर्डर। तो सरहद की रक्षा करने किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की। अब इन्होंने 50 किलोमीटर ले लिया है बॉर्डर, उसके बाद भी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ड्रग्स रोक नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूं कमी भारत सरकार की है, और जो ड्रग्स पंजाब की सीमा पे पहुंच गया उसके बाद वो गली नुक्कड़ पिंडों तक कैसे पहुंच रहा है? अगर प्रशासन पुलिस नेताओं की सहमति नहीं है, सवाल ही नहीं है कि होम डिलीवरी हो रही चिट्टे की, ड्रग्स घरों पे आपको फोन करके पहुंच रहा है, आपका कोक पेप्सी बाद में पहुंचेगा पर ड्रग्स पहले पहुंच रहा है। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं इसको अलाउ किया है। करप्शन के बहुत केसेस हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चीफ मिनिस्टर के यहाँ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और पूरा एविडेंस आ रहा है।
1: ये पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए चुनाव से पहले।
0: अरे भाई हाई कोर्ट कह रहा है ना, कोई ये कांग्रेस बीजेपी तो नहीं कह रही ना? अगर हाई कोर्ट के आदेश पर आपके मुखिया आपके ऑफिस पे छापे पड़ रहे हैं, और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि फाइल्स के बहुत स्टैप हैं, बहुत सारे चैट्स हैं, तो जांच तो होनी चाहिए और टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। करप्शन के इश्यू पर ये पूरा पंजाब जानता है। अगर आपको खुद अपने पोस्टर लगाने पड़े, कट्टर ईमानदार, खुद के फोटो लगा के खुद के पोस्टर लगाने पड़े, आप समझ लीजिए क्या हाल है। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, परसेप्शन ये है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए क्राइम के, करप्शन के और पॉलिटिकल करप्शन के, और ये लोग इसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक जिस उम्मीद के साथ सरकार बनी थी, एक चेंज लेके आएंगे, एक मौका देके देखो, वो सब मौका देख लिया और पूरा बहुमत दिया, लेकिन 4.5 साल बाद आई थिंक पीपल आर लेफ्ट डिसअपॉइंटेड।
1: हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन सचिन जी अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिसपे आम आदमी पार्टी आपके साथ है, यानी इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध। हालांकि आपके साथ वो बैठ नहीं रहे, उससे दूरी पर ही उनका धरना है, लेकिन इस मुद्दे पर आप दोनों एक साथ एकमत हैं?
0: देखिए, ये मुद्दा जो आपने बताया, ये आप और भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, ये देश का मुद्दा है। अब ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया कि राहुल गांधी जो बहुत सालों से बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग एट द डायरेक्शंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये प्रूव हो गया है। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के दो कमिश्नर्स हैं उन्होंने खुद कहा है कि भाई हमारे से बिना पूछे काम हो रहा है। और कानून कहता है ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स या तो वो यूनैनिमिटी से कुछ पास करें या मेजोरिटी से, एक बंदा नहीं कर सकता। और उन्होंने SIR हो, सारे जितने निर्णय लिए हैं खुद के दम पर लिए हैं, जो ERO होता है श्वेता जी, द इलेक्ट्रल रिटर्निंग ऑफिसर, शायद SDM होता है वो, उसके पास पावर होती है किसकी वोट जोड़नी है, किसकी काटनी है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया था बहुत पहले से, ताकि तबड़ा देश है, और दिल्ली में बैठ के इलेक्शन कमिश्नर गांधी जी को क्या पता कि पौंडीचेरी में या नागालैंड में कौन वोटर है कौन नहीं है। उन्होंने IT सिस्टम से सबको बाहर रखा, सिर्फ उनका कार्यालय, उनका खुद का व्यक्तिगत ऑफिस वोट ऐड और डिलीट कर रहा है, और ये रिकॉर्ड पे सारी बातें। ये तो वोट चोरी है, तो ये बीजेपी ने पहले करी थी नोटबंदी, अब कर रहे हैं वोटबंदी। 13 करोड़ 30 लाख लोगों के आपने नाम वोट से निकाल दिए, आबादी बढ़ रही है, SIR के बाद हमेशा वोट बढ़ते हैं, इस बार वोट कट रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ और ये एक्सपोज होने के बाद अब इनके पास छिपने को जगह नहीं बची है, और जब 250-300 सांसद जाके बोलते हैं हमें मिलना इलेक्शन कमिश्नर से, मिलने को तैयार नहीं है। आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बसों में ठूस के थानों में डाल दो, ये कहां का लोकतंत्र है?
1: इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमसे मिलने का समय नहीं ले रहे हैं, वरना हम सबसे कोई भी इलेक्टेड।
0: इलेक्शन कमीशन खुदा है क्या? वो राष्ट्रपति से बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है इस गणतंत्र में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र की रक्षा करना। ये इंस्टीट्यूशन एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, 70 साल से अलग अलग पार्टियों ने इसको पोषित किया है, सेफ गार्ड किया है इसकी, इस इंडिपेंडेंस को, इसकी सैंक्टिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, आपने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। और आप मिलने की बात कर रही है, अगर 200-250 सांसद कह रहे हैं भाई हमें आपसे मिलना है, तो मिलते क्यों नहीं है?
1: नहीं तो वो क्या वो उस धरना स्थल पर आकर मिले?
0: अरे ऑफिस जा रहे थे
1: तो वो बोले कि
0: सारे सांसद ऑफिस जा रहे थे, आप शायद दिल्ली में नहीं होंगे, पूरी बैरिकेडिंग कर सांसदों को ऐसे धक्के मार के लाठी चार के भगा दिया जैसे वो कोई मुलजिम हो, और अगर वो मिल लेते तो क्या पहाड़ टूट जाता, सबसे नहीं मिलते, 10 से मिल लेते, मिलेंगे कैसे, आंख कैसे मिलाएंगे, जब उनकी जो चोरी पकड़ी गई है और सरेआम पकड़ी गई है, जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी क्राइसिस में है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, और देश भर में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो नौजवान लोग आज चिंतित हैं अपने भविष्य के बारे में, वो जान रहे हैं कि अगर हमारे वोट का अधिकार है, हमारे को संविधान में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे बड़ा वरदान दिया था वोट का, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, आप उस वोट के अधिकार को अगर छीन रहे हैं

0: अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
1: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
2: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: ஓஐபிசி.
1: बीजेपी ने ये वीडियो एक्स पर साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का। बीजेपी ने लिखा है, राहुल गांधी देश को पितृसत्ता को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। यहाँ कैमरे पर वो एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। राहुल गांधी का दोहरापन अब छिपा नहीं है, ये कैमरे पर साफ दिख रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, महिला पुलिसकर्मी के साथ राहुल गांधी जी का व्यवहार, सत्ता के लालच में आदमी कैसी हरकत कर सकता है खुद समझिए। बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो की जांच कर रही है। इस वीडियो में महिला पुलिस अफसरों, महिला कांस्टेबलों और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हमले की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा में FIR दर्ज कर सकती है। इससे पहले आकाशवाणी भवन में धरने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसे राहुल गांधी मेडल बता रहे हैं।
2: मेरे पास 45 FIR हैं। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, खासकर राहुल गांधी की गुरिल्ला रणनीति से। 6 अक्टूबर के घटनाक्रम पर गौर कीजिए। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन मार्च कर रहे थे। उन्हें रोकने का पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में जाकर धरने पर बैठ गए। कल भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष के सांसदों के साथ जनपद के पास लंच का आयोजन और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और वो तैयार थी।
3: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
1: दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। 21 जुलाई को भी ऐसा ही नजारा सामने आया था, जब नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस को चकमा देते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?

0: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है, इसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दुहार। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम। हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है।
2: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
0: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है। ममता बनर्जी तो कोलकाता से रवाना भी हो चुकी है, कहती हैं अभिषेक वही हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। प्रदर्शन की इस जोर आजमाइश धक्का मुक्की में चोटें दोनों तरफ के लोगों को लग रही हैं। अब पुलिस वाले, खास करके महिला पुलिसकर्मी भी इसका शिकार हो रही है। प्रदर्शन में हिंसा की एक तस्वीर और दिखी है। कश्मीर से आए इस युवक की पहले तो प्लेकार्ड छीनकर फेंकी गई, फिर जवाबी नारेबाजी के साथ कांग्रेसियों ने इसकी पिटाई कर दी। दिल्ली के बाहर लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव, मीसा भारती प्रदर्शन कर रही थी। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन था तो बेंगलुरु में सीजेपी 10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन से पहले वार्म अप कर रही थी। सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद आज गांधी समाधि पर विपक्षी प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से लेकर बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने के लगाए आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं लोग। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती। कहा, दम है तो यहां से खुद चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। बीजेपी ने पूछा, यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम, आन चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है सीबीआई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। कहा, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। और जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए हुई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पिछली बार पंजाब चुनाव से पहले प्रीति और मैं ही थे आपके साथ स्टेज पर मौजूद, अरविंद केजरीवाल जी भी थे उस समय, और एक सवाल जो सबसे ज्यादा एक आरोप के तौर पर आप पर लग रहा था उसके साथ मैं शुरुआत करती हूं। ये कहा जा रहा था कि भगवंत मान सीएम बन भी जाए तो क्या होगा, सरकार तो दिल्ली से चलेगी, लेकिन आज आपको लोकादा सीएम कहा जाता है यहां पर। मुझे लगता है कि अब आपके विरोधी भी इस बात को मान चुके हैं कि सरकार तो पंजाब से ही चल रही है, भगवंत मान इज इन कंट्रोल।
1: देखो, पिछली बार जब हमने इलेक्शन से कुछ पहले इंटरव्यू किया था, अरविंद केजरीवाल साहब भी साथ में थे, तो तब तक तो विपक्ष ये भी कह रहा था बिजली फ्री नहीं कर सकते। पहली कैबिनेट में हमने जुलाई 2022 में बिजली फ्री कर दी 600 यूनिट, कोई नीला कार्ड पीला कार्ड नहीं उसमें, सबको। अगर किसी के घर पे दो एसी हैं वो इस हिसाब से एसी को चला ले कि दो महीने में उनको उसका जो मीटर की जो है रीडिंग वो 600 से कम आ जाए तो उसका भी बिल जीरो है। 90% पंजाबियों के घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। फिर विपक्षी कहने लगे कि इनसे सरकार एक साल नहीं चलेगी, जब एक साल हो गया कहते दूसरा साल पूरा नहीं करेंगे, जब दूसरा पूरा हो गया कहते जी बस ढाई साल बस बीच में ही टूट जाएगी, तीसरा भी हो गया, अब चौथा भी हो गया, पौने पांच साल हो गए, अब ये कहने लगे 27 में नहीं बनेगी, वो भी बनेगी, फिर 32 में भी कहेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि फिर ये कह रहे थे कि महिलाओं को जो 1,000 रुपया और 1,500 रुपया जो सम्मान के तौर पे देना था वो दे नहीं पाएंगे, वो भी हमने शुरू कर रखा है, दूसरी किस्त उसकी चली गई है, 3-3 महीने के एडवांस देते हैं। तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई उनके पास कोई विजन नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सीधा तीनों पार्टियां बीजेपी अकाली और कांग्रेस भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान। तो फिर अगर सरकार दिल्ली से चलती है तो मुझे गालियां क्यों देते हैं, उनको पता है कि सरकार यहीं से चलती है और पंजाब सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चलती है, और जितना भी पंजाब सरकार ने काम किया चाहे बिजली के लिए पानी के लिए आगे हम बात करेंगे, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, तो पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है।
2: मान साहब, जब हम आ रहे थे ना एयरपोर्ट से, बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं आपका इको नारा भगवंत मान दोबारा, पर इस बीच में मान साहब आपने जो आप कह रहे हैं कि आपने अपने सारे प्रोमिसेस डिलीवर किए, अभी जो महिलाओं को जो आपने राशि प्रॉमिस की थी वो तो जुलाई में ही आई है, 8 महीने चुनाव के हैं, तो क्या इस पे बेस्ड है आपका कैंपेन के?
1: देखो, जो जो मैनिफेस्टो में गारंटियां दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स का कहा जाता है कि 5 साल में अगर आप आ गए हम ये स्कीम लागू कर देंगे, तो हमने मतलब वो लागू कर दी, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम ये कहें कि ये तो सिर्फ इलेक्शन तक की सीमित, बिजली फ्री करने का फैसला भी हम आगे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जल्दी हो गया, हमने थर्मल प्लांट खरीद लिया, हमारी पछवाड़ा में छत्तीसगढ़ में हमारी कोले की माइन चल गई, कोला हमारे पास आम हो गया, तो हमने बिजली फ्री कर दी और एक थर्मल प्लांट भी खरीद लिया, तो बजट के मुताबिक चलते चलते हमने देख के, तो पहले 1,000 रुपया क्या था सभी महिलाओं को, अभी एक एससी महिलाओं को दलित महिलाओं को 1,500 कर दिया, तो अब ये स्कीम जारी रहेगी हमारी तरफ से। तो
0: अच्छा, कोई ये आप क्यों कह रहे हैं, जब भी आप कहते हैं ये देंगे उसके बाद आप कहते हैं कि हम अगर चलेंगे अगला जो आएगा वो बिल्कुल नहीं देगा, क्यों डरा रहे
1: हैं? वो तो अनाउंस कर चुके हैं विपक्ष वाले, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है पैसे दे के उनको सर पे चढ़ा रहे हैं, तो लोगों के टैक्स का पैसा है, क्या 1,000-1,500 से क्या कोई अमीर नहीं होने वाली वो, लेकिन 1,000-1,500 मान सम्मान, ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि मैंने अपने बेटे की ट्यूशन के पैसे दे दिए, मैंने दुकानदार का उधार देना था उसने मुझे सामान देना बंद कर दिया था सौदा पत्ता तो मैंने उसके पैसे दे दिए, मैं अपने बच्चों के लिए आरओ वाटर का फिल्टर लगा लिया, मैंने अपने दोते के लिए पोते के लिए साइकिल खरीद के दे दी, छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको मान सम्मान देती हैं, और कोई इसमें मतलब अमीर होने वाली तो बात है नहीं ना। तो हमने एक अंदाजा लगाया है, सर्वे किया, पूरी स्कीम जो है चाहे हम आम आदमी क्लिनिक में दवाई फ्री है, फिर आपका बसों में किराया फ्री है, तो करके 1,82,000 पर फैमिली बचत हो रही है, 15,000 रुपये महीना। तो अगर आज के महंगाई के जमाने में किसी न किसी रूप में सरकार ने उन्हीं के टैक्स का पैसा उन्हीं को सड़कों के रूप में स्कूलों के रूप में आम आदमी क्लिनिक के रूप में दे दिया तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए?
2: मान साहब, आपकी सरकार ने अपने प्रॉमिसेस काफी डिलीवर किए हैं, 300 यूनिट बिजली, आपने अभी महिलाओं को भी जो राशि आपने प्रॉमिस की थी 1500 एससी एसटी और 1000 जनरल, आपने वो भी शुरू कर दिया। एक प्रॉमिस मान साहब, जब श्वेता और मैं इसी स्टेज पर थे, आपके साथ केजरीवाल जी भी थे, आप दोनों ने किया था कि हमको एक साल दे दीजिए, हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब, वो अभी तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है।
1: ये जो है ना, जो नशे का है, हमने पूरा होमवर्क करके उसका युद्ध नशे विरुद्ध हमने बहुत बड़े लेवल पे जो चल रहा है, हमारा पुलिस भी है उसमें, उसमें आम लोग भी हैं, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है, इसके लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है। लोगों में गांव गांव में कमेटियां बन गई हैं, अब शरेआम बिकने वाली बात तो पंजाब से खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो लुक शिप के चलता है काम है, उसके उस पर भी हम हर रोज मीटिंग करके, हर रोज स्मगलरों को पकड़ रहे हैं, हर रोज हमारी रिकवरी हो रही है, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ड्रोन की सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने पिछले दिनों नशा विरोधी एक यात्रा निकाली। बीजेपी किस मुंह से नशा विरोधी यात्रा निकाल रही है, पहली बात तो ये। 2017 से 2027 तक बीजेपी का यहां राज रहा अकाली दल के साथ, सबसे ज्यादा नशा उस समय जो है पंजाब में पनपने लगा। उसके बाद 3,000 किलो कांडला पोर्ट से पकड़ के लाए हैं पंजाब की पुलिस, 3,000 किलो ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से। गुजरात में किसका राज है? तीसरा बॉर्डर की 50 किलोमीटर की रेंज बीएसएफ के दायरे में आती है, तो बीएसएफ किसके अंडर आती है? अमित शाह के अंडर। तो यहां खत्म, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, गुजरात में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, पंजाब में अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, और उसके बाद आप यात्रा निकाल रहे हो। कितना रश हुआ, कहीं 10 बंदा, कहीं 15 बंदे, बस ये मतलब मुझे
0: मान सब।
1: और एक और आज तक की ही खबर है, आप निकाल सकते हो कि कैग की रिपोर्ट है कि गुजरात पुलिस ने कोर्ट में वो दिया है एफिडेविट कि 2200 किलो ड्रग्स जो है चूहे खा गए। आपके आज तक की रिपोर्ट है ये, 2200 किलो ड्रग चूहे खा गए। मैंने एक बार चूहे दिखा दो, कहते जी मर गए होंगे, मैंने कहा उनकी डेड बॉडी दिखा दो फिर, और क्या करें, मतलब 2200 किलो जो ड्रग है वो खुर्द बुर्द कर दी, कहां गई होगी। दिल्ली में भी नशा है, गुजरात में नशा है, राजस्थान में नशा है, हरियाणा में है, पंजाब को बस बदनाम करने के लिए रखा।
0: नहीं, लेकिन मुद्दा तो आपने भी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, अब देखिए जब अमरिंदर सिंह जीत कर आए थे तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार के विरुद्ध ड्रग्स को लेकर नाराजगी थी आम लोगों में, उसके बाद जब आप जीत कर आए तो आपने कहा कि यहां पर हम नशा मुक्त करेंगे।
1: नहीं नहीं, मैं
2: 6 महीने में और 1 साल में,
0: अगली पार्टी कह रही है कि अब हमको दो, बीजेपी कह रही, अमित शाह कह रहे हैं कि हम ड्रग्स मुक्त बनाएंगे अब पंजाब को।
1: वो तो अगली डेट दे गए ना, लोकसभा, अगली लोकसभा के आगे की डेट दे गए वो, 31 दिसंबर 2029, 3 साल उन्होंने मांगे हैं। मतलब इतना जितना प्रचार किया जा रहा है पंजाब में उतना नशा नहीं है, ये है तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन हम जितना प्रहार उस पर कर रहे हैं, उस नशे की सबसे बड़ी, उसको खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कल्चर हमने पंजाब में डेवलप किया, इस वक्त खेड़ा वतन पंजाब दिया चल रहा है, मतलब पूरे तहसील लेवल पे चल रहा है, 3 पीढ़ियां उसमें ग्राउंड में, शाम को देखना पंजाब के ग्राउंड जो है भरे होते हैं, 3-3 पीढ़ियां खेल रही हैं, 60 साल की उम्र प्लस की कैटेगरी में दादा, 40 साल की प्लस की कैटेगरी में उसका बेटा, और 20 साल प्लस की कैटेगरी में उसका पोता, मतलब 3-3 पीढ़ियां वहां खेल रही हैं, और हम स्पोर्ट्स को जो है इनकरेज कर रहे हैं ताकि अगले बच्चे जो हमारे वो बचे रहें किसी बुरी संगत से या इधर उधर। सो पंजाब में नशे के खिलाफ हम जंग जारी रखे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह सफल हो गए, लेकिन काफी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया।
2: मान साहब, क्योंकि अभी भी नशा एक प्रॉब्लम है, जो आपने खुद जब आप कैंपेन कर रहे थे बार बार हर रैली में आपने उठाया था, इस बार जैसे श्वेता ने बोला कि बीजेपी अपनी एक यात्रा निकाल रही है नशा मुक्त यात्रा, उसमें बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर उसका स्वागत अंडे और टमाटर से कर रहे हैं, आप वो रैली होने ही नहीं दे रहे हैं, वो यात्रा बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, जहां जहां वो यात्रा जा रही है राघव चड्डा जी और बिट्टू जी पर अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर पड़ रहे हैं।
1: देखो, ये आम आदमी पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती जी, तो उनकी करतूते हैं, उनकी करतूते ऐसी हैं कि बीजेपी को पंजाब में घुसने नहीं देते लोग, हम क्या करें इसमें। जब 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो उसके बाद किस मुंह से पंजाब में आएंगे बीजेपी वाले? जब खुद अकाली दल के साथ जो है गठजोड़ था, नशे उस समय डेवलप हुए, तो किस मुंह से कहेंगे कि हम नशा मुक्त कर देंगे? तो लोगों का विरोध तो झेलना पड़ेगा। तो वो तो
2: आपके वर्कर नहीं मार रहे अंडे टमाटर?
1: नहीं, हमारे लोग नहीं थे वो, तो मतलब जहां भी जाते हैं उनकी रैली में लोग नहीं आते, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लोग नहीं आते, हम रोकते हैं क्या? तो अभी अमित शाह आए थे जलंधर, क्या अनाउंस करके गए, मुझे गालियां दे के गए हैं। अकाली दल वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझे गालियां दे रहे हैं। तो मतलब इनका मुद्दा ही भगवंत मान रह गया, अब कोई और मुद्दा नहीं इनके पास, भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान। अभी मेरे कैंप ऑफिस में सीबीआई भेजी है, तो इसका मतलब तो आपको तो ज्यादा पता होगा, आपको तो बीजेपी के अंदर की बातें पता है कि
3: छापे बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं, पर
1: हैं
3: छापे बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं आप?
1: नहीं नहीं, मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ में हेमंत सोरेन पर ईडी का छापा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे जेल में, 3 महीने बाद इलेक्शन, ममता बनर्जी के सभी आसपास के जितने अधिकारी और उसके जो विश्वास पात्र नेता अभिषेक बनर्जी जैसे, उन पर ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, 2-3 महीने में इलेक्शन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को फर्जी शराब घोटाले में अंदर किया, 2-3 महीने में इलेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड, 2-3 महीने में इलेक्शन। राजस्थान में ऐसी रेड विपक्ष पर और 2-3 महीने में इलेक्शन। तो इसका मतलब जो कल परसों रेड हुई है हमारे कैंप ऑफिस में, जहां से कुछ नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस बात का अंदाजा हमें लग गया कि इलेक्शन टाइम पे आ रही है मेरे ख्याल में।
2: बट मान साहब, आप कहते हैं कि चुनाव आ गए तो सीबीआई तो आई जाएगी,
1: आएगी, ये आप आएगी, पहले आती है, ये उनका तरीका है जी, ये उनका इलेक्शन लड़ने का तरीका है।
2: पर मान साहब, इस बार सीबीआई किसी के कहने पे तो नहीं आई, ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने जांच बोली है सीबीआई की, तो कोर्ट ने जांच करवाई है सीबीआई की कि आपके खुद के ओएसडी की जांच हो।
1: कोर्ट में कौन गया था?
2: ऑर्डर तो कोर्ट से ही आया ना मान साहब,
1: ये भी आपको पता होगा अंदर की बात है कि कोर्ट भी है ना, कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना,
2: कोर्ट में
1: हम तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में तो रुके क्यों नहीं? वो सीबीआई के पास 15-15 साल के पेंडिंग पड़े केस, 15-15 साल से इंक्वायरी नहीं हो रही सीबीआई के पास। ये 15 मिनट में ऐसे लगता था जज साहब को ऐसे बोला हो, जल्दी जल्दी ऑर्डर डाउनलोड करके दीजिए सर, मैं जाना है, हमने जाना है, मतलब इतनी जल्दी क्या है? और क्या मिल गया वहां से? कुछ नहीं मिला, खुद भी कह के गए हैं जी कुछ नहीं मिला हमें, 20-25 हजार रुपए थे, वो भी पूजा रूम में पड़े थे, वो भी वापस करके गए हैं, जाके मोदी जी को कहा होगा सीबीआई वालों ने कि ऐसे घरों में मत भेजा करो, यहां कुछ नहीं मिलता ऐसे घरों में, तो सीबीआई का टाइम खराब हो रहा है, वो वाली बात है हमारे घरों की।
3: नहीं, अभी तो कांग्रेस ये कह रही है ना कि अगर अपने व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ऐसा नहीं, वो ईमानदार सीएम, ऐसे ही कहा जा रहा है बिना भगवंत मान के।
1: ये तो पंजाब के लोग जानते हैं, ये तो पंजाब के लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये वही बीजेपी है जो 60,000 करोड़ का इल्जाम लगाती है एक नेता पर और उसके बाद उसको बीजेपी में शामिल करवा के उसको डिप्टी सीएम बनाया जाता है महाराष्ट्र का। ये वही ईडी है जो अशोक मित्तल के घर पे रेड करती है 3 दिन लवली यूनिवर्सिटी में या उनके उनके गुड़गांव के बिजनेस में, वो बीजेपी में शामिल हो गया, उसके बाद अगले दिन उसको जेड सिक्योरिटी दे देती है। तो ये तो सीधी सी बात है, वो ईडी को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, अभी इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये तो पूरे बच्चे बच्चे छोटे बच्चे को भी पता है कि कैसे काम करते हैं वो, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सामना भी करना पड़ा, कर लें, जहां मर्जी छापे मार लें, जहां मर्जी ये इंक्वायरी कर लें, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, हम सामना करेंगे।
2: मान साहब, आपने अब खुद ही जिक्र कर दिया अशोक मित्तल जी का, तो जिक्र ये भी कर लेते हैं जो 7 MPs राज्यसभा आम आदमी पार्टी के छोड़ के गए, 6 तो आप ही की पार्टी में से थे, जो पंजाब यूनिट में से थे जो गए, तो क्या आपकी और पंजाब आम आदमी पार्टी की अपने MPs पे कोई पकड़ नहीं है कि 7 के 7ों में से 6 पंजाब से नॉमिनेट होकर गए थे और वो एक रात बीजेपी में?
1: पता क्या, ये डराने की इनकी रणनीति है, और 7 ने चलो ठीक है वो चले गए, किसी के बंदे के दिल की पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ उनका? उसके बाद ना तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर वाली टेबल पे बैठते थे ना, अब वो कॉर्नर वाली चेयर पे बैठे होते हैं, ठीक है ना। बीजेपी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती है, वो ट्रेन में आते हैं, ठीक है। बीजेपी तो बंदे खानी पार्टी है, बंदे खानी मतलब ये तो बंदे खाते हैं, मतलब देख लो, मैं गिनाता हूं मैं वैसे निकाह। नीतीश कुमार कहां गया? पार्टी भी खा गए, उसको भी खा गए। चलो जी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी खा गए, उसका चुनाव चिन्ह भी खा गए। शरद पवार की पार्टी भी खा गए, शरद पवार का पूरा खानदान ही खा गए। नवीन पटनायक उड़ीसा वाले, हमेशा इनका साथ देते थे पार्लियामेंट में, उनकी पार्टी भी खा गए, उनको भी खा गए। मतलब जो तो जिसके साथ भी इनका होता है थोड़ा बहुत। अब चिराग पासवान की बारी है, मैं बताता हूँ शरद लाल
3: जो बचे हुए हैं आपके, आप उनको डरा रहे
1: हैं?
3: जो आपके साथ अभी भी हैं उनको आप डरा रहे हैं, जाओगे तो ये होगा?
1: नहीं नहीं, मैं क्यों डरा रहा हूँ, ये हिस्ट्री पढ़ लो ना, इनकी हिस्ट्री पढ़ लो ना। ये तो मतलब बाद में पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। सिंधिया कहाँ गया? ग्वालियर का राजा था,
3: मंत्री है,
1: कहाँ मंत्री, किस चीज का मंत्री? एविएशन का मिनिस्टर बना दिया था। मैं गया, मैं क्या मोहाली से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू करवा दो? कहता जी मैं तो ये करवा नहीं सकता, मेरे अंडर तो आता नहीं। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर तो तुम हो? कहता जहाज तो सारे बेच दिए। मैं नहीं एविएशन मिनिस्टर हूं। बिट्टू को, एक हमारे पंजाब का भी खा गए, रवनीत बिट्टू। राजस्थान से एमपी बनाया, एमपी भी राज्यसभा में 2 साल के लिए बनाया, बस कि 2 साल में देखेंगे आपको, 2 साल में आपको हम निगल जाएंगे। रेल मंत्री बना दिया, रेल। मैंने कहा धूरी से संगरूर तक कुछ को या पंजाब से कुछ ट्रेनें चलवा दो। कहता जी मेरे अंडर तो आता नहीं। मैंने कहा आपके अंडर क्या आता है? कहता किसी रेलवे स्टेशन पर कोक वाली मशीन लगवानी है, कोई सीढ़ी वीढ़ी ठीक करवानी है। ये मंत्रालय देते हैं, ऐसे बंदे खाते हैं ये तो।
2: पर मान साहब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो तो आप कह रहे हैं किसको क्या पता मन में क्या है, पता नहीं चलता इसीलिए चले गए होंगे। राघव चड्ढा को एक वक्त था मान साहब, उसको नंबर 2 कहा जाता था पंजाब में, कि अगर मान साहब से मीटिंग नहीं है तो राघव चड्ढा से मीटिंग कर लो, इतना प्रोमिनेंट दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के भी खास थे, आपके भी बहुत क्लोज थे, आप दोनों उनकी शादी में भी गए थे। राघव चड्ढा आज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसे बिहेव करती है जैसे एक एक्स गर्लफ्रेंड है।
1: नहीं, इसका मतलब एक्स गर्लफ्रेंड गलत बिहेव करती है,
2: वो कह रहे हैं।
1: नहीं, वो लड़कियों को
2: वो ही कह रहे हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं।
1: नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड भी तो करते हैं।
2: हाँ हाँ,
1: नहीं ये महिला विरोधी बात नहीं कही उसने, इसको क्यों नहीं उठाते आप? उठाइए इसको, दंगल में आप दंगल शुरू कर लेते हो 5 बजे।
2: सीरियसली बताइए,
1: 5 बजे दंगल शुरू कर लेते हो, उसमें उठाओ बात।
3: लड़कियों को
1: क्या सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड गलत काम करती
3: है?
2: राघव चड्ढा का मन ऐसे कैसे बदल गया?
1: मुझे ये नहीं पता राघव चड्ढा गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, बताइए ना आप क्या है वो।
2: अब मान साहब ये तो सवाल तो का जवाब,
3: वो विश्वस्त है आपके,
1: हम उसको मान सम्मान दिया, आप खुद मानते हैं मान सम्मान दिया, उसको राज्यसभा में भेजा, सबसे छोटी उम्र का, वहां पे भी डिप्टी लीडर था वो। लेकिन अगर किसी से मान सम्मान ना संभाला जाए तो उसमें हम क्या करें? जो राजनीति में जो मिलता है ना उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगले की अपेक्षा, वो कहते हैं कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो मतलब ये आप देखते हैं कहां जाते हैं, क्या मंत्री बना दिया वो? आप भी कहते रहते हैं कैबिनेट में, आने वाली कैबिनेट में शायद राघव चड्ढा को मिनिस्टर बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता ये, पहले कुमार विश्वास भी ऐसे कहते थे।
2: मान साहब जो 6 MPs गए हैं, जाने से पहले किसी ने फोन उठाकर आपको बताया कि मान साहब टाटा बाय बाय जा रहा हूं?
1: नहीं, मतलब पता तो चल गया था 2-4 दिन पहले। 2-4 ने तो कहा भी था कि क्या करें सर, बिजनेस पे कह रहे हैं कि परिवार पे केस आएगा, अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो। जैसे ये पहले भी करवाते, महाराष्ट्र से करवाया था, जहां ये जो बंगाल के मुख्यमंत्री उनको भी तो ज्वाइन कराया बंगाल से सारे उसके 80 में से 60 फिर तोड़ लिए। मतलब इनका जुगाड़, बीजेपी भारतीय जुगाड़ पार्टी है। मतलब इधर से ले लो 10-15 इसके ले लो, 15 इसके ले लो, चलो जी करो, है ना, जो ये बन गया, जो बन गया बहुमत बन गया। जो जिनको पहले गालियां देते रहे उनको फिर बाद में सुरक्षा देते हैं।
2: हरभजन जी तो आपके खास थे, आपके क्लोज दोस्त रहे हैं, बुरा नहीं लगा आपको? बुरा नहीं लगा जब छोटा
1: पला होया लड़ नेड़े हो छुटिया। मैं इन जो 6 गए हैं उनके बारे में पंजाबी का एक शेर कह रहा हूं, भला होया लड़ नेड़े छुटिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी।
3: अच्छा, आपने अभी बंगाल का जिक्र करते हुए खुद अपने एक सवाल का जवाब दे दिया। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है, अब देखिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गए हैं, टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था उन्होंने, लेकिन एक आरोप जो आप लगाते हैं और आम आदमी पार्टी लगाती है बीजेपी पे, वो ये कि आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो कुछ मुद्दों के साथ हम यहां पर आपसे उन सवालों के जवाब चाहते हैं। सबसे पहला नाम जो है गुलजार सिंह, एक व्यक्ति जो कहता है कि ड्रग्स के दर्द को लेकर उसने आपके एक मंत्री की सभा में कुछ बोला और इस तरह का प्रेशर बना कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी।
1: देखो वहां पे वित्त मंत्री साहब गए थे, वित्त मंत्री साहब को उसने कुछ बताया, लेकिन वो आ गए, जो पहली वीडियो में ऐसा कोई नहीं था, गांव में उनका कोई कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, बहुत दुखद है ये। लेकिन इसका कोई इससे संबंध नहीं है कि हमने उसको कोई बोलने से दबाया या डराया या धमकाया। उस इलाके में वैसे भी नशे, संगरूर दिड़वा के इलाके में वैसे भी बहुत कम है, रेयर है। उसके बेटे की शिकायत थी, गांव वालों से पता किया, उसने पता नहीं किस बात को उसे दुखी होकर ये कर लिया। लेकिन इसमें हम आवाज दबाना या ये करना, हमने तो लोगों को सवाल करना सिखाया है कि सवाल करो नेताओं को,
3: क्योंकि उसमें प्रतिबस एक उसमें ये भी कहा गया कि अगर ऐसा सब कुछ सही था तो फिर जल्दबाजी क्यों की गई अंतिम संस्कार के समय।
1: किस बात की जल्दबाजी,
3: ये आरोप लगे थे उस समय
1: जल्दबाजी किस बात की,
3: उनकी जो क्रीमेशन है उसको बहुत जल्दी से कर दिया गया ताकि
1: परिवार की सहमति से हुआ, उनके बेटों की वीडियो आई है कि हम जो है सहमत हैं इस बात के लिए, तो इसमें तो हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते ना। हाँ, सुरक्षा वहां लगाई गई थी ताकि कोई और शरारती अंसर आके कोई इसको इसमें कोई खलल ना डाल दे।
2: मान साहब, आप कहते हैं कि आवाज नहीं दबाते, एक MLA सुखवीर, उन्होंने आवाज उठाई कि देखिए स्कूल में कम टीचर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक दूसरे MLA उन्होंने आवाज उठाई फ्लड के टाइम पर कि यहाँ पर कुछ फ्लड के टाइम पर रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनकी सिक्योरिटी कम कर ली गई। तो सवाल ये है मान साहब के, और छोड़िए आप अपनी पार्टी की खुद की आवाज दबाते हैं।
1: देखो, आप जो सुखबीर मैसर खाना की, ये पहली गलती नहीं थी, पहले 2-3 बार उनको वार्निंग दे चुके थे, जो उन वहां के लोगों से शिकायत आई थी कुछ जो ऐसी एक्टिविटी जो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी थी और डिसिप्लिन, जब किसी को कुर्सी नहीं देनी, किसी की कुर्सी नहीं लगानी, किसी को स्टेज पे नहीं आने देना, ऐसी बातें थी कि रोक रहे थे कोई और ना आए मेरे सिवा। और उनका जो सर्वे आया, सर्वे दिखाया कि आपका सर्वे ठीक नहीं है, सर्वे के मुताबिक पार्टी चलेगी, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस बात से वो नाराज थे कि मैं फिर बदनामी करूंगा, कर लें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अपने बंदों की आवाज को दबाते हैं, देश में सबसे पहले हमने हमारे हेल्थ मिनिस्टर का, हमारे पास एक स्टिंग आया कि वो कहीं से पैसे मांग रहे थे कुछ दवाइयों का ठेका अपने बच्चों को भांजों को दिलवाने, हमने उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एक और मंत्री की सिर्फ ऑडियो आई, किसी भी पक्ष को नहीं पता था, किसी मीडिया को नहीं पता था, हमने 3 मंत्री जो है हम इस टेन्योर में 3 कैबिनेट मिनिस्टर को हमने बाहर निकाल दिया, ताकि मतलब कोई ये ना कहे कि ये करप्शन के अगेंस्ट तो पार्टी बन के आई थी तो अब यही करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। हमने लिया एक्शन, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं अगर कोई गलत काम करता है या कोई एंटी पीपल काम होता है। यहां पे आप देख लो, धर्मेंद्र यादव का इस्तीफा लेने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए कितना बड़ा जो है जनता जो है वो इकट्ठी हुई दिल्ली में, तब जाके प्रेशर बना, तब जाके उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया। अभी ज्ञानेश कुमार का पूरा देश कह रहा है, क्यों मुझे समझ नहीं आती, जब भी कोई ईवीएम में गड़बड़ी का इल्जाम लगता है बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है। वो कहें कि हम तो मोदी की लहर से जीतते हैं, हमें क्या जैसे मर्जी वोट डलवा लो, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ईवीएम बिल्कुल सही है, नहीं ईवीएम ठीक है, वो ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाते हैं।
2: कांग्रेस का मान साहब कहना है, बस 2 घंटे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने साफ बोला है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पर जिस स्टेट को वो गवर्न करते हैं उनकी हदें खत्म होती हैं, वहां से उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म शुरू होती है, नहीं तो उनके स्टेट में ना प्रेस को फ्रीडम है ना कोई किसी को फ्रीडम है, ये कांग्रेस का चार्ज है।
1: तो अभी हमारी राजधानी में बैठे हैं, आपको फ्रीडम तो है, प्रेस को कभी नहीं फ्रीडम, आप जो मर्जी सवाल पूछ रहे हैं, मैंने किसी मंत्री की तरह या दूसरों की तरह आपसे सवाल मांगे भी नहीं तो 2 दिन पहले सवाल मांगते हैं वो कि कौन कौन से सवाल पूछे, फिर वो कटवाते हैं ये मत पूछना। मैंने आपसे सीधा आया, आपने
3: पर ये पार्टी से ऊपर मुझे लगता है ये भगवंत मान का
1: मुझे पता है ना, मैं
3: आप शुरू से नहीं करते थे ये चीज,
1: मैं कभी सवाल नहीं मांगता, मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे पास जवाब है ना, उनके पास कोई ना कोई कोई ना कोई बैगेज होता है।
3: लेकिन ठीक है, मैं अगला आरोप जो आप पर लगता है, और आपने चूंकि अभी जिक्र किया दिल्ली का जंतर मंतर वाले,
1: पंचायत पंजाब है ना प्रोग्राम का नाम,
3: लेकिन
1: आप आरोप पंजाब ही बना रही हैं इसके।
3: हम इसके बाद ब्रैकेट में डाल देंगे हम। भगवान मान जी, आपने कहा कि सवाल से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने दिल्ली में जंतर मंतर का जिक्र किया, आपकी पार्टी ने भी बहुत कहा कि देखो स्टूडेंट्स पर, प्रोटेस्टर्स पर कितना जोर लगाया गया, ताकत का प्रयोग किया गया, गलत तरीके से पीटा गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सेम चीज होती है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, पर यहाँ के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, क्यों?
1: नहीं, लवली यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो पहले यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस ने इंटरफेयर नहीं किया, मैनेजमेंट के साथ झगड़ा था, मैं उसको बिल्कुल मॉनिटर कर रहा था उसको, बीइंग ए होम मिनिस्टर। तो जब बाहर आए स्टूडेंट तब भी हमने उसको कुछ नहीं कहा, बातचीत के लिए हमने SIT भी बना दी, FIR दर्ज कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ शरारती अंसर उनमें ऐसे घुस गए जिनको अभी पकड़ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। तो लेकिन फिर भी पुलिस ने मतलब उनको कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया, जो दिल्ली में तो गोलियां चलाई हैं, दिल्ली में तो सीधे बुलेट चलाई हैं, जो किसी की आंखें गई, किसी का जो
2: पैलेट गन्स,
1: हाँ। तो पंजाब पुलिस ने कभी ऐसा, हम उनको बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन जिन्हें तक नहीं बनती तो उनको स्टूडेंट्स को अंदर बिठा के उनकी मैनेजमेंट के साथ बात करा दी, स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। हाँ, पंजाब पुलिस की गाड़ियों का नुकसान हो गया, उसका हम ये कर रहे हैं कि जो उनमें कुछ आउटर स्टूडेंट आ गए थे वो यूनिवर्सिटी में नहीं थे, उनको भी पकड़ा है। तो हम ऐसा नहीं करते हम कि हम कोई हर कोई स्टैंडर्ड जो जो देश के लिए कुछ और हो, पंजाब के लिए कुछ और।
2: आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं मान साहब, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है, पर दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया अलायंस का, मान लीजिए आप इंडिया अलायंस में नहीं है, आपको फिर दो बार बोला गया, राहुल गांधी ने भी बोला कि DMK और आम आदमी पार्टी आए हमारे साथ, पर अभी भी क्या पंजाब का चुनाव उस अलीजेंस के बीच में आ गया है, क्योंकि पंजाब का चुनाव है, कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ना है, तो कैसे कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए?
1: नहीं देखो, ये तो पार्टी की पॉलिसी है, हम इलेक्शन कमीशन के या वोट काटने की सबसे पहली शिकायत हमने की थी कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा से 20,000 वोट काट दिए और 15,000 नए ऐड कर दिए, 5,000 पे उनकी हार हुई है। तो हम तो कब के उनके पास शिकायत लेके जाते रहे हैं, पुराने जो इलेक्शन कमीशन होते थे, तो हम इस चीज के मुद्दे पर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, फिजिकली प्रोग्राम उनका है, जिस दिन कॉकरोच का प्रोग्राम था उस दिन राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए, उस दिन PM के घर के सामने
2: कहते हैं आप ही के हैं,
1: कौन कहता है कॉकरोच हमारे कौन कहता है, वो लड़का जो दीपिके है वो हमारे पहले हमारी पार्टी में वो सोशल मीडिया में काम करके गया, उसके बाद तो अमेरिका चला गया था वो।
2: सब कहते हैं टीम भी है कॉकरोच आम आदमी पार्टी के,
1: नहीं कॉकरोच तो टीम भी, अब वो हमारी टीम भी है, पहले कांग्रेस बी टीम होती थी, बीजेपी भी हमारी बी टीम रही है, मतलब पता नहीं क्या ये।
2: नहीं, पहले आप बीजेपी की बी टीम होते थे और अब कांग्रेस जनता पार्टी आपकी बी टीम है।
1: अच्छा,
2: ये कहा जाता है।
1: अच्छा, हाँ। सब क्लॉज आ गया,
2: सब क्लॉज आ गया।
1: तो ये बी टीम करने की बातें, हम ना किसी की बी टीम है ना किसी की सी टीम है, हम देश के 140 करोड़ लोगों की, पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों की ए टीम है, पंजाब के लोगों के पक्ष में।
3: अच्छा, ये वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, अभी हरियाणा सरकार के दो मंत्री यहां पर थे, उन्होंने कहा कि एक ही वोटर लिस्ट पर 2024 के चुनाव होते हैं, जहां पर हरियाणा के भीतर 5 सीटें कांग्रेस हासिल कर लेती है, और उसी वोटर लिस्ट पे होते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव, वहां हारने के बाद वो कहते हैं कि वोट चोरी कर लिया और इलेक्शन में गड़बड़ी कर ली। तो ये क्या आप इससे सहमत हैं कि आखिर तो उसी लिस्ट पे चुनाव हुआ?
1: जब भी कोई ऐसा कुछ मुद्दा उठता है तो इलेक्शन कमीशन को क्लियरेंस देनी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर आपको ये शक है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने के नाम काट दिए बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था, अगले इलेक्शन में दे देना वोट, अब कह रहे हैं ठीक करेंगे जी, अब कह रहे हैं ठीक करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कि बंगाल की जो पार्टी है उनको मतलब उन्होंने बहुत सुप्रीम कोर्ट में अपील की, नहीं माना गया, इलेक्शन आ गई, इलेक्शन में बीजेपी जीत रही, उसके बाद सारा खत्म। ये इलेक्शन के बाद ईडी के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, इलेक्शन तक ही होते हैं बस, इलेक्शन के बाद CBI के सारे केस खत्म हो जाते हैं, बस उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है।
3: इसमें क्या होना चाहिए, आप भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, आपको लग रहा है होगा?
1: देखो अगर उन्हीं के दो कुलीग कह रहे हैं कि हमसे ये नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ये कलेक्टिव डिसीजन नहीं था, ये नहीं था, और उसके बाद अगले दिन वो करते भी हैं जारी कि अब से ये होगा, ये अब जाके कह रहे हैं देश का इलेक्शन कमीशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसको संभालता है, अब जाके कह रहा है कि जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनेंगे। अरे जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं उस सोसाइटी की मीटिंग पे भी मिनट्स बनते हैं क्या? इलेक्शन कमीशन की जो है मीटिंग होती थी उसके मिनट्स ही नहीं बनते थे, रिकॉर्ड पे नहीं लेते थे किसी चीज को। तो अब जाके कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष को ये शक है तो ये शक इलेक्शन कमीशन को ही दूर करना चाहिए, ना कि उनको, मतलब वो बोलते हैं पंजाबी की कहावत है, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, ठीक है ना, आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता, आप सामने आके बातचीत करनी चाहिए।
2: एक शक मान साहब, सैनी साहब ने आज इसी मंच से दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप उन्हें बोलते हैं ना कि वो पगड़ी साथ लेके घूमते हैं, उन्होंने बोला कि देखिए मैं पगड़ी बहुत टाइम से पहनते हुए आ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पंजाब के चुनाव आ रहे हैं और मैंने पगड़ी उठा दी, और उन्होंने ये पूरा विस्तार से बताया बिल्कुल शेष पंजाबी में बोलकर कि मान साहब को गलत फहमी है, ऐसे ही चार्ज बोलते हैं, पगड़ी तो मैं कब से पहन रहा हूं।
1: नहीं, मुख्यमंत्री वो हरियाणा के हैं, ज्यादा टाइम वो पंजाब में बताते हैं, क्या हरियाणा में सब कुछ ठीक हो गया, क्या हरियाणा में सब कुछ सही हो गया?
2: आप भी तो दिल्ली बैठे हुए थे जब दिल्ली में चुनाव थे।
1: चुनाव के समय 10 दिन 15 दिन चल जाओ, लेकिन ये तो पिछले एक साल से आ रहे हैं, कभी पठानकोट जा रहे हैं, कभी जलंधर जा रहे हैं, कभी पटियाला जा रहे हैं, और जहां आके मुझे गालियां देते हैं। मैं कभी हरियाणा जाके, हरियाणा में भी पंजाबी बसते हैं, मेरे तो इलाज भी हरियाणा में है।
2: वो तो पंजाबी में बोल के गए, आपको फिर हरियाणवी में उत्तर देना पड़ेगा इसका।
1: नहीं नहीं, वो मेरे इलाज भी पंजाब में है, हरियाणा में है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा हरियाणा के साथ काफी मीटिंग होती रहती हैं, चाहे SYL की, चाहे किसी और नॉर्थ जोन काउंसिल की होती रहती हैं। लेकिन सैनी साहब को इसलिए लगाया हुआ है कि आप हरियाणा छोड़ दो, आप पंजाब में चलो, शायद पंजाब के लोग पगड़ी देख के वोट करते हैं। अपना क्या नाम है, मोदी जी भी जब आते हैं पगड़ी पहनते हैं और पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं, किमें हो पंजाबी हो, है ना,
3: तो सम्मान के लिए है ना, सम्मान दिखाने के लिए करते हैं।
1: नहीं नहीं, तो वो मतलब पगड़ी पहन के आप पंजाब, हर फैसला तो पंजाब के विरुद्ध ले रहे हो, और आके यहाँ पे किमें हो पंजाबी हो, मैनू तो आड़े ते बड़ा मान है, है ना, ये इदा दी पंजाबी बोल के तक मैनू लगता नहीं कोई पंजाबी वोट पाऊ, जेड़ा कोई सोचता भी होगा वो भी बंद हो जाएगा, भी छोड़ो परे यार की करना है। सो उनको अपना हरियाणा संभालना चाहिए, जब हरियाणा में सब कुछ ठीक हो गया पंजाब में वेलकम करेंगे उनका।
3: इस बार के चुनावों पर आते हैं, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अभी ये समझ नहीं आ रहा है अलायंस कहां पर क्या हो रहा है। कांग्रेस आपको लग रहा है अब क्योंकि नया चीफ मिल गया है उन्हें, वो मजबूत हो गए हैं, क्या सबसे बड़ा आपका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होगा यहां?
1: देखो कांग्रेस पार्टी की प्रधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, तो एक बनता है 3-4 उसकी टांगे खींचने वाले आ जाते हैं। तो कांग्रेस का तो सीधा सा मुद्दा है, भाजपा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बड़ेंग से नहीं बनती, बड़ेंग की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, और नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती, ठीक है ना, उनका तो ये फॉर्मेट है। तो अभी भी वो मुझे पत्रकारों ने कहा कि प्रगट सिंह आ गए हैं, प्रगट सिंह हॉकी के कप्तान रहे हैं, प्रगट सिंह गोल करने में माहिर हैं। मैंने कहा गोल तो प्रगट सिंह तभी करेंगे ना जब उनको पास देंगे, चन्नी ने पास ही नहीं देना प्रगट सिंह को कि कहीं ये गोल ना कर दे। भाजपा के पास बॉल आ गई, भाजपा अपने पास लेके घूमेगा, बड़िंग के पास बॉल आ गई, बड़िंग नहीं प्रगट को देगा, प्रगट को हॉकी छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा, देखना शर्त लगा लेना। मैं लिख के तो नहीं दे रहा लेकिन ये कह रहा हूं ये होगा इनके साथ आगे।
2: पर मान साहब ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी बस इसी होप में बैठी है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस एक दूसरे से झगड़ के खत्म हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, कोई गेम प्लान है?
1: इस इलेक्शन में हम अपने कामों पर वोट मांगेंगे, किसी को आलोचना करके या किसी की मतलब मान हानि करके हम वोट नहीं मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे बिजली के नाम पे, हम वोट मांगेंगे 14,000 किलोमीटर नहरी पाइपलाइन बिछा के हमने खेतों खेतों में पानी पहुंचा दिया, हम उस पे वोट मांगेंगे। हम मांगेंगे आम आदमी क्लिनिक पर, 1100 आम क्लिनिक हैं, 5.5 करोड़ ओपीडी हो गई है उसकी, जो लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है। हम मांगेंगे 10 लाख के सेहत बीमा कार्ड योजना पे, 10 लाख का

0: 70,885 नौकरियां दे चुके हैं सरकारी, बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के। तो हम उस पे वोट मांगेंगे, हम कांग्रेस की लड़ाई से या अकालियों की लड़ाई से हमें कुछ नहीं लेते।
1: पर ये अकाली और बीजेपी साथ आ जाएंगे तो आपको फायदा है, या बीजेपी सारी अकेले लड़े सीटें उसमें आपको फायदा है?
0: देखो, अकाली बीजेपी का जो गठजोड़ है ना, ये कछुए और चूहे की दोस्ती वाला है। कछुए और चूहे में दोस्ती हो गई, उन्होंने दोस्ती कर ली कि हम इकट्ठे रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे की टेल जो है बांध ली, एक दूसरे की पूंछ जो है वो बांध ली कि इकट्ठे रहेंगे। अब थोड़ा गर्मी हुई, कछुए को गर्मी लगी, वो कछुआ जो है वो एक गहरे तालाब में नीचे चला गया, चूहा डूब कर मर गया। थोड़ी देर बाद कछुआ बाहर आया तो चूहा उसके साथ ही पूंछ बंधी हुई थी। ऊपर से कोई चील आई, चील ने देखा कि कछुआ चूहा मरा हुआ है, चील ने अपने पंजे से चूहा उठा लिया, साथ में कछुआ भी उठ गया। 100-200 मीटर से कछुआ गिरा, कछुआ भी मर गया। अब फैसला ये कर लें, बीजेपी कछुआ है या चूहा है, अकाली दल कछुआ है चूहा है, एक दूसरे को मारेंगे ये बस।
2: परमान साहब, इस चुनाव में कछुआ, चूहा और चील के साथ एक और एंट्रेंट है, वारिस पंजाब दे
0: जी।
2: और कहते हैं आप सर्वे आप भी कराते हैं, सर्वे में रिजल्ट्स भी आते हैं, और सुनने में आया है जो पंथिक वोट है वो वारिस पंजाब दे को काफी हद तक जा रहा है रूरल में, तो वो कितना, ये न्यू एंट्रेंट आपको कितना भारी पड़ेगा?
0: देखो, लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है। लोकसभा में उन्होंने एक सीट जीती है, ठीक है ना
2: जी,
0: लेकिन विधानसभा किसी और मुद्दे पे होती है, विधानसभा लोकल मुद्दों पे होती है। तो बहुत से स्टेटों में आप देखते होंगे लोकसभा के रिजल्ट कुछ और आते हैं, विधानसभा के कुछ और आते हैं, लेकिन सबको पार्टी बनाने का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। वो अपना एजेंडा लेके जाएंगे लोगों के पास, लोगों को पंजाब के लोगों को एजेंडा पसंद आ गया उनको वोट डाल देंगे, हम भी अपना एजेंडा लेके जाएंगे, हमारा पसंद आ गया हमको वोट डाल।
2: वारिस पंजाब दे किसकी टीम भी है?
0: उनको भी हमारी बी टीम का बोल दिया था, सुखबीर बादल कह रहा है भगवंत मान ने पैदा की है ये, मतलब हमको अपनी पार्टी का तो कोई कहता ही नहीं, कोई कहता कांग्रेस के हैं, कोई कहता बीजेपी के हैं, कोई कहता आप कहते हो कॉकरोच के हैं, कोई कहता
2: हम तो कह रहे हैं कॉकरोच शायद आपके हो सकते हैं।
0: नहीं नहीं ना, ऐसा नहीं है, हम अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, संविधानिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। और कोई किस हर एक को हक है, वो भी आए आके अपना एजेंडा लेके जाएं, लोगों को अच्छा लगा लोग वोट डाल देंगे।
1: भगवंत मान जी, पिछली बार जब चुनाव था तो दिल्ली में सरकार आपकी थी, आम आदमी पार्टी की थी, और दिल्ली मॉडल दिखाकर पंजाब को बताया गया हम ऐसा बनाएंगे। इस बार दिल्ली से सरकार जा चुकी है, ये बड़ा परिवर्तन यहां पर, और आपके उन्हीं मॉडल्स को आपकी ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है?
0: नहीं, अब तो हमारे पास स्कूल ऑफ एमिनेंस का अपना मॉडल है पंजाब का, हमारे पास नहरी पानी, जब मैंने ओथ ली थी तो 21-22% हम नहरों का पानी सिंचाई के लिए यूज करते थे खेतों में, आज हम 88% पे पहुंच गए हैं। पहले 2021 में 80 बच्चों ने, सरकारी स्कूलों के सिर्फ 80 बच्चों ने नीट का पेपर क्लियर किया था। हमने जो कायापलट किया है कि हमारे टीचर्स को हम फिनलैंड और सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं, स्कूलों में जो है क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स बन गई, उसका नतीजा 4 साल में ये हुआ, 21 में 80 बच्चे सरकारी स्कूलों के जो नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, वो भी वो बच्चे जिनके माता पिता के पास थोड़े पैसे हैं, महंगी कोचिंग दिलवाने वाले, हमने कोचिंग फ्री कर रखी है। इस बार 882 बच्चों ने पंजाब में नीट का पेपर क्लियर किया है सरकारी स्कूलों के, और कौन है वो, किसी की माँ घरों में सफाई करके, झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है, किसी का बाप खच्चर रेड़ा चलाता है, किसी का बाप ट्रक का ड्राइवर है, किसी का बाप किसी पुल के नीचे प्रेस करता है कपड़े, उनके बच्चे जब नीट क्लियर कर गए अब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल पे हम वोट मांगेंगे।
2: आपने स्कूलों की बात की मान साहब, पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली से पंजाब में है, को इंचार्ज सत्येन जी हैं, दिल्ली से पंजाब में है, कांग्रेस अकाली सब एक चीज कह रहे हैं कि देखिए फिर दिल्ली के सारे आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में आके बैठ गए हैं, उनको बड़े बड़े बंगले दे दिए गए हैं और इन बंगलों से वो पंजाब की राजनीति चला रहे हैं। ये बंगले दिए हैं, कितने लोगों को बंगले मिले हैं?
0: देखो, नहीं कोई वैसे किसी मंत्री के घर पे कोई कटसी के तौर पे रह रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये हर रोज नहीं आते, जब भी कोई मीटिंग है आके पंजाब भवन में ठहर के चले जाते हैं। तो लेकिन मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं मनीष सोदिया दिल्ली से हैं, सतेंद्र जैन दिल्ली से हैं, वो हमारे ऑब्जर्वर,

0: राजेश पायलट मोगा से हैं?
1: सचिन पायलट,
0: सचिन पायलट मोगा से हैं? वो कहां से? वो राजस्थान से। इससे पहले भूपेश बघेल कहां से थे? बागापुराना से थे। वो कहां से थे? अभी अभी प्रगट सिंह 5 दिन दिल्ली बैठ के आए हैं, प्रधान बनने के बाद एकदम पंजाब नहीं आए। पहले दिल्ली वालों को मिले, कभी केसी वेणुगोपाल को, कभी खड़गे को, कभी कभी किसी को, कभी अंबिका सोनी को, कभी किसी को। भाई नेशनल पार्टियां हैं वो भी दिल्ली से चलती हैं, हमारी भी नेशनल पार्टी है दिल्ली से हमारे ऑब्जर्वर आएंगे।
1: दिल्ली से चलती है बोल गए थे आप,
0: पार्टी तो दिल्ली से है ना, बेस है
1: जी।
0: पार्टी तो दिल्ली से, बीजेपी दिल्ली से चलती है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है दिल्ली से चलती है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, हमारा हेड ऑफिस तो दिल्ली है। तो हम गुजरात में भी लड़ चुके हैं, गुजरात में जो है हमारे 5 MLA हैं, गोवा में हमारे MLA हैं, हमारा जम्मू कश्मीर में डोडा में हमारा MLA है। हमारी पार्टी अभी 12-13 साल पुरानी है, तो इसलिए ये कहना कि हम दिल्ली वालों को यहाँ लाते हैं ये ठीक नहीं है। हम
2: वो रेसिडेंशियल घर, मतलब उनको घर यहाँ पर अलॉट करके छोड़े हुए हैं, नाम किसी और का है, रह रहे हैं दिल्ली के नेता, ये आरोप है?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी घर में कोई आके कोई गेस्ट के तौर पे या कोई रह गया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो मेरे घर पे भी गेस्ट आते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी। पहले फिर अरूसा कहाँ रहती थी? अरूसा तो पाकिस्तान से थी, कांग्रेस वालों को ये पूछो ना, अरूसा तो पाकिस्तान से थी, वो तो उनकी डिफेंस जर्नलिस्ट भी थी, वो तो जासूस होने के भी चर्चे हैं, वो तो यहाँ पे बदलियां करती थी, खुद डीजीपी के डीजीपी पांव में बैठा है और उसको डीजीपी जिस दिन लगाया जा रहा है वो पांव में बैठा है, मतलब ऐसी फोटो आती थी। तो कम से कम हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसलिए ये पहले अपनी पीढ़ी के नीचे जो है वो सफाई कर लें, फिर बाद में देख लें।
1: मान साहब आखिरी 2-3 सवाल हैं। एक बहुत स्पेक्यूलेटिव खबर चल रही है बहुत टाइम से कि हो सकता है आम आदमी पार्टी का स्प्लिट हो पंजाब यूनिट का, कि या पोस्ट पोल हो, अगर नंबर नहीं आते हैं, सीटें नहीं आती हैं तो काफी MLA छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है उसके पहले भी हो।
0: देखिए हमारी एक पार्टी है देश में जिसमें डिसिप्लिन है, हमारे बंदे हमारे आप कांग्रेस में अभी देख लो बड़िंग के खिलाफ कि मुझे चन्नी ने कितना मुर्दाबाद जिंदाबाद करवाई, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। वो उसकी अपना भूपेश बघेल की हाजिरी में उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी, एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई, ये कांग्रेस का कल्चर है। अकाली दल खत्म हो गया है, अकाली दल के जो कह रहा था ना सुखबीर बादल राज करेंगे 25 साल, उनके पास 25 बंदे नहीं है, 25 बंदे नहीं है टिकटें देने के लिए, उनके पास बंदे नहीं है, उन्होंने 4 बाई इलेक्शन छोड़ दी थी, बंदे नहीं है। ये टाइम टाइम की बात होती है, कभी दादे की कभी पोते की, तो इसलिए ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये वक्त, राजाओं से भीख मंगा देता है ये वक्त। हमारी पार्टी में ऐसा कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है कि हमारे 4 कैंडिडेट हैं, 4 चेहरे, या मेरा चेहरा अनाउंस करो, उसका करो, उसका करो, हैं हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी एकजुट रहेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, और इतनी डिसिप्लिन पार्टी देश में कोई नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी।
2: ये सवाल पूछने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसका आपने पहले एग्जाम्पल दिया उसमें लड़कर भी पार्टी के अंदर है सब, आपकी पार्टी से थोड़ा सा मनमुटाव होता है छोड़कर चले जा रहे हैं।
0: तो कैप्टन रविंद्र कहां है?
1: एक सुनने में आया है कांग्रेस
0: मनप्रीत बादल कहां है?
3: दो
0: रवनीत बिट्टू कहां है?
2: पार्टी कितनी बड़ी
0: है? रवनीत बिट्टू कहां है? 3 सुनील जाखड़ कहां है? 4
2: और लड़ाई है इतनी है।
0: अपने आप ही सवाल बना लेते हैं यार।
1: कैप्टन साहब का तो सुनने में आया घर वापसी होने वाली है, कैप्टन साहब की।
0: कैप्टन साहब ने कहा कांग्रेस मुझे लेती नहीं, बीजेपी मुझे कुछ मुझसे कुछ करवाती नहीं, मैं तो कुछ नहीं रह गया, बस फिर रिटायर हो जाए और क्या करें, क्या करें।
1: मान साहब एक सवाल जो कहते हैं पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीतती है तो चलिए आपकी पॉलिटिक्स कायम है इन गवर्नेंस, पर अगर आपकी पार्टी ये चुनाव हारती है तो जिस फोर्स से ये पार्टी आई थी दिल्ली में आई थी, जिस फोर्स से ये पार्टी पंजाब में आई थी, इसका क्या अस्तित्व रह जाएगा फिर?
0: देखिए सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने इस पार्टी के पेड़ पर जो दिखाए थे, 4 NP जीते थे, मैं भी था उनमें
1: जी,
0: फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, संगरूर और लुधियाना और अपना पटियाला। तो पंजाब ने उम्मीद बनाई थी, पंजाबियों ने उम्मीद बनाई थी। अब आप कह रहे हैं दिल्ली में हार गए हैं, अगर पंजाब में क्या हुआ? आप मैं एक बात और आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, आम आदमी पार्टी जो है जो मोदी का रथ है, जो जीत वाला रथ, पहले भी पंजाबियों ने रोका था, इस बार भी वो, हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए, बिहार भी जीत गए, बंगाल भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए, पंजाबी उनका रथ पंजाब में रोकेंगे, हारने वाली बात ही ना करो।
1: बीजेपी का रथ तो रोक लेंगे, कांग्रेस निकल गई तो?
0: कांग्रेस का तो रथ ही, उसमें तो पहिए, किसी पता नहीं किसी और का पहिया, किसी टायर का, कोई ट्रैक्टर का पहिया उसमें, किसी का, उसके तो पहिए ठीक नहीं है उसमें तो कोई।
1: तो आप कह रहे हैं बिगेस्ट थ्रेट बीजेपी है, कांग्रेस से भी बड़ी थ्रेट बीजेपी है?
0: नहीं, बीजेपी के पास ईडी सीबीआई ये वो करके करते हैं ना, पहले भी कर चुके हैं ऐसा, तो हम उनका भी सामना करेंगे, पंजाब में इनको हार का सामना करेगा पूरी तरह।
2: पिछली बार ही एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आप यहाँ लेकर आए थे, इस बार कोई लक्ष्य लेकर, कोई गोल लेकर चल रहे हैं?
0: पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ना है।
1: अच्छा, लिख के देंगे?
0: हाँ जी,
1: लिख के देंगे।
0: अगले बस इलेक्शन के समय आप आओगे, आप हाँ। आप कौन सा यहाँ पे आना बंद हो जाओगे? आप मुझे बिठा लेना, कापी पेन ले आना, आज आपके पास कापी पेन नहीं है, लेकिन आज मैं इतना बोल देता हूँ कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा।
1: तो 92 के ऊपर सीटें आएंगी, 117 में से 92 के ऊपर आएंगी, आप ये कह रहे हैं?
0: आएंगी, आएंगी। ये चला देना।
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
0: थैंक यू वेरी मच
2: हमसे बात करने।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
5: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
6: वो इन लॉज को लाना है, कार मिल जाएगी।
7: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
6: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
7: क्विक प्रोसेसिंग
8: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
9: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस।
12: मेरे पास एक आइडिया है।
11: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
13: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
14: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
15: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
16: कौन सी बनानी है?
17: यार लोन भूल गया मैरी।
18: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
19: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
17: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
19: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
20: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
21: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
17: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: चलो
6: मैं,
5: अरे आजकल की लड़कियाँ प्लेन चला रही हैं।
7: चलो सखी उड़ ले।
8: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट,
5: बड़ी जल्दी सीख गई।
6: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
8: स्वाद सपनों का।
9: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
10: गैसो फास्ट 27%,
9: इनो 9.2%।
11: गड़बड़ है।
12: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
1: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
2: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
3: इट्स अ माय वे।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
7: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
10: जेके मैक्स वाइप इजी,
11: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
12: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
4: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
13: का नाम क्या रखेंगे?
14: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
15: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
16: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
17: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
18: मजा नहीं आया।
19: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
20: ये लो बस।
21: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
22: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
23: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
24: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
25: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: In association with
3: Signature Finest Cardamom Seeds,
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Canara Bank, together we can.
6: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, हमारे स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पिछले 72 घंटों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सड़क पर जो मोर्चा खोल रखा है वो भारतीय राजनीति को किस नए मोड़ पर ले जाएगा। 2014 के बाद से अगर आप ये याद कीजिए तो विरोध तो कई मुद्दों पर हुए, लेकिन ये पहला मौका है जब मोदी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष इस तरह से किसी एक मुद्दे पर मैराथन आंदोलन कर रहा है और उसके लिए सड़कों पर उतरा है, जिससे ये टकराव अब एक सीधे आर पार के निर्णायक संघर्ष में बदल चुका है। आंदोलन के तीसरे दिन आज विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली। पहले कनॉट प्लेस में एक अहम बैठक की और फिर वहां से वो सीधे पहुंच गए राजघाट। राजघाट के लिए कूच किया और राजघाट में वो पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ऐसे तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के रहे जो राजघाट में अंदर गए। उन्होंने बाबू को श्रद्धांजलि दी। आज हमारी पड़ताल इसी बात पर केंद्रित होगी कि क्या विपक्ष की ये पहली मैराथन हुंकार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हासिल कर पाएगी।

0: इसके बाद हम आपको दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए वो वीडियोस दिखाएंगे जिनके आधार पर राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। 7 अक्टूबर को विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे, उन सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी धक्का मुक्की और झड़पें हुई। इस झड़प में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना और कांस्टेबल देवेंद्र संधू समेत कई महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, बदसलूकी और धक्का मुक्की का आरोप लगा है। कांस्टेबल अंकित कसाना ने खुद आरोप लगाया कि करीब 40 से 50 प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पहले घेरा, उनको घेर कर पीटा गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनके हाथ की उंगली पर दांत से काट दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरएमएल हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। वही कांस्टेबल देवेंद्र संधु जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जमीन पर गिराया पहले, फिर जमीन पर गिराने के बाद लात घूसों से उनको मारा गया और इस हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने हमला करने, धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार करने और इन गंभीर धाराओं के तहत कुल 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। इन एफआईआर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ मौजूद कई दूसरे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। देखिए, इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या नाना पाटेकर की जान बच सकती थी। रात के करीब 2:30 बजे जब नाना पाटेकर को अचानक सीने में तेज दर्द हुई और बेचैनी वो महसूस कर रहे थे, तब उन्होंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को मोबाइल पर मैसेज भेजा था और ये लिखा था कि उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन वक्त रात का था और रात का वक्त होने की वजह से उनके दोस्त ने इस मैसेज को देखा ही नहीं, वो देख नहीं पाए और समय बीतता चला गया। सुबह के करीब 4 बजे जब दोस्त की आंख खुली, उन्होंने मैसेज को देखा तो वो घबराकर तुरंत पहुंच गए नाना पाटेकर के घर। और वहां जब वो नाना पाटेकर के घर पहुंचे तब नाना पाटेकर को बहुत तेज पसीना आ रहा था, वो धीरे धीरे अपनी सुध-बुध खो रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे उन्हें गोवा के मणिपाल जो हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया, जहां उन्हें बचाने की आखिरी कोशिशें की गई लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और नाना पाटेकर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कार्डियक अरेस्ट के मामलों में मरीज को 1.5 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो उनकी जान बच भी सकती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में 10 में से केवल एक ही मरीज के साथ ऐसा हो पाता है और उनकी जान बच पाती है। और बहुत अफसोस की बात है कि इस घटना में भी नाना पाटेकर को अस्पताल ले जाने में शायद देरी हुई क्योंकि उनका मैसेज ही वक्त पर नहीं पढ़ा गया।
1: ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल

0: इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का आरोप है कि भारत के कुछ बड़े उद्योगपति अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को शुरू होने से रोक रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि मस्क के ये आरोप पूरी तरह गलत है, मनगढ़ंत है। सरकार का साफ कहना है कि भारत के नियम सबके लिए बराबर हैं और सरकार के मुताबिक स्टारलिंक, जियो और एयरटेल तीनों ही कंपनियां अभी एक ही लाइन में खड़ी हैं और सभी की सुरक्षा जांच चल रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से ठीक पहले एक बार फिर इस सम्मान पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कोई डींग नहीं ढांक रहे बल्कि सिर्फ सच बता रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया भर के 8 बड़े युद्धों को सुलझाया है, कई देशों को टैरिफ की धमकी देकर नए युद्ध शुरू होने से रोका है। जब जब नोबेल का सीजन आता है पीस वाले पुरस्कार पे तो ट्रंप की दावेदारी आ ही जाती है। सुनिए।
1: I settled 8 wars and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon and that's a positive thing. A very positive thing, and other presidents should have done it before me, or somebody should have done it. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
0: और अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक मल्लारेड्डी रंगा रेड्डी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सरकारी बस में एक कॉलेज की छात्रा को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान छात्रा कांग्रेस विधायक के हाथ को पीछे करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब कांग्रेस विधायक के व्यवहार पर सवाल उठे तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सफाई ये दी कि वो तो बस एक पिता की तरह प्यार से लड़कियों से बात कर रहे थे और सरकारी बस सेवा के बारे में उनसे पूछ रहे थे। देखिए। इधर आज शेयर बाजार में भी बहुत आग लगी है। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया, जिससे निवेशकों का लगभग 13 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया है। इस बड़ी गिरावट के पीछे 4 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल के पार पहुंचाना। तीसरा, विदेशी निवेशकों का अपना पैसा निकालना। और चौथा कारण है अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 72 घंटों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सड़क पर जो मोर्चा खोल रखा है वो भारतीय राजनीति को किस नए मोड़ पर ले जाएगा। इस वक्त विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति पर आंदोलन कर रहा है, जिसे मैराथन आंदोलन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन या फिर कुछ घंटों का धरना ना हो, बल्कि लगातार एक मोमेंटम बनाकर रखना, एक दबाव बनाकर रखना, कई दिनों तक चलाया जाए और जिसका मकसद लगातार राजनीतिक दबाव को कायम रखना है। और अभी विपक्ष यही कर रहा है। 6 अक्टूबर से शुरू हुआ विपक्ष का यह आंदोलन अलग अलग चरणों में जारी है और आज भी इस आंदोलन को लेकर विरोध जताने और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए कई सारे नए तरीके जो हैं वो अपनाए गए। और इस दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए पुरानी रणनीति को भी बदला गया, जिसे विश्लेषण विपक्ष की धप्पा राजनीति भी, विश्लेषक जो है वो धप्पा राजनीति बता रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कनॉट प्लेस के मोइट्स रेस्टोरेंट में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सांसद थे उनको एक लंच पर बुलाया और रणनीति बैठक आयोजित की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सभी शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्ष ने अपनी योजना बदलते हुए सड़कों पर सीधे टकराव के बजाय शांतिपूर्ण मार्च का रुख इस बार अपनाया और सभी विपक्षी सांसद बसों में सवार हुए, राजघाट की ओर रवाना हुए ताकि वहां प्रार्थना और श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध दर्ज करा सके। सांसदों के राजघाट कूच करने के दौरान कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। और आज का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, आज देश के जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में भी विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के खिलाफ हुंकार भरी, जिसे बीजेपी ने देश में अराजकता फैलाने की साजिश बता दिया है। देखिए।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेता 6 अक्टूबर से लगातार मैराथन आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन ने एक बड़ा सवाल पैदा किया है। सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार देश में बढ़ते राजनीतिक गतिरोध को रोकने के लिए अपने पद से इस्तीफा देंगे या वो इस बार भी इस दबाव को सोखने में कामयाब होंगे।
3: कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
2: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो इन तीनों मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इनमें पहली मांग है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जल्द से जल्द इस्तीफा हो, दूसरी मांग है वोटर लिस्ट बदलने की SIR प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगे और तीसरी मांग है देश में EVM की जगह वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इन तीनों मांगों को लेकर विपक्ष 2014 के बाद पहली बार सड़कों पर कोई मैराथन आंदोलन कर रहा है। इसके लिए 6 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आकाशवाणी भवन में 6 घंटे का विशाल धरना दिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आज 8 अक्टूबर को विपक्ष ने गांधीगिरी से ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने की योजना बनाई। जो विपक्ष कल तक जंतर मंतर जाकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने की बात कर रहा था, उसने आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर क्या हासिल करने की कोशिश की, इसी सवाल में मौजूदा राजनीति का पूरा निष्कर्ष छिपा है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के लिए एक लंच बैठक की, जिसमें आज की रणनीति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के समय को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस और सरकार से जुड़े लोगों को यही लग रहा था कि आज भी विपक्ष इस लंच के बाद जंतर मंतर जाने की मांग कर सकता है और वहां ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कल की तरह विपक्ष और सुरक्षा बलों के बीच टकराव और संघर्ष बढ़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी आज की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। लंच के बाद सभी विपक्षी सांसद एकजुट होकर राजघाट की ओर बढ़े और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुद्दा बापू की समाधि स्थल तक पहुँच गया।
4: नेता राजघाट पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखेंगे बस के अंदर बैठे हुए हैं। एक रणनीति बन रही है कि आखिरकार आखिरी समय में कितने सारे सांसद अंदर जाएंगे। KC वेणुगोपाल हैं जो निकले हैं इस वक्त बस से आगे देखने के लिए कि राजघाट में कितने नेता रहेंगे जाएंगे, कि क्या 300 के 300 सारे सांसद अंदर जाने वाले हैं, सवाल फिलहाल बना हुआ है। राहुल गांधी को मैं देख सकता हूं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो 300 सांसदों को लेकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को लेकर राजघाट जाएंगे, बापू के सामने वो प्रे करेंगे और उसके बाद वहां से जो वोट चोरी का कैंपेन जिसको वो कहते हैं उसके खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है उनका यहां पर जारी रहेगा।
2: राजघाट पर गांधी जी के समाधि स्थल के सामने मौन साधना ये बताता है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को केवल एक दिन का राजनीतिक संघर्ष नहीं मान रहा, वो इसे नैतिकता की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। ऐसी लड़ाई जिसमें विपक्ष के लिए बात सिर्फ चुनाव आयोग को झुकाने की नहीं है, बात है साबित करने और दिखाने की कि चुनाव आयोग में सब कुछ सही नहीं हो रहा था और विपक्ष ने इस मोर्चे पर सरकार से लोकतंत्र को बचाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ भारत के इतिहास में कभी विपक्ष ने एक साथ आकर ऐसा प्रदर्शन नहीं किया और यही चीज इस आंदोलन को भारत की राजनीति के लिए एक नया घटनाक्रम बना रही है। ऐसा घटनाक्रम जिसमें विपक्ष भी अपना मेकओवर कर रहा है और इसे आप इन बातों से समझ सकते हैं। 2014 में जब पहली बार केंद्र में मोदी सरकार का गठन हुआ तब विपक्ष संख्या बल के मामले में न सिर्फ कमजोर था बल्कि काफी बिखरा हुआ भी था। इन्हीं वजहों से 2014 से 2019 के बीच सरकार ने कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए, लेकिन उन सभी फैसलों में विपक्ष अपनी आपत्तियों को कभी आवाज नहीं दे पाया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग उठी और विपक्ष ने कई प्रदर्शन भी किए, लेकिन उस दौर में सरकार विपक्ष पर हावी रही और कोई मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बना। 2018 में जब #MeToo अभियान के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोपों पर MG अकबर ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया तब भी उसमें विपक्ष के दबाव का ज्यादा रोल नहीं था और कई विश्लेषकों ने कहा कि इस्तीफा विपक्ष के कारण नहीं हुआ था। इसके अलावा पहले कार्यकाल में सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए और वो कई कानून लाई, लेकिन विपक्ष कभी किसी मुद्दे पर अपनी बात को नहीं मनवा पाया और ये सिलसिला दूसरे कार्यकाल में भी चला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस्तीफे पर भी विपक्ष ने काफी बातें की, लेकिन विपक्ष कभी कामयाब नहीं हुआ और विपक्ष इन 10 सालों में सरकार के मुकाबले ज्यादा बिखरा हुआ और ज्यादा कमजोर रहा। और ये वो 10 साल थे जब सरकार भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से चल रही थी, लेकिन इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 240 सीटें मिली तब विपक्ष अपनी पुरानी भूमिका से धीरे धीरे बाहर निकला और आज अगर इस तरह विपक्ष मैराथन आंदोलन करके ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है तो ये अचानक से नहीं हुआ। तीसरे कार्यकाल के पहले 2 सालों में विपक्ष अपने विरोध के कारण कई बड़े बिल और फैसलों को वापस कराने में कामयाब रहा है, जैसे वक्फ कानून को पहली बार में सरकार पास नहीं करा पाई और उसे जेपीसी के पास भेजा गया। यही चीज एक देश एक चुनाव बिल के साथ हुई और जो बिल गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को उनके पद से हटाने की बात कहता है उसे भी विपक्ष ने पास होने नहीं दिया। यही नहीं, महिला आरक्षण के लिए सरकार जो 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आई वो भी विपक्ष ने वोटिंग की प्रक्रिया में गिरवा दिया। और बात सिर्फ इन बिल्स की नहीं है, इन्हीं 2 सालों में लेटरल एंट्री, यूजीसी, संचार साथी ऐप, यूपीएस, जाति जनगणना और कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में हिंसा करने वाले छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमों को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। और क्योंकि इन फैसलों से विपक्ष सरकार को कई बार दबाव में लेकर आया, इसलिए आज वो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। विपक्ष इतना बड़ा मैराथन आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दबाव बनाकर रखने में कामयाब होता है तो ज्ञानेश कुमार को जनवरी 2029 तक मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहने से रोका जा सकता है।
5: हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, गांधी के चरणों में जाकर कह रहे हैं कि सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे।
6: स्ट्रेंथ गांधी जी के चरणों में आकर कोई स्ट्रेंथ दिखाता है? यहाँ तो स्ट्रेंथ लेने आते हैं, हम तो यहाँ स्ट्रेंथ लेने आए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता महात्मा गांधी के सामने।
7: जब जब तानाशाह कमजोर पड़ने लगता है वो बल का प्रयोग करता है, वो FIR कर रहे हैं राहुल गांधी पे, प्रियंका जी पर, तो ये सब वो कर रहे हैं, जनता उनके ऊपर FIR करके उनको ताले में बंद कर देगी।
2: हालांकि यहाँ सरकार विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार और बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस पूरे राजनीतिक टकराव के बाद बड़ा सवाल यही है कि भारत की राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। आज तक ब्यूरो।
0: विपक्ष के इस आंदोलन के साथ दिल्ली पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगा रही है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो नई तस्वीरें जारी की हैं, जो नए वीडियो जारी किए हैं, उन पर काफी विवाद हो रहा है। देखिए,
2: ये तस्वीरें 7 अक्टूबर के उस विरोध प्रदर्शन की है जब विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जाकर धरना देने की मांग कर रहे हैं। ये भी आरोप है कि जब पुलिस राहुल गांधी को जबरन हिरासत में ले रही थी तब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और इस दौरान कांस्टेबल अंकित कसाना और कुछ महिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई और उनकी वर्दी फाड़ दी गई।
8: बस मेरी सेफ्टी नहीं, मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि ये लोग टारगेट करते हैं,
2: दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र संधु के साथ भी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर मारपीट और बदसलूकी हुई, जबकि वो उन पुलिस कर्मियों में शामिल थे जो ऑन ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। कांस्टेबल देवेंद्र संधु का आरोप है कि वो और उनके साथी पुलिसकर्मी बहुत शांति से प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे कि इलाके में धारा 163 लागू है और वो पुलिस की बस में बैठ जाए, लेकिन तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने अचानक उन्हें निशाना बनाया, पीछे से खींचा और जमीन पर गिरा दिया।
9: तो उन्होंने एकदम से पीछे जाके उन्होंने हमें पीछे से खींच लिया, फिर हम नीचे गिरा के मतलब अल्लाह गुस्से मारने लगे।
2: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने भी बताया कि जब वो ड्यूटी पर तैनात थे तब भीड़ में से किसी ने पीछे से आकर उनकी कमर को पकड़ा और उन्हें जानबूझकर जोर से नीचे गिरा दिया। यही नहीं, जमीन पर गिरने के बाद उस हमलावर ने उन्हें लात मारी और जैसे ही वो देखने के लिए मुड़े कि उन्हें लात मारने वाला कौन है तो वहां मौजूद कांग्रेस के लोगों ने उस हमलावर को छिपा लिया। ये भी आरोप है कि वो उसे गोलचक्कर के बीच वाले पार्क में ले गए और वहां छिपाकर उसे मौके से भगा दिया। हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने भावुक होते हुए कहा कि ड्यूटी पर रहते हुए वर्दी में इस तरह लात खाना बहुत अपमानजनक है और उन्हें शरीर की चोट से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने का दुख है।
10: स्टैंड डेल्टा 2 साहब है हमारे मंजीत सोरान साहब, उनके साथ में डिटेंशन की कार्रवाई चल रही थी, हम उनको पकड़ के खींच रहे थे, उनको बसों की तरफ डिटेंशन करके लेके जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और जानबूझ के गिराया। गिरने के बाद मेरा बॉडी वॉर्न कैमरा भी जमीन पे गिर गया, मेरे को एक सेकंड का टाइम लगा उसको उठाने के लिए। जैसे ही मैं उठ के जैसे ही मैं खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैंने चेक किया कि मेरा कैमरा ठीक है, जब भी मेरे को पीछे से किसी ने लात मारी।
2: दिल्ली पुलिस ने वीडियो फुटेज खंगालने और घायल पुलिस कर्मियों के मेडिकल चेकअप के बाद कई धाराओं के तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कार्यकर्ताओं पर 3 नई FIR दर्ज की। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि मारपीट और हिंसा पुलिस ने की थी और उसके कई नेता अब भी चोटिल और घायल हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिखता है कि जब दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा को सड़क से हटाकर पुलिस की बस में बैठाने की कोशिश कर रही थी, उसी खींचतान और धक्का मुक्की के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का हाथ पीछे की तरफ जाता है और उनकी कोहनी वहां खड़ी एक महिला पुलिस कर्मी के पेट में लगती है। दिल्ली पुलिस ने अभी इस वीडियो पर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, यानी पुलिस अभी ये नहीं कह रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोहनी जानबूझकर मारी थी या पुलिस के साथ हो रही भारी धक्का मुक्की और अफरा तफरी के दौरान अचानक लग गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सादगी के लिए फक्कड़ कहलाने वाले मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की जान क्या बचाई जा सकती थी। 75 साल के नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने एक दोस्त को एक मैसेज लिखा। उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि उनके सीने में दर्द है, जिसके बाद उन्हें करीब 4 बजे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स की 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं उसमें 10 में से 9 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि मरीज को शुरुआती के जो 90 मिनट है, 1.5 घंटा, उसमें इलाज अगर मिल गया तो बचने के चांस ज्यादा होते हैं। और नाना पाटेकर के मामले में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ।

0: हम तो हमारी जिंदगी उधार की है ना, हमारा कब जिए हम, वक्त ही नहीं मिला हमारी जिंदगी जीने का। आज इस किरदार की जिंदगी जी रहे, कल दूसरे, कल और। जिस दिन कभी ठहर जाएंगे तो पता चलेगा अपने बारे में, सोचेंगे हम वो जिंदगी है। जिस दिन वो आवाज बंद हो जाती है वही मौत हो जाती है हमारी।
1: विश्वनाथ गजानन पाटेकर, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना आप उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। ये दुखद लेकिन सच है कि अब ये शानदार कलाकार हमारे बीच नहीं रहा।
2: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नमस्ते।
3: यहां ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में, सबके सामने।
1: 75 साल के नाना ने अपनी जिंदगी के 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। इस दौरान करीब 90 फिल्में की। फिल्मों में किया गया उनका छोटे से छोटा रोल भी दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गया।
4: तेरे पास उधार मांगने नहीं आया, लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा।
5: एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से, हंसो।

0: अब हम उन्हें दोबारा पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। कल रात गोवा में कार्डियक अरेस्ट की वजह से नाना पाटेकर का निधन हो गया। रात करीब 2:30 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे दुनिया को पता चला कि डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। गोवा के डोना पाउला में नाना पाटेकर का घर है। आमतौर पर नाना पाटेकर पुणे में अपने गाँव में रहते हैं, लेकिन गोवा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ही वो कुछ दिन पहले वहाँ आए थे। कल रात करीब 2:30 बजे उनके सीने के बाईं ओर दर्द उठा और तबीयत खराब महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ही अपने एक दोस्त को मैसेज किया और अपनी हालत के बारे में बताया। दोस्त ने वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने की बात कही। इसके बाद करीब 4 बजे उनके दोस्त जब घर पहुंचे तो नाना पाटेकर पसीने से तरबतर थे और हालत खराब थी। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई, जो नाना पाटेकर के केयर टेकर ने बुलाई थी। नाना पाटेकर को पहले घर पर ही CPR दिया गया, लेकिन स्थिति और बिगड़ी तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 45 मिनट तक डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर्स को पता चल गया था कि नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। रात का वक्त था, इसलिए नाना के दोस्त को भी मैसेज देखने में काफी टाइम लग गया और इस दौरान महत्वपूर्ण समय चला गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के मामले में शुरुआती 90 मिनट गोल्डन पीरियड है। कार्डियक अरेस्ट के 90 मिनट के अंदर अगर मरीज को मेडिकल केयर मिल गई तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन नाना पाटेकर को यह मदद मिलने में काफी देर हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक नाना पाटेकर के घर पर ही उन्हें CPR दिया जाने लगा था और एम्बुलेंस में भी उन्हें बचाने के सारे प्रयास किए गए, लेकिन करीब 5:30 बजे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। गोवा मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम भी किया गया और इसके बाद उनके शव को पुणे के लिए रवाना कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गाँव में किया। इस गाँव से नाना पाटेकर को बहुत लगाव था। ये बात आपको हैरान करेगी, लेकिन नाना पाटेकर ने साल 2023 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान की आखिरी संपत्ति वो 12 मन लकड़ियां होती हैं, जिनसे उसकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि उनके अंतिम संस्कार में गीली लकड़ियां इस्तेमाल ना की जाएं, ताकि धुआं ना हो, जिससे पता चले कि कौन अपना था और कौन पराया।
1: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माई फाइनल प्रॉपर्टी बेटा, वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसमें जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब, बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आँख में जाएगा, उनके पानी आएगा आँख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
0: नाना पाटेकर का ये बयान ब्लैक ह्यूमर था, जिसके लिए वो जाने जाते थे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मौत को लेकर वो किसी भ्रम में नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन जाना ही है, इसीलिए जीवन भर चीजें इकट्ठा करते रहने से कोई फायदा नहीं है। अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर और तस्वीर पर माला न लगाई जाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि कुछ दिन लोग याद रखते हैं, फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती है, इसीलिए तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: नाना पाटेकर ने पर्दे पर तो कई किरदार किए, लेकिन असल जिंदगी में उनका एक ही किरदार था। वो एक ऐसे फक्कड़ इंसान थे जो माया नगरी मुंबई से दूर जाते ही गांव के साधारण किसान का जीवन बिताते थे। नाना पाटेकर की आम जिंदगी सादगी से भरी थी। फिल्मों की शूटिंग खत्म होते ही सीधे गांव वापस लौटते थे। वहां साधारण से कपड़ों में रहना, खेत खलिहानों में समय बिताना, यही उनकी असली चाहत थी। नाना पाटेकर ने अपनी साधारण जीवन शैली को लेकर कहा था कि इंसान की जिंदगी फिल्मों से बड़ी और लंबी होती है, इसीलिए जरूरतें जितनी कम होंगी, इंसान उतना ही आजाद रहेगा। देखिए,

0: नाना पाटेकर उन्हीं कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग की तारीफ थिएटर्स में और व्यक्तित्व की तारीफ थिएटर्स के बाहर की जाती रही है।
1: आए और गए, खेल खत्म। कोई जीए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को।
2: गोली भी चलाई गुरु की जान बचाने के लिए, राज्याभिषेक हो गया तेरा। तारीख लिख ले, लगी भी पूरी निशाने पे। सलाह, हमेशा मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ, आज किसी ने मेरी जान बचाई है।
0: नाना पाटेकर एक ऐसे कलाकार थे जिनके पास स्टारडम तो था, लेकिन उन्होंने स्टारडम को कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया। वो स्टारडम को पहनकर नहीं घूमते थे। परिंदा, अग्निसाक्षी, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग करके नेशनल अवार्ड जीतने वाले नाना पाटेकर कैमरे के पीछे वाली जिंदगी में अक्सर खादी के कपड़ों में ही नजर आए। अन्य फिल्मी कलाकारों की तरह वो भी कैमरे की चमकती फ्लैश लाइट्स का केंद्र बन सकते थे, इवेंट में जाकर तस्वीरें खिंचवा सकते थे, लेकिन ये उनका स्टाइल नहीं था। कैमरे के आगे वो स्टार थे, एक ऐसे कलाकार थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन कैमरे के पीछे उनका अपना एक अलग संसार था जिसमें वो स्टार नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थे।
3: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था।
0: नाना पाटेकर ने हमेशा ये माना है कि स्टारडम कोई मंजिल नहीं है, इसीलिए वो फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आते, काम करते और फिर गांव लौट जाते थे। न उन्हें फिल्मी पार्टियों में देखा जाता था, न ही वो आलिशान जिंदगी जीते थे, उनका जीवन दर्शन अलग था। साल 2024 में कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान तो नाना पाटेकर ने यहाँ तक कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं, वो यहाँ काम करने आते हैं और काम खत्म होते ही वापस चले जाते हैं, उन्हें गांव की जिंदगी ही पसंद है। नाना पाटेकर की इसी सोच ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक फक्कड़ अभिनेता बनाया जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन उसे न स्टारडम की लालसा थी, न ही फिल्मी कलाकारों से भरी पार्टियों की। आम तौर पर फिल्मी कलाकारों को उनके अभिनय के साथ साथ उनकी पब्लिक अपीयरेंस से भी नापा जाता है। कोई कलाकार किस ब्रांड की कार से आता है, कौन से ब्रांड के कपड़े और जूते पहनता है, कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन नाना पाटेकर की फिलॉसफी बाकी कलाकारों से अलग थी। नाना का मानना था कि एक एक्टर का मुख्य काम एक्टिंग है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो मायने नहीं रखता, इसलिए वो शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई के बजाय पुणे के अपने गांव में रहना पसंद करते थे। नाना पाटेकर कहते रहे हैं कि उन्हें जिंदगी से जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला है, उनके लिए जरूरत कम रखना आसान है। नाना पाटेकर ने यह भी बताया था कि उनके घर में एसी नहीं है क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके घर के चारों ओर पहाड़ हैं। नाना पाटेकर हिंदी ही नहीं मराठी फिल्मों के भी स्टार थे, उनके पास न पैसे की कमी थी न ही सुविधा हासिल करने की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सामान्य जीवन को ही अपना असली जीवन बनाया। सच यही है कि उन्हें जो चाहिए था वो उनके पास था और जो नहीं चाहिए था वो उसके पीछे नहीं भागते थे। वो गांव खेत के बीच रहने वाले, जानवरों से घिरे रहने वाले और साधारण कपड़े पहनने वाले कलाकार थे। वो अपना खाना भी खुद ही बनाते रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि एक एक्टर के अलावा दुनिया उनको क्या समझती है। नाना पाटेकर की पहली फिल्म 1978 में आई थी जिसका नाम था गमन। इस फिल्म से पहले वो फिल्मों के पोस्टर पेस्ट करने का काम करते थे। नाना कहते हैं कि उनके जीवन के संघर्ष ने उन्हें सिखाया था कि जरूरतें जितनी कम रहेंगी चिंताएं उतनी दूर रहेंगी। नाना पाटेकर के पास करीब 14 एकड़ का फार्म हाउस था जिसमें वो रहते थे, जिसमें उन्होंने गाय और बैल भी रखे हुए थे। वो इस बात से बहुत खुश रहते थे कि उनकी नींद मोबाइल फोन के अलार्म से नहीं बल्कि मोर की आवाज से खुलती थी। नाना पाटेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनके जिंदगी जीने के तरीकों से जुड़ी उनकी फिलॉसफी पर सोशल मीडिया पर काफी रील्स बनी हैं।
4: आनंदाचा गुणाकार, दुखाचा भागाकार, आणि वेळेची वजा।
0: नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सफलता और असफलता जिंदगी का बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए इसकी चिंता किए बगैर काम पर पूरा फोकस लगाना ही ठीक रहता है।
5: मैं कल मरने वाला हूँ, इस पर अगर मैं भरोसा करूँ ना तो आज अच्छा जी सकता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि हम मरने वाले
6: नहीं है।
5: हाँ, और बटोरते रहते हैं, करते रहते हैं, और अचानक से आती है इनका अकाली निधन हो गया। कल रात को तो बैठे थे, खाना बिना खाए सुबह उठे ही नहीं।
6: नाना पाटेकर ने हमेशा ये माना कि देश सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ भी आता है। आप में से बहुत से लोगों ने नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार देखी होगी। इसमें उन्होंने एक सख्त मेजर का रोल निभाया था। ये रोल इतना जीवंत था कि दर्शक मानने लगे थे कि एक्टिंग से पहले नाना पाटेकर भारतीय सेना में थे, मेजर रहे होंगे। हालांकि आपको बता दें कि नाना पाटेकर हमेशा से एक शानदार एक्टर थे, लेकिन प्रहार फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सैन्य ट्रेनिंग, क्षमता और अनुशासन से भारतीय सेना इतनी प्रभावित हुई कि मराठा लाइट इन्फेंट्री में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई। और इस मानद उपाधि को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो करगिल युद्ध के दौरान करीब 60 दिनों तक सैनिकों के बीच रहे थे।
7: जान मत मांगना, इसके बाजार में कोई कीमत नहीं।
8: मुसलमान का खून ये हिंदू का खून। चिल्ला

0: फिल्मों में ऐसे किरदार मिले जिनमें गुस्सा और तलखी भरी हुई थी।
1: मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहाँ से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
0: उनके किरदारों में आम आदमी का दर्द छिपा हुआ था।
1: यहाँ ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा।
0: फिल्मी पर्दे पर जिस तरह के डायलॉग उनके लिए लिखे जाते थे, अपनी असली जिंदगी में भी वो उसी बेबाकी से बोलते थे। देश, सेना, किसान, जाति व्यवस्था, धर्म से जुड़े सवालों पर वो हमेशा अपने अनोखे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जाने जाते थे।
1: अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा।
0: नाना पाटेकर भारतीय सेना के मानद पदाधिकारी थे और इस जिम्मेदारी को उन्होंने गंभीरता से निभाया। प्रहार फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए मराठा लाइट इन्फेंट्री में सैन्य अधिकारियों से ट्रेनिंग ली थी।
2: नहीं आता है सर, नहीं आता है।
1: ऐसे नहीं, आगे बढ़।
2: नहीं आता है सर।
1: यू टू बाय टू मंकी क्रॉल करके आगे बढ़।
0: ये वैसी ही ट्रेनिंग थी जैसी सैनिकों को दी जाती है। उन्हें प्रहार में एक मेजर का रोल निभाना था जिसे अपनी टीम के सैनिकों को अनुशासन में लाना था।
1: याद रखो, तुम यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं।
0: नाना पाटेकर ने सैन्य ट्रेनिंग को इतनी गंभीरता से लिया और उसे अपने अंदर इस तरह से समा लिया कि प्रहार फिल्म के बाद लोगों में ये भ्रम फैल गया कि नाना पाटेकर सेना के असली मेजर हैं। सैन्य ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी नाना पाटेकर की लगन, अनुशासन और ट्रेनिंग के दौरान उनकी शारीरिक क्षमता से इतने प्रभावित हुए कि उनको मराठा लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नाना पाटेकर हमेशा मानते रहे कि देश सबसे पहले है और इसीलिए वो हमेशा से सेना को सम्मान देते आए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने सीमा पर जाकर करीब 60 दिन बिताए थे। वो इस युद्ध का हिस्सा तो नहीं बने लेकिन उन्होंने इन 60 दिनों में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। हमारे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो इन 60 दिनों में द्रास, लेह, कुपवाड़ा, बारामूला और सोपोर जैसे इलाकों में रहे और वो सेना की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस टीम में रहकर किस तरह से मदद की इसके बारे में उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बताया था कि इस दौरान उनका वजन 76 किलो से 56 किलो ही रह गया था, लेकिन वो इसे अपनी एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। धर्म जैसे मुद्दों पर जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनको बेकार के सवाल की तरह माना। उनका कहना था कि देश सबसे पहले है, धार्मिक पहचान वाली लड़ाइयां केवल समाज में फूट डालने की राजनीति है। उनके ये बयान 1994 में आई उनकी फिल्म क्रांति वीर के उस डायलॉग की तरह है जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के खून का एक ही रंग लाल बताया था।
1: ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। ये मुसलमान का खून।
0: क्रांतिवीर फिल्म का ये सीन नाना पाटेकर की छवि से जुड़ गया और हर मंच पर उन्होंने हिंदू मुसलमान के झगड़ों को राजनीतिक साजिश ही बताया। नाना पाटेकर ने हिंदू मुस्लिम संबंधों पर अपनी माँ द्वारा कही गई एक बात बताई थी। उनकी माँ ने कहा था कि दोनों धर्मों में प्रार्थना का बस तरीका अलग है और कुछ नहीं। जाति के मुद्दे पर भी उनका वही जवाब था जो धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर था। वो मानते थे कि जाति से ज्यादा हमें भारतीयता को महत्व देना चाहिए क्योंकि इंसान जन्म से किसी धर्म या जाति का नहीं होता, उसे बाद में ये सब बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: और आज मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने गुरुग्राम के जल भराव से लेकर राहुल गांधी की धरने वाली पॉलिटिक्स पर कई बड़ी बातें कही। देखिए, मुख्यमंत्री सैनी साहब, आपका बहुत स्वागत है पंचायत आज तक के मंच पर। मुख्यमंत्री जी, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से आपके विधायकों की मुलाकात हुई, आपकी भी 1-to-1 पीएम से बात हुई है, थोड़ा हमें बताइए कि क्या बताया गया, क्या चर्चा हुई उस दिन?
4: अंजना जी, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके पास समय का अभाव होता है क्योंकि उनका एक एक मिनट वो लगा होता है, सेकंडों में बात करते हैं, कई बार इतना टाइट होता है, उस समय में से हरियाणा के हमारे प्रतिनिधियों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार जो बोलती है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करने का काम हम करते हैं। नहीं तो अंजना जी, मैं देखता हूं घोषणाएं हो जाती हैं, लोग 1-2 साल तो देखते हैं।

0: की घोषणा की थी, पूरी नहीं हुई, फिर भूल जाते हैं, फिर वो नए उसके ऊपर डेंट पेंट करते हैं, फिर नई घोषणाएं लेके आते हैं लोग, फिर बातों में, अब इनकी बातों में नहीं आते। अब ये मारे मारे घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहा है, कोई चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है, कोई कोर्ट को बदनाम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश, संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पर ये इनके समय के अंदर अगर ये अच्छे काम करते तो लोग इनको नहीं जाने देते। जब इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, देश को भ्रष्टाचार की दलदल में इन्होंने फंसाया और लोगों के साथ बद्दा मजाक इन्होंने किया है किसी भी क्षेत्र के अंदर, अंजना जी चाहे राहुल गांधी है या कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग, आप लोग, मैं तो देख रहा हूं, मैं हैरान हूं, कौन सा मुद्दा लेकर के आते हैं? वोट चोरी हो गया का? अरे भाई वोट चोरी किसका हो गया? हर व्यक्ति को अधिकार है वोट पाने का, हर व्यक्ति के नाखून को सही लगती है, वो बटन दबाता है, एक एक व्यक्ति दबाता है बटन।
1: जी हरियाणा को तो एग्जाम्पल बताया जा रहा है ना इस वक्त।
0: नहीं ये
1: नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी से ये सरकार बनी है, वरना सारे लोगों में बहुत गुस्सा था बीजेपी के।
0: अंजना जी मैं बार बार कई बार मंचों के ऊपर से बोल रहा हूँ, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा आप कोई अच्छे पंडित को देखिए और राहुल गांधी के नाम से कोई हवन कराइए, वो कम बुद्धि तो ठीक हो ना। अरे मैं ये नहीं कहता हूं, मुद्दा तो ठीक हो ना कि किस मुद्दे के ऊपर वो उठा करके जनता के बीच में। वोट चोरी का क्या मतलब है?
1: SIR में नाम कट रहा है लोगों का और ऐसे ही नाम उसमें रखे जा रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वोटर।
0: अंजना जी ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, पूरा देश चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे कोर्ट के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे लोकतंत्र के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारी संवैधानिक पीठों के ऊपर विश्वास कर रहा है। विश्वास अगर कोई नहीं कर रहा तो कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं कर रही, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो विश्वास नहीं कर रहे, परंतु उसके अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी जो लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो तो अंदर बैठ कर ये कहते हैं भी ये गलत कर रहा है राहुल गांधी।
1: किसने कहा आपको? दीपेंद्र हुड्डा तो वहां लगातार लगे हुए हैं राहुल गांधी के साथ, पूरे सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस पार्टी।
0: दीपेंद्र तो परिवारवाद में फंसा हुआ है, दीपेंद्र को तो लग रहा है कि शायद मैं कहीं मुख्यमंत्री बन जाऊं, परंतु आप देख रहे हैं ना कांग्रेस में क्या हाल हो रहा है।
1: मुख्यमंत्री जी SIR में अगर वाजिब लोगों का एक परिवार के चार लोग हैं, दो का नाम आ गया, दो का नाम कट गया, तो ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है तो क्या गलत है इसमें?
0: नहीं नहीं नहीं, देखिए ये उसकी अपनी पर्सनल गलती हो सकती है और हाँ। चुनाव आयोग ये नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी है हाँ। और उसने कहा है कि आप फार्म भरिए, कोई गलती है उसके लिए दोबारा ऑब्जेक्शन भी आते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए उसको वो जारी करता है, लगाता है, कहीं आपको गलती लग रही है आप दोबारा फार्म भर के दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये चुनाव आयोग हमारी स्वतंत्र एजेंसी है अंजना जी, और उसकी ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो, यही इसी की खूबसूरती हमारे चुनाव आयोग की है कि जितने ज्यादा वोट पोल होंगे, जितने ज्यादा कोई व्यक्ति वोट से ना रहे, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है। परंतु क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे मैं तो हैरान हूं अंजना जी। कहा जी वोट काट दिए, एक घर में कहा इब आप भी पहुंचे, राहुल गांधी जिस घर के अंदर वो गया, जिस घर की उसने फोटो स्क्रीन के ऊपर दिखाई, अंजना जी आप भी गए उस घर के अंदर, इसने कहा कि इस घर में 500 वोट बने हुए हैं, जिस घर में आपने जाकर देखा, मैं तो आपके टीवी पर देख रहा था अंजना जी, आप पूछ रहे थे उसको, कहा जी हम तो चार लोग रह रहे, कहा घर में, वो आदमी कह रहा, कहा यहाँ तो और कोई वोट ही नहीं है, कहा इसके पास कहां से सूचना आई, किसने इसको सूचना दी और किसने इसको कह दिया अभी तक स्क्रीन के ऊपर खड़ा होकर, कह दिया वोट चोरी हो गया, मेरी समझ में नहीं लगी।
1: CJP वालों को आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं?
0: नहीं ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट देखिए,
1: उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार हमारे लोगों को डिटेन कर रही है, प्रोटेस्ट ही नहीं करने देती।
0: नहीं देखिए अंजना जी, प्रोटेस्ट का हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर सकता, हमने भी किए हैं ना जी, हमने भी किए हैं प्रोटेस्ट के। क्या है मायने? प्रधानमंत्री जी को गाली देना? मैं अंजना जी विपक्ष को एक बात कहता हूं, देखिए किसी को भी वो मानते होंगे, अल्लाह को मानते होंगे, राहुल गांधी कह दे किसी को तो मानता होगा, वेटिकन सिटी में मानता होगा किसी न किसी को, हैं? वेटिकन सिटी में जरूर मानता होगा किसी को, वहां जाकर के कह दे वो इटली के अंदर भी मोदी ने कुछ नहीं किया 12 सालों में, कह दे वो, देश के लोग उसको जवाब देंगे। गाली देना आसान है, काम करना। मोदी ने दिन रात,
1: आप लोग भी राहुल गांधी पर जबरदस्त चोट करते हैं, मतलब वो जनेऊ पहनते हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन
0: पखंडी है, जोड़ रहे हैं, पखंड करते हैं।
1: इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
1: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो
2: विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
4: वो इन लॉज को लाना है, कार मिल जाएगी।
5: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
6: कैनरा व्हीकल लोन से
4: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
5: क्विक प्रोसेसिंग
7: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
8: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
9: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
10: आगे आगे, अरे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
2: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
3: इसका नाम क्या रखेंगे?
4: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
5: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और लोग पेड़ काट कर कागज बनाते हैं और फिर उस कागज में लिखते हैं कि पेड़ मत काटो। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1 लाख तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है, इसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दुहार। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम। हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है।
2: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
0: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है। ममता बनर्जी तो कोलकाता से रवाना भी हो चुकी है। कहती हैं अभिषेक वही हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। प्रदर्शन की इस जोर आजमाइश धक्का मुक्की में चोटें दोनों तरफ के लोगों को लग रही हैं। अब पुलिस वाले, खास करके महिला पुलिसकर्मी भी इसका शिकार हो रही है। प्रदर्शन में हिंसा की एक तस्वीर और दिखी है। कश्मीर से आए इस युवक की पहले तो प्लेकार्ड छीनकर फेंकी गई, फिर जवाबी नारेबाजी के साथ कांग्रेसियों ने इसकी पिटाई कर दी। दिल्ली के बाहर लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव, मीसा भारती प्रदर्शन कर रही थी। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन था तो बेंगलुरु में सीजेपी 10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन से पहले वार्म अप कर रही थी। सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद आज गांधी समाधि पर विपक्षी प्रदर्शन। बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से लेकर बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल थी ये कंपनियां। और चले गए बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर। पुणे में अंतिम संस्कार। गोवा के घर में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में खबर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े विपक्ष के रण की। जी हां, लगातार पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी एनडीआ गठबंधन के सांसदों के साथ ज्ञानेश कुमार पर वार कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और आज ये मार्च राजघाट तक पहुंच गया और ये मांग भी पहुंच गई। पहले आकाशवाणी, उसके बाद जंतर मंतर और फिर अब राजघाट के बाद राहुल गांधी की कल की रणनीति क्या है, अब हर कोई यही सोच रहा है। क्योंकि राहुल गांधी चैलेंज भी दे रहे हैं और इस बात की गारंटी भी कि हम इन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। सवाल यही है कि क्या वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठाकर राहुल और इंडिया गठबंधन वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवा देंगे। देखिए,
1: 3 दिन से लगातार राहुल का ज्ञानेश पर वार। पहले आकाशवाणी, फिर जंतर मंतर, अब राजघाट। तीसरे दिन कनॉट प्लेस पर खाना, फिर राजघाट पर जाना। राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, क्या है पूरी रणनीति? पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों हुए राहुल? राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के इस्तीफे को एक चैलेंज के रूप में ले लिया है। क्या इससे मोदी सरकार झुकेगी, जैसे नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? क्या वोट चोरी के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी होगा?
2: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका। उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है। और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: कार्रवाई की गारंटी की बात कहने वाले राहुल गांधी का अब तीसरा दिन है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और CEC का इस्तीफा मांग रहे हैं। 6 अक्टूबर राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपद पर लंच करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर अब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई।
3: जाना तो चुनाव आयोग है, अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक नहीं जाने देगी तो हम आकाशवाणी भवन जाएंगे, आकाशवाणी भवन से उठाएगी तो हम जंतर मंतर जाने का प्रयास करेंगे, जंतर मंतर से हटाएंगे राजघाट जाएंगे, राजघाट से हटाएंगे प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग को विपक्षी सांसदों से मिलना पड़ेगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होकर रहेगा।
1: आपको बता दें कि पिछले 3 साल में राहुल गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं और पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी ने प्रदर्शन वाली ऐसी पॉलिटिक्स शुरू की है कि हर कोई आश्चर्यचकित है। और पिछले 2 दिन से पहले राहुल विपक्षी सांसदों के साथ लंच करते हैं, फिर धरना देने निकल पड़ते हैं और विपक्षी सांसदों की बस राजघाट पहुंचती है।
4: प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से देश की जो भी आवाज है और उनको सुनना चाहिए। और ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन को जीतना, इस छल को छोड़ देना चाहिए।
1: और 1 घंटे तक बस राजघाट के बाहर खड़ी रहती है क्योंकि राजघाट के सभी गेटों पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। पुलिस ने सभी गेटों पर तगड़ी बैरिकेडिंग की हुई थी। पूरे 1 घंटे के इंतजार के बाद राहुल और प्रियंका राजघाट पर अंदर जाते हैं। और बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, तो साथ में कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद भी मौजूद रहते हैं। गांधी समाधि की परिक्रमा के बाद सभी सांसद समाधि स्थल पर बैठ जाते हैं।
5: महात्मा गांधी हैज ऑलवेज स्पोकन अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह टीचेस अस टू थिंग्स, दैट इफ यू हैव टू फॉलो दैट पाथ यू हैव टू शेड टू फियर्स इन लाइफ। वन इज द फियर ऑफ गोइंग टू प्रिजन, टू इज द फियर ऑफ डाइंग। सो इफ यू हैव टू टेक दैट पाथ ऑफ सत्याग्रह, एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस टू फियर्स नीड्स टू बी शेड। बीजेपी कैन ओनली बुली यू बाई शोइंग देयर माइट विद रिगार्ड टू द एजेंसीज एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस दे हैव सक्सेसफुली होमोजेनाइज्ड।
6: हमारी शांतिपूर्वक लड़ाई चलती रहेगी और हम लड़ेंगे। ये हमारे पे FIR करें, ये हमें मारें, ये हमें मार ही डालें, हम लड़ने से नहीं हटेंगे।
7: सवाल है भारत के संविधान को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की। ये जन जन का विश्वास है और परिस्थितियां भी बता रही है कि ज्ञानेश प्रकाश ने 13 करोड़ वोट काके, ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13 करोड़ से ज्यादा वोट काट कर कुछ स्थिति ऐसी कर दी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया।
8: हम गांधी जी से आशीर्वाद लेने आए कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करें और सफल हों। ज्ञानेश को सद्बुद्धि दो कि वो इस्तीफा दे दे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सद्बुद्धि दो कि गलत काम छोड़ दें, कभी जिंदगी में एक सही काम कर लें।
1: तीसरे दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों ने राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा।
9: एक तरफ ब्रांड मोदी की मजबूत स्थापित राजनीतिक विरासत है, तो दूसरी ओर ब्रांड रागा की औचक एक्शन लेना, सड़क पर उतरना और टकराव मोल लेने की राजनीति। अब जनता को आने वाले सियासी रण में तय करना है कि उसको कौन सी ब्रांड ज्यादा पसंद है।
1: दिल्ली में विपक्ष ने आज ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए गांधीगिरी दिखाई, तो दिल्ली से बाहर लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में RJD ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें तेजस्वी यादव और मीसा भारती शामिल हुए। जम्मू में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, तो भोपाल में भी कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। तो बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। CJP फाउंडर अभिजीत दिप के, यूट्यूबर ध्रुव राठी और एक्टर प्रकाश राज ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकलेगी, तो 9 अक्टूबर के लिए राहुल गांधी और विपक्ष का प्लान क्या है, ये राहुल गांधी की नई रणनीति के तहत कल ही पता चलेगा।
10: स्ट्रेटजी हर रोज सुबह आपको पता चलेगी क्या स्ट्रेटजी।
1: दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आज राहुल गांधी के प्रदर्शन का तीसरा दिन था। राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में कल इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की पूरी टीम कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। संदेश यही है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट है। इस लड़ाई में संपूर्ण विपक्ष शामिल है। कल क्या होगा, राहुल गांधी का प्लान क्या है, हम आपको दिखाते हैं।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिप के दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
11: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने।
1: सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, पटना में तेजस्वी यादव ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर तेजस्वी को रोकने की कोशिश की तो तेजस्वी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए।
12: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं, देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव, देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है, दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
12: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
13: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
14: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
15: मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
16: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। So we are not playing safe. We are ready to risk everything to save the democracy of this country.
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
17: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। ये देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर बंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
16: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीपके ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
0: आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया। 7 सितंबर की देर रात नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया और सुबह 5:30 बजे गोवा के अस्पताल में नाना को मृत घोषित कर दिया गया। पूरा बॉलीवुड नाना पाटेकर के निधन से स्तब्ध है। 75 वर्ष के नाना मायानगरी मुंबई में 5 दशक तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं या आपको मिलेंगे जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे। एक्टिंग नाना ऐसी करते थे कि जो भी किरदार करें वो जीवंत हो उठता। लेकिन नाना को मुंबई से ज्यादा प्यार अपने गांव से था और इसीलिए नाना का अंतिम संस्कार पुणे में उनके गांव डोंजे में किया गया।
18: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
1: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया नाना पाटेकर का। 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
19: 5:20 को डिक्लेयर किया कि वो डेड
1: हो गए। यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
18: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
1: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
18: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
1: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगाई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
18: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से, कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
20: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
21: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे, ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
20: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लग रहा है सर।
0: क्या डर? चलो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है।
3: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ट्रंप की ख्वाहिश नोबेल हो अपना। देखते रहिए दशक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: यार लोन भूल गया। मैरी?
2: It's
1: just a good bank ना।
3: Ujjivan Small Finance Bank.
1: Small Finance Bank.
3: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about
1: us. Ujjivan, nothing small about us.
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
6: सर, कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
7: कैसो फास्ट 27%,
6: इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
11: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
12: इट्स द माय वे।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, हर देश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
19: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: इन एसोसिएशन विद
9: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
9: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
5: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
3: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका। उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है। और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
4: चिराग जी, आपने सभी दलों को, यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सभी को बुला रहे हैं और 2027 में चुनाव भी है, क्या कुछ कनेक्शन?
17: मैं कतई आज के दिन को या आज के इस मंच को, आज के इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ के नहीं दे सकता।
4: अगर इन केस एनडीए के साथ आप हैं यहाँ या 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि ये समय नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से है ये सवाल।
8: देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि अलायंस का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा। गठबंधन की राजनीति में मैं, मेरी पार्टी लंबे समय से हम लोग रहे हैं। वीपी सिंह जी की सरकार में भी गठबंधन की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल साहब की हो, अटल जी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, या मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, गठबंधन राजनीति का हिस्सा लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा रही है कि जहाँ पे गठबंधन हो अच्छी बात है, बट जहाँ पे गठबंधन अगर नहीं भी होता है तो पार्टी की तैयारी हर सीट पर हम लोग की रहनी चाहिए, ताकि पार्टी का विस्तार उस दृष्टि से हम लोग कर सकें। ऐसे में मुझे नहीं पता गठबंधन का क्या स्वरूप होगा नहीं होगा, बट 403 सीटों पे हमारी पार्टी तैयारी जरूर कर रही है, ये तय है, और चुनाव हम लोग जरूर लड़ेंगे।
4: दूसरे दलों के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पर यूपी में?
8: देखिए, हमारा केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एनडीए के साथ गठबंधन है। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर लोकसभा के चुनाव हो तो गठबंधन के बारे में कोई वैकल्पिक सोच रखी जाए। झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा, दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा, बट नागालैंड में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मेरे दो विधायक आज की तारीख में नागालैंड में भी हैं। तो ऐसे में जहाँ पे गठबंधन का स्वरूप उत्तर प्रदेश में, जैसे ये स्वरूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे में जरूर हम लोग विकल्प पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
4: लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
12: दिल्ली पुलिस से कांग्रेस नेताओं की कई बार नोकझोंक हुई। जब पुलिस ने मीडिया को हटाया तो राहुल भी पास आकर खड़े हो गए। राहुल को धरने पर बैठा देख गेट के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी कैंपस में खूब हंगामा किया। गेट के पास जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने हटा दिया।
20: देश को नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके हाईजैक किया है, अमित शाह जी ने हाईजैक किया है, मोहन भगवत जी ने हाईजैक किया और ज्ञानेश कुमार ने उनकी मदद की है।
21: ईमानदारी से चुनाव में जनता बार बार उनको परास्त करती है, तो रोज नया नया जो बतंगा खड़ा करते हैं।
12: राहुल गांधी से अलग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने बस में बिठा लिया। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन भी थे। इस दौरान अखिलेश चुनाव आयोग पर चुटकी लेना नहीं भूले।
22: अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है, चीफ इलेक्शन कमीशनर। उन्होंने ये कहा है वो व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे।
12: अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से बच रही है। दिल्ली पुलिस ने भले ही विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद नहीं जाने दिया, लेकिन विपक्षी सांसद आर पार के मूड में है।
23: बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया।
24: वो वोट चोर गणेश को रिजाइन करना चाहिए, उसका पहले जाना चाहिए देश से।
25: जया जी, कहां तक जाएंगे आप लोग? लगातार आप लोग का ये आंदोलन चलेगा?
26: अभी जब तक पैर चलेगा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: स्वागत एक बार फिर से आपका दशक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस ख्वाहिश की दुनिया में जिसकी चर्चा एक बार फिर से है, जहां ट्रंप एक बार फिर से खुद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं। और इसके पीछे ट्रंप का तर्क यह है कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए और ऐसे काम किए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े काम करने के बाद भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो इससे नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति की साख को नुकसान पहुंचेगा। दिखाएं आपको ट्रंप का सपना, नोबेल हो अपना।

0: फिर एक बार ट्रंप की नोबेल पुरस्कार वाली दरकार। नोबेल कमेटी को डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत या धमकी? ट्रंप बोले, मुझे नोबेल नहीं दिया तो कमेटी की बदनामी होगी। आज युद्ध रुकवाने का दावा, एक बार नोबेल पाने का इरादा। नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले ट्रंप की जागी हसरत। एक तरफ तो पेंटागन ने यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को फिर से शुरू करने की तैयारी पूरी करने का ऑर्डर दिया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों से पहले ईरान पर ट्रंप बड़े हमले का फैसला ले सकते हैं। अब एक तरफ ईरान पर बड़े हमले की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की अपनी हसरत जाहिर कर दी है।
1: The Nobel Peace Prize is due to be awarded on Friday. Do you have any regrets about how you've used your time behind that desk?
2: The Nobel Peace Prize will be Friday. Well, last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging. I'm just telling you the facts. No president probably has settled any wars. I settled 8 wars and big ones, saved millions and millions of lives.
0: 2025 के नोबेल पुरस्कार से पहले भी ट्रंप ने ऐसी ही हसरत जताई थी, लेकिन शांति का नोबेल जीता वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा था कि 2025 का नोबेल पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया जा रहा है जिन्होंने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा है। आपको बता दें कि मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया। ट्रंप को इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को पुरस्कार का दावेदार घोषित कर चुके थे और कई मौकों पर कह चुके थे कि उन्होंने दुनिया में चल रहे 7 युद्धों को रुकवाया। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने मचाडो से नोबेल फौरन लपक भी लिया। और अब शांति के नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले ट्रंप के नोबेल वाले अधूरे अरमान फिर से जाग उठे हैं। इस बार ट्रंप दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस दावे के साथ सवाल ये भी उठता है कि ईरान में तो युद्ध अब भी चल रहा है, तो ट्रंप इस पर भी अपनी दलील पेश करते हैं।

0: There's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon, and that's a positive thing, a very positive thing.
1: पिछली दफा ट्रंप ने नोबेल पाने के लिए क्या क्या ना किया, पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे खुद को नॉमिनेट करवाया, तो अर्मेनिया और अजरबैजान से नोबेल पुरस्कार के लिए खुद को नॉमिनेट करवाया।
2: To award President Trump with the Nobel Peace Prize because
3: do we have draft to sign now? I think President Trump deserved to have Nobel Peace Prize.
1: इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था, तब अपना नॉमिनेशन सुनकर ट्रंप खूब गदगद हुए थे। लेकिन ट्रंप के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि शांति का नोबेल तो चाहते हैं, लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी क्यों नहीं रुकवा पाए।
4: He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak, in one country, in one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
1: जिस वक्त ट्रंप खुद को नोबेल का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे थे, उसी दौरान हिलरी क्लिंटन ने ऐलान किया था अगर ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा देते हैं तो उन्हें नॉमिनेट करेंगी।
5: President Trump were the architect of that, I'd nominate him for a Nobel.
1: शांति का नोबेल जीतने के लिए ट्रंप ने खूब माहौल बनाया, और जब माहौल नहीं बना तो दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए जिसने खुद ही नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की।
6: Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. The big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times.
1: अब एक बार फिर से ट्रंप खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का दावेदार बता रहे हैं। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में मिले शांति नोबेल पुरस्कार का जिक्र करते हुए मन की कसक भी बयान करते हैं और कहते हैं कि उन्हें आज तक समझ में नहीं आया कि ओबामा को नोबेल क्यों मिला।
0: I'm saying that when you settle 8 wars and nobody's ever, I'll bet you if you look at the Nobel Prize, look, Obama got it and he didn't do anything. He still doesn't know what he got it for. He got it when he got elected right at the beginning. And he had no idea why he got it.
1: सवाल यह है कि क्या शांति के नोबेल वाली ट्रंप की हसरत इस बार पूरी होगी या फिर से उनका नोबेल वाला सपना छन्न से टूट जाएगा। आज तक ब्यूरो।
7: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है और वो बयान ये है कि हम ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान पर हमला कब तक नहीं करेंगे, हाँ वो तारीख भी ट्रंप ने बता दी है। ट्रंप ने कहा है कि 3 नवंबर तक, अगले महीने की 3 नवंबर तक, लगभग 1 महीना और ऐसा होगा जब वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। तो क्या मिड टर्म चुनाव तक हमला नहीं करेंगे ट्रंप? हाँ, ट्रंप ने यही कहा है कि मिड टर्म चुनाव तक हम ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत भी चल रही है, ये ट्रंप हमेशा कहते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि ना हम अमेरिका से हमारी कोई बातचीत चल रही, ना हम बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा बयान ये है कि 3 नवंबर से पहले ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, तब तक अमेरिका में मिड टर्म चुनाव हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है, यह खुद उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने 3 नवंबर से पहले ईरान पर हमला नहीं करने की बात कही। खबर अब ईरान अमेरिका युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तो शांति है, लेकिन हूती के हमलों ने सऊदी अरब को दहला कर रख दिया। हूती ने ड्रोन और मिसाइल से सऊदी के अबाह एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हूती सऊदी पर हमला कर रहे हैं और इन हमलों ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि हमले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है।

0: ईरान पर अमेरिकी हमले की बड़ी तैयारी। मिड टर्म से पहले ईरान पर होगा हमला। नए हमले के प्लान पर पेंटागन की मुहर। हमले से पहले सऊदी पर हूती का अटैक। सऊदी एयरपोर्ट पर हूतियों का हाहाकार।
1: और इस समय हम आपको सीधे फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के पैतृक गांव ले चलते हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही हैं नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोगों की भारी भीड़। कल रात नाना पाटेकर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, उसके बाद से ये भीड़ लगी हुई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
2: पुष्प चक्र अर्पण करून हा सोहळा संपन्न होईल।
1: लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर, ज्या ठिकाणी आपण आहात, जबरदस्त नाना पाटेकर की फॅन फॉलोइंग।
2: सर्वांना विनंती,
1: और
2: या मंडपाच्या समोर आपण जी मंडळी
1: इस समय आप देख रहे हैं, पुणे के पैतृक गांव नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पहुंचा है। और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। सिनेमा जगत में नाना पाटेकर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता 75 वर्ष के थे, हार्ट अटैक हुआ था नाना पाटेकर को, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं गया। नाना पाटेकर मुंबई के मणिपाल अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था, और लगभग सुबह 5:30 बजे नाना पाटेकर को मृत घोषित किया गया। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर डोंजे गांव, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये डोंजे गांव की है, पुणे में डोंजे गांव है, यहीं पर नाना का जन्म हुआ था और यहीं पर अंतिम संस्कार भी हुआ। अंतिम विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे, विभिन्न बॉलीवुड के सितारे पहुंचे, और ये तस्वीरें हम आपको नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा के दिखा रहे हैं। जैकी श्रॉफ डोंजे गांव पहुंचे थे नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए। भावना अग्रवाल हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। भावना, हम चाहेंगे कि आप इन तस्वीरों को जो इस समय आज तक पर हम दिखा रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कौन कौन वहां पर मौजूद है। भावना, भावना आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी संवाददाता से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। पुणे के डोंजे गांव जो कि नाना पाटेकर का गांव है, वहां लाया गया। सीने में तेज दर्द के बाद नाना पाटेकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें सुबह 5:30 बजे मृत घोषित किया गया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गोवा में थे वो, अपने फ्लैट में थे, सीने में तेज दर्द की उन्हें शिकायत हुई और उसके बाद वो बेहोश मिले। मणिपाल अस्पताल में डॉक्टर्स ने सुबह 5:30 बजे नाना को मृत घोषित किया गया। नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। हिंदी और मराठी सिनेमा के सम्मानित अभिनेताओं में नाना पाटेकर शुमार किए जाते थे। 1978 में फिल्म गमन से अपने फिल्मी करियर की नाना पाटेकर ने शुरुआत की। और इसके बाद नाना पाटेकर की कई सारी प्रसिद्ध फिल्में आई। नाना ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, खामोशी, द म्यूजिकल याद होगा आपको, अब तक छप्पन, नट सम्राट जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। 3 नेशनल अवार्ड नाना पाटेकर को मिले थे। 2013 में नाना पाटेकर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे, तुकाराम मुंडे, चंद्रकांत पाटिल, भाई जगताप, ये तमाम जो लोग थे नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में, ये लोग पहुंचे थे। मुरलीधर मोहले, सुनेत्रा पवार, माधुरी मिसाल, ये सभी मंत्री, बीजेपी के नेता, गोपीचंद पड़लक, सदाबाऊ खोत। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे के उनके पैतृक गांव में, और अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को गोवा से एयरलिफ्ट करके यहां लाया गया है। ओंकार बावले हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। ओंकार, बताइए डोजे गांव में क्या कुछ चल रहा है अभी, कौन कौन वहां पर मौजूद हैं, इस अंतिम संस्कार के बारे में कुछ बताइए। ओंकार, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नाना पाटेकर के नहीं रहने पर बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्मी जगत के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी के बयान आए,
3: अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे।
4: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
5: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
6: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
7: कंट्रोल कंट्रोल उदय,
8: ये देना मित्र।
1: अलविदा नाना पाटेकर। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
2: गैसो फास्ट 27%,
1: इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: इन एसोसिएशन विद
14: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
16: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
17: नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कायदा के खातिर भारत में
18: 25 साल पहले 2001 को आज की ही तारीख, जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 से जनसेवा की जो शुरुआत हुई वो बिना रुके आज भी जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर और अब सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे। मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं में शामिल हैं। गुजरात में 3 लगातार चुनावी जीत के बाद 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 में भी बीजेपी को लोकसभा में सरकार बनाने का जनादेश मिला। मोदी के 25 साल के शासन की कहानी को उनके समर्थक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में देखते हैं। गुजरात में प्रशासनिक सुधारों से लेकर केंद्र में जनधन, उज्ज्वला आवास, स्वच्छ भारत, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलुओं तक सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
19: सेवा का संदेश सिर्फ कथन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए, और वो आप सभी मेरे नौजवान साथी, देश के कोने कोने से मोटरसाइकिल पर निकले हुए साथी, आप सबने करके दिखाया है।
18: आज जब जनसेवा के क्षेत्र में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यक्रमों के साथ इसका जश्न मनाया जाएगा। पीएम मोदी की जन्मभूमि वड़नगर से उनकी कर्मभूमि वाराणसी के लिए निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा वाराणसी पहुंचेगी, तो वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वड़नगर पहुंचेगी। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आज तक ब्यूरो।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग ने आज राहुल गांधी का रुख राजघाट की ओर मोड़ दिया। राजघाट बापू की समाधि स्थली। इंडिया अलायंस की ओर से आज संदेश यही देने की कोशिश हुई कि कथित चुनाव धांधली की लड़ाई महज राजनीतिक नहीं लोकतंत्र के बुनियाद को बचाने की है। राजघाट तक संग्राम पहुंचाने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे दिन इंडिया अलायंस के सांसदों को लंच दिया। बुधवार को खड़गे के लंच और फिर प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन आज सांसद राजीव राय मौजूद थे। एकजुटता के साथ ज्ञानेश कुमार को हर हाल में हटाने का साझा संकल्प दोहराया गया।
8: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका। उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है।
9: जो सुदर्शन चक्र है वो सज्जनों की रक्षा के लिए है, सज्जनों को डराने के लिए नहीं है। शक्ति दुरुपयोग के लिए होती है, शक्ति दुरुपयोग के लिए नहीं होती है। आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं, प्रेम और जनमत से मिलता है।
3: राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति सरकार को लगातार घेरने की है, तो इस बीच बुधवार के प्रदर्शन पर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पर ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, नामदार भाई बहन दोनों मिलकर अब खुलेआम गुंडई और मारपीट का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी महिला पुलिसकर्मी पर कोहनी चलाती है, तो दूसरी तरफ स्मैश द पेट्रियार्की का ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी खुद ऑन कैमरा महिला पुलिस अधिकारी से धक्का मुक्की और बदसलूकी कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी, काम सिर्फ गुंडई। बीजेपी ने आज पीएम मोदी के समर्थन में कश्मीरी मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बुधवार के इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान अंकित नाम के कांस्टेबल की भीड़ ने पिटाई की थी। उन्हें आई चोट के बाद अस्पताल में उनका इलाज कराना पड़ा है। एक वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र के साथ मारपीट सामने आई है।
23: हम उनको एक एक करके बस की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन जब हम उसको खींचने लगे तो हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हमारे को पीछे से खींचा उन्होंने, कमर से पकड़ के, जैसे हम खींचते हैं तो हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और हम डिसबैलेंस होके भीड़ में धक्का मुक्की होके गिर गए।
24: पीछे से एक लड़का, एक आदमी आया था जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसने ऐसे कंधे से हमें पीछे खींचा तो गिरा दिया तुम दोनों को, फिर उन्होंने पड़े हुए लात मारी, फिर सर को लात मारी है।
3: इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी की शिकार महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पाले अलग अलग लेकिन नारीत्व एक समान। प्रदर्शन के नाम पर ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के साथ ऐसे सलूक के आरोपों के बीच कांग्रेस ने बुधवार के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुलिसकर्मियों को राहुल पानी की बोतल देते दिख रहे हैं। इस बीच राहुल पर महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता के बीजेपी के आरोपों पर पार्टी ने बचाव किया है। आरोप प्रत्यारोप के बावजूद दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया अलायंस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हंगामे से पीछे नहीं हट रहा। गुरुवार को पटना में तेजस्वी यादव भी राजभवन तक मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया।
25: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
3: दिल्ली हो या पटना या देश का कोई और कोना, विपक्ष अब इसे नाक की लड़ाई बना चुका है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के नाम पर विरोध प्रदर्शन अभी शुरू हुआ है। कांग्रेस नवंबर तक ऐसे हंगामों का खाका खींच चुकी है। आज तक ब्यूरो,

आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद आज गांधी समाधि पर विपक्षी प्रदर्शन। राहुल बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से लेकर बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं ये लोग। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल के ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर ने दुनिया को कहा अलविदा। पुणे में अंतिम संस्कार। गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। इन्हें देखने के बाद आपको तय करना है कि इनमें से इंसान कौन है और जानवर कौन। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां एक शख्स बीच सड़क पर एक कुत्ते को गोली मार देता है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां एक रखवाला एक एक कर 22 बंदरों को गोली मारकर उनकी जान ले लेता है।

0: जान जान में फर्क तो होता है, गोली गोली में भी फर्क होता है, मारने और मरने वाले में भी फर्क होता है, कौन मर रहा है या कौन मार रहा है इसमें भी फर्क होता है। अब ये सारे फर्क सिर्फ इंसान करे तो भी फर्क समझ में आता है, लेकिन जब खुद कानून भी फर्क करने लगे तो फर्क की लकीर साफ हो जाती है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। बस थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर लखनऊ की सड़क पर कोई शख्स कंधे से अपनी राइफल उतारे, गोली लोड करे और फिर गोली चला दे, गोली लगने के बाद जिसे गोली लगी है वो इसी सड़क पर तड़प कर मर जाए और मरने वाला इंसान, तो क्या होगा? शर्तिया आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि योगी बाबा की पुलिस या तो कातिल का इनकाउंटर कर देगी या फिर पैर में गोली मारकर लंगड़ा। लेकिन अगर दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली चलाने वाला इंसान हो और मरने वाला बेजुबान मगर भौंकता हुआ कुत्ता, तो क्या इंसानों को इसकी कोई परवाह होगी? कानून तो बाद में आता है। अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर जब तक आप इंसान और जानवरों के बीच के इस फर्क को समझने की कोशिश करें, तब तक एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं, ताकि जवाब देने से पहले आप सही जवाब का फैसला कर सकें। ये लखनऊ तो नहीं, लेकिन लखनऊ से दूर छत्तीसगढ़ के एक गांव की तस्वीर है। दूर दूर तक खेत खलियान है और इन्हीं खेतों में कुछ बंदरों की लाशें हैं। तस्वीर में दिखाई कम देंगे, लेकिन जो गिनती बताई जा रही वो 22 है। इन सभी के सभी 22 बंदरों को एक इंसान गोली से मारा है। जाहिर है इंसान और जानवरों के बीच कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि इंसान तो इंसान ठहरा, दिमाग वाला ऐसा और इतना ज्यादा दिमाग वाला कि कई बार तो खुद इंसानों को कहना पड़ा है कि इंसान से खतरनाक कोई जानवर ही नहीं। पुराना वाला IPC और नया वाला BNS हमें ये बताता है कि इंसान की जान लेने की सजा मौत से लेकर उम्र कैद तक है, लेकिन इंसानों का बनाया वही IPC या BNS जानवरों को गोली मारने पर अधिकतम 5 साल की सजा देता है। अब चूंकि अधिकतम सजा ही 5 साल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जमानती अपराध है। जानवर को गोली मारने के बाद गिरफ्तारी भी होती है तो थाने से ही जमानत मिल जाएगी। खैर, जब इंसान और जानवरों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं, तो फिर इस फर्क का क्या रोना। बात 6 अक्टूबर की सुबह की है। लखनऊ में एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने नीली वर्दी पहन रखी थी, शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा। तभी सड़क पर 2 कुत्ते दिखाई देते हैं। बाइक सवार को देखकर वो भौंकने लगते हैं। वो अपनी बाइक रोकता है, कंधे से राइफल उतारता है, गोली लोड करता है, फिर सामने की तरफ राइफल तानता है। कुछ पल में ही अब दोनों कुत्ते कैमरे पर दिखाई देते हैं। तभी वो उनमें से एक कुत्ते का निशाना लेता है और गोली मार देता है। कुत्ता वही गिर पड़ता है। दूसरा कुत्ता डरा सहमा पहले कुछ देर देखता है और फिर कैमरे से बाहर निकल जाता है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक बुजुर्ग अपने कुत्ते को जंजीर में जकड़े शायद सुबह सुबह टहलने निकले थे। उनका कुत्ता और खुद वो भी हैरानी से इस मंजर को देखते हैं। पीछे एक महिला भी दिखाई देती है। इससे पहले सामने की तरफ से एक शख्स भी आता हुआ दिखाई देता है। वो भी कुछ पल के लिए ये सब कुछ देखता है और निकल जाता है। कुछ देर बाद कुत्ते को गोली मारने वाला भी इत्मीनान से उसी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। अब सड़क के किनारे कुत्ता मुर्दा पड़ा है। गाड़ियां गुजर रही हैं, पर कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। जहां इंसानों की परवाह खत्म होती जा रही है, वहां एक जानवर की सुध लेने की उम्मीद करना ही शायद बेमानी है।
1: थाना तालकटोरा में एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति ने जो बाइक से जा रहा है, एक स्ट्रीट डॉग को बाइक उससे उतर के फायर करके गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर सुसंगत धाराओं पंजीकृत करा दी गई है, जो भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और उस व्यक्ति की पहचान कराई जा रही है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है जिसको डेवलप करके उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
2: अभी तक जो पुलिस में जांच में सामने आया, क्या व्यक्ति की पहचान हो सकी, क्या करता है, कहाँ पे है, कौन है
1: वो व्यक्ति? के हुलिया से और वेशभूषा से अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभवतः ऐसा लग रहा है जैसे सिक्योरिटी गार्ड।
0: लखनऊ से दूर ये कचोट देने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की है। यहाँ के किसान बंदरों से परेशान थे, वो उनकी फसल बर्बाद कर देता। फसलों को बचाने के लिए किसानों ने एक रखवार रखा, रखवार यानी जो फसलों की रखवाली कर सके। उस रखवार के पास एक बंदूक थी, उसने बंदरों को भगाने का सबसे आसान रास्ता चुना। अपनी बंदूक से वो एक एक कर बंदरों को निशाना बनाने लगा। एक रोज कुछ लोगों की नजर खेतों में अलग अलग जगहों पर मुर्दा पड़े बंदरों पर पड़ी। तब पता चला कि इस इलाके में कुल 22 बंदरों को गोली मारी गई है। इलाके के ही एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
3: ग्राम देवगांव में 2 किलो चावर के खातिर हमर गांव में शिकारी लगवा है सिर्फ बेंदरा खेदारे पर, ताकि ककरो भी फसल नुकसान मत हो की के। लेकिन वो शिकारी समझदारी होना चाहिए कि कोई भी बेजुबान जानवर ला भगवाए पर लगे हंसते है, ककरो जान ले पर नहीं लगे हंसते है।
4: जिसने वीडियो बनाया है उसके साथ हम लोग मौका स्थल पे गए, जो जो जगह उसने संभावित बताया वहां जाके हमने तहकीकात की। वह अभी तक हमें 2 बंदरों के डेड बॉडीज मिले, लगभग कंकाल हैं वो। आगे की उनकी डेथ कैसे हुई ये सब वो पीएम वगैरह के बाद पता चल जाएगा। और इस अभी जिसने वीडियो बनाया है उसको पूछताछ के लिए भी अभी बुलाए हैं।
0: अब सच्चाई सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी से पता है। जब इंसानों का मुकदमा ही बरसों ले लेता है तो भला कुत्तों और बंदरों की औकात ही क्या, जानवर जो ठहरे। बेमेतरा से सूरज प्रकाश सिंह के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक। इन दिनों थिएटर में फिल्म दृश्यम चल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म काफी अच्छा कारोबार कर रही है, मगर इसी फिल्म को हथियार बनाकर एक बेटे ने अपने ही बाप के कत्ल की साजिश रच दी। उसने पूरी प्लानिंग बेहतरीन की थी, लेकिन एक जगह चूक गया।
5: समस्तीपुर के दरवा गांव के लोगों के लिए 27 जुलाई की सुबह सख्ते में डालने वाली थी। गांव में रहने वाले रघुवीर सहनी का किसी ने उन्हीं के घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया था। कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी से काट कर। कातिल ने जिस बेरहमी से रघुवीर के चेहरे, गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में वार किए थे, उसके बाद शव को देखना भी मुश्किल था। पुलिस ने किसी तरह से लाश को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मगर कई महीने गुजरने के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने सबसे पहले रघुवीर के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटाई, ताकि कत्ल के मोटिव का पता चल सके और मामले की जांच आगे बढ़े। लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे मामले की जांच आगे बढ़े। हालांकि सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद पुलिस को शक था कि कत्ल की इस वारदात के पीछे सहनी परिवार के ही किसी करीबी का हाथ है। दरअसल अव्वल तो आधी रात को बिल्कुल खामोशी से इस वारदात को अंजाम दिया गया और किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। दूसरा, घर में किसी फोर्स्ड एंट्री के भी निशान नहीं थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद कातिल सहनी परिवार से और उनके घर से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन तमाम थ्योरीज के बावजूद पुलिस को इस केस को सुलझाने का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच कई महीने गुजर गए और पुलिस को एक अनोखी बात पता चली। छानबीन के दौरान किसी ने पुलिस को बताया कि रघुवीर की हत्या हो गई, लेकिन सूरत में रहने वाला उसका बेटा अपने पिता के श्राद्ध तक में नहीं पहुंचा। ये बात पुलिस को चौंकाने वाली लगी, किसी बेटे को अपने पिता की मौत की खबर मिले और बेटा फिर भी घर का रुख न करे तो चौंकना लाजमी है। ऐसे में पुलिस ने रघुवीर के बेटे शिवशंकर की एक्टिविटीज को स्कैन करना शुरू किया, खासकर कत्ल वाले दिन शिवशंकर की मौजूदगी के बिंदु पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। हैरानकुन तरीके से पुलिस ने ये देखा कि वारदात से पहले यानी 26 जुलाई की शाम को ही रघुवीर के बेटे शिवशंकर का फोन ऑफ हो चुका था, लेकिन उसने अपने इसी फोन से वारदात की रात एक बार अपनी पत्नी से बात की थी। पुलिस ने जब शिवशंकर के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। जो बेटा अपने पिता के श्राद्ध में गुजरात से बिहार नहीं आ सका, वही बेटा कत्ल वाली रात को समस्तीपुर में मौजूद था और ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली बात थी। इसके बाद पुलिस ने शिवशंकर को हिरासत में लेने का फैसला किया और आखिरकार उसे सूरत से दबोच लिया। शुरू में तो उसने अपने पिता के कत्ल की साजिश से खुद को बेखबर बताया, लेकिन जब मोबाइल फोन की लोकेशन के हवाले से उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने न सिर्फ अपने पिता रघुवीर सहनी के कत्ल की बात कबूल कर ली बल्कि कत्ल के पीछे जो कहानी सुनाई वो भी चौंकाने वाली निकली।
6: 26-27 जुलाई की रात्रि में दरवा निवासी रघुवीर सहनी की हत्या हुई थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस वहां पहुंची। बाद में पता चला कि इनके पुत्र शिवशंकर सहनी के द्वारा टांगी से काट कर इनकी निर्मम हत्या किया गया है। कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया था और जिसमें SIT में आपको SHO हलई तथा उनके ही थाने के पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर हैं नितिन कुमार को शामिल किया गया था। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये सूरत में रह रहे हैं। अपना जो उस समय मोबाइल वगैरह था इनके पास, सभी मोबाइल को बंद कर लिए थे। बाद में पुलिस अनुसंधान कर रही थी, उसी क्रम में पता चला कि ये जो है सूरत में रह रहे हैं। सूरत से जा करके इनको लाया गया।
5: शिवशंकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो काफी दिनों से अपने पिता की जान लेना चाहता था और पकड़े जाने से बचने के लिए पहले उसने दृश्यम फिल्म देखी थी, फिर पूरी प्लानिंग से सूरत से सफर पूरा कर अपने गांव समस्तीपुर के दरवा पहुंचा। वो सूरत से ट्रेन से पहले पटना और फिर वैशाली आया, वहां से हाजीपुर होते हुए पटोरी स्टेशन तक पहुंचा और फिर ऑटो से जोरपुरा पहुंचकर 4 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की ताकि किसी को उसके गांव में होने की भनक ही न लगे। इसके बाद वो रात के अंधेरे में चुपके से घर में दाखिल हुआ और फिर कुल्हाड़ी से पिता की हत्या कर रातों रात गांव से फरार हो गया।
6: सूरत से चल करके ये आए वैशाली में ट्रेन से उतरे और वहां से फिर पटोरी की ट्रेन पकड़ करके रात में ये 9 बजे पटोरी आए, वहां से ऑटो पकड़ करके आए जोधपुरा और वहां से खेता खेती पैदल जा करके अपने घर गए। घर में करीब रात्रि 12 बजे के आसपास में घर पहुंचने से पहले ही अपना मोबाइल बंद कर लिए थे। घर पहुंचे तो पीछे का दरवाजा, आगे के दरवाजा पर इनके पिताजी सोए हुए थे जो कि मुख्य दरवाजा का गेट बंद था, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उस दरवाजे से ये इंटर किए उसमें और कुछ माने हत्या करने की नीयत से कुछ अपना देखे कि किससे हत्या किया जा सकता है। तो इनको टेंगारी जो है नजर आया, उसको लेकर के पीछे से आए और इनके पिता सोए हुए थे। सोए अवस्था में काफी 3-4 टेंगारी जो है उस पर प्रहार किए उन पे, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी तत्क्षण मृत्यु हो गई और ये टेंगारी फेंक करके वहां से राता-राती जो है अपना मोबाइल बंद किए हुए ही थे चले गए। आपको लगुनिया स्टेशन होते हुए अपना ये जो है निकल गए फिर सूरत की ओर।
5: अब पुलिस ने बाप के कत्ल के इल्जाम में बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कत्ल के मोटिव यानी वारदात को अंजाम देने की वजह अब तक पर्दे में थी। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता अक्सर उसे और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज किया करते थे। उनका व्यवहार काफी आपत्तिजनक था, ऊपर से जमीन जायदाद को लेकर भी उसकी अपने पिता के साथ अनबन चल रही थी, जिसके गुस्से में आकर उसने आखिरकार अपने पिता की हत्या कर दी। कत्ल के बारे में किसी को पता न चले इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन समस्तीपुर आने से पहले ही स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन बीच में एक बार उसने उसी फोन से अपनी पत्नी से बात कर ली और ये उसकी एक बड़ी गलती साबित हुई।
6: इसमें इनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ करने के क्रम में इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि इनके पिता से हमेशा झगड़ा होते रहता था और वो काफ़ी भद्दी भद्दी गालियां देते रहते थे इनको, चाहे या इनकी पत्नी को भी। उसी गुस्से में इनके द्वारा ये कदम उठाया गया था।
5: फिलहाल पुलिस ने शिवशंकर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में उसकी पत्नी का रोल अभी सामने नहीं आया है। ये और बात है कि मकतूल रघुवीर सहनी की पत्नी ने वारदात के बाद अपनी बहू के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दी थी और इल्जाम लगाया था कि इस वारदात में उसका भी हाथ हो सकता है।
6: जब हत्या हुई थी रघुवीर सहनी की, तो उनकी पत्नी के द्वारा कांड दर्ज कराया गया था, उसमें अपने बेटा शिवशंकर सहनी तथा बहू के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। घटना के समय में इनकी बहू जो है, यानी शिवशंकर सहनी की पत्नी जो है, अपने मायके में थी। अनुसंधान के क्रम में उनकी संलिप्तता नहीं पाया गया है अभी तक। ये दोषी केवल यही इन्हीं को पाया गया है, फलतः इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।
5: पुलिस ने एक बेटे के हाथों पिता के कत्ल की इस वारदात को तो सुलझा लिया, लेकिन दृश्यम फिल्म देखकर जिस तरह से एक बेटे ने अपने पिता के कत्ल की साजिश रची और सबूत मिटाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसकी चर्चा हर तरफ है। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: गोमती नदी की बाढ़ में डूबा लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका। पानी लोगों के घरों में अड्डा जमा चुका है, कई लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की आपदा से हैरान परेशान है।
1: राजधानी लखनऊ और फैजुल्लागंज का ये एरिया जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं पानी अभी इससे ज्यादा भी आगे है। अभी हम शुरुआत में है और वहां पर पानी का स्तर ये है कि हमारे घुटनों तक पानी आ गया है।
0: फैजुल्लागंज के लोग मुश्किल में हैं। जिनके आसपास रिश्तेदार हैं वो वहां शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घरों की रखवाली के लिए कई लोग अभी भी बस्ती में हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें इलाके में मुस्तैद नजर आ रही हैं। लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक शिविर बनाया गया है, तो पल पल की जानकारी के लिए एक अस्थायी कॉल सेंटर भी यहाँ काम कर रहा है।
2: यहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहाँ पे हमारे अमीनो लगे हुए हैं। 6 नंबर्स हैं जिसपे जिनको भी शिकायतें होती हैं वो उस नंबर पे कॉल करके यहाँ शिकायतें दर्ज कराते हैं। शिकायतें ये लोग दर्ज करने के पश्चात जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला जाता है, उनके लोकेशन, उनके क्या डिमांड है, उनके नाम पते के साथ। फिर हमारे जो लेखपाल लगे हैं वो उसको ट्रैक करके संबंधित लेखपालों को उस बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, उनको राहत सामग्री जो भी चाहिए होता है।
1: वैसे में प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। इस बाढ़ में कब तक पानी कम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस स्तर पर ये पानी बढ़ा हुआ है, ऐसे में लोगों के लिए अभी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में पानी से घिरे गांव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव तेज है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में ग्रामीण पानी के बीच नाव से सफर करते दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में घरों और रास्तों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के बीच ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 5 दोस्तों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बने हालात और पानी के बीच लोगों की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: रेजिडेंशियल ये बिल्डिंग थी, पॉपुलेशन वाला इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 8:30 जो हैं बज चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जो जवान हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो जवान हैं, पैरामेडिक्स की जो टीम है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो टीम्स हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका जारी है। क्योंकि जो बड़ी रूफ थी उनको तोड़ने के लिए जेसीबी और क्रेन्स यहाँ पर मंगाई गई और बाद में देखा गया कि जो छोटा छोटा मलबा था उसको काटने के लिए कटर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही जो स्निफिंग डॉग्स हैं उनके जरिए भी जो है यहाँ पर मदद ली जा रही। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मलबे में अपना सामान ढूंढ रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे जो एनडीआरएफ का बचाव कार्य है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जेसीबी के जरिए, क्रेन्स के जरिए आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बचाव कार्य चल रहा है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं बचाव कार्य के लिए। और अधिकारी का भी जो हमें सूचना मिली उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो बच्चा बताया जा रहा है उसकी हादसे में जान चली गई और तकरीबन 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और जो स्थानीय लोगों का कहना है और प्रशासन का कहना है तकरीबन 5 से 6 लोग जो है अभी और अंदर फंसे हो सकते हैं, उसको देखते हुए अभी भी जो बचाव कार्य है यहाँ दिल्ली के सीमापुरी में चल रहा है। और ये पहला हादसा नहीं, तकरीबन आज से 1 महीने पहले देखा गया था कि दिल्ली के सत्यनिकेतन में एक पीजी गिरने से तकरीबन जो 7 लोग हैं अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एमसीडी के ऊपर और दिल्ली सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में बार बार क्यों ऐसे बिल्डिंग गिरने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।

0: पड़े
1: नहीं,
0: हैं
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: पूछताछ में आतंकी पायलट का बड़ा खुलासा। इंतकाम की आग में पायलट से बना आतंकी। गाजा का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। इसराइलियों को बेमौत मारने की तैयारी थी। तेल अवीव में विमान को क्रैश करवाना था। आतंकी पायलट का सनसनीखेज कबूलनामा। ओमानी नागरिक हमाम अल हमामी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई बड़े राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान हमामी ने आतंकी साजिश की प्लानिंग से लेकर आत्मघाती हमले के पीछे मकसद का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान हमामी ने कबूल किया है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने से पहले ही आत्मघाती हमले की स्क्रिप्ट लिख चुका था। प्लान को अंजाम देने के लिए ही फ्लाई दुबई से जुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाई दुबई एयरलाइन से जुड़ने के बाद वो आसानी से 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। मतलब यही है कि हमामी आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी कर चुका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमामी ने कई मुल्कों का दौरा किया था, जिसमें अहम है सीरिया का दौरा। जांच एजेंसियों को शक है कि सीरिया में ही हमामी किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया या फिर किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़ गया। मोसाद के हवाले से इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।
1: हमें पता चला है कि हाल के सालों में उस आतंकवादी ने इजरायल के विरोधी देशों, जिनमें से कुछ दुश्मन देश भी थे, उनका दौरा किया था। ये दौरे कम समय के लिए थे। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन दौरों के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन ने उसे सक्रिय किया या भर्ती किया था।
0: टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंट अल हमामी से पूछताछ में शामिल हैं। इजरायली अफसरों ने सवाल जवाब के लिए यूएई की यात्रा की थी। इसके पहले जानकारी मिली थी कि हमामी की कट्टरपंथी सोच के चलते एक बार उड़ान भरने से रोक दिया गया था। ये भी जांच का विषय है कि जब उसे ओमान की नेशनल एयरलाइंस से उड़ान भरने से रोका गया था, तो दुबई की एयरलाइंस में उसे मंजूरी कैसे मिली। बड़ी बात यह है कि अल हमामी ने 7 सालों तक ओमान एयर में काम किया और बीते साल फरवरी में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद जून 2025 में मोरक्को की नेशनल एयरलाइंस से जुड़ा, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक नौकरी की। इसके बाद फ्लाई दुबई एयरलाइंस में बतौर को पायलट नौकरी करने लगा। हमामी की माने तो इसराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष का बदला लेने के लिए उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। ऐसे में इजरायली जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पायलट ने अकेले ही साजिश रची थी या फिर उसे किसी आतंकी संगठन ने इजरायली नागरिकों को मारने के लिए भेजा था। अभी तक इसराइल की तरफ से किसी मुल्क या आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप यही है कि साजिश में ईरान का हाथ है।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद आज गांधी समाधि पर विपक्षी प्रदर्शन। राहुल बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से लेकर बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं ये लोग। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल के ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर ने दुनिया को कहा अलविदा। पुणे में अंतिम संस्कार। गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन।

0: बेहतरीन कलाकार थे। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
1: मजबूत कलाकार और एक बहुत उत्तम व्यक्ति, एक देशभक्त, एक समाज सेवक और एक अभिनेता आज हमारे बीच से निकल गए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।
2: किसानों के लिए, पानी के लिए, जल संवर्धन के लिए जो आत्महत्या कर रहे थे किसान, उनके लिए संवेदनशील भाव से
3: अनपेक्षित धक्का, म्हणजे वाटलं नव्हतं की असं अचानक काहीतरी होईल।
4: और अपने बहुत जो की मदद करते थे वो जहां भी, चाहे वो किसान हो कोई भी हो,
5: मेंटली फिजिकली वेरी स्ट्रांग,
6: इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे इंसान। बहुत बार मुलाकात हुई उनसे, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा अच्छी फिल्म बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलता था।
7: देश के लिए और महाराष्ट्र गोवा के लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर थे, मेरे बहुत ही निजी दोस्त थे।
8: ये न केवल भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पर जिनका भी उनके साथ संपर्क हुआ उसने हम सबको स्तब्ध कर दिया। और सच को सच कहने का उनका साहस, ये सारी बातें उनको सबसे अलग बनाती।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मुंबई मेट्रो में आज सबसे पहले खबर नाना की। कहते हैं कि जिंदगी में अपना किरदार इतनी अच्छी तरीके से, इतने शानदार तरीके से, ढंग से आप निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। 75 वर्ष के नाना

0: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका।
1: 5:20 को डिक्लेयर किया कि वोट है।

0: ये है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे चार दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
1: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
0: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
1: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां।
0: आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
1: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
2: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
0: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है। कमांडो।

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: नक्कल
1: प्रणाम दादू।
2: कहाँ है चुनाव?
3: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
2: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क ना, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
3: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
4: वह सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
3: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
5: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
3: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
6: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
4: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
6: क्या है?
7: ऐसी थी नाना। नाना ने कई बड़े पुरस्कार और सम्मान हासिल किए, लेकिन नाना की सबसे बड़ी उपलब्धि वो किरदार हैं जिन्हें आज भी आप और हम याद करते हैं। किसी अभिनेता के लिए दर्शकों की याद में रहना सबसे बड़ा सम्मान है, और वो नाना को मिला। नाना इस मामले में बेहद सफल रहे, सबसे आगे रहे। नाना हमेशा हमेशा के लिए सिनेमा के दर्शकों के लिए अमर रहेंगे।
8: चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए। अरे जितनी मन्नतें मांगनी आए आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।
5: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
9: यहां ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी।
8: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
3: फिल्मी पर्दे पर एक खामोशी सी है।
9: यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा।
3: अजीब सा सूनापन आ गया है। यकीन करना मुश्किल है कि नाना पाटेकर हम सभी के बीच नहीं है।
8: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा।
3: जितनी बार नाना का ये डायलॉग कानों में पहुंचता है, उतनी बार फिल्म प्रेमी उनकी एक्टिंग के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि लाइट कैमरा एक्शन वाली जिंदगी का वो जगमगाता सितारा अब बैकअप बोल चुका है।
8: रहते रहो, सटते रहो, मरो, आए और गए, खेल खत्म, कोई चीज मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं।
3: अब शूटिंग के सेट पर खालीपन है, कैमरा ऑफ हो चुका है, लाइट्स बंद है, हर कोई इस एक्टर की अनंत यात्रा का गवाह बन रहा है। नाना पाटेकर को चाहने वालों की गमगीन आंखें।
7: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये कल की बात थी जब जंतर मंतर पर धरना देने निकले थे राहुल और प्रियंका गांधी। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है। राहुल गांधी इन दिनों खास रणनीति से हल्ला बोल कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला आजमाया। पहले सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच के बहाने विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हुए और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच करने लगे।
1: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: आज फिर कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया। लोकेशन फिर वही कनॉट प्लेस का इलाका। कल दक्षिण भारतीय व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट था, आज उत्तरी भारत के डिशेस का खास इंतजाम।
2: साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पिएंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
3: लेकिन ये कैसे हो रहा सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
2: अब ये तो देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग, जाकर एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
0: सवाल ये है कि उत्तरी भारतीय व्यंजनों की टेबल पर आज कहाँ के कूच की तैयारी है? क्या आज फिर कल वाला वाकया दोहराए जाने का प्लान है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर दिल्ली पुलिस से टकराने वाले हैं? आज आखिर क्या होने वाला है? मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: वी विल डू इट। सीएम से पीएम पद की अनवरत यात्रा के 25 साल पूरे हुए तो 2047 के विकसित भारत के लिए यही नरेंद्र मोदी का मंत्र था।
1: स्वागत है भाई, स्वागत है।
0: दिल्ली में विकसित भारत सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल की अपनी सियासी जमा पूंजी को कुछ यूं शब्दों में बांधा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए गुजरात की कमान संभाली थी। राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई थी, लेकिन लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से लेकर लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि उनके खाते में आई। सरकारों के प्रमुख के तौर पर मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज देश भर में विकसित भारत संकल्प सभाएं आयोजित की हैं। आज तक से इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि गुजरात से दिल्ली की इस यात्रा में मोदी में क्या बदला और क्या बना रहा। बीते 12 वर्षों से मोदी की सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर मोदी की उपलब्धियों का गुलदस्ता सजा हुआ है। कोविड से लेकर पहलगाम आतंकी हमले जैसे संकट आए हो, या पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी का क्षण, पीएम हर जगह अपने नेतृत्व से पहली पंक्ति में दिखे। सेवा संकल्प सभा में मोदी ने स्मिथ की बहादुरी को भी देश के विकास के मिशन से जोड़ा। गुजरात हो या अब देश, नरेंद्र मोदी के अगर करोड़ों समर्थक हैं तो उन्हें विपक्ष का कड़ा विरोध भी झेलने को मिला है। राजनीति की यही रफ्तीली राहें शायद नरेंद्र मोदी को शक्ति देती होंगी। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पड़े
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना ये।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन।

राजघाट पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने लगातार तीसरे दिन चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए, कहा देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। वोट चोरी की बात कर खड़गे ने फिर से किया मोदी सरकार पर हमला, कहा यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और संविधान पर हमला, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के विरोध प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता हो सकती हैं शामिल, टीएमसी सांसद अभिषेक ने की इस बात की पुष्टि। अभिषेक ने केंद्र पर हमला किया, सत्याग्रह के लिए आए हैं, जेल या मौत का भी डर नहीं। फ्रीडम पार्क में पीपुल्स ट्राइब्यूनल का आयोजन, एसआईआर रद्द करने की मांग, नेताओं ने चुनावी पारदर्शिता और मतदाता लिस्ट से नाम हटाने पर उठाए सवाल। एसआईआर के खिलाफ अभिजीत दीपके, ध्रुव राठी, प्रकाश राज एकजुट, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, बोले वोट चोरी हर नागरिक का मुद्दा है। यूपी एसआईआर पर ओवैसी का सवाल, एसआईआर शुरू होने के बाद 16,18,000 फॉर्म 6 कैसे आए। ओवैसी का आरोप, एसआईआर का सिर्फ एक ही उद्देश्य, बजाय इसके कि वोटर सरकार को चुने, सरकार अपने वोटर खुद चुनेगी। सूत्रों की खबर, सीईसी ज्ञानेश कुमार की जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई, एसआईआर विरोध के बीच घर ईसीआई दफ्तर पर अतिरिक्त जवान तैयार किए गए। दिल्ली सरकार में फिर बड़े प्रशासनिक बदलाव, अश्विनी कुमार को बनाया गया एक्साइज कमिश्नर। हेल्थ सेक्रेटरी रुपेश कुमार ठाकुर को हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर DUSIB की जिम्मेदारी दी गई, उनके बदले मेकला चैतन्य प्रसाद को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी मिली। अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश की चुनौती, कहा दम है तो यहां से खुद चुनाव लड़कर दिखाएं योगी। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा, यहां आकर भी श्रीराम मंदिर क्यों नहीं गए अखिलेश। योगी का अखिलेश पर कटाक्ष, मगरमच्छ पानी में तैरते हुए शांति का उपदेश दे रहा है, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर दी बधाई। सोशल मीडिया पर एडवाइजरी, फेक न्यूज, एआई, मैनिपुलेटेड कंटेंट पर निगरानी बढ़ी, तुरंत प्रभाव से लागू। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक पर बोले मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है CBI। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को हम देंगे नौकरी। मुंबई रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश को मिले करीब 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14,375 रोजगार के अवसर, 47,000 करोड़ का निवेश करेगा एक्मे ग्लोबल। GST काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की गई 5 करोड़। फर्जी MBBS दाखिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी, 840 पदों में से 545 खाली, 52,942 मरीज किए गए रेफर। घाटकोपर ROB का 30% काम पूरा होने के बाद बदला डिजाइन, 3-pier कैप आंशिक रूप से तोड़े गए, ट्रैफिक से परेशान स्थानीय लोग। मुंबई हाईकोर्ट ने सचिन वाजे की महंगी कारों और ओबराय होटल में 100 दिन ठहरने पर आश्चर्य व्यक्त किया, वसूली के आरोप का उल्लेख किया। भिवंडी में गुलाब जामुन के कंटेनर में मिला जिंदा चूहा, वीडियो वायरल होने पर FDA ने मिठाई की दुकान को नोटिस जारी किया। जालना के धामणा बांध पर पानी की रखवाली के लिए पुलिस का पहरा, धामणा बांध में सिर्फ 2% पानी बचा, अवैध पानी निकासी रोकने के लिए रात दिन पुलिस तैनात। पटना की फुलवारी शरीफ में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, आग में झुलसकर महिला की मौत, घर का सामान खाक। यूपी के महोबा में 3 वर्ष की मासूम से हवानियत, झोपड़ी में सो रही बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शादी के अगले दिन युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी, खेत में लटका मिला शव, परिवार में कोहराम। गुजरात के डांग में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, बेरोजगार बड़े भाई को समझाना, छोटे भाई को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जोधपुर में पुलिस को देख 9 किलोमीटर तक भागी स्कॉर्पियो, टायर फटने से हादसा, कार सवार निकले निर्दोष। बागपत में बिजली की चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार, जली दुकान, 5 वर्ष की मासूम और मां की मौत। मुरादाबाद में 26वां तेंदुए पिंजरे में कैद, 46 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी, दहशत बनी हुई है। नागपुर में चलती स्कूल बस में भीषण आग, स्कूली बच्चों को लोगों ने बचाया, 40 बच्चे थे सवार।
ग्रेटर नोएडा में बाइक टकराने से विवाद में सेना के जवान पर हमला, नाक का अगला हिस्सा कटा। चेन्नई में सड़क धसी, 10 फीट गहरे खड्डे में गिरी कार, ओएमआर के सिंक होल से कार को निकाला गया। मुंबई के मुलुंड ईस्ट बीएमसी पीएपी प्रोजेक्ट में 7 गैस सिलेंडर फटे, अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। बागपत में 11 सेकंड का खौफनाक लाइव वीडियो, जोरदार धमाके के साथ फट गया सिलेंडर, मची भगदड़। रायसेन में प्रदर्शन के चलते आग में झुलसा प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल। सोनीपत के एलोवेरा जेल के नाम पर हो रही थी अवैध शराब की तस्करी, चंडीगढ़ से आई थी खेप, बिहार के पटना भेजने की तैयारी। गढ़वा में नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जा रहे शिक्षक को ग्रामीणों ने पकड़ा, स्कूल में 5 घंटे तक चला हंगामा, बर्खास्तगी की मांग। धमतरी में पेट्रोल पंप पर सनकी युवक का नाटक, 2 बाइक में आग लगा दी, नोजल जलाने की कोशिश की। खरगोन में पति के साथ टहल रही महिला के गले से बाइक सवार ने 1.5 तोले की सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद। मोरबी में मालिया कच्छ हाईवे पर ट्रक ने भेड़ बकरियों के झुंड को कुचला, 25 बकरियों की मौत, 30 घायल। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में 40 वर्ष के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, केस दर्ज। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम की मांग पर भड़के डॉक्टर, गेट बंद कर पिटाई की, वीडियो वायरल। WHO की चेतावनी, भारत में कम बारिश, अधिक गर्मी का खतरा, दिसंबर तक मजबूत रहेगा अल नीनो। उधम सिंह नगर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, मंडी में बिकने आया धान बारिश में बहा। बांदीपुरा में मौसम का यू टर्न, अचानक ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में बढ़ा गोमती का जलस्तर, पानी भरने से राहगीर परेशान। आज हिंडन एयरबेस पर दिखी 1960 के दशक की क्रीम रंग की लेफ्ट हैंड ड्राइव फोर्ड सलून। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पुरानी फोर्ड कार में 94वें एयरफोर्स डे के कार्यक्रम में पहुंचे। आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवान सम्मानित। भव्य एयर शो आसमान में वायुसेना के विमानों का पराक्रम। राजस्थान की धरती पर वायु वीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का रोमांच। जोधपुर एयरफोर्स पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने भरी उड़ान, आसमान में हैरत अंगेज करतब। यूपी के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की रही डिमांड, 500 करोड़ के व्यापार का दावा। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 बायर्स और उनके प्रतिनिधि शामिल, निर्यात के कई ऑर्डर मिले। झांसी में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की रौनक, आस्था और भक्ति के रंग में श्रद्धालु। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाइट ट्रैक सेंसर, बाघ के साथ लेपर्ड की भी की जाएगी मॉनिटरिंग। चले गए बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर, पुणे में हुआ अंतिम संस्कार, गोवा में हार्ट अटैक से हुआ था निधन। नाना को बचाने के लिए 45 मिनट तक दी गई CPR, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सीने में तेज दर्द की नाना को ही शिकायत, जिसके बाद उनके फ्लैट पर भेजा गया, वहां पहुंचने पर नाना मिले बेहोश। गोवा के जिस अस्पताल में नाना ने अंतिम सांस ली, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बचाने की हमने पूरी कोशिश की। अंतिम पलों में नाना बेचैन थे, पसीने से भीगे हुए थे, उन्होंने दोस्त को मैसेज लिखा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया, कहा पीढ़ियों तक नाना की एक्टिंग याद रखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा साफगोई निडरता नाना की पहचान थी, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने नट सम्राट, क्रांतिवीर और परिंदा जैसी फिल्मों में नाना के अभिनय को याद किया, बोली सच्ची अभिव्यक्ति, सामाजिक जागरूकता का संगम थे नाना। अक्षय ने लिखा नाना बेमिसाल, उनकी यादें मैं संजो कर रखूंगा। रवि किशन ने लिखा नाना भारतीय सिनेमा के महान कलाकार, स्टारडम से कोसों दूर, सादगी उनकी पहचान।
5 नवंबर को रिलीज से पहले फिल्म रामायण का 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखा जाएगा। दर्शकों को फिल्म से एक दिन पहले बड़े पर्दे पर देखने का मिलेगा मौका। अजय देवगन के दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर बनाई शानदार रफ्तार। 6 दिन में भारत ने 232 करोड़ रुपए कमाए, 350 करोड़ का अधिक का अभी तक कलेक्शन। आलिया भट्ट स्पेन में कर रही है वेकेशन एंजॉय, खूबसूरत तस्वीरें की शेयर। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद मंडाडी अब ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर आप देख सकेंगे। हाइप का विवोस कॉन फेस्टिवल पहली बार होने जा रहा है भारत में। दिल्ली में 27-28 मार्च 2027 को होने वाले इस फेस्टिवल में के पॉप के कलाकारों के साथ भारतीय कलाकार भी करेंगे परफॉर्म। 13 वर्ष की उम्र में पोस्टर पेंट करके 35 रुपए महीना कमाने वाले नाना ने तय किया करोड़ों की कमाई का सफर। मुंबई में एक बीएचके में रहने वाले नाना अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति। आरबीआई के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाए लेंडिंग रेट्स। 8 अक्टूबर से लोन के लिए चुकानी होगी आपको अब अधिक ईएमआई। होम लोन की लागत बढ़ने से पहली बार घर खरीदने वाले और ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट पर सबसे बुरा असर, घरों की मांग पर बन सकता है दबाव, हो सकती है कम। फ्लोटिंग रेट वाला गोल्ड लोन लेने वालों की ब्याज लागत बढ़ने की आशंका, ऊंची ब्याज दरों से गोल्ड के निवेश अपील के प्रभावित होने की संभावना। अर्थव्यवस्था, नौकरी, दाम और अपनी आय को लेकर ग्रामीण परिवारों की चिंता में लगातार 6 महीने बढ़ोतरी। सितंबर में ग्रामीण परिवारों की महंगाई की धारणा 6.8% रही। आज से एयरटेल के पोस्टपेड प्लान 50 रुपए तक महंगे होने से नए प्लान वाले ग्राहकों को साल में 600 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ेंगे। बदले में इंटरनेशनल रोमिंग का बेनिफिट मिलेगा। अमेजॉन ने फिर से छटनी करते हुए अमेरिका, भारत और ब्रिटेन में करीब 1000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को निकाल दिया। ई कॉमर्स सेक्टर में लागत और ऑटोमेशन के बीच हायरिंग पर भी उठे सवाल। खरीफ की नई फसल की आवक शुरू होने से सरकार को प्याज के दाम घटने की उम्मीद। प्याज के औसत रिटेल भाव में साल के उच्चतम स्तर से 1 से 21 रुपए तक की गिरावट। एलोन मस्क ने एक्स पर लिखा कि कुछ बड़े बिजनेसमैन भारत में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री रोकने में लगे हैं, कंपनी को अभी भी आखिरी सरकारी स्वीकृति का इंतजार। अगले 5 वर्ष में क्विक कॉमर्स का बाजार करीब 7 गुना बढ़ने का अनुमान। किराने के सामान के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े घरेलू सामान भी होंगे इसका हिस्सा। पूर्वी यूक्रेन में रूस का भीषण हमला, बस पर हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल, कीव हमले में 2 की मौत। रूस की नेटो को चेतावनी, बाल्टिक देशों में अमेरिका समेत अतिरिक्त नेटो सैनिकों की तैनाती को रूस मानता है तनाव बढ़ाने वाला कदम। तुर्की की सरकार का बड़ा निर्णय, यमन की ईरान समर्थित होती मिलिशिया के हमलों से सऊदी अरब को मदद के तरीकों पर कर रहे हैं मंथन। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने अमेरिका के खिलाफ किया बड़ा दावा, कहा मई में अमेरिकी रिसर्च ने माना कि ईरान ने अमेरिका के 42 विमान मार गिराए। इसराइल के यरूशलम में ब्रिटेन ने बंद किया अपना कॉन्सुलेट, इसराइली विदेश मंत्री ने दी जानकारी, पुराना कॉन्सुलेट काम करता रहेगा। दक्षिण कोरिया मिस्र ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदला, सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश पीएम के बीच बड़ी बैठक, नया लड़ाकू विमान दोनों मिलकर बनाएंगे। पोलैंड के स्कूल में 15 वर्ष के पूर्व छात्र ने चाकू से हमला कर दिया, 37 वर्षीय महिला के टेकर की मौत हो गई, शिक्षक और प्रिंसिपल हुए घायल। फ्रांस में थम नहीं रहा छात्रों का प्रदर्शन, देश भर में 224 हाई स्कूल बंद, आंशिक रूप से खुले हैं 150 स्कूल। कनाडाई लेखिका एन कार्सन ने जीता साहित्य का नोबेल, स्वीडिश अकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार बेबाक और नए प्रयोग के लिए दिया गया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में चंडीगढ़ से हमारे स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पिछले 72 घंटों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सड़क पर जो मोर्चा खोल रखा है वो भारतीय राजनीति को किस नए मोड़ पर ले जाएगा। 2014 के बाद से अगर आप ये याद कीजिए तो विरोध तो कई मुद्दों पर हुए, लेकिन ये पहला मौका है जब मोदी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष इस तरह से किसी एक मुद्दे पर मैराथन आंदोलन कर रहा है और उसके लिए सड़कों पर उतरा है, जिससे ये टकराव अब एक सीधे आर पार के निर्णायक संघर्ष में बदल चुका है। आंदोलन के तीसरे दिन आज विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली। पहले कनॉट प्लेस में एक अहम बैठक की और फिर वहां से वो सीधे पहुंच गए राजघाट के लिए कूच किया, और राजघाट में वो पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ऐसे तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के रहे जो राजघाट में अंदर गए। उन्होंने बाबू को श्रद्धांजलि दी। आज हमारी पड़ताल इसी बात पर केंद्रित होगी कि क्या विपक्ष की ये पहली मैराथन हुंकार ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हासिल कर पाएगी।

0: इसके बाद हम आपको दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए वो वीडियोस दिखाएंगे जिनके आधार पर राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। 7 अक्टूबर को विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे, उन सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी धक्का मुक्की और झड़पें हुई। इस झड़प में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना और कांस्टेबल देवेंद्र संधु समेत कई महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, बदसलूकी और धक्का मुक्की का आरोप लगा है। कांस्टेबल अंकित कसाना ने खुद आरोप लगाया कि करीब 40 से 50 प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पहले घेरा, उनको घेर कर पीटा गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनके हाथ की उंगली पर दांत से काट दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरएमएल हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। वहीं कांस्टेबल देवेंद्र संधू जो हैं, वो यह बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जमीन पर गिराया पहले, फिर जमीन पर गिराने के बाद लात घूसों से उनको मारा गया और इस हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने हमला करने, धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार करने और इन गंभीर धाराओं के तहत कुल 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। इन एफआईआर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ मौजूद कई दूसरे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। देखिए, इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या नाना पाटेकर की जान बच सकती थी। रात के करीब 2:30 बजे जब नाना पाटेकर को अचानक सीने में तेज दर्द हुई और बेचैनी वो महसूस कर रहे थे, तब उन्होंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को मोबाइल पर मैसेज भेजा था और ये लिखा था कि उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन वक्त रात का था और रात का वक्त होने की वजह से उनके दोस्त ने इस मैसेज को देखा ही नहीं, वो देख नहीं पाए और समय बीतता चला गया। सुबह के करीब 4 बजे जब दोस्त की आंख खुली, उन्होंने मैसेज को देखा तो वो घबराकर तुरंत पहुंच गए नाना पाटेकर के घर। और वहां जब वो नाना पाटेकर के घर पहुंचे तब नाना पाटेकर को बहुत तेज पसीना आ रहा था, वो धीरे धीरे अपनी सुध-बुध खो रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे उन्हें गोवा के मणिपाल जो हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया, जहां उन्हें बचाने की आखिरी कोशिशें की गई लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और नाना पाटेकर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कार्डियक अरेस्ट के मामलों में मरीज को 1.5 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो उनकी जान बच भी सकती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में 10 में से केवल एक ही मरीज के साथ ऐसा हो पाता है और उनकी जान बच पाती है। और बहुत अफसोस की बात है कि इस घटना में भी नाना पाटेकर को अस्पताल ले जाने में शायद देरी हुई क्योंकि उनका मैसेज ही वक्त पर नहीं पढ़ा गया।
1: ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो।
2: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल

0: एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का आरोप है कि भारत के कुछ बड़े उद्योगपति अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को शुरू होने से रोक रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि मस्क के ये आरोप पूरी तरह गलत है, मनगढ़ंत है। सरकार का साफ कहना है कि भारत के नियम सबके लिए बराबर हैं और सरकार के मुताबिक स्टारलिंक, जियो और एयरटेल तीनों ही कंपनियां अभी एक ही लाइन में खड़ी हैं और सभी की सुरक्षा जांच चल रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से ठीक पहले एक बार फिर इस सम्मान पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कोई डींग नहीं ढांक रहे बल्कि सिर्फ सच बता रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया भर के 8 बड़े युद्धों को सुलझाया है, कई देशों को टैरिफ की धमकी देकर नए युद्ध शुरू होने से रोका है। जब जब नोबेल का सीजन आता है पीस वाले पुरस्कार पे तो ट्रंप की दावेदारी आ ही जाती है। सुनिए।
1: I settled 8 wars and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon and that's a positive thing. Very positive thing, and other presidents should have done it before me, or somebody should have done it. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
0: और अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक मल्लारेड्डी रंगा रेड्डी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सरकारी बस में एक कॉलेज की छात्रा को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान छात्रा कांग्रेस विधायक के हाथ को पीछे करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब कांग्रेस विधायक के व्यवहार पर सवाल उठे तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सफाई ये दी कि वो तो बस एक पिता की तरह प्यार से लड़कियों से बात कर रहे थे और सरकारी बस सेवा के बारे में उनसे पूछ रहे थे। देखिए। इधर आज शेयर बाजार में भी बहुत आग लगी है। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया जिससे निवेशकों का लगभग 13 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया है। इस बड़ी गिरावट के पीछे चार मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल के पार पहुंचाना। तीसरा, विदेशी निवेशकों का अपना पैसा निकालना। और चौथा कारण है अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 72 घंटों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सड़क पर जो मोर्चा खोल रखा है वो भारतीय राजनीति को किस नए मोड़ पर ले जाएगा। इस वक्त विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति पर आंदोलन कर रहा है जिसे मैराथन आंदोलन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन या फिर कुछ घंटों का धरना ना हो बल्कि लगातार एक मोमेंटम बनाकर रखना, एक दबाव बनाकर रखना, कई दिनों तक चलाया जाए और जिसका मकसद लगातार राजनीतिक दबाव को कायम रखना है। और अभी विपक्ष यही कर रहा है। 6 अक्टूबर से शुरू हुआ विपक्ष का यह आंदोलन अलग अलग चरणों में जारी है और आज भी इस आंदोलन को लेकर विरोध जताने और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए कई सारे नए तरीके जो हैं वो अपनाए गए। और इस दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए पुरानी रणनीति को भी बदला गया जिसे विश्लेषण विपक्ष की धप्पा राजनीति भी विश्लेषक जो है वो धप्पा राजनीति बता रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कनॉट प्लेस के मोइट्स रेस्टोरेंट में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सांसद थे उनको एक लंच पर बुलाया और रणनीति बैठक आयोजित की जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सभी शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्ष ने अपनी योजना बदलते हुए सड़कों पर सीधे टकराव के बजाय शांतिपूर्ण मार्च का रुख इस बार अपनाया और सभी विपक्षी सांसद बसों में सवार हुए, राजघाट की ओर रवाना हुए ताकि वहां प्रार्थना और श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध दर्ज करा सके। सांसदों के राजघाट कूच करने के दौरान कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया जिससे भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। और आज का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, आज देश के जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में भी विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के खिलाफ हुंकार भरी जिसे बीजेपी ने देश में अराजकता फैलाने की साजिश बता दिया है। देखिए।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेता 6 अक्टूबर से लगातार मैराथन आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन ने एक बड़ा सवाल पैदा किया है। सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार देश में बढ़ते राजनीतिक गतिरोध को रोकने के लिए अपने पद से इस्तीफा देंगे या वो इस बार भी इस दबाव को सोखने में कामयाब होंगे।
3: कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।
2: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो इन तीनों मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इनमें पहली मांग है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जल्द से जल्द इस्तीफा हो, दूसरी मांग है वोटर लिस्ट बदलने की SIR प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगे और तीसरी मांग है देश में EVM की जगह वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इन तीनों मांगों को लेकर विपक्ष 2014 के बाद पहली बार सड़कों पर कोई मैराथन आंदोलन कर रहा है। इसके लिए 6 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आकाशवाणी भवन में 6 घंटे का विशाल धरना दिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आज 8 अक्टूबर को विपक्ष ने गांधीगिरी से ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने की योजना बनाई। जो विपक्ष कल तक जंतर मंतर जाकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने की बात कर रहा था, उसने आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर क्या हासिल करने की कोशिश की, इसी सवाल में मौजूदा राजनीति का पूरा निष्कर्ष छिपा है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के लिए एक लंच बैठक की, जिसमें आज की रणनीति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के समय को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस और सरकार से जुड़े लोगों को यही लग रहा था कि आज भी विपक्ष इस लंच के बाद जंतर मंतर जाने की मांग कर सकता है और वहां ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कल की तरह विपक्ष और सुरक्षा बलों के बीच टकराव और संघर्ष बढ़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी आज की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। लंच के बाद सभी विपक्षी सांसद एकजुट होकर राजघाट की ओर बढ़े और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुद्दा बापू की समाधि स्थल तक पहुंच गया।
4: नेता राजघाट पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखेंगे बस के अंदर बैठे हुए हैं। एक रणनीति बन रही है कि आखिरकार आखिरी समय में कितने सारे सांसद अंदर जाएंगे। KC वेणुगोपाल हैं जो निकले हैं इस वक्त बस से आगे देखने के लिए कि राजघाट में कितने नेता रहेंगे जाएंगे, कि क्या 300 के 300 सारे सांसद अंदर जाने वाले हैं, सवाल फिलहाल बना हुआ है। राहुल गांधी को मैं देख सकता हूं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो 300 सांसदों को लेकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को लेकर राजघाट जाएंगे, बापू के सामने वो प्रे करेंगे और उसके बाद वहां से जो वोट चोरी का कैंपेन जिसको वो कहते हैं उसके खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है उनका यहां पर जारी रहेगा।
2: राजघाट पर गांधी जी के समाधि स्थल के सामने मौन साधना ये बताता है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को केवल एक दिन का राजनीतिक संघर्ष नहीं मान रहा, वो इसे नैतिकता की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। ऐसी लड़ाई जिसमें विपक्ष के लिए बात सिर्फ चुनाव आयोग को झुकाने की नहीं है, बात है साबित करने और दिखाने की कि चुनाव आयोग में सब कुछ सही नहीं हो रहा था और विपक्ष ने इस मोर्चे पर सरकार से लोकतंत्र को बचाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ भारत के इतिहास में कभी विपक्ष ने एक साथ आकर ऐसा प्रदर्शन नहीं किया और यही चीज इस आंदोलन को भारत की राजनीति के लिए एक नया घटनाक्रम बना रही है। ऐसा घटनाक्रम जिसमें विपक्ष भी अपना मेकओवर कर रहा है और इसे आप इन बातों से समझ सकते हैं। 2014 में जब पहली बार केंद्र में मोदी सरकार का गठन हुआ तब विपक्ष संख्या बल के मामले में न सिर्फ कमजोर था बल्कि काफी बिखरा हुआ भी था। इन्हीं वजहों से 2014 से 2019 के बीच सरकार ने कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए, लेकिन उन सभी फैसलों में विपक्ष अपनी आपत्तियों को कभी आवाज नहीं दे पाया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग उठी और विपक्ष ने कई प्रदर्शन भी किए, लेकिन उस दौर में सरकार विपक्ष पर हावी रही और कोई मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बना। 2018 में जब #MeToo अभियान के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोपों पर MG अकबर ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया तब भी उसमें विपक्ष के दबाव का ज्यादा रोल नहीं था और कई विश्लेषकों ने कहा कि इस्तीफा विपक्ष के कारण नहीं हुआ था। इसके अलावा पहले कार्यकाल में सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए और वो कई कानून लाई, लेकिन विपक्ष कभी किसी मुद्दे पर अपनी बात को नहीं मनवा पाया और ये सिलसिला दूसरे कार्यकाल में भी चला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस्तीफे पर भी विपक्ष ने काफी बातें की, लेकिन विपक्ष कभी कामयाब नहीं हुआ और विपक्ष इन 10 सालों में सरकार के मुकाबले ज्यादा बिखरा हुआ और ज्यादा कमजोर रहा। और ये वो 10 साल थे जब सरकार भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से चल रही थी, लेकिन इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 240 सीटें मिली तब विपक्ष अपनी पुरानी भूमिका से धीरे धीरे बाहर निकला और आज अगर इस तरह विपक्ष मैराथन आंदोलन करके ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है तो ये अचानक से नहीं हुआ। तीसरे कार्यकाल के पहले 2 सालों में विपक्ष अपने विरोध के कारण कई बड़े बिल और फैसलों को वापस कराने में कामयाब रहा है, जैसे वक्फ कानून को पहली बार में सरकार पास नहीं करा पाई और उसे जेपीसी के पास भेजा गया। यही चीज एक देश एक चुनाव बिल के साथ हुई और जो बिल गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को उनके पद से हटाने की बात कहता है उसे भी विपक्ष ने पास होने नहीं दिया। यही नहीं, महिला आरक्षण के लिए सरकार जो 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आई वो भी विपक्ष ने वोटिंग की प्रक्रिया में गिरवा दिया। और बात सिर्फ इन बिल्स की नहीं है, इन्हीं 2 सालों में लेटरल एंट्री, यूजीसी, संचार साथी ऐप, यूपीएस, जाति जनगणना और कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में हिंसा करने वाले छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमों को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। और क्योंकि इन फैसलों से विपक्ष सरकार को कई बार दबाव में लेकर आया, इसलिए आज वो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। विपक्ष इतना बड़ा मैराथन आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दबाव बनाकर रखने में कामयाब होता तो ज्ञानेश कुमार को जनवरी 2029 तक मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहने से रोका जा सकता है।
5: हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, गांधी के चरणों में जाकर कह रहे हैं कि सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे।
6: स्ट्रेंथ गांधी जी के चरणों में आकर कोई स्ट्रेंथ दिखाता है? यहाँ तो स्ट्रेंथ लेने आते हैं, हम तो यहाँ स्ट्रेंथ लेने आए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता महात्मा गांधी के सामने।
7: जब जब

0: का प्रयोग करता है, वो FIR कर रहे हैं राहुल गांधी पे, प्रियंका जी पर, तो ये सब वो कर रहे हैं। जनता उनके ऊपर FIR करके उनको ताले में बंद कर देगी।
1: हालांकि यहां सरकार विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार और बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस पूरे राजनीतिक टकराव के बाद बड़ा सवाल यही है कि भारत की राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। आज तक ब्यूरो।
2: विपक्ष के इस आंदोलन के साथ दिल्ली पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगा रही है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो नई तस्वीरें जारी की हैं, जो नए वीडियो जारी किए हैं, उन पर काफी विवाद हो रहा है। देखिए,
1: ये तस्वीरें 7 अक्टूबर के उस विरोध प्रदर्शन की है जब विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जाकर धरना देने की मांग कर रहे हैं। ये भी आरोप है कि जब पुलिस राहुल गांधी को जबरन हिरासत में ले रही थी तब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और इस दौरान कांस्टेबल अंकित कसाना और कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और उनकी वर्दी फाड़ दी गई।
3: बस मेरी सेफ्टी नहीं, मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि ये लोग टारगेट करते हैं।
1: दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र संधू के साथ भी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर मारपीट और बदसलूकी हुई, जबकि वो उन पुलिस कर्मियों में शामिल थे जो ऑन ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। कांस्टेबल देवेंद्र संधू का आरोप है कि वो और उनके साथी पुलिसकर्मी बहुत शांति से प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे कि इलाके में धारा 163 लागू है और वो पुलिस की बस में बैठ जाए, लेकिन तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने अचानक उन्हें निशाना बनाया, पीछे से खींचा और जमीन पर गिरा दिया।
4: तो उन्होंने एकदम से पीछे जाके उन्होंने हमें पीछे से खींच लिया, पर हम नीचे गिरा के मतलब लात गुस्से मारने लगे।
1: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने भी बताया कि जब वो ड्यूटी पर तैनात थे तब भीड़ में से किसी ने पीछे से आकर उनकी कमर को पकड़ा और उन्हें जानबूझकर जोर से नीचे गिरा दिया। यही नहीं, जमीन पर गिरने के बाद उस हमलावर ने उन्हें लात मारी और जैसे ही वो देखने के लिए मुड़े कि उन्हें लात मारने वाला कौन है तो वहां मौजूद कांग्रेस के लोगों ने उस हमलावर को छिपा लिया। ये भी आरोप है कि वो उसे गोलचक्कर के बीच वाले पार्क में ले गए और वहां छिपाकर उसे मौके से भगा दिया। हेड कांस्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने भावुक होते हुए कहा कि ड्यूटी पर रहते हुए वर्दी में इस तरह लात खाना बहुत अपमानजनक है और उन्हें शरीर की चोट से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने का दुख है।
5: दूसरे डेल्टा 2 साहब है हमारे, मंजीत चौहान साहब, उनके साथ में डिटेंशन की कार्रवाई चल रही थी, हम उनको पकड़ के खींच रहे थे, उनको बसों की तरफ डिटेंशन करके लेके जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती हमारे को पीछे से कमर से पकड़ के खींचा और जानबूझ के गिराया। गिरने के बाद मेरा बॉडी और कैमरा भी जमीन पे गिर गया, मेरे को 1 सेकंड का टाइम लगा उसको उठाने के लिए। जैसे ही मैं उठ के खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैंने चेक किया कि मेरा कैमरा ठीक है, जब भी मेरे को पीछे से किसी ने लात मारी।
1: दिल्ली पुलिस ने वीडियो फुटेज खंगालने और घायल पुलिसकर्मियों के मेडिकल चेकअप के बाद कई धाराओं के तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कार्यकर्ताओं पर 3 नई FIR दर्ज की। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि मारपीट और हिंसा पुलिस ने की थी और उसके कई नेता अब भी चोटिल और घायल हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिखता है कि जब दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा को सड़क से हटाकर पुलिस की बस में बैठाने की कोशिश कर रही थी, उसी खींचतान और धक्का मुक्की के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का हाथ पीछे की तरफ जाता है और उनकी कोहनी वहां खड़ी एक महिला पुलिसकर्मी के पेट में लगती है। दिल्ली पुलिस ने अभी इस वीडियो पर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, यानी पुलिस अभी ये नहीं कह रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोहनी जानबूझकर मारी थी या पुलिस के साथ हो रही भारी धक्का मुक्की और अफरा तफरी के दौरान अचानक लग गई थी। आज तक ब्यूरो।
2: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सादगी के लिए फक्कड़ कहलाने वाले मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की जान क्या बचाई जा सकती थी। 75 साल के नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने एक दोस्त को

मैसेज लिखा। उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि उनके सीने में दर्द है, जिसके बाद उन्हें करीब 4 बजे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स की 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं उसमें 10 में से 9 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि मरीज को शुरुआती के जो 90 मिनट है, 1.5 घंटा, उसमें इलाज अगर मिल गया तो बचने के चांस ज्यादा होते हैं। और नाना पाटेकर के मामले में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ।

0: हम तो हमारी जिंदगी उधार की है ना, हमारा कब जिए हम, वक्त ही नहीं मिला हमारी जिंदगी जीने का। आज इस किरदार की जिंदगी जी रहे, कल दूसरे, कल और। जिस दिन कभी ठहर जाएंगे तो पता चलेगा अपने बारे में, सोचेंगे हम वो जिंदगी है। जिस दिन वो आवाज बंद हो जाती है वही मौत हो जाती है हमारी।
1: विश्वनाथ गजानन पाटेकर, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना आप उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। ये दुखद लेकिन सच है कि अब ये शानदार कलाकार हमारे बीच नहीं रहा।
2: हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहर हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नमस्ते।
3: यहां ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में, सबके सामने।
1: 75 साल के नाना ने अपनी जिंदगी के 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। इस दौरान करीब 90 फिल्में की। फिल्मों में किया गया उनका छोटे से छोटा रोल भी दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गया।
4: तेरे पास उधार मांगने नहीं आया, लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा।
5: एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से, हंसो।

0: अब हम उन्हें दोबारा पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। कल रात गोवा में कार्डियक अरेस्ट की वजह से नाना पाटेकर का निधन हो गया। रात करीब 2:30 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे दुनिया को पता चला कि डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। गोवा के डोना पाउला में नाना पाटेकर का घर है। आमतौर पर नाना पाटेकर पुणे में अपने गाँव में रहते हैं, लेकिन गोवा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ही वो कुछ दिन पहले वहाँ आए थे। कल रात करीब 2:30 बजे उनके सीने के बाईं ओर दर्द उठा और तबीयत खराब महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ही अपने एक दोस्त को मैसेज किया और अपनी हालत के बारे में बताया। दोस्त ने वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने की बात कही। इसके बाद करीब 4 बजे उनके दोस्त जब घर पहुंचे तो नाना पाटेकर पसीने से तर बतर थे और हालत खराब थी। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई, जो नाना पाटेकर के केयर टेकर ने बुलाई थी। नाना पाटेकर को पहले घर पर ही CPR दिया गया, लेकिन स्थिति और बिगड़ी तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 45 मिनट तक डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर्स को पता चल गया था कि नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। रात का वक्त था, इसलिए नाना के दोस्त को भी मैसेज देखने में काफी टाइम लग गया और इस दौरान महत्वपूर्ण समय चला गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के मामले में शुरुआती 90 मिनट गोल्डन पीरियड है। कार्डियक अरेस्ट के 90 मिनट के अंदर अगर मरीज को मेडिकल केयर मिल गई तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन नाना पाटेकर को यह मदद मिलने में काफी देर हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक नाना पाटेकर के घर पर ही उन्हें CPR दिया जाने लगा था और एम्बुलेंस में भी उन्हें बचाने के सारे प्रयास किए गए, लेकिन करीब 5:30 बजे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। गोवा मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम भी किया गया और इसके बाद उनके शव को पुणे के लिए रवाना कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुणे के डोंजे गाँव में किया। इस गाँव से नाना पाटेकर को बहुत लगाव था। ये बात आपको हैरान करेगी, लेकिन नाना पाटेकर ने साल 2023 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान की आखिरी संपत्ति वो 12 मन लकड़ियां होती हैं, जिनसे उसकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि उनके अंतिम संस्कार में गीली लकड़ियां इस्तेमाल ना की जाएं, ताकि धुआं ना हो, जिससे पता चले कि कौन अपना था और कौन पराया।
1: हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माई फाइनल प्रॉपर्टी बेटा, वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसमें जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब, बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
0: नाना पाटेकर का ये बयान ब्लैक ह्यूमर था, जिसके लिए वो जाने जाते थे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मौत को लेकर वो किसी भ्रम में नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन जाना ही है, इसीलिए जीवन भर चीजें इकट्ठा करते रहने से कोई फायदा नहीं है। अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर और तस्वीर पर माला न लगाई जाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि कुछ दिन लोग याद रखते हैं, फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती है, इसीलिए तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: नाना पाटेकर ने पर्दे पर तो कई किरदार किए, लेकिन असल जिंदगी में उनका एक ही किरदार था। वो एक ऐसे फक्कड़ इंसान थे जो माया नगरी मुंबई से दूर जाते ही गांव के साधारण किसान का जीवन बिताते थे। नाना पाटेकर की आम जिंदगी सादगी से भरी थी। फिल्मों की शूटिंग खत्म होते ही सीधे गांव वापस लौटते थे। वहां साधारण से कपड़ों में रहना, खेत खलिहानों में समय बिताना, यही उनकी असली चाहत थी। नाना पाटेकर ने अपनी साधारण जीवन शैली को लेकर कहा था कि इंसान की जिंदगी फिल्मों से बड़ी और लंबी होती है, इसीलिए जरूरतें जितनी कम होंगी, इंसान उतना ही आजाद रहेगा। देखिए,

0: नाना पाटेकर उन्हीं कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग की तारीफ थिएटर्स में और व्यक्तित्व की तारीफ थिएटर्स के बाहर की जाती रही है।
1: आए और गए, खेल खत्म। कोई जीए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को।
2: गोली भी चलाई गुरु की जान बचाने के लिए, राज्याभिषेक हो गया तेरा। तारीख लिख ले, लगी भी पूरी निशाने पे। सलाह, हमेशा मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ, आज किसी ने मेरी जान बचाई है।
0: नाना पाटेकर एक ऐसे कलाकार थे जिनके पास स्टारडम तो था, लेकिन उन्होंने स्टारडम को कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया। वो स्टारडम को पहनकर नहीं घूमते थे। परिंदा, अग्निसाक्षी, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग करके नेशनल अवार्ड जीतने वाले नाना पाटेकर कैमरे के पीछे वाली जिंदगी में अक्सर खादी के कपड़ों में ही नजर आए। अन्य फिल्मी कलाकारों की तरह वो भी कैमरे की चमकती फ्लैश लाइट्स का केंद्र बन सकते थे, इवेंट में जाकर तस्वीरें खिंचवा सकते थे, लेकिन ये उनका स्टाइल नहीं था। कैमरे के आगे वो स्टार थे, एक ऐसे कलाकार थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन कैमरे के पीछे उनका अपना एक अलग संसार था जिसमें वो स्टार नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थे।
3: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था।
0: नाना पाटेकर ने हमेशा ये माना है कि स्टारडम कोई मंजिल नहीं है, इसीलिए वो फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आते, काम करते और फिर गांव लौट जाते थे। न उन्हें फिल्मी पार्टियों में देखा जाता था, न ही वो आलीशान जिंदगी जीते थे, उनका जीवन दर्शन अलग था। साल 2024 में कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान तो नाना पाटेकर ने यहाँ तक कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं, वो यहाँ काम करने आते हैं और काम खत्म होते ही वापस चले जाते हैं, उन्हें गांव की जिंदगी ही पसंद है। नाना पाटेकर की इसी सोच ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक फक्कड़ अभिनेता बनाया जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन उसे न स्टारडम की लालसा थी, न ही फिल्मी कलाकारों से भरी पार्टियों की। आम तौर पर फिल्मी कलाकारों को उनके अभिनय के साथ साथ उनकी पब्लिक अपीयरेंस से भी नापा जाता है। कोई कलाकार किस ब्रांड की कार से आता है, कौन से ब्रांड के कपड़े और जूते पहनता है, कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन नाना पाटेकर की फिलॉसफी बाकी कलाकारों से अलग थी। नाना का मानना था कि एक एक्टर का मुख्य काम एक्टिंग है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो मायने नहीं रखता, इसलिए वो शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई के बजाय पुणे के अपने गांव में रहना पसंद करते थे। नाना पाटेकर कहते रहे हैं कि उन्हें जिंदगी से जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला है, उनके लिए जरूरत कम रखना आसान है। नाना पाटेकर ने यह भी बताया था कि उनके घर में एसी नहीं है क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके घर के चारों ओर पहाड़ हैं। नाना पाटेकर हिंदी ही नहीं मराठी फिल्मों के भी स्टार थे, उनके पास न पैसे की कमी थी न ही सुविधा हासिल करने की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सामान्य जीवन को ही अपना असली जीवन बनाया। सच यही है कि उन्हें जो चाहिए था वो उनके पास था और जो नहीं चाहिए था वो उसके पीछे नहीं भागते थे। वो गांव खेत के बीच रहने वाले, जानवरों से घिरे रहने वाले और साधारण कपड़े पहनने वाले कलाकार थे, वो अपना खाना भी खुद ही बनाते रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि एक एक्टर के अलावा दुनिया उनको क्या समझती है। नाना पाटेकर की पहली फिल्म 1978 में आई थी जिसका नाम था गमन। इस फिल्म से पहले वो फिल्मों के पोस्टर पेस्ट करने का काम करते थे। नाना कहते हैं कि उनके जीवन के संघर्ष ने उन्हें सिखाया था कि जरूरतें जितनी कम रहेंगी चिंताएं उतनी दूर रहेंगी। नाना पाटेकर के पास करीब 14 एकड़ का फार्म हाउस था जिसमें वो रहते थे, जिसमें उन्होंने गाय और बैल भी रखे हुए थे। वो इस बात से बहुत खुश रहते थे कि उनकी नींद मोबाइल फोन के अलार्म से नहीं बल्कि मोर की आवाज से खुलती थी। नाना पाटेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनके जिंदगी जीने के तरीकों से जुड़ी उनकी फिलॉसफी पर सोशल मीडिया पर काफी रील्स बनी हैं।
4: आनंदाचा गुणाकार, दुखाचा भागाकार, आणि वेळेची वजा।
0: नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सफलता और असफलता जिंदगी का बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए इसकी चिंता किए बगैर काम पर पूरा फोकस लगाना ही ठीक रहता है।
5: मैं कल मरने वाला हूँ, इस पर अगर मैं भरोसा करूँ तो आज अच्छा जी सकता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि हम मरने वाले
6: नहीं है।
5: हाँ, और बटोरते रहते हैं, करते रहते हैं, और अचानक से आती है इनका अकाली निधन हो गया। कल रात को तो बैठे थे, खाना बिना खाए सुबह उठे ही नहीं।
6: नाना पाटेकर ने हमेशा ये माना कि देश सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ भी आता है। आप में से बहुत से लोगों ने नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार देखी होगी। इसमें उन्होंने एक सख्त मेजर का रोल निभाया था। ये रोल इतना जीवंत था कि दर्शक मानने लगे थे कि एक्टिंग से पहले नाना पाटेकर भारतीय सेना में थे, मेजर रहे होंगे। हालांकि आपको बता दें कि नाना पाटेकर हमेशा से एक शानदार एक्टर थे, लेकिन प्रहार फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सैन्य ट्रेनिंग, क्षमता और अनुशासन से भारतीय सेना इतनी प्रभावित हुई कि मराठा लाइट इन्फेंट्री में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई। और इस मानद उपाधि को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो करगिल युद्ध के दौरान करीब 60 दिनों तक सैनिकों के बीच रहे थे।
7: जान मत मांगना, इसके बाजार में कोई कीमत नहीं।
8: मुसलमान का खून ये हिंदू का खून। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले।
9: कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल।
0: नाना पाटेकर को कई फिल्मों में ऐसे किरदार मिले जिनमें गुस्सा और तलखी भरी हुई थी।
7: मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहाँ से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी।
8: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
0: उनके किरदारों में आम आदमी का दर्द छिपा हुआ था।
7: यहाँ ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा।
0: फिल्मी पर्दे पर जिस तरह के डायलॉग उनके लिए लिखे जाते थे, अपनी असली जिंदगी में भी वो उसी बेबाकी से बोलते थे। देश, सेना, किसान, जाति व्यवस्था, धर्म से जुड़े सवालों पर वो हमेशा अपने अनोखे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जाने जाते थे।
8: अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा।
0: नाना पाटेकर भारतीय सेना के मानद पदाधिकारी थे और इस जिम्मेदारी को उन्होंने गंभीरता से निभाया। प्रहार फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए मराठा लाइट इन्फेंट्री में सैन्य अधिकारियों से ट्रेनिंग ली थी।
10: नहीं आता है सर, नहीं आता है।
8: इतने आगे बढ़।
10: नहीं आता है सर।
8: यू टू बाय टू मंकी क्रॉल करके आगे बढ़।
0: ये वैसी ही ट्रेनिंग थी जैसी सैनिकों को दी जाती है। उन्हें प्रहार में एक मेजर का रोल निभाना था जिसे अपनी टीम के सैनिकों को अनुशासन में लाना था।
8: याद रखो तुम यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं।
0: नाना पाटेकर ने सैन्य ट्रेनिंग को इतनी गंभीरता से लिया और उसे अपने अंदर इस तरह से समा लिया कि प्रहार फिल्म के बाद लोगों में ये भ्रम फैल गया कि नाना पाटेकर सेना के असली मेजर हैं। सैन्य ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी नाना पाटेकर की लगन, अनुशासन और ट्रेनिंग के दौरान उनकी शारीरिक क्षमता से इतने प्रभावित हुए कि उनको मराठा लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नाना पाटेकर हमेशा मानते रहे कि देश सबसे पहले है और इसीलिए वो हमेशा से सेना को सम्मान देते आए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने सीमा पर जाकर करीब 60 दिन बिताए थे। वो इस युद्ध का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने इन 60 दिनों में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। हमारे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो इन 60 दिनों में द्रास, लेह, कुपवाड़ा, बारामूला और सोपोर जैसे इलाकों में रहे और वो सेना की क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस टीम में रहकर किस तरह से मदद की इसके बारे में उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बताया था कि इस दौरान उनका वजन 76 किलो से 56 किलो ही रह गया था, लेकिन वो इसे अपनी एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। धर्म जैसे मुद्दों पर जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनको बेकार के सवाल की तरह माना। उनका कहना था कि देश सबसे पहले है, धार्मिक पहचान वाली लड़ाइयां केवल समाज में फूट डालने की राजनीति है। उनके ये बयान 1994 में आई उनकी फिल्म क्रांति वीर के उस डायलॉग की तरह है जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के खून का एक ही रंग लाल बताया था।
8: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। ये मुसलमान का खून।
0: क्रांतिवीर फिल्म का ये सीन नाना पाटेकर की छवि से जुड़ गया और हर मंच पर उन्होंने हिंदू मुसलमान के झगड़ों को राजनीतिक साजिश ही बताया। नाना पाटेकर ने हिंदू मुस्लिम संबंधों पर अपनी माँ द्वारा कही गई एक बात बताई थी। उनकी माँ ने कहा था कि दोनों धर्मों में प्रार्थना का बस तरीका अलग है और कुछ नहीं। जाति के मुद्दे पर भी उनका वही जवाब था जो धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर था। वो मानते थे कि जाति से ज्यादा हमें भारतीयता को महत्व देना चाहिए क्योंकि इंसान जन्म से किसी धर्म या जाति का नहीं होता, उसे बाद में ये सब बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: और आज मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम के जल भराव से लेकर राहुल गांधी के धरने वाली पॉलिटिक्स पर कई बड़ी बातें कही। देखिए, मुख्यमंत्री सैनी साहब, आपका बहुत स्वागत है पंचायत आज तक के मंच पर। मुख्यमंत्री जी, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से आपके विधायकों की मुलाकात हुई, आपकी भी 1-to-1 पीएम से बात हुई है, थोड़ा हमें बताइए कि क्या बताया गया, क्या चर्चा हुई उस दिन?
11: अंजना जी, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके पास समय का अभाव होता है, क्योंकि उनका एक एक मिनट वो लगा होता है, सेकंडों में बात करते हैं, कई बार इतना टाइट होता है, उस समय में से हरियाणा के हमारे प्रतिनिधियों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार जो बोलती है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करने का काम हम करते हैं। नहीं तो अंजना जी, मैं देखता हूं घोषणाएं हो जाती हैं, लोग 1-2 साल तो देखते हैं कि घोषणा की थी पूरी नहीं हुई, फिर भूल जाते हैं, फिर वो नए उसके ऊपर डेंट पेंट करते हैं, फिर नई घोषणाएं लेके आते हैं लोग, फिर बातों में, अब इनकी बातों में नहीं आते, अब ये मारे मारे घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहा है, कोई चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है, कोई कोर्ट को बदनाम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश, संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ये इनके समय के अंदर अगर ये अच्छे काम करते तो लोग इनको नहीं जाने देते, जब इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, देश को भ्रष्टाचार की दलदल में इन्होंने फंसाया और लोगों के साथ भद्दा मजाक इन्होंने किया है किसी भी क्षेत्र के अंदर, अंजना जी, चाहे राहुल गांधी है या कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग, आप लोग, मैं तो देख रहा हूं, मैं हैरान हूं, कौन सा मुद्दा लेकर के आते हैं, वोट चोरी हो गया का? अरे भाई, वोट चोरी किसका हो गया? हर व्यक्ति को अधिकार है वोट पाने का, हर व्यक्ति के नाखून को सही लगती है, वो बटन दबाता है, एक एक व्यक्ति दबाता है बटन।
6: मुख्यमंत्री जी, हरियाणा को तो एग्जाम्पल बताया जा रहा है ना इस वक्त।
11: नहीं,
6: राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी से ये सरकार बनी है, वरना सारे लोगों में बहुत गुस्सा था बीजेपी के।
11: अंजना जी, मैं बार बार कई बार मंचों के ऊपर से बोल रहा हूँ, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा आप कोई अच्छे पंडित को देखिए और राहुल गांधी के नाम से कोई हवन कराइए, वो कम बुद्धि तो ठीक हो ना। अरे मैं ये नहीं कहता हूं, मुद्दा तो ठीक हो ना कि किस मुद्दे के ऊपर वो उठा करके जनता के बीच में। वोट चोरी का क्या मतलब है?
6: SIR में नाम कट रहा है लोगों का, और ऐसे ही नाम उसमें रखे जा रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वोटर।
11: अंजना जी, ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, पूरा देश चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे कोर्ट के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे लोकतंत्र के ऊपर विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहा है, पूरा देश हमारी संवैधानिक पीठों के ऊपर विश्वास कर रहा है। विश्वास अगर कोई नहीं कर रहा तो कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं कर रही, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो विश्वास नहीं कर रहे, परंतु उसके अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी जो लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो तो अंदर बैठ कर ये कहते हैं भी ये गलत कर रहा है राहुल गांधी।
6: किसने कहा आपको? दीपेंद्र हुड्डा तो वहां लगातार लगे हुए हैं राहुल गांधी के साथ, पूरे सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस पार्टी।
11: दीपेंद्र तो परिवारवाद में फंसा हुआ है, दीपेंद्र को तो लग रहा है कि शायद मैं कहीं मुख्यमंत्री बन जाऊं, परंतु आप देख रहे हैं ना कांग्रेस में क्या हाल हो रहा है।
6: मुख्यमंत्री जी, SIR में अगर वाजिब लोगों का, एक परिवार के 4 लोग हैं, 2 का नाम आ गया 2 का नाम कट गया, तो ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, तो क्या गलत है इसमें?
11: नहीं, देखिए, ये उसकी अपनी पर्सनल गलती हो सकती है, और हाँ। चुनाव आयोग ये नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी है, हाँ। और उसने कहा है कि आप फार्म भरिए, कोई गलती है उसके लिए दोबारा ऑब्जेक्शन भी आते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए उसको वो जारी करता है, लगाता है, कहीं आपको गलती लग रही है आप दोबारा फार्म भर के दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये चुनाव आयोग हमारी स्वतंत्र एजेंसी है अंजना जी, और उसकी ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो, यही इसी की खूबसूरती हमारे चुनाव आयोग की है कि जितने ज्यादा वोट पोल होंगे, जितने ज्यादा कोई व्यक्ति वोट से ना रहे, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है। परंतु क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, मैं तो हैरान हूं अंजना जी। कहा जी वोट काट दिए, एक घर में कहा आप भी पहुंचे, राहुल गांधी जिस घर के अंदर वो गया, जिस घर की उसने फोटो स्क्रीन के ऊपर दिखाई, अंजना जी आप भी गए उस घर के अंदर, इसने कहा कि इस घर में 500 वोट बने हुए हैं। जिस घर में आपने जाकर देखा, मैं तो आपके टीवी पर देख रहा था अंजना जी, आप पूछ रहे थे उसको, कहा जी हम तो 4 लोग रह रहे, कहा घर में, वो आदमी कह रहा, कहा यहां तो और कोई वोट ही नहीं है, कहा इसके पास कहां से सूचना आई, किसने इसको सूचना दी और किसने इसको कह दिया अभी तक स्क्रीन के ऊपर खड़ा होकर, यह कहते वोट चोरी हो गया, मेरी समझ में नहीं लगी।
6: अच्छा, सीजेपी वालों को आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं?
11: नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट देखिए,
6: उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार हमारे लोगों को डिटेन कर रही है, प्रोटेस्ट ही नहीं करने देती।
11: नहीं देखिए अंजना जी, प्रोटेस्ट का हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर सकता, हमने भी किए हैं ना जी, हमने भी किए हैं। प्रोटेस्ट के क्या है, मैंने प्रधानमंत्री जी को गाली देना, मैं अंजना जी विपक्ष को एक बात कहता हूं, देखिए किसी को भी वो मानते होंगे, अल्लाह को मानते होंगे, राहुल गांधी कह दे किसी को तो मानता होगा, वेटिकन सिटी में मानता होगा किसी न किसी को, हैं? वेटिकन सिटी में जरूर मानता होगा किसी को, वहां जाकर के कह दे वो, इटली के अंदर भी मोदी ने कुछ नहीं किया 12 सालों में, कह दे वो, देश के लोग उसको जवाब देंगे। गाली देना आसान है, काम करना मोदी ने दिन रात।
6: आप लोग भी राहुल गांधी पर जबरदस्त चोट करते हैं, मतलब वो जनेऊ पहनते हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन
11: पखंडी है,
6: जोड़ रहे हैं,
11: पखंड करते हैं।
6: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और लोग पेड़ काट कर कागज बनाते हैं और फिर उस कागज में लिखते हैं कि पेड़ मत काटो। नमस्कार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9। टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है, 8, 9 को प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर-पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।

0: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
1: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। अब लिख लीजिए लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चैरिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
7: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
0: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
8: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी। लगातार आप देखिए, यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई चुकी। सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
9: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। एफआईआई ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 रुपए पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 147463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
7: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
10: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
9: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ। करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
11: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
9: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
10: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
9: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
10: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
9: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
10: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
12: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
9: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
13: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो है? क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो यह सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: प्रणाम दादू।
1: कहाँ है चुनाव?
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम क्या, हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली

0: गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
1: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
0: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
2: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चारिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR

0: गोल्ड मेडल है।
1: तीन दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो सीजेपी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दिपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दिपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के सीजेपी समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सीजेपी को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दिपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
2: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
3: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
2: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, NSA लगाना है NSA लगा दो, UAPA लगाना है UAPA लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूँ, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दिपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दिपके ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दिपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं है। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
4: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में RJD ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और RJD के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
5: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, ये तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं, और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
6: चोर, चोर, चोर, चोर, चोर, चोर, चोर, चोर,
0: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी। लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद। अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
6: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
7: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं, और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
6: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
7: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
6: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
8: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
9: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
10: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
6: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
11: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
6: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
12: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
13: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
14: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
13: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
15: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। चले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
13: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
15: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
13: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
15: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
16: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
13: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
17: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ,
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो यह सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: प्रणाम दादू।
1: कहाँ है चुनाव?
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव माँ सड़क ना, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नजारा दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर-पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों?
2: सरकार बेमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। अब लिख लीजिए प्रेसिडेंट का ऑल इंडिया एलायंस है, लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चैरिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दिपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दिपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दिपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए इलेक्टोरल सिस्टम तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
7: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
0: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
8: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी। लगातार आप देखिए, यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है। और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, आप देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
9: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
9: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
10: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
9: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
11: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
12: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
13: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
9: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
14: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
9: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमान गढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश पर कटाक्ष किया तो समाजवादी पार्टी की तुलना योगी ने मगरमच्छ से कर दी।
15: और मुझे कभी कभी हंसी आती है इस बात को लेकर के, जब समाजवादी पार्टी युवाओं की नियुक्ति की बात आज करती है तो मुझे लगता है जैसे कोई मगरमच्छ पानी में बैठकर पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ वहां पर शांति का उपदेश दे रहा हो। तो ये शांति के उपदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहना।
7: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
16: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
17: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
18: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
17: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
16: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
17: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
16: अगर एक बात की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
17: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगाई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
16: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
4: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
17: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
4: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो है? क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: शांत तू।
1: कहाँ है चुनाव जी?
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो आल्सो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम क्या, हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास ऑल इंडिया, जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। अब लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चार तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दिपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दिपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दिपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो।

0: 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकिया देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
2: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
3: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
4: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए, चूंकि लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
5: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
6: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
5: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
6: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
5: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
7: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
8: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
9: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
5: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
10: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बन के तैयार है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
5: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
11: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। FII ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 1,47,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
2: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
12: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
13: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया, नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
14: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
13: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
15: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
13: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
15: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
13: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगाई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
15: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
16: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
13: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: कहां तू?
1: कहां है? चुनाव
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: वह सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: का है। कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नजारा दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा?
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चैरिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, तीन महीने नहीं छह महीने रख दो, एक साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
7: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
0: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
8: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी। लगातार आप देखिए, यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई चुकी। सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
9: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
9: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
10: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
9: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
11: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
12: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
13: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
9: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
14: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
9: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
15: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। FII ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 1,47,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
7: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
16: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
17: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया, नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
18: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
17: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
19: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
17: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
19: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
17: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगाई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
19: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
20: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
17: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
21: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: மக்கள்
1: பிறந்தது.
2: कहां है चुनाव?
3: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने दार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके.
2: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया. गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं.
3: नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है. वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है.
4: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है.
3: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया. एक आलू भी
5: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं.
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय.
3: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए.
6: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना.
4: मैं भी नाचा, मेरे को दो.
6: क्या है?
7: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते रहिए आज तक.

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नजारा दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है, 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, NSA लगाना है NSA लगा दो, UAPA लगाना है UAPA लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठे

0: तो ऐसा नहीं है, जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को CJP के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से CJP को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
2: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं CJP ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में RJD ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और RJD के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
3: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, ये तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं, और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
4: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए, चूंकि लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं BJP अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
5: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में SP की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
6: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं, और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
5: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
6: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
5: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
7: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
8: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
9: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
5: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
10: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
5: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
11: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। FII ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 1,47,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
2: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
12: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
13: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका।
14: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
13: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
15: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
13: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
15: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
13: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
15: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
16: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
13: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
17: कमांडर,

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: प्रणाम दादू।
1: कहाँ है चुनाव जी?
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव मां सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज हैं। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है, 8-9 को प्रेसिडेंट का पास ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट फ्लीइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो। तीन महीने नहीं, छह महीने रख दो, एक साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
7: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
0: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
8: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी। लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, क्योंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है। और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे। अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
9: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की ये तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
9: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
10: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
9: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
11: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
12: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
13: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
9: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
14: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
9: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
15: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। FII ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 रुपए पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 1,47,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
7: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
16: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
17: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया, नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
18: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
17: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
19: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। चले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
17: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
19: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
17: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
19: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
20: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
17: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: கல்ல
1: பிரந்த து
2: ஏய் कहां है चुनाव
3: 2002 में आई फिल्म शक्ति जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
2: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
3: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
4: वह सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
3: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
5: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
3: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
6: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
7: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
6: क्या है?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज हैं। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है, अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7-8-9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वही पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है, 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: देखिए अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चारी दिखाई, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 47 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 47 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दिपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दिपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दिपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए इलेक्टोरल सिस्टम तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, NSA लगाना है NSA लगा दो, UAPA लगाना है UAPA लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूँ, तो डालना

0: जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को CJP के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से CJP को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
2: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं CJP ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में RJD ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और RJD के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
3: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है, जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए, काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
4: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी लगातार। आप देखिए, यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, क्योंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है। और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे। अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं BJP अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
5: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में SP की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
6: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
5: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
6: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
5: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
7: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
8: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
3: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
5: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन ना करने की अपनी वजह बता रही है।
9: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
5: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमान गढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
5: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। एफआईआई ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 147,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 218,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
2: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
10: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
11: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
12: 5:20 को डिक्लेयर किया कि वोट
11: है। ये है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
13: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
11: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
13: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
11: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
13: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
14: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
11: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
15: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लग रहा है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ? क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो यह सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: प्रणाम दद्दू।
1: कहाँ है चुनाव जी?
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलूपी
1: का कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन। बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप। कहा, जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना। पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9। टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ CJP ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और CJP ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
8: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है, बैरिकेडिंग क्या करेगा।
1: दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लान 9 अक्टूबर के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष ने SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई है।
3: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चैरिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते हैं।
1: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
4: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
1: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
5: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
6: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए, इलेक्टोरल सिस्टम, तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
1: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
5: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो। 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, एनएसए लगाना है एनएसए लगा दो, यूएपीए लगाना है यूएपीए लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है। जब अमेरिका से आया था तब यही सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं, तो डालना है जेल में तो डाल दो, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
1: दीप के इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं, पुलिस की मनाही के बावजूद प्रदर्शन किया। एक बार फिर दीप के ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बीते दिनों से राहुल गांधी की धरना प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सीजेपी के समर्थक भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पूरे देश से जुटने वाले हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से सीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। साफ है, पुलिस हो या केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज तक ब्यूरो।
7: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। यहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
0: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
8: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए चुकी लगातार। आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, क्योंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है। और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
7: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे। अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
9: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
9: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
10: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
9: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
11: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
12: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
13: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
9: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
14: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
9: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमान गढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश पर कटाक्ष किया तो समाजवादी पार्टी की तुलना योगी ने मगरमच्छ से कर दी।
15: और मुझे कभी कभी हंसी आती है इस बात को लेकर के, जब समाजवादी पार्टी युवाओं की नियुक्ति की बात आज करती है तो मुझे लगता है जैसे कोई मगरमच्छ पानी में बैठकर पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ वहां पर शांति का उपदेश दे रहा हो। तो ये शांति के उपदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहना।
7: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
16: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
17: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
18: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
17: ये है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
16: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। चले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
17: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
16: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
17: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
16: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
19: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
17: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
19: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो है? क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: पर नंद तू
1: कहाँ है चुनाव
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क ना, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: का कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्ष का प्रदर्शन, बोले राहुल, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। सुबह बेंगलुरु से बिहार तक एसआईआर पर हल्ला बोल। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल पर अराजकता फैलाने का आरोप, कहा जनता का भरोसा खो चुके हैं राहुल। जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हुई 5 करोड़। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज को अमेरिका का झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, वीजा धोखाधड़ी में शामिल हैं ये सभी कंपनीज। और पंचतत्व में विलीन हुए नाना, पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गोवा में हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने